0: सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, क्या वेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं?
8: आपके विचारधारा मैंने बताया, 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के, कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन अपने जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से यह लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी CM हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर CM हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर, जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा की आनंद फानंद में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं।
6: तो वो शिकायत फर्जी है?
7: जी।
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा,
8: दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का यह कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांवों से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले

0: गई डायरेक्ट धूप के हथियार थान दिल सब परिवार पर हमी के और छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन दिल।
1: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह आरा आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
3: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
4: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
3: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
5: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
4: That's okay.
5: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
4: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
3: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
4: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
3: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवा पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
4: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
3: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
6: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
7: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर।
6: वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट, आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट इसराइल विल डिफेंड इटसेल्फ इफ अटैक्ड बाय हिजबुल्ला।
3: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा लेकिन हकीकत यह कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं

0: दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
1: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
2: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विकास यात्रा की तस्वीर, कहा रफ्तार ही भारत की नई पहचान, जमीन से अंतरिक्ष तक रचा इतिहास, मैक्रो ने पोस्ट किया हग वाला वीडियो। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपक राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।

शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव गुट की बड़ी रैली, शिंदे की जनसभा में शामिल हो सकते हैं बागी सांसद, भारी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस का अलर्ट। तो 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाई लेवल मीटिंग की, तैयारियों की समीक्षा की। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच।

0: का पराशर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ जो कि अयोध्या से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चल रही जांच के बीच ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है उसके मुताबिक चंपत राय की ओर से उनके प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ आज एक अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली है और इस बैठक में कई लोग शामिल होंगे, लेकिन चंपक राय को इस बैठक से दूर रहने को कहा गया है, वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। अयोध्या में बंद कमरे में ये बैठक होने वाली है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जिसमें मौजूद रहेंगे। तो वही उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत सामने आ गई है। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बकायदा एक व्हिप जारी किया गया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बनाई और अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल ना होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी बगावत के आसार हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताता है कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं, उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के लिए एग्जामिनेशन को पूरी तैयारी पूरी तरह से फुल प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वही राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामी थी। एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
4: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
5: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का आईड किया।
4: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। I wanna ring you. Wait. Come.
6: IPO मार्केट दो साल तक स्टार्टअप्स का फंड जुटाने का पसंदीदा जरिया बनने के बाद अब अपना आकर्षण खो रहा है। बीते दो बरसों में हर दूसरे स्टार्टअप ने दलाल स्ट्रीट पहुंचने का सपना देखा। निवेशकों ने टेक कंपनियों पर जमकर दांव लगाए और मुनाफा कमाया, लेकिन बदलते ग्लोबल माहौल ने इस रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान तनाव और बाजार की उठापटक के बीच कई नई कंपनियां लिस्टिंग का प्लान टाल रही हैं। इनमें फोन पे, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो और ओयो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक आए 20 मेन बोर्ड IPO ने 20,000 करोड़ रुपए से भी कम रकम जुटाई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 16 IPO ने 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहा है कि इस साल बड़े साइज वाले IPO तकरीबन गायब हैं। स्टार्टअप IPO की सुस्ती का असर निवेशकों के भरोसे पर भी नजर आ रहा है। इस साल जितनी नई एज कंपनियां लिस्ट हुई उनमें ज्यादातर ने बाजार में कमजोर शुरुआत की। इस साल लिस्ट हुई 6 नई एज कंपनियों में से 4 इश्यू प्राइस से नीचे लिस्ट हुई हैं। आगामी मीडिया लैब्स, शैडोफैक्स और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जैसी कंपनियों की लिस्टिंग कमजोर रही। आई फाइनेंस की लिस्टिंग भी लगभग फ्लैट रही। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि निवेशक इस वक्त काफी सोच समझ कर पैसा लगा रहे हैं। IPO मार्केट की ये ठंडक स्टार्टअप्स के लिए बड़ा संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ स्टोरी दिखाकर कंपनियां आसानी से निवेश खींच लेती थी, लेकिन इस वक्त निवेशक प्रॉफिट और मजबूत बिजनेस मॉडल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उधर सेबी ने IPO अप्रूवल की वैलिडिटी 6 महीने बढ़ाई गई। इनमें 6 महीने की अतिरिक्त राहत मिल सकती है। ऐसे में कई स्टार्टअप्स अपनी लिस्टिंग टाइमलाइन फिर से तय कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियां ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने में भी धीरे चल रही हैं। वजह साफ है, अगर लिस्टिंग के बाद शेयर टूटे तो ब्रांड इमेज और निवेशक दोनों को नुकसान होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जो कंपनियां लिस्टिंग का प्लान बना रही थीं, वो अपने IPO को अगली तिमाही तक टाल सकती हैं। साफ है कि दलाल स्ट्रीट में स्टार्टअप IPO का जो तूफान पिछले 2 साल में दिखा था, फिलहाल उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। ग्लोबल तनाव, कमजोर मार्केट सेंटिमेंट और निवेशकों की सख्ती ने नई कंपनियों की राह मुश्किल कर दी है। ऐसे माहौल में वही स्टार्टअप्स बाजार में उतरने की हिम्मत दिखाएंगे जिनका कारोबार मजबूत होगा और जिन पर निवेशकों को भरोसा होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे धन निरंतर आता रहे? अपने पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे धन का अपव्यय ना हो? और पर्स में ऐसा क्या ना रखें जिससे पर्स गायब होने का खतरा बन जाए? अपने पर्स में रखें कौन सी चमत्कारी वस्तुएं जिससे बढ़े समृद्धि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
2: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
4: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
5: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
4: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीबा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। वेट कम

0: दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जब डगमगाने लगती है तब रईसों से लेकर आम आदमी तक को गोल्ड ही याद आता है। मुश्किल दौर में सोने की चमक फीकी पड़ने की जगह बढ़ जाती है। इसी भरोसे की वजह से सेंट्रल बैंकों का रुझान एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया भर के 76 केंद्रीय बैंकों पर किए गए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक 89% रिजर्व मैनेजर्स को 12 महीनों में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं 84% केंद्रीय बैंक 5 साल में ग्लोबल रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ने की बात कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंकों ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में गोल्ड स्टॉक बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक वैश्विक भंडार में अमेरिकी डॉलर का दबदबा लगातार घट रहा है। ऐसे में 74% रिजर्व मैनेजर्स का अनुमान है कि 5 साल बाद दुनिया में डॉलर की हिस्सेदारी बेहद कम हो जाएगी। इस उठापटक की वजह से केंद्रीय बैंक डॉलर का मुंह छोड़कर सोने को अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बदलाव आम खरीदारों की जेब पर सीधा असर डालेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों का नजरिया बहुत आक्रामक और तेज दिखाई दे रहा है और एक साल में ग्लोबल मार्केट में सोना 6100 से $6,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। देश के भीतर भी देखें तो पिछले एक साल में कीमतों में करीब 40% की बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी की बड़ी वजह सेंट्रल बैंकों की तरफ से की जा रही रिकॉर्ड खरीदारी और डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी है। दुनिया के तमाम देश इस समय भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कागजी मुद्रा या सरकारी बॉन्ड के मुकाबले सोने पर भरोसा सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले 4 साल में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने औसतन 1000 टन सोना हर साल खरीदा है। सर्वे में शामिल 90% बैंकों ने माना कि संकट के समय गोल्ड का बेहतरीन परफॉर्मेंस ही उसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह है। भारत के लिहाज से देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। रिजर्व बैंक का कुल भंडार 822 टन से बढ़कर अब करीब 880 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक सोना खरीदने के साथ ही उसे सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज लोकेशंस में भी बदलाव कर रहे हैं। तमाम देश अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकाल कर वापस अपने देश के भीतर सुरक्षित तिजोरियों में शिफ्ट कर रहे हैं। साफ है कि दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए लेकिन जब बात सबसे सुरक्षित संपत्ति की आती है तो सोने का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल मार्केट में सोने की बढ़ती ताकत और सेंट्रल बैंकों की इस महा खरीदारी से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के दाम आम आदमी को और चौंका सकते हैं। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए स्मार्ट। तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

की विकास यात्रा की तस्वीर, कहा रफ्तार ही भारत की नई पहचान, जमीन से अंतरिक्ष तक रचा इतिहास, मैक्रों ने पोस्ट किया हग वाला वीडियो। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपक राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।

शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार। उद्धव गुट की बड़ी रैली, शिंदे की जनसभा में शामिल हो सकते हैं बागी सांसद। भारी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस का अलर्ट। तो 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाई लेवल मीटिंग की, तैयारियों की समीक्षा की। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब। पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी। एटीएस को सौंपी गई जांच।

0: साथ पूजा पर आशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शिमला से, जहां पर संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक से पहाड़ी दरकने के कारण बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है। इसके चलते ये प्रमुख मार्ग दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। राहत की बात ये रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। शिमला पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए ढली संजौली बाईपास मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक इस मार्ग का इस्तेमाल ना किया जाए, इस मार्ग का इस्तेमाल से बचा जाए। एक एडवाइजरी जारी की है पुलिस ने यात्रियों के लिए इस मार्ग को लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए, शिमला से ये तस्वीरें हैं। प्रमुख मार्ग पर दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये मलबा, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मलबा भर भरा कर सड़क पर गिर गया है, जिसके बाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि इस सड़क मार्ग से बचा जाए। एक बड़ा नुकसान होने से टल गया है और इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां पर चरित्र पर शंका के चलते पत्नी के साथ क्रूरता की घटना सामने आई है। दरअसल पति ने पहले तो पत्नी की पिटाई की, फिर उसका मुंडन कर दिया, कपड़े से उसके हाथ पैर बांधकर चेहरे पर कालिक पोतने के साथ उसके ऊपर पेशाब भी कर दिया। आरोपित ने इस बर्बरता का एक वीडियो भी बनाया है और पीड़िता की शिकायत पर पटना पुलिस अब जांच में जुट गई है कि किस कारण से ऐसी बर्बरता उसके पति ने दिखाई, इसकी जांच की जाएगी। इस पत्नी की बेरहमी से पिटाई की गई, मुंडन कराया गया और उसके चेहरे पे कालिक भी पोती गई और उसके बाद वो वीडियो भी उसके पति ने बनाया। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में श्रीकोटा स्थित बेस चिकित्सालय की पुरानी मोर्चरी के पास बृहस्पतिवार दोपहर एक बड़ा हादसा उस समय होने से बच गया जब एक एम्बुलेंस अचानक से बिना चालक के ही आगे बढ़ गई। बेकाबू एम्बुलेंस ने रास्ते में खड़े तीन वाहनों और एक मकान की बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर देहरादून जा रही थी और वाहन में मरीज के साथ उसके परिजन भी सवार थे। इसी दौरान चालक किसी कार्य से कुछ देर के लिए एम्बुलेंस से नीचे उतर गया, तभी एम्बुलेंस अचानक से आगे बढ़ने लगी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार लोगों तथा चालक को मामूली चोट भी आई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आज एक अलग ही अंदाज में नजर आए। बेगूसराय के बाबा हरिगिरिधाम गढ़पुरा में केंद्रीय मंत्री ने हाथ में साइकिल की कमान संभाली और पैडल मारते हुए सड़कों पर निकल पड़े। ईंधन की बचत, स्वस्थ जीवन शैली और प्रदूषण मुक्त भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस साइकिल यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता भी साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं यूपी के एटा में एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक को लोगों ने तालिबानी सजा देते हुए खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं, युवतियां और बच्चियां भी हाथों में डंडे लेकर हमला करती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ओवरलोड डंपर चालक ने आरटीओ टीम से बचने के लिए रॉन्ग साइड तेज रफ्तार में ट्रक को दौड़ा दिया। इस दौरान डंपर से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे कि हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक डंपर में क्षमता से अधिक पत्थर लदे हुए थे। आरटीओ टीम के पीछा करने पर चालक ने नियंत्रण खोते हुए डंपर से कई बड़े पत्थर सड़क पर गिरा दिए। हाईवे पर अचानक पत्थर बिखरने के कारण अन्य वाहन चालकों के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया। ऐसे में कई वाहनों को अचानक से ब्रेक लगाने पड़े, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। इस संबंध में जब आरटीओ नोएडा के अधिकारी नंद कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने इन दावों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि घटना के समय आरटीओ विभाग की कोई भी टीम उस स्थान पर चेकिंग करने के लिए नहीं गई हुई थी और विभाग की टीम उस समय दनकौर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर टीम से जानकारी ली गई, जिसमें पता चला कि चालक कथित तौर पर हरियाणा के पलवल पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहा था। आरटीओ विभाग की ओर से वहां कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही थी। तो वही झारखंड के आरएसएस हेडक्वार्टर पर आधारित एक पेट्रोल बम से हमला किया गया, आधी रात वहां पर हमला किया गया है। आखिर इस हमले का मकसद क्या था, अभी यह मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है। आतंकी साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
1: रांची में आरएसएस के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
2: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
1: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
3: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
4: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
1: इससे पहले बीजेपी इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
5: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
1: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
0: दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा 6 मासूम को सुरक्षित बचाया भी गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
1: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
6: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
1: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें 1 बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
7: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
1: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
8: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
1: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी। जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
0: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भारत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद आरोपी की अस्पताल में मौत हो गई और अब पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
9: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
10: बहुत अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
9: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
11: सुबह हमें 8 बजे के करीब में धूप पे डायरेक्ट धूप के हथियार तान देला सब परिवार पर हमनी के, ओकरा बाद छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन ले।
9: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।
0: और अब बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो कि तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। और इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान भी दिया है। कहा है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
12: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली, जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
13: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
12: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
14: And the United States, sorry, I'm screaming, I won't.
13: That's okay.
14: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
13: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
12: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की अनदेखी की है, वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
13: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
12: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
13: You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
0: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे, लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
1: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
3: देख लेंगे,
4: जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे बेईमान गद्दार।
0: उद्धव के 2 सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे, आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
1: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
5: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
0: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Schwarber to right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का अध्यक्ष नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग हैं, 70-70 साल के लोग हैं, दो दो बार तीन तीन बार एमपी बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
6: सर मरेठा सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
5: देखेंगे कोर्ट। चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
7: सर जिस दिन
5: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100

पेरिस में पीएम मोदी ने पेश की 12 साल की विकास यात्रा की तस्वीर, कहा रफ्तार ही भारत की नई पहचान, जमीन से अंतरिक्ष तक रचा इतिहास, मैक्रों ने पोस्ट किया हग वाला वीडियो। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की जनसभा में शामिल हो सकते हैं बागी सांसद, भारी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस का अलर्ट। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पर्स में, अपने बटुए में, अपने वॉलेट में कौन सी 5 चीजें रखें जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपको फायदा हो। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे आपको संपन्नता मिलती रहे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्स का आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, सामान्यतः पर्स धन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, धन रखने के लिए प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर जो आपका पर्स है ये भी धन रखने का एक स्थान है, इसीलिए पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप पर्स को सावधानी से रखेंगे तो पर्स में निरंतर धन आता रहेगा, धन का आगमन सरलता से होगा और आपको धन का अभाव नहीं होगा। पर्स में 5 विशेष वस्तुएं जरूर रखनी चाहिए, जिनको रखने से आपकी संपन्नता और आपकी समृद्धि बनी रहेगी। पर्स पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो आपको बताया कि पर्स में आपको विशेष रूप से 5 चीजें जरूर रखनी हैं। पर्स में पहली चीज आपको क्या रखनी है? पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं के चित्र ना रखें। अपने परिवार का चित्र आप चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं। चाहें तो ओम का प्रतीक ओम लिखा हुआ हो या लाल रंग का स्वस्तिक बना हुआ हो, ये प्रतीक भी आप पर्स में रख सकते हैं। जो भी चित्र या प्रतीक अपने पर्स में रखें वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ तरीके से बना होना चाहिए। तो पर्स में पहली चीज आप अपने परिवार का चित्र या कोई शुभ प्रतीक रख सकते हैं। पर्स में दूसरी चीज आपको क्या रखनी है? पर्स में रुपए और पैसे बिल्कुल ठीक तरीके से आपको रखना चाहिए। मोड़ कर, थूंस कर, तुड़े मुड़े तरीके से रुपए ना रखें। अगर आप पर्स में सिक्के रखते हैं तो सिक्कों को रुपयों से या नोट से अलग रखिएगा। अगर आप पर्स में सही तरीके से रुपए पैसे रखेंगे तो धन बर्बाद नहीं होगा, धन का फालतू का खर्चा नहीं होगा। और जो लोग अपने पर्स में पैसे रुपए ठूंस करके रखते हैं, गलत तरीके से रखते हैं, उनके पैसों के बर्बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। पर्स पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुभाषीष जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1988, शाम को 6:35, जन्म स्थान है कोलकाता। सुभाषीष कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी का एक बड़ा अच्छा ऑफर है, लेकिन उसके लिए मुझे कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा, तो क्या कोलकाता से दूर जा करके मुझे नौकरी करनी चाहिए, क्या मेरे लिए उचित होगा? सुभाषीष, आपकी कुंडली में नौकरी और स्थान दोनों बदलने का समय अभी चल रहा है, और अगर आपको कोलकाता से दूर जाने का अवसर मिलता है तो आप बिल्कुल स्थान परिवर्तन करके जाइए, आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद आपका करियर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में।

ने जाना। अब पर्स में तीसरी कौन सी चीज आपको रखनी है? अपने पर्स में एक सोने का या पीतल का वर्ग रखिए। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा आपको अपने पर्स में रखना चाहिए। इसको गंगा जल से धो लीजिए और गंगा जल से धो करके बृहस्पतिवार को अपने पर्स में रखिएगा। हर महीने एक बार इसको पर्स से निकालिए, गंगा जल से धो के शुद्ध करिए और दोबारा पर्स में रख लीजिए। इससे आपके पर्स में स्थायी धन बना रहेगा, निरंतर पैसा आता रहेगा। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अगर आप अपने पर्स में रखें तो धन आपको सरलता से मिलता रहेगा। पर्स में चौथी चीज आपको क्या रखना है? देखिए, पर्स में अगर आप कागज रखते हैं, कोई महत्वपूर्ण छोटा सा कागज या कोई विजिटिंग कार्ड इंपॉर्टेंट है अगर पर्स में रखते हैं, तो पर्स में बहुत थोड़े से कागज आपको रखने चाहिए। पर्स में बहुत ज्यादा कागज आपको नहीं रखना चाहिए। अगर पर्स में पैसों से ज्यादा आप कागज रखते हैं, बहुत सारे कागज पर्स में रखते हैं, पैसा कम रखते हैं, तो धन का अपव्यय होता है, बेवजह धन के खर्चे बढ़ते हैं और पर्स के गायब हो जाने का या पर्स के चोरी हो जाने का खतरा बना रहता है। तो पर्स में एकाध कागज रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन पर्स में बहुत ज्यादा कागज भर भर के मत रखिए। पर्स पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि पर्स में पांचवी चीज कौन सी रखनी चाहिए। अपने पर्स में अपनी राशि से संबंधित वस्तु आपको जरूर रखना चाहिए। जो चीज आपकी राशि से संबंधित है उसका छोटा सा प्रतीक या उसका छोटा सा स्वरूप अपने पर्स में रखिएगा। जैसे अगर आपकी राशि कुंभ है या मकर है तो आप लोहे का छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो चांदी का छोटा सा टुकड़ा आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो अपनी राशि के अनुसार कोई छोटा सा प्रतीक अपनी राशि का अपने पर्स में रखिएगा। आप अपने राशि से संबंधित रंग की कोई वस्तु रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी धनु राशि है तो आप पीले रंग का कागज का टुकड़ा, सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा भी रख सकते हैं। अगर आप राशि की वस्तु अपने पर्स में रखेंगे तो पर्स आपके भाग्य को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा और इससे धन की प्राप्ति बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से होती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बेवजह की चिंता ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

लेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हरे रंग का पर्स रखने से बहुत पैसा आता है, धन का बहुत लाभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, हरा रंग बुध ग्रह का रंग है और बुध का पैसे के आने जाने से, लेन देन से सीधा संबंध है। जिनकी कुंडली में बुध अच्छा हो और बुध से लाभ हो सकता हो, ऐसे लोग हरे रंग का पर्स रखें तो उनको धन का लाभ जरूर होगा। लेकिन जिनके लिए बुध फायदेमंद ना हो, जिनकी कुंडलियों में बुध अशुभ हो, अगर ऐसे लोग हरा पर्स रखेंगे तो नुकसान होगा। इसीलिए कुंडली में बुध की स्थिति देख करके आप हरा पर्स रख सकते हैं। हर व्यक्ति को हरा पर्स रखने से धन का लाभ होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया

भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रितु ने हमें लिखा है और रितु हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1989। जन्म का समय मध्य रात्रि में 11:55। जन्म स्थान है मुंबई। रितु कह रही हैं कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रितु, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी अवश्य होगी। साल 2027 में आपके विवाह का योग बनता है। 2027 के सेकेंड हाफ में, जून से लेके दिसंबर वाले समय में आपके विवाह की संभावना बन रही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी विवाह करें एक बार कुंडली जरूर मिला लें। कुंडली मिला करके विवाह करेंगी तो आगे चल करके दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक गुलाब का फूल रखिएगा, आप सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। अब आपको बताते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है, आज शिव जी की पूजा सर्पों के साथ करनी चाहिए और आज जब भी अवसर मिले, विशेष रूप से शाम के समय, माता लक्ष्मी की अगर आरती करें तो बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज नए भारत की कहानी केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी कहानी है। पीएम मोदी ने नए भारत की अद्भुत ताकत का एहसास कराया। उन्होंने सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश की बेमिसाल आर्थिक और डिजिटल प्रगति के आंकड़े रखे। पीएम ने फ्रांस के साथ भारत के मजबूत होते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नए विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का सीधा आह्वान किया। पीएम मोदी ने फ्रांस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच का सबसे मजबूत सेतु बताया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी घोषणाएं भी की। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव में और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सायन में कार्यक्रम करेगी। 6 बागी सांसदों पर सबकी नजर। सूत्रों के अनुसार ये सांसद अपना अलग संसदीय समूह बना चुके हैं और शिंदे शिवसेना में शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे सेना में शामिल होने की संभावना पर भड़क सकता है विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने इंटरनल सर्कुलर में अलर्ट जारी किया। 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली। संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिला वाई प्लस सुरक्षा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने प्रणव झा को हराया, क्रॉस वोटिंग से मिली जीत। झारखंड राज्यसभा में चौथी बार चुने जाने पर परिमल नाथवानी ने जताया आभार, कहा झारखंड के विकास के लिए समर्पित रहूंगा। झारखंड राज्यसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का सहयोगी दलों पर हमला। कांग्रेस प्रभारी राजू बोले, हार के लिए आरजेडी लेफ्ट जिम्मेदार। झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की जीत पर सुदेश महतो ने जताई बधाई, बोले राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पोल खुली। कर्नाटक विधान परिषद की 7 खाली सीटों पर चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत, बाकी 2 सीट पर बीजेपी जीती। सभी 222 विधायकों ने भी मतदान किया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले अमेरिकी राजदूत गोर। आतंकवाद, नशीले पदार्थों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हज 2026 अब तक का सबसे सफल आयोजन। भारत को मिले 2 सम्मान, जिसके लिए विदेश मंत्रालय, हज मैनेजमेंट टीम और सभी अधिकारियों का आभार। 21 जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा की। नीट री एग्जाम का पेपर लेकर कई शहरों में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाए गए प्रश्न पत्र। टेलीग्राम पर बैन मामले में केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा दावा, बोली आतंकी गतिविधियों का अब अड्डा बन गया है ये प्लेटफॉर्म और साथ ही हाईकोर्ट ने फैसला रखा है इस पर सुरक्षा। टीएमसी में बंटवारे पर आज पक्ष रखेंगे अभिषेक बनर्जी। स्पीकर ओम बिरला ने दिया मिलने का समय। कोलकाता में फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच तेज। सीआईडी ने ममता बनर्जी की बहन के कालीघाट स्थित आवास पर की जांच। पश्चिम बंगाल के दिनहाट कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मंत्री उदयन गुहा के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फेंके अंडे, भेजे गए 7 दिन की पुलिस हिरासत। बिहार सरकार ने एसडी संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया, पीके शाही की ली है जगह। आज वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ा करने के क्रम में गिराई जाएंगी 6 मस्जिदें, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पंजाब में वायरल वीडियो मामले में आम आदमी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से की मुलाकात, फर्जी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। फर्जी वीडियो मामले पर बोले सीएम मान ने सफाई देते हुए कहा, ये मैं नहीं, मेरे जैसा दिखने वाला कोई एक्टर है। सीएम मान ने बीजेपी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर बोला हमला, कहा चुनाव को देखते हुए हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पंजाब में 100 साल का इंतजार खत्म। ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। स्वदेशी कवच तकनीक से लैस होगी ये रेल लाइन। पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल की कंपनी से करोड़ों की साइबर ठगी, मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी, बोले समाजवादी ब्राह्मणों का बार बार करती है अपमान। मुलायम यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए इन्हें ब्राह्मण समाज याद आता है, हम परशुराम के वंशज समूल नष्ट कर देंगे। गुजरात में चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया बड़ा बयान, बोले किसानों के हित में फैसला होना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुए शामिल, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उनके योगदान की सराहना की। सीबीएसई ओएसएम विवाद पर कॉम्पैक्ट की सफाई, तकनीकी खामियों के आरोपों से किया गया इनकार।
रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तभी पाकिस्तान ऑपरेटिव हुसैन राणा और शहजाद भट्टी से संपर्क में आया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि हमले के बाद भी उन्हें एक रुपया नहीं मिला, जबकि 50,000 का हुआ था सौदा। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे टेलीग्राम पर बैन के मामले में फैसला सुनाएगा, गुरुवार को रखा था फैसला सुरक्षित। बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 29 आईपीएस अधिकारी के बाद 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला। रीनीट परीक्षा को लेकर सीकर में हाई अलर्ट, जयपुर रेंज आईजी ने ली तैयारियों की समीक्षा बैठक, गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर और एसपी ने भी कोचिंग संचालकों से बैठक कर नीट परीक्षा से संबंधित कोई भी इश्यू सामने आने पर प्रशासन को सूचित करने की हिदायत दी। पटना के डाक बंगला चौराहा पर हजारों दवादा चौकीदार का प्रदर्शन, और नियमित करने और आश्रितों को बहाल करने की मांग। सूरत में टेट परीक्षा मामले को लेकर शिक्षकों का कड़ा विरोध, सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कर प्रदर्शन किया। संगरूर में ठेका कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन, परिवारों समेत सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया। अयोध्या में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, मोम के पुतलों के रामायण कालीन दृश्य होंगे जीवन। 8,000 वर्ग फीट में फैला म्यूजियम 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, राम सीता हनुमान सहित 50 पात्रों की जीवंत झलक। शिमला में गर्मी से राहत पाने के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी, रिज मैदान पर पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यटकों में खासा उत्साह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में रन फॉर योग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, कुमारखेड़ा बाईपास से रामलीला मैदान तक हुई दौड़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के 12 जिलों में योग कार्यक्रम, जामनगर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवानों ने किया योग। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान, दुनिया के टॉप संस्थानों में ड्यू जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एमपी के मऊ में गरुणास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल कर लगाया गया सटीक निशाना। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और ज्यादा मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक मिसाइल। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच विश्व शांति की मुहिम तेज, शांति की इस पहल के लिए आचार्य लोकेश को न्यूयॉर्क के भारतीय जनरल श्रीकांत ने किया सम्मान। शिमला में संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक से पहाड़ी दरकने की वजह से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आया, दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह हुआ बंद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दिखा बवंडर, महिषमारी इलाके में हुगली नदी के ऊपर दिखे 2 बवंडर, बवंडर के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गुजरात के जामनगर में हुई झमाझम बारिश, बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर लगा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात में मॉनसून पहुंचने में लग सकते हैं 5 दिन, मौसम विभाग के मुताबिक एलनीनो की वजह से मॉनसून में देरी, अमूमन 15 जून तक गुजरात पहुंचता है मॉनसून। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट 22 जून तक, प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, तो कांगड़ा कुल्लू मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चरित्र पर शंका के चलते पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार, आरोपित पति ने पहले तो पत्नी की पिटाई की फिर उसका मुंडन करवा दिया। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव में मस्जिद पर चला बुलडोजर, ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के बुलडाणा में कर्ज माफी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच किसान का बड़ा कदम, बोरी भर के पटाखे का डीएम ऑफिस में फोड़ने की कोशिश की गई, समय रहते पुलिस वालों ने पकड़ा। गुरुग्राम में क्रूरता की हद पार हुई, लिफ्ट रुकने से नाराज युवकों ने ऑपरेटर की आंख फोड़ी, नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने दिल्ली एम्स रेफर किया। ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, साथ ही भवन परिसर में बने मंदिर की प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त किया। यूपी के एटा में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद के बाद खूनी झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, युवक के खंभे से बांधकर लोगों की पिटाई की गई, 3 को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्वच्छ भारत स्वच्छ गुजरात अभियान के तहत वडोदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोड रोलर और बुलडोजर चालक करोड़ों रुपए की अवैध शराब को पूरी तरह से नष्ट किया। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर आरटीओ से बचने के लिए ओवरलोड ट्रक से सड़क पर गिराए गए पत्थर, पुलिस ने हटवाकर टाला बड़ा हादसा।
राजस्थान के बाड़मेर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की आत्महत्या की और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया। गुजरात में प्री मानसून गतिविधियों से कई जिलों में जमकर हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक हल्की बारिश की अनुमान जताया। नागपुर धर्मांतरण मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। मदरसे में पढ़ाने वाला क्रूज ट्रेवलर कारोबारी मोहम्मद मकसूद तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में चलती सीएनजी बस में लगी भयंकर आग। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री बचे सुरक्षित। सूरत में तीन से चार दुकानों में लगी आग। आग की चपेट में आई 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हुई। महाराष्ट्र के कल्याण में शादी के डेढ़ महीने बाद नवविवाहिता ने की आत्महत्या। डॉक्टर पति समेत सास और देवर गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में जर्जर कस्टम हाउस इमारत तोड़ने की वजह से बड़ा हादसा। मलबे में दबे तीन मजदूर।

0: need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: लायन ओज फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
8: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Waiting. Come.

रूस की राजधानी मॉस्को का वो इलाका जिसे पुतिन का सबसे सुरक्षित किला कहा जाता था, वो अब धुएं के काले गुबार में तड़प रहा है। आज तड़के यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर कपोतनिया में वो तबाही मचाई जिसने रूस के घमंड को राख कर दिया। रूसी आंतरिक मंत्रालय खुद मान रहा है कि धमाके इतने भीषण थे कि मॉस्को रिंग रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। दावे बड़े बड़े थे, कहा गया था कि कपोतनिया रिफाइनरी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ एंटी ड्रोन नेट की दीवारें थीं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोनों के आगे ये लोहे के जाल मकड़ी के जाले की तरह बिखर गए। स्थानीय निवासियों के कैमरे गवाह हैं कि कैसे रूस का एंटी ड्रोन सुरक्षा कवच इस बारूदी बारिश को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ। यूक्रेन के 60 से ज्यादा ड्रोन बेरोक टोक मॉस्को में मंडरा रहे थे, एक एक कर बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा रहे थे। कई इमारतें तो ऐसी थीं जिन पर यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए रूस ने पेंटेसिर एयर डिफेंस मिसाइलों को तैनात कर रखा था। एक के बाद एक यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में इमारतों से टकरा रहे थे, वहीं दहशत के मारे लोगों की चीख निकल रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रूस के मिलिट्री प्राइड पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए यूक्रेनी ड्रोनों को सुरक्षा की एक दो या तीन नहीं बल्कि चार अलग अलग परतों को भेदना पड़ा। रास्ते में कम से कम 5 पेंटेसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जो ऊंचे टावरों से आसमान पर नजर रख रहे थे, लेकिन यूक्रेन के लोहे के परिंदों ने इन सब को छकाते हुए सीधे निशाने पर अचूक वार किया। यूक्रेन के निशाने पर ये रिफाइनरी पहले भी रही है। सितंबर 2024, मार्च 2025 और इसी साल मई में भी यहां हमले हुए। रूसी टेलीग्राम चैनल एक्सेल नोवा प्लस का दावा है कि यहां सैकड़ों एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं, लेकिन यूक्रेन का ये हमला अब तक का सबसे घातक और सफल हमला साबित हुआ है जिसने रूस की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। ये रिफाइनरी सालाना 11 मिलियन टन यानी 1.1 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है और मॉस्को की 50% डीजल की जरूरत को अकेले पूरा करती है। इस पर चोट का मतलब है रूसी सेना और जनता दोनों पर बड़ा हमला। इस हमले ने रूस को घुटनों पर ला दिया है और इसकी गवाही दे रहा है मॉस्को का ये नया फरमान। घबराए रूस ने 20 जून से मॉस्को और उसके आसपास के 6 से ज्यादा राज्यों में कड़े हवाई प्रतिबंध लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब इन इलाकों में छोटे विमान और ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे और उड़ानों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5200 मीटर तय कर दी गई है ताकि यूक्रेन के ड्रोनों को पकड़ा जा सके। व्यावसायिक उड़ानें चलती रहेंगी, लेकिन ये पाबंदी चीख चीख कर कह रही है कि पुतिन की नजर में अब मॉस्को का आसमान महफूज नहीं है। आज तक ब्यूरो।

0: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे। लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
1: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
3: देख लेंगे,
4: जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे बेईमान गद्दार।
0: उद्धव के 2 सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
1: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौकटों से ही निकलेगा। और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौकटों से ही निकलेगा। पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौकटों से ही निकलेगा। पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
5: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition, directions for affidavits have been given and the matter will come up for final hearing.
0: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का अध्यक्ष नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं।

0: हाँ, मैच्योर लोग है, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार तीन तीन बार एमपी बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
1: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे?
2: देखेंगे कोर्ट, चार चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
3: सर जिस दिन
2: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनेगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनेगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।

0: बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पेरिस में पीएम मोदी ने पेश की 12 साल की विकास यात्रा की तस्वीर, कहा रफ्तार ही भारत की नई पहचान, जमीन से अंतरिक्ष तक रचा इतिहास, मैक्रों ने पोस्ट किया हग वाला वीडियो। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।

सभा में शामिल हो सकते हैं बागी सांसद, भारी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस का अलर्ट। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच।

आपके साथ पूजा पराशर। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें होंगी, लेकिन बुलेटिन में बात करेंगे शिवसेना यूबीटी की टूट की संभावनाओं के बीच जारी सियासी खींचतान की सबसे पहली खबर की। और आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, ऐसे में शिवसेना और उद्धव की पार्टी दोनों ने रैली बुलाई है जिस पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही आपको टीएमसी में हुई टूट को लेकर आज अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं, इस खबर पर भी पूरी विस्तार से बताएंगे। बुलेटिन में बात झारखंड की भी करेंगे जहां पर राज्यसभा चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी की सियासत की, जहां राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी की जांच के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि राम मंदिर चढ़ावे एसआईटी जांच में अब तक क्या कुछ पता चला है। साथ ही बात करेंगे वाराणसी में जारी बुलडोजर एक्शन की, जिसकी जद में 6 मस्जिदें भी आ सकती हैं। और उधर एक दिन बाद होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक बुलाकर तैयारियों का जायजा भी लिया, इस खबर पर भी होगी बात। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ईरान डील पे क्या कुछ हुआ है, जिस पर मुहर के बाद पूरी दुनिया को राहत की उम्मीद है। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चल रही जांच के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे, एक बंद कमरे में बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है उसके मुताबिक चंपत राय की ओर से उनके प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में एक बंद कमरे में बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, ऐसे में इस बैठक से चंपत राय को दूर रहने को कहा है और उनकी जगह उनके प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे।

तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब सिर्फ दान पेटियों और नकदी तक सीमित नहीं रह गई है। दरअसल एसआईटी ने गुरुवार को मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और तकनीकी स्टाफ से भी पूछताछ की है।

0: राम मंदिर में चल रही जांच का फोकस अब सिर्फ रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर नहीं है। एसआईटी ने उस रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका पर भी गंभीरता से सवाल खड़े किए हैं, जिसके जिम्मे मंदिर परिसर की पूरी सीसीटीवी की निगरानी व्यवस्था है। इस बीच आज तक के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि राम मंदिर की दान राशि गिनी जा रही है। साफ दिख रहा है कि श्रद्धालुओं के दान को टेबल के ऊपर रख कर गिना जा रहा है। इसमें कुछ कर्मचारी दो टेबलों पर दान राशि को गिनते दिख रहे हैं और कुछ कर्मचारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। लापरवाही और मिलीभगत का एंगल भी खंगाला जा रहा है। पास जारी करने वाले मुख्य कर्मचारी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है। अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिवसेना का आज 60वां स्थापना दिवस है, जिसके लिए सायन और गोरेगांव में दो अलग अलग जगह पर उद्धव और शिंदे के बीच शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। गोरेगांव में शिंदे के समारोह में बागी सांसद शामिल हो सकते हैं और इसे लेकर मुंबई पुलिस ने इंटरनल अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मुंबई में आज बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर इंटरनल अलर्ट जारी किया गया है मुंबई पुलिस ने। सायन में उद्धव ठाकरे एक रैली करने वाले हैं और दूसरी रैली भी होने वाली है। शिंदे के कार्यक्रम में बागी आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आज 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है शिवसेना का, जिसके लिए दो अलग अलग कार्यक्रम होने वाले। तो स्थापना दिवस पर हो रहे शक्ति प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियां जितनी तैयार हैं, उतनी ही तैयारी मुंबई पुलिस ने भी कर ली है।

0: बाकी विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। आज शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे की रैली है, तो वहीं गोरेगांव में शिंदे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूबीटी गुट के सभी 6 बाकी सांसद शिंदे की इस रैली में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने इंटरनल अलर्ट जारी किया है। आज तक को मिले सर्कुलर में कहा गया है कि गोरेगांव में शिवसेना की रैली और अन्य जगहों पर यूबीटी गुट के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे बाकी सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के ऐलान की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे उद्धव गुट के हमले तेज होते जा रहे हैं। संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि बाकी सांसदों को 25-25 करोड़ दिए गए हैं, उन्हें राजस्थान ले जाया गया और वो पुलिस सुरक्षा में काम कर रहे हैं। राउत ने बागियों को गद्दार करार दिया है और नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है, जिसमें दावा किया गया है कि शिवसेना यूबीटी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, उसे कांग्रेस की ओर धकेला जा रहा है। पत्र में संसद में बागियों को शिवसेना सांसदों के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। गुरुवार को शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक में 9 में से सिर्फ 3 ही विधायक शामिल हुए। अब उद्धव गुट व्हिप का उल्लंघन करने पर बागियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं नीट की, नीट के री एग्जाम के बारे में, जो कि 21 जून को होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है, तैयारियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुछ स्तरीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की ओर से नियुक्त सभी अधिकारी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे, साथ ही नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा की सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम फोर्स को सौंपा गया है, जो शुरू भी हो चुका है। तो सख्त निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए हैं। नीट री एग्जाम जो कि 21 जून को होने वाला है, उसको लेकर अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। एयरफोर्स के हवाले प्रश्न पत्र सौंप दिए गए हैं। तो वही नीट परीक्षा के दौरान टेलीग्राम को ब्लॉक करने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला अपना सुनाएगा। दरअसल सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल अवैध गतिविधि में हो रहा था, इसलिए तुरंत कार्रवाई जरूरी थी।
0: टेलीग्राम का नाम कई बार पायरेसी, स्कैम और परीक्षा के पेपर लीक होने जैसी घटनाओं से जुड़ता रहा है। नीट पेपर लीक में भी टेलीग्राम के इस्तेमाल की बात सामने आई। ऐसे में एहतियात के तौर पर सरकार ने नीट री एग्जाम के पहले टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। गुरुवार को इस मामले में सरकार ने हल्फनामा पेश किया। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि जांच के दौरान नीट माफिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिला था, जिसके 18,617 सब्सक्राइबर थे। इस चैनल पर कथित नीट परीक्षा पेपर लीक, एडवांस बुकिंग की व्यवस्था, भुगतान लेने के तरीके और परीक्षा से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने के दावों से संबंधित सामग्री लगातार साझा की जा रही थी। सरकार के मुताबिक टेलीग्राम पूरी तरह क्लाउड आधारित तकनीकी संरचना, बड़े पैमाने पर सामग्री भेजने की सुविधा उपलब्ध कराती है और इसीलिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र ने यह भी दलील दी है कि टेलीग्राम पर फोन नंबर की जगह बॉट्स और यूजर नेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहचान छिपाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए आपराधिक गतिविधियां चलाना आसान हो जाता है। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में उच्च न्यायालय अपना आदेश सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो वही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन लिबनान का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। दरअसल अमेरिका ने साफ किया है कि हिजबुल्ला की तरफ से हमला होने की स्थिति में इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन साथ ही नेतन्याहू को ईरान के साथ हुई डील का सम्मान करने की भी सख्त हिदायत दी गई है।
0: ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील में अभी भी कई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिका के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन्हीं से एक है हिजबुल्लाह और इजराइल। इस समझौते में सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना जरूरत पड़ने तक लेबनान में बनी रहेगी, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा जरूरी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए कहा है कि इजराइल को शांति प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।
2: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
0: Donald Trump ne bhi kaha hai ki unhe Lebanon samet sabhi morchon par yuddh viram ki ummeed hai, lekin kuch muddon par khinchtaan jari hai. Trump ne un khabron ko kharij kar diya hai जिनमें कहा गया था कि वॉशिंगटन समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर का पैकेज देने पर सहमत हुआ है। इसकी जगह ट्रंप ने तेल की गिरती कीमतों और बढ़ते बाजारों का हवाला देते हुए इस समझौते को अमेरिका की जीत बताया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने समझौते के बाद अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मजबूरी में यह समझौता किया, साथ ही यह भी कहा कि बातचीत का मतलब यह नहीं है कि तेहरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली हैं। भले ही दोनों देश एमओयू साइन कर चुके हैं, लेकिन कई मुद्दों पर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और अब बात ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले स्विट्जरलैंड बैठक को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिजबुल्लाह शाखा का अल मायदीन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के जारी रहने के कारण ईरान की बातचीत करने वाली टीम ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत को रोक दिया है। ये बैठक स्विट्जरलैंड में होने वाली थी। खबरों के मुताबिक तेहरान ने वॉशिंगटन और मध्यस्थों को बताया है कि बातचीत को आगे बढ़ाने या रोकने के मामले में लेबनान का मुद्दा उसके लिए सबसे अहम है और लेबनान की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर तक चल रहे इजरायली ऑपरेशन एमओयू की पहली शर्त का खुला उल्लंघन है। तो अमेरिका ईरान में शांति समझौते से एशियाई देशों के बड़ी राहत मिलने वाली है। होर्मुज पर तेल टैंकर की आवाजाही शुरू हो गई है और साथ ही डील साइन होने के कुछ ही देर बाद तीन सुपर ऑयल टैंकर ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। यहां पर फंसे बाकी जहाजों के भी जल्द ही निकलने की उम्मीद है।

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के दौरे पर हैं। ऐसे में पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, भारत को लेकर यह बयान दिया है पीएम मोदी ने, देखिए।
0: फ्रांस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ हुआ, यात्रा का समापन भी उतना ही शानदार रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पीएम मोदी के साथ हक वाला वीडियो पोस्ट करके उन्हें विदाई दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और अपने प्यार का इजहार भी किया।
3: मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन।
0: पेरिस से रवानगी के पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की और अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया।
4: चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया।
0: पीएम मोदी ने कहा कि भारत की रफ्तार ही अब नई पहचान है। जमीन पर अपना लोहा मनवा चुका हिंदुस्तान अब अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने पेरिस में वीवाटेक समिट में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब लाने में फ्रांस की भूमिका की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की दालमंडी में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा है। यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक कम करने के लिए वैकल्पिक रूट तैयार किया जा रहा है। इस रूट पर आने वाली तमाम अन्य इमारतों में 6 मस्जिदें भी शामिल हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।
0: ये है वाराणसी का दालमंडी इलाका। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 60 फीट चौड़ा वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाना है। इसके लिए रास्ते में आने वाली इमारतों को ढाने का काम जोर शोर से चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लिए जाने वाले इस वैकल्पिक रूट पर 6 मस्जिदें भी चिन्हित की गई हैं। पीडब्ल्यूडी, वीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गुरुवार को वाराणसी के इस मुस्लिम बहुल इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 5 मस्जिदों की नपाई का काम पूरा किया। जिन मस्जिदों की पैमाइश की गई है उनमें मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारण मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल है। नई सड़क की तरफ स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद की नापी का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है।
5: अभी लगभग 140 के करीब मकान जो है अंडर डिसमेंटलिंग है, अप्रॉक्सिमेट 100 प्लस जो है वो डिसमेंटल किया है।
6: तो कब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य माना जा रहा है?
5: जून तक लैंड खाली होने की उम्मीद हो जाएगी। जून तक, जून के बाद से 3 महीने में कर देंगे।
0: इसके पहले नोटिस चस्पा कर मस्जिद खुद हटाने की अपील की गई थी, लेकिन अब प्रशासन एक्शन में है और सड़क किनारे पड़ने वाली अन्य इमारतों के साथ ही मस्जिदों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चरित्रपाल शंका के चलते पत्नी के साथ क्रूरता की घटना आई सामने। आरोपित पति ने पहले तो पत्नी की पिटाई की, फिर उसका मुंडन कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पटना पुलिस जांच में जुट गई। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव में मस्जिद पर चला बुलडोजर, ऑपरेशन क्लीन के तहत की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कर्ज माफी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच किसान का बड़ा कदम, बोरी भर के पटाखे का डीएम ऑफिस में फोड़ने की कोशिश, समय रहते पुलिस वालों ने पकड़ा। ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, साथ ही भवन परिसर में बने मंदिर की प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त किया। यूपी के एटा में एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें एक युवक को लोगों ने तालिबानी सजा देने हुए खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ओवरलोड डंपर चालक ने आरटीओ टीम से बचने के लिए रॉन्ग साइड तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ाया। इस दौरान डंपर से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। शिमला में संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक से पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इसके चलते ये प्रमुख मार्ग दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में चलती सीएनजी बस में लगी भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री बचे सुरक्षित। इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
3: बोलो जुबान केसरी
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
8: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
9: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
16: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
15: जी,
16: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश है सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
2: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
3: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
2: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या वहां नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरिटाइम फ्रीडम कहाँ होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: अमेरिका ईरान का दावा IAEA के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण का न्योता देगा तेहरान। ईरान खोलेगा परमाणु ठिकानों के दरवाजे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा, अमेरिकी निरीक्षकों को ईरानी परमाणु ठिकानों पर जाने की मंजूरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटी अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी घेराबंदी, कई दिनों से युद्ध के चलते फंसे जहाजों की आवाजाही शुरू। ईरान यूएस समझौते के बाद बड़ा फैसला, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिन तक नहीं लगेगा ट्रांजिट शुल्क। शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद सामान्य हो रही है जहाजों की आवाजाही, हॉर्मुज पर ईरानी माइन हटाने का कार्य शुरू। मिडिल ईस्ट युद्ध विराम के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, शुक्रवार से खुलेगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य, शांति समझौता लागू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से शुरू हुई तेल टैंकर्स की आवाजाही, अमेरिका ने हटाए नौसैनिक प्रतिबंध। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते के बाद हॉर्मुज खुलने से तेल आपूर्ति में राहत, समझौते के बावजूद कई मुद्दों पर अब भी अनिश्चितता। खामेनेई का अमेरिका ईरान समझौते पर सतर्क समर्थन, अमेरिका की शर्तों पर खरा उतरने की चेतावनी। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज नए भारत की कहानी केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी कहानी। पीएम मोदी ने नए भारत की अद्भुत ताकत का एहसास कराया, उन्होंने सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश की बेमिसाल आर्थिक और डिजिटल प्रगति के आंकड़े रखे। पीएम ने फ्रांस के साथ भारत के मजबूत होते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी विस्तार से बात की, उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नए विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का सीधा आह्वान किया। पीएम मोदी ने फ्रांस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच का सबसे मजबूत सेतु बताया, उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए कई बड़ी और राहत भरी घोषणाएं भी की। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव में और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सायन में कार्यक्रम करेगी। 6 बागी सांसदों पर सबकी नजर, सूत्रों के अनुसार ये सांसद अपना अलग संसदीय समूह बना चुके हैं और शिंदे शिवसेना में शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे सेना में शामिल होने की संभावना पर भड़क सकता है विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने इंटरनल सर्कुलर में अलर्ट जारी किया। 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर का अलर्ट जारी किया। 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिली Y+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में अलर्ट जारी किया, 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिली Y+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में अलर्ट जारी किया, 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिली Y+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने प्रणब झा को हराया, क्रॉस वोटिंग में मिली जीत। झारखंड राज्यसभा में चौथी बार चुने जाने पर परिमल ने जताया आभार, कहा झारखंड के विकास के लिए समर्पित रहूंगा। झारखंड राज्यसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का सहयोगी दलों पर हमला, कांग्रेस प्रभारी राजू बोले हार के लिए आरजेडी लेफ्ट जिम्मेदार। झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की जीत पर सुदेश महतो ने जीत बधाई दी, बोले राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पोल खुली। कर्नाटक विधान परिषद में 7 खाली सीटों पर चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत, बाकी 2 सीट पर बीजेपी जीती, सभी 222 विधायकों ने किया मतदान। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले अमेरिकी राजदूत गौर, आतंकवाद, नशीले पदार्थों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हज 2026 अब तक का सबसे सफल आयोजन, भारत को मिले 2 सम्मान जिसके लिए विदेश मंत्रालय, हज मैनेजमेंट टीम और सभी अधिकारियों का आभार। 21 जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा की। नीट री एग्जाम का पेपर लेकर कई शहरों में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाए गए प्रश्न पत्र। टेलीग्राम पर बैन मामले में केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा दावा, बोले आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया है प्लेटफॉर्म, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षा। सीएमसी में बंटवारे पर आज पक्ष रखेंगे अभिषेक बनर्जी, स्पीकर ओम बिरला ने दिया मिलने का समय। कोलकाता में फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच तेज, सीआईडी ने ममता बनर्जी की बहन की कालीघाट स्थित आवास पर की जांच। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मंत्री उदयन गुहा के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फेंके अंडे भेजे गए 7 दिन की पुलिस हिरासत में। बिहार सरकार ने एसडी संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया, पीके शाही की ली जगह। आज वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण करने के क्रम में गिराई जाएंगी 6 मस्जिदें, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पंजाब में वायरल वीडियो मामले में आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से की मुलाकात, फर्जी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। फर्जी वीडियो मामले पर बोले सीएम मान ने सफाई देते हुए कहा, ये मैं नहीं, मेरे जैसा दिखने वाला कोई एक्टर है। सीएम मान ने बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर बोला हमला, कहा चुनाव को देखते हुए हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पंजाब में 100 साल का इंतजार खत्म, ऐतिहासिक कादिया व्यास रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, स्वदेशी कवच तकनीक से लैस होगी रेल लाइन। पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल की कंपनी से करोड़ों की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलनों के तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी ब्राह्मणों का बार बार कर सकती है अपमान। मुलायम यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए इन्हें ब्राह्मण समाज याद आता है, हम परशुराम के वंशज समूल नष्ट कर देंगे। गुजरात में चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया बड़ा बयान, बोले किसानों के हित में फैसला होना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुए शामिल, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उनके योगदान की सराहना की। सीबीएसई ओएसएम विवाद पर कोएम्प्ट की सफाई तकनीकी खामियों के आरोपों से किया इनकार। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, बेनकाब, पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तभी पाकिस्तान ऑपरेटिव हुसैन राणा और शहजाद भट्टी से संपर्क में आया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हमले के बाद भी उन्हें 1 रुपया नहीं मिला, जबकि 50,000 का हुआ था सौदा। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे टेलीग्राम पर बैन के मामले में फैसला सुनाएगा, गुरुवार को रखा गया था फैसला सुरक्षित। बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 29 आईपीएस अधिकारी के बाद 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला। रीनीट परीक्षा को लेकर सीकर में हाई अलर्ट, जयपुर रेंज आईजी ने ली तैयारियों की समीक्षा बैठक, गाइडलाइन की पालन करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर और एसपी ने भी कोचिंग संचालकों से बैठक कर नीट परीक्षा से संबंधित कोई भी इश्यू सामने आने पर प्रशासन को सूचित करने की हिदायत दी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों दफादार चौकीदार का प्रदर्शन, नियमित करने और आश्रितों को बहाल करने की मांग। सूरत में टेट परीक्षा मामले को लेकर शिक्षकों का कड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कई प्रदर्शनकारी। संगरूर में ठेका कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, परिवारों समेत सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर दिया धरना। अयोध्या में आज सीएम योगी रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, मोम के पुतलों से रामायण कालीन दृश्य होंगे जीवन। 8,000 वर्ग फीट में फैला म्यूजियम 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार, राम सीता हनुमान सहित 50 पात्रों की जीवन झलक। शिमला में गर्मी से राहत पाने के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी, रिज मैदान पर पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यटकों में खास उत्साह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कुमारखेड़ा बाईपास से रामलीला मैदान तक हुई दौड़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के 12 जिलों में योग कार्यक्रम, जामनगर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवानों ने किया योग। QS रैंकिंग में IIT दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान, दुनिया के टॉप संस्थानों में ड्यू, जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग, 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। MP के मऊ में गरुणास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल कर लगाया गया सटीक निशान। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H561, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक मिसाइल। भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार पर ऑस्ट्रेलिया में भव्य सम्मान समारोह, जयपुर के प्रवीण शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया सम्मानित। शिमला में संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक से पहाड़ी दरकने की वजह से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आया, दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह हुआ बंद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दिखा भवंडर, महिषामारी इलाके में हुगली नदी के ऊपर देखे गए 2 भवंडर, भवंडर के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। गुजरात के जामनगर में हुई भारी बारिश, बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में प्रमुख मार्गों पर लगा पानी, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात में मॉनसून पहुंचने में लग सकते हैं 5 दिन, मौसम विभाग के मुताबिक एलनीनो की वजह से मॉनसून में देरी, अमूमन 15 जून तक गुजरात पहुंचता है मॉनसून। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, तो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चरित्र पर शंका के चलते पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार, आरोपित पति ने पहले तो पत्नी की पिटाई की फिर उसका मुंडन करवा दिया। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव में मस्जिद पर चला बुलडोजर, ऑपरेशन क्लीन के तहत हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के बुलडाणा में कर्ज माफी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच किसान का बड़ा कदम, बोरी भरकर पटाखे का डीएम ऑफिस में फोड़ने की कोशिश, समय रहते पुलिस वालों ने पकड़ा। गुरुग्राम में क्रूरता की हद पार, लिफ्ट रुकने से नाराज युवकों ने ऑपरेटर की आंख फोड़ी, नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने दिल्ली एम्स रेफर किया। ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, साथ ही भवन परिसर में बने मंदिर की प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त किया। यूपी के एटा में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद के बाद खूनी झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, युवक की खंभे से बांधकर लोगों ने पिटाई की, तीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्वच्छ भारत स्वच्छ गुजरात अभियान के तहत वडोदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोड रोलर और बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की अवैध शराब को पूरी तरह से नष्ट करता नजर आया। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर आरटीओ से बचने के लिए ओवरलोड ट्रक से सड़क पर गिराए पत्थर, पुलिस ने हटवाकर टाला बड़ा हादसा। राजस्थान के बाड़मेर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया। गुजरात में प्री मानसून गतिविधियों से कई जिलों में जमकर बारिश हुई, मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक हल्की बारिश होने का जताया अनुमान। नागपुर धर्मांतरण मामले में हुई एक और गिरफ्तारी, मदरसे में पढ़ाने वाला टूर्स एंड ट्रेवल्स कारोबारी मोहम्मद मकसूद तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में चलती सीएनजी बस में भयंकर आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री बचे सुरक्षित। सूरत में 3 से 4 दुकानों में लगी आग, आग की चपेट में आने की वजह से 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हुई। महाराष्ट्र के कल्याण में शादी के 1.5 महीने बाद नवविवाहिता ने की आत्महत्या, डॉक्टर पति समेत सास और देवर गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में जर्जर कस्टम हाउस इमारत तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबे 3 मजदूर। बिहार के सुपौल में विषैले बीज खाने की वजह से 14 बच्चे बीमार हुए, खेलने के दौरान फल समझकर खा लिया जहरीला बीज, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मचा हड़कंप। पुणे के लोहगढ़ किले पर दर्दनाक हादसा, 26 वर्षीय युवा कारोबारी की खाई में गिरकर मौत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पी।

दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बेवजह की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
5: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
6: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है? एक छापामार मंत्री बस, वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
5: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
7: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था और किसने सम्मान नहीं किया। हमारे जो है जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया।
5: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
8: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
5: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
9: समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं कि केवल दिखाने के दांत।
5: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
10: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
5: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है।

0: अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया और 10-20 ब्राह्मणों को आगे बैठा करके समाजवादी पार्टी अपने सजातियों को पीछे बैठा कर टोपी पहना के ब्राह्मण बना दिया और बागी बलिया के लाल को तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, गेट में घुसने नहीं दिया गया।
2: किनका जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर?
1: सांसद हैं बलिया के, वो पहले से प्लानिंग थी।
2: क्या?
1: यही प्लानिंग थी कि इस तरीके से करना है और बैठक करना है, इस तरीके से इनको रोकना है, उनको रोकना है और ये सब वहाँ मैनेज हो रहे हैं।
2: किसकी प्लानिंग थी?
1: ये समाजवादी पार्टी मुखिया की प्लानिंग थी। ये स्वतः ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके ऐसे लोगों को तिरस्कृत करते हैं जो उनके खुद के दल में।
3: हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए हैं। हम दो बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
4: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उन प्रकार अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
1: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
2: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई? राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
1: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान का जिनीवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जेरी वैंस का दौरा स्थगित।

सबसे बड़ी डील पर दावेदारी की जंग, ट्रंप ने समझौते को बिना शर्त सरेंडर जैसा बताया। खामनेई का पहला बयान, समझौते का समर्थन लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांग नामंजूर। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात। चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।

पड़ी रैली, शिंदे की जनसभा में शामिल हो सकते हैं बागी सांसद, भारी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस का अलर्ट। और 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाई लेवल मीटिंग की, तैयारियों की समीक्षा।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम, बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आज अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। चंपत राय से बनाई दूरी, क्या है मायने, आज की बड़ी खबर का रुख करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। वाराणसी की दाल मंडी में क्या 6 मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर, क्या है ये मामला, पूरी खबर डिटेल में आपसे कुछ ही देर बाद। उद्धव बनाम शिंदे की सियासी जंग का एक और दौर, स्थापना दिवस पर आज मुंबई में होगा शक्ति प्रदर्शन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। आज वो अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चल रही जांच के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम योगी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है उसके मुताबिक चंपत राय की ओर से उनके प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे।

0: अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिक्रमा मार्ग पर भव्य वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है। इंतजार हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज योगी आएंगे और करीब 8000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे।
1: वैक्स म्यूजियम तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत कई दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन अयोध्या में ये दुनिया का शायद पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम होगा।
0: म्यूजियम में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जटायु सहित रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों पे मोम के पुतले स्थापित किए गए हैं। इन प्रतिरूपों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वो वास्तविक और जीवंत प्रतीत हों। योगी का अयोध्या दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब यूपी की सियासत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद गर्म है। शायद यही वजह है कि खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी की अयोध्या यात्रा में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नहीं दिखाई देंगे। खबरों के मुताबिक अयोध्या प्रशासन ने प्रोटोकॉल में चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने को कहा है। मतलब साफ है कि सीएम योगी चंपत राय के साथ मंच पर दिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के केस में गठित एसआईटी की पूछताछ के रडार में चंपत राय भी हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं उनमें चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव भी शामिल है। इस केस के व्हिसल ब्लोअर तो सीधा ट्रस्ट भंग करने की मांग करने लगे हैं।
2: इतना दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हो, वहां चोरी करने वाले ये निठल्लू निकम्मे चोर बेईमान धूर्त बैठ गए। ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए, पहली चीज। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस ट्रस्ट में जितने भी बैठे हैं धूर्ताधिराज, सब एक से बड़े एक धूर्त हैं। सबकी जांच हो जानी चाहिए, भैया कैसे आपके पास ये धन आया।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सवालों में है। विपक्ष की तरफ से भी इसे भंग करने की मांग उठने लगी है।
3: जब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जमीन का घोटाला हुआ। दो दो करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में, कुछ ही मिनटों घंटों में 18-18 करोड़ की, पूरा यहाँ बंदरबाट हुआ। और अभी सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ है अभी चढ़ावा चोरी शुरू हो गई। अब सोचो, डोनेशन नहीं है, ये चढ़ावा चोरी है।
4: तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है, और ट्रस्ट ने जो लूट की, डकैती की, तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को तोड़ा है, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को तोड़ा है। इसलिए मैं सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट को भंग कर दे।
0: आरोप गंभीर है, मामला राम भक्तों की आस्था का भी है। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले की पारदर्शी और त्वरित जांच हो। मयंक शुक्ला और आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
5: तो लगातार ये मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द ट्रस्ट को भंग किया जाए, क्योंकि यही वो ट्रस्ट है जिसने धांधली की है। जून की शुरुआत में खातों की जांच की गई, उसके बाद ये खुलासा हुआ कि चढ़ावे में गड़बड़ी है। दान पत्र से नकदी गायब होने का शक जताया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी अनियमित आय पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई है। अब एसआईटी की टीम गठित हो गई है जो लगातार कई दिन से जांच कर रही है। कर्मचारियों की भी हरकतें संदिग्ध लगी हैं। कई फुटेज सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है साफ तौर पर रवांतरिक जांच शुरू कर दी गई है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, इस बात की कितनी अब आशंका जताई जा सकती है कि लगातार ट्रस्ट को भंग करने की मांग की जा रही है, एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए ताकि पूरी पारदर्शिता से जांच हो सके?
6: देखिए, इस पूरे मामले में ट्रस्ट पर सवाल उठने लाजमी है और बहुत गंभीर तरीके से ट्रस्ट पर सवाल उठ भी रहे हैं। ट्रस्ट इस पूरे राम मंदिर को मैनेज करता है और इस ट्रस्ट में जब इतनी बड़ी तादाद में चढ़ावे आ रहे हैं तो आखिर चढ़ावों का वारा न्यारा कैसे हुआ। हालांकि एसआईटी जल्द ही अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ट्रस्ट के कामकाज को लेकर सचमुच में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखें तो नृपेंद्र मिश्र ने एक इशारा किया था और वो कहा था कि अब इसको सीईओ यहां पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक सजेशन दिया है, यानी कि जिस तरीके से दूसरे बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें जिस तरीके से सीईओ अपॉइंट होते हैं और उनकी देखरेख में एक जिम्मेदारी तय होती है, आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी इसी फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट के जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक जो एसआईटी की जांच पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रही है सुबह से लेकर रात तक, उस जांच के का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये सब मान करके चल रहे हैं, यहां तक कि नृपेंद्र मिश्र ने भी इशारा कर दिया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। पैसे वहां से निकाले जा रहे थे, जो श्रद्धालु हैं वो उनका जो चढ़ावा आता है उसमें गड़बड़ियां हुई है, तो देखना है कि किस स्तर पर है, कितने समय से चल रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर उस ट्रस्ट के विश्वसनीयता पर पड़ा है, जिस पर माना जा रहा था कि तमाम जो बड़े लोग, जो संघ से जुड़े लोग हैं, जो जो जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को इसमें रखा गया। बावजूद इसके अगर इतना बड़ा कांड यहां हो रहा है या हुआ है तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट की साख और विश्वसनीयता पर सवाल है। देखना है कि इसमें कोई बदलाव होता है कि नहीं।
5: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे सीसीटीवी की निगरानी की, क्योंकि पुलिस की तैनाती वहां पर हो चुकी है मंदिर में। ट्रस्ट के इतने सारे पदाधिकारी थे, फिर भी वहां पर राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो रही थी। एसआईटी लगातार इसकी जांच कर रही है। जांच के दायरे में कौन कौन है, देखिए रिपोर्ट।

0: अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे की गिनती की ये तस्वीर है। सीसीटीवी की निगरानी में दान की राशि गिनी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सीसीटीवी कैमरे के बीच चढ़ावा चोरी कैसे हो गया। इसी सवाल का जवाब एसआईटी खोज रही है। एसआईटी की पूछताछ का केंद्र बना है कि राम मंदिर में काम करने वाला रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ, सीसीटीवी के सभी फुटेज की जिम्मेदारी आरएमओ की है। आरएमओ जब चाहे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है या चालू कर सकता है। सीसीटीवी को चेक करना भी इसी आरएमओ के जिम्मे है। ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है और ये बताया जा रहा है कि रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर टिनू यादव और ट्रस्ट का खास आदमी है। वहीं टिनू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर है और मौजूदा केस में चढ़ावा चोरी का आरोप इसी पर है। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर पर इतनी बड़ी कृपा है कि वो राम मंदिर में करीब पिछले 17 वर्षों से तैनात है और इन 17 वर्षों में उसका एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इन्हीं सब बिंदुओं पर एसआईटी की जांच चल रही है कि कहीं चढ़ावा चोरी करने वालों में इसी रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर को तो सेट नहीं किया गया था कि जब चढ़ावे की पैसों की गिनती करनी हो और चोरी करनी हो उस वक्त सीसीटीवी बंद कर दिया जाए। एसआईटी टिनू यादव से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। फिलहाल तो टिनू यादव खुद को बेगुनाह बता रहा है।
1: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
0: टिनू यादव खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इस आरएमओ की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब कर लिया है।
2: अब एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है कि आखिर किस तरीके से इनकी भूमिका है और कैसे इस पूरे मामले पर अब इसमें जांच आगे बढ़ रही है।
0: चढ़ावा चोरी के लिए बनाई गई एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब जांच की रडार में सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी आ गए हैं। एसआईटी उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े थे।
2: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुँच गयी है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी।
0: इसके अलावा राम मंदिर चौकी इंचार्ज भी करीब 5 वर्षों से तैनात बताए जा रहे हैं। उनसे संबंधित जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है। अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान राम की नगरी के बाद अब आज शिव की नगरी वाराणसी की, यहां दाल मंडी में दिनों बुलडोजर गरज रहा है और यहां काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक कम करने के लिए वैकल्पिक रूट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत मुस्लिम बहुल दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण की योजना है। रास्ते पर आने वाली तमाम इमारतों को गिराया जा रहा है। खबर यह कि सिलसिले में 6 मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी।
4: वाराणसी का मुस्लिम बहुल दाल मंडी इलाका है ये। पुलिस की भारी मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का अभियान जारी है। ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई हो रही है यहाँ की सड़क चौड़ी करने के लिए। यहाँ के कुल 181 इमारतों को ध्वस्त किया जाना है, जिसमें 100 भवन ध्वस्त हो चुके हैं। 40 इमारतों को गिराने का काम जारी है। बाकी काम इसी महीने के अंत तक पूरा करने की उम्मीद है।
5: जून माह के अंत तक वाराणसी के दालमंडी के ध्वस्तीकरण का काम पूर्ण हो जाएगा और उसके साथ ही फिर निर्माण का काम, सड़क निर्माण का काम शुरू होगा, जो लगभग 3 महीनों में बताया जा रहा है पूरा भी हो जाएगा। देख सकते हैं इस दालमंडी की पूरी गली को 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है और जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, चाहे एडीएम सिटी हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों, यहाँ दिन रात एक करके पूरी तरह से ध्वस्तीकरण के काम को पूरा कराने में लगे हुए हैं।
4: दाल मंडी इलाके में कई मस्जिदें भी बनी हुई हैं। बताया जाता है कि ध्वस्तीकरण की जद में 6 मस्जिदें भी आने वाली हैं। इसी कड़ी में कल 5 मस्जिदों की गली से नापी भी हुई कि मस्जिद का कितना हिस्सा चौड़ीकरण में जाएगा। हालांकि अधिकारी इसे लेकर साफ साफ कुछ कहने से बच रहे हैं।
5: कितने भवन और बाकी हैं, बचे हैं जिनको पूरा कर लिया जाएगा?
6: 181 भी घर थे, 140 के करीब पहुंच गए, 40 हैं।
5: ये बताइए कि जो इसमें सेंसिटिव प्लेस हैं, प्रार्थना स्थल हैं, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी?
6: उस बारे में अभी हम नहीं बता पाएंगे कुछ।
5: उसकी नापी भी आज हुई है?
6: नहीं,
5: नापी हुई है। उसका कुछ मेजरमेंट वगैरह हुआ है ताकि कितने भाग इससे?
6: संज्ञान में नहीं है अभी नापी।
5: आप पिछली बार बता रहे थे कि कुछ पूरी तरह से हट जाएंगे, कुछ आंशिक रूप से?
6: नहीं, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि नापी हुई है कि नहीं।
4: दाल मंडी में अफरा तफरी का माहौल है। हालात न बिगड़े इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस, पीएससी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।
3: और यूपी के बाद अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर एक एनकाउंटर को लेकर बवाल है। दरअसल भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी का 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, लेकिन ग्रामीण एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। कल ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
7: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार बची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर 4 लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
8: बहुत अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
7: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
8: सुबह हमें 8 बजे के करीब में धूप गई, डायरेक्ट धूप के हथियार तान दिला सब परिवार पर हमनी के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
7: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
3: बात महाराष्ट्र की सियासत की। आज सियासत का वहां बड़ा दिन है, क्योंकि शिवसेना यूपीडी के 6 सांसदों की बगावत के बीच आज शिवसेना का 7वां स्थापना दिवस है। दोनों खेमे में आज रैली है। सांसदों की बगावत को लेकर शिंदे की रैली में कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इसे लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर। दोनों ही गुट स्थापना दिवस मनाएंगे। 7वां स्थापना दिवस है ये, और बड़े प्रदर्शन की आशंका से मुंबई में पुलिस का अलर्ट जारी कर दिया गया।
9: मुंबई में मातोश्री के बाहर बाहें पसारे एकनाथ शिंदे का विशाल पोस्टर। दूसरी तरफ अपने पुत्र आदित्य के साथ उद्धव भी अपेक्षाकृत छोटी होर्डिंग में नजर आ रहे हैं। मुंबई में शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद में ये पोस्टर वॉर की तस्वीर है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है।
10: 19 जून शिवसेना पार्टी के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि 60 साल पहले ये पार्टी इसी दिन एग्जिस्टेंस में आई थी, और 2022 में जब ये पार्टी स्प्लिट हुई, उसके बाद दोनों ही फैक्शंस अपने अपने रूप से इसको मनाते आए हैं। इस वक्त हम हैं मातोश्री के बाहर, और यहाँ आप देख लीजिए बड़े बड़े पोस्टर एकनाथ शिंदे गुट ने लगाए हैं। एक तरह से कह लीजिए तो पोस्टरों का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यूबीटी ग्रुप ने भी अपने पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन उनके पोस्टर गिने चुने छोटे छोटे बाहर मातोश्री के बाहर लगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के देख लीजिए, वहां पर बलून लगा हुआ है, ये बड़े होर्डिंग हर फ्लाईओवर पर लगे हैं।
9: शिवसेना की 60वीं सालगिरह पर आज जहां षणमुखानंद सभागृह में उद्धव ठाकरे रैली करेंगे, वहीं कोरेगांव में एकनाथ शिंदे की रैली होगी। शिवसेना का स्थापना दिवस इस बार ऐसे वक्त आया है जब उद्धव खेमे के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। दोनों खेमे की आज की रैली में इसका असर देखा जा सकता है। पहले ऐसी अटकलें थीं कि बाकी सभी 6 सांसद आज शिंदे की रैली में दिख सकते हैं, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कोई बाकी सांसद आज की रैली में शामिल नहीं होगा। हालांकि मुंबई पुलिस फिर भी अलर्ट है, डर है कि कहीं सांसदों की बगावत के विरोध में शिंदे की रैली में किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो। इस बीच कुछ दिनों से जो अटकलें थीं, कल वो पूरी तरह पुख्ता हो गई। कल शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक में 9 सांसदों में सिर्फ 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। यूबीटी के 6 बाकी सांसदों ने व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग से दूरी बनाए रखी। शिवसेना यूबीटी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
11: नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे
12: क्या कार्रवाई की जाएगी?
13: स्पीकर को भी आप चिट्ठी लिखेंगे सर, डिस्क्वालिफिकेशन की
11: पूरी गैर कानूनी कार्रवाई। तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी
13: सार्वजनिक है,
11: सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं।
9: पार्टी में टूट से खिसियाए संजय राउत अब कह रहे हैं कि बागी सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जाएगा।
14: उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
9: इस बीच गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के DGP को बागी सांसदों और उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
3: विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से। विद्या, शक्ति प्रदर्शन की वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और इसे लेकर पुलिस की क्या तैयारी है?
10: जी, इस वक्त मैं हूं नेस्को ग्राउंड, जहां पर कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन है वो यहां पर सेलिब्रेट करने वाला है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े पोस्टर्स आनंद दिघे, बाल ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे, इन सब के तमाम पोस्टर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन पूरा होगा। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि जो 6 सांसद, जो बागी सांसद है यूबीटी के, वो शायद यहीं इसी स्टेज पर एकनाथ शिंदे के साथ आज ही दिख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑपरेशन टाइगर के कल्मिनेशन का, ये हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे तक हो। लेकिन इस वक्त आप नेस्को ग्राउंड पे जो ये जो सेलिब्रेशन है उसकी तैयारियां आप देख लीजिए, काफी पूरी हो गई हैं। पोस्टर्स से लेकर चेयर, कुर्सियां, तमाम चीजें जो लगनी है वो लग गई हैं। बस इंतजार अब है कि कार्यकर्ता आए और साथ ही नेता अपने जो शक्ति प्रदर्शन करना है उनको, अपने 6 सांसद जो बागी सांसद को तोड़ा है उन्होंने, अगर वो आते हैं तो उनको लेके आते हैं। तो तमाम तैयारियां यहां हो चुकी है। वहीं जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप जो है यूबीटी का, उनकी तैयारियां षणमुखानंद हॉल दादर में है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा 3 दिन हो गए हैं बागियों के गायब होने के बाद से, अभी तक उद्धव ठाकरे बोले नहीं है, अभी तक संजय राउत से बोलते आए हैं। तो आज जब स्पीच होगा शाम को, तो जरूर जाहिर सी बात है कि तमाम गुस्सा जो उद्धव ठाकरे का है, जो अब तक बोले नहीं है, लेकिन अब शायद जब स्पीच जब होगा तब उसमें तमाम गुस्सा जो उनका है 3-4 दिन से जो पार्टी टूट रही है बार बार, उसका गुस्सा शायद निकलेगा, फूटेगा और उसका जवाब एकनाथ शिंदे यहीं से देंगे।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। आखिरी चरण में कल प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और वहां उन्होंने बताया कि 12 साल में उनके शासन में देश ने कितनी प्रगति की।
9: फ्रांस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ हुआ, यात्रा का समापन भी उतना ही शानदार रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन पीएम मोदी के साथ हक वाला वीडियो पोस्ट करके उन्हें विदाई दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और अपने प्यार का इजहार भी किया।
15: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन।
9: पेरिस से रवानगी के पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की और अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया।
16: चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया।
9: पीएम मोदी ने कहा कि भारत की रफ्तार ही अब नई पहचान है। जमीन पर अपना लोहा मनवा चुका हिंदुस्तान अब अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है।
16: आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
9: पीएम मोदी ने पेरिस में वीवाटेक समिट में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत और यूरोप के टेक इको सिस्टम को करीब लाने में फ्रांस की भूमिका की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: और अब रुख करेंगे अमेरिका ईरान के बीच हुई डील का, जिस पर संकट के बादल पहले ही दिन से मंडराने लगे हैं। बड़ी खबर यह कि ईरान और अमेरिका दोनों ही टीमें आगे की बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं आ रही हैं। ईरान ने दो टूक कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली आक्रमण नहीं रुकेगा तब तक वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेरी वैंस को भी अपना दौरा टालना पड़ा है। बुधवार की रात अमेरिका की तरफ से ट्रंप और ईरान की तरफ से पेजेश्कियां में डील साइन की थी और इसके तुरंत बाद तमाम मुद्दों पर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत होनी थी ताकि एमओयू को अंतिम समझौते तक पहुंचाया जाए, लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी भीषण जंग ने उस पर ब्रेक लगा दिया। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, जब तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे ईरान डील साइन नहीं करेगा, ये बात तो साफ है, और कल ही इस तरह के हमले देखे गए हैं लेबनान में, लगातार इजराइल हमले कर रहा है, तो इसराइल को कैसे समझाएगा अमेरिका कि ईरान का समझौते पर हस्ताक्षर करना जरूरी भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिहाज से?
12: ठीक है, बिल्कुल, जब भी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इस बात को लेकर कि जब ये एमओयू साइन किया गया था कि ये बहुत एमओयू जो है एक तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ में अभी एमओयू साइन करने के बाद, और उसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है लेबनन को लेकर कि लेबनन पर लगातार सहमति इसराइल को कैसे बना पाए। कल सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, एक उनकी तरफ से एड्रेस आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एमओयू पर कोई भी वॉयलेशन होता है तो फिर रेसिप्रोकल अटैक होगा या रेसिप्रोकल रिस्पांस होगा, और उनका मकसद, उनका अंदेशा सीधे तौर पर लेबनन को लेकर ही था। और यही हुआ कि आज जब इजराइल की तरफ से लेबनन पर हमले नहीं रोके गए, लगातार बड़े हमले किए गए, तो ईरान की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि अब उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जिनेवा जाने वाला है, और ये नेहा होना ही था। लगातार इजराइल का जो रुख था वो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग, एक बड़ा सरप्राइज था कि देखिए इतने सारे अटैक्स के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस एमओयू का पार्ट नहीं बनेगा, तो निश्चित तौर पर इस पे संकट के बादल मंडराने लग गए थे। और अभी क्लियर हो गया है कि शायद अगर इस एमओयू को आप कह सकते हैं कि अगर खारिज हुआ या फिर ये टूटा तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इजराइल और उसके इजराइल के लेबनन पर हो रहे हमले ही होगा।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, वक्त हो गया हेडलाइंस का।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सबसे बड़ी डील पर दावेदारी की जंग। ट्रंप ने समझौते को बिना शर्त सरेंडर जैसा बताया। खामनेई का पहला बयान, समझौते का समर्थन लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांग नामंजूर। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी का अहम बैठक। बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात। चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश। समाजवादी पार्टी में बगावत पर ओपी राजभर का एक और दावा। पीडीए की बैठक में मुरादाबाद की सांसद के ना पहुंचने पर सवाल। आज तक से बोली सांसद, मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज नहीं हूं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार। उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट पर।

संभल में विवाद के चलते पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया। भाई की जमानत के लिए थाने में युवक ने जोरदार हंगामा किया। युवक ने पहले खुद के भाई को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। थाने में सुनवाई ना होने पर युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग से लिपटा देखकर पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई। आग की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। मुंबई में बेस्ट बस हड़ताल से मुंबई में हाहाकार। बस हड़ताल से बड़ी यात्रियों की मुश्किलें। नवी मुंबई अंधेरी रूट पर नजर आई भारी भीड़। बस में यात्रियों की भीड़ से दरवाजा बंद करना मुश्किल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाई वोल्टेज तार गिरने से ट्रक में लगी आग, वाहन जलकर खाक। पुणे में चलती सीएनजी बस में भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की पासिंग आउट परेड, ट्रेनिंग डॉग्स ने दिखाए करतब। हैदराबाद में एक बेकरी में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, जांच में कॉकरोच और कबूतर मिले। यूपी के जालौन में नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, एसडीआरएफ ने निकाले शव। श्रीनगर गढ़वाल में बिना चालक के दौड़ी एम्बुलेंस, 3 वाहन और मकान की बाउंड्री क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे 4 लोग। नालंदा में स्कूल में चोरी का विरोध करने पर युवक को दिन दहाड़े मारी गई गोली, वीडियो वायरल। गुरुग्राम में लिफ्ट रुकने से नाराज युवकों ने ऑपरेटर को जमकर पीटा। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद, मंदिर में तोड़फोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आया, दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दिखा बवंडर, महेशमारी इलाके में उगली नदी के ऊपर देखे गए 2 बवंडर, इसके बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। गुजरात के जामनगर में हुई भारी बारिश, बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर लगा जाम, गर्मी से मिली लोगों को राहत। गुजरात में मानसून पहुंचने में लग सकते हैं 5 दिन, मौसम विभाग के मुताबिक अलिनो की वजह से मानसून में देरी, अमूमन 15 जून तक गुजरात पहुंच जाता है मानसून। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कांगड़ा कुल्लू मंडी शिमला में ओलावृष्टि का अलर्ट। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज नए भारत की कहानी केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी है। पीएम मोदी ने नए भारत की अद्भुत ताकत का एहसास कराया। उन्होंने सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश की बेमिसाल आर्थिक और डिजिटल प्रगति के आंकड़े रखे। फ्रांस के साथ भारत के मजबूत होते स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नए विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का सीधा आह्वान किया। पीएम मोदी ने फ्रांस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच का सबसे मजबूत सेतु बताया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए बड़ी और राहत भरी घोषणाएं भी की। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव में और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सायन में कार्यक्रम करेगी। 6 बागी सांसद पर सबकी नजर, सूत्रों के अनुसार ये सांसद अपना अलग संसदीय समूह बना चुके हैं और शिंदे शिवसेना में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कभी भी कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे सेना में शामिल होने की संभावना पर भड़क सकता है विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने इंटरनल सर्कुलर में अलर्ट जारी किया। छह सांसदों की बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संजय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिली वाई प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने प्रणव झा को हराया, क्रॉस वोटिंग से मिली जीत। झारखंड राज्यसभा में 4थी बार चुने जाने पर परिमल नाथवाणी ने जताया आभार, कहा झारखंड के विकास के लिए समर्पित रहूंगा। झारखंड राज्यसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का सहयोगी दलों पर हमला, कांग्रेस प्रभारी राजू बोले हार के लिए आरजेडी लेफ्ट जिम्मेदार। झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवाणी की जीत पर सुदेश महतो ने दी बधाई, बोले राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई। कर्नाटक विधान परिषद की 7 खाली सीटों पर चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत, बाकी 2 सीट पर बीजेपी जीती, सभी 222 विधायकों ने किया मतदान। नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले अमेरिकी राजदूत गौर,
आतंकवाद, नशीले पदार्थों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हज 2026 तक का सबसे सफल आयोजन, भारत को मिले दो सम्मान, जिसके लिए विदेश मंत्रालय, हज मैनेजमेंट टीम और सभी अधिकारियों का आभार। 21 जून को नीट के एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने किया लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा की। नीट एग्जाम का पेपर लेकर कई शहरों में लैंड हुआ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाए गए प्रश्न पत्र। टेलीग्राम पर बैन मामले में केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा दावा, बोली आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया है प्लेटफॉर्म, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। टीएमसी बंटवारे पर आज पक्ष रखेंगे अभिषेक बैनर्जी, स्पीकर ओम बिरला ने दिया मिलने का समय। कोलकाता में फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच तेज, सीआईडी ने ममता बैनर्जी की बहन के कालीघाट स्थित आवास पर की जांच। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मंत्री उदयन गुहा के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी, फेंके गए अंडे, भेजे गए 7 दिन की पुलिस हिरासत में। बिहार सरकार ने एसडी संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया, पीके शाही की ली है जगह। आज वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ा करने के क्रम में गिराई जाएंगी 6 मस्जिदें, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पंजाब में वायरल वीडियो मामले में आप प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से की मुलाकात, फर्जी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। फर्जी वीडियो मामले पर बोले सीएम मां ने सफाई देते हुए कहा, ये मैं नहीं, मेरे जैसा दिखने वाला कोई एक्टर है। सीएम मां ने बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर बोला हमला, कहा चुनाव को देखते हुए हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। पंजाब में 100 साल का इंतजार खत्म, ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, स्वदेशी कवच तकनीक से लैस होगी रेल लाइन। पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल की कंपनी से करोड़ों की साइबर ठगी, मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर तीखी प्रतिक्रिया दी, पुलिस समाजवादी ब्राह्मणों का बार बार अपमान करती है। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, वोट लेने के लिए इन्हें ब्राह्मण समाज याद आता है, हम परशुराम के वंशज हैं, समूल नष्ट कर देंगे। गुजरात में चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिया बयान, बोले किसानों के हित में फैसला होना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुए शामिल, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान की सराहना की। सीबीएसई ओएसएम विवाद पर कुएंट की सफाई, तकनीकी खामियों के आरोपों से किया इनकार। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का ISI कनेक्शन बेनकाब, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, ATS को सौंपी गई जांच। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तब पाकिस्तान ऑपरेटिव हुसैन राणा और शहजाद भट्टी के संपर्क में था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हमले के बाद उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि 50,000 का सौदा तय हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे टेलीग्राम पर बैन मामले में फैसला सुनाएगा, गुरुवार तक रखा था सुरक्षित। बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 29 IPS के बाद 21 IS अधिकारियों का तबादला। नीट परीक्षा को लेकर सीकर में अलर्ट, जयपुर रेंज IG ने ली तैयारियों की समीक्षा बैठक, गाइडलाइन के पालन के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर और SP ने कोचिंग संचालकों से बैठक कर नीट परीक्षा से संबंधित कोई भी इश्यू सामने आने पर प्रशासन को सूचित करने की हिदायत दी। पटना के डाक बंगला चौराहा पर हजारों वफादार चौकीदारों का प्रदर्शन, नियमित करने और आश्रितों को बहाल करने की मांग। सूरत में TET परीक्षा सामने मामले को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा प्रदर्शन। संगरूर में ठेका कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, परिवार समेत सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर धरना। अयोध्या में आज सीएम योगी रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, मोम के पुतलों से रामायण कालीन दृश्य होंगे जीवन। 8,000 वर्ग फीट में पहला म्यूजियम 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार, राम सीता हनुमान सहित 50 पात्रों की जीवन छल। शिमला में गर्मी से राहत पाने के लिए उमड़े सैलानी, रिज मैदान पर पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यटकों में खासा उत्साह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में रन फॉर योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कुमार खेड़ा बाईपास से रामलीला मैदान तक हुई दौड़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के 12 जिलों में योग कार्यक्रम, जामनगर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवानों ने किया योग। QS रैंकिंग में IIT दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान, दुनिया के टॉप संस्थानों में DU जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में 3 सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। MP के महू में गरुणास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशल व्हीकल H-561, समुद्र सुरक्षा से और मिलेगी और मजबूती। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भीषण ठंड और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण करीब 200 लोगों की मौत दर्ज। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी, अब तक 37,70,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 19 लाख श्रद्धालु पहुंचे, अब तक 11,86,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी।
केदारनाथ के 9,506 श्रद्धालुओं के दर्शन, अब तक 12,70,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 6,21,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,87,000 के पार। हेमकुंड साहब में 4,144 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, अब तक 1,09,603 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। S&P ग्लोबल ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज खुलने के बावजूद फूड सप्लाई सामान्य होने में 2 से 6 महीने लगेंगे, हालात सुधरने तक भारत में महंगाई बढ़ने और रुपया कमजोर होने का खतरा बरकरार रहेगा। ND रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया भर में 1.5 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर मुल्क में बसेंगे। UAE और सिंगापुर सबसे पसंदीदा देश बन रहे हैं। CEEW के मुताबिक देश में कुल तेल जरूरत की महज 9 से 10 दिन का रणनीतिक भंडार। IEA ने 2027 में तेल की ज्यादा सप्लाई से ग्लोबल स्टॉक फिर से भरने का भरोसा जताया। एप्पल के CEO टिम कुक ने आईफोन समेत तमाम एप्पल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की बात कही है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते पर बड़ा दावा, अमेरिका का दावा IAEA को परमाणु ठिकानों के निरीक्षण का न्यौता देगा तेहरान। ईरान खोलेगा परमाणु ठिकानों के दरवाजे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा अमेरिकी निरीक्षकों को ईरानी परमाणु ठिकानों पर जाने की मंजूरी दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटी अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी घेराबंदी, कई दिन से युद्ध के चलते फंसे जहाजों की आवाजाही शुरू। ईरान US समझौते के बाद बड़ा फैसला, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिन तक नहीं लगेगा ट्रांजिट शुल्क। शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद समान हो रही है जहाजों की आवाजाही, हॉर्मुज पर ईरानी माइंस हटाने का कार्य शुरू।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
8: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
15: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
14: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी भाई के साथ, आई चैलेंज यू बजीपा। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

रूस की राजधानी मॉस्को का वो इलाका जिसे पुतिन का सबसे सुरक्षित किला कहा जाता था, वो अब धुएं के काले गुबार में तड़प रहा है। आज तड़के यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर कपोतनिया में वो तबाही मचाई जिसने रूस के घमंड को राख कर दिया। रूसी आंतरिक मंत्रालय खुद मान रहा है कि धमाके इतने भीषण थे कि मॉस्को रिंग रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। दावे बड़े बड़े थे, कहा गया था कि कपोतनिया रिफाइनरी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ एंटी ड्रोन नेट की दीवारें थी, लेकिन यूक्रेनी ड्रोनों के आगे ये लोहे के जाल मकड़ी के जाले की तरह बिखर गए। स्थानीय निवासियों के कैमरे गवाह हैं कि कैसे रूस का एंटी ड्रोन सुरक्षा कवच इस बारूदी बारिश को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ। यूक्रेन के 60 से ज्यादा ड्रोन बेरोक टोक मॉस्को में मंडरा रहे थे, एक एक कर बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा रहे थे। कई इमारतें तो ऐसी थीं जिन पर यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए रूस ने डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रूस में इमारतों से टकरा रहे थे। वहीं दहशत के मारे लोगों की चीख निकल रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रूस के मिलिट्री प्राइड पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए यूक्रेनी ड्रोनों को सुरक्षा की एक दो या तीन नहीं बल्कि चार अलग अलग परतों को भेदना पड़ा। रास्ते में कम से कम 5 पेंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जो ऊंचे टावरों से आसमान पर नजर रख रहे थे, लेकिन यूक्रेन के लोहे के परिंदों ने इन सब को छकाते हुए सीधे निशाने पर अचूक वार किया। यूक्रेन के निशाने पर ये रिफाइनरी पहले भी रही है। सितंबर 2024, मार्च 2025 और इसी साल मई में भी यहां हमले हुए। रूसी टेलीग्राम चैनल एक्सेल नोवा प्लस का दावा है कि यहां सैकड़ों एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं, लेकिन यूक्रेन का ये हमला अब तक का सबसे घातक और सफल हमला साबित हुआ है जिसने रूस की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। ये रिफाइनरी सालाना 11 मिलियन टन यानी 1.1 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है और मॉस्को की 50% डीजल की जरूरत को अकेले पूरा करती है। इस पर चोट का मतलब है रूसी सेना और जनता दोनों पर बड़ा हमला। इस हमले ने रूस को घुटनों पर ला दिया है और इसकी गवाही दे रहा है मॉस्को का ये नया फरमान। घबराए रूस ने 20 जून से मॉस्को और उसके आसपास के 6 से ज्यादा राज्यों में कड़े हवाई प्रतिबंध लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब इन इलाकों में छोटे विमान और ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे और उड़ानों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5200 मीटर तय कर दी गई है ताकि यूक्रेन के ड्रोनों को पकड़ा जा सके। व्यावसायिक उड़ानें चलती रहेंगी, लेकिन ये पाबंदी चीख चीख कर कह रही है कि पुतिन की नजर में अब मॉस्को का आसमान महफूज नहीं है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
2: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं। महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
5: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
4: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
6: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
5: देख लेंगे, जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे बेईमान गद्दार।
4: उद्धव के दो सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
5: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
4: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा। पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
7: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
4: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का अध्यक्ष नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ छुपाया, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग हैं, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
8: सर, सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
5: देखेंगे कोर्ट। चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया।

0: होता तो ये नौबत नहीं।
1: सर जिस दिन
0: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।

बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद ता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उभर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान का जिनेवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जेडी वैंस का दौरा भी स्थगित। सबसे बड़ी डील पर दावेदारी की जंग, ट्रंप ने समझौते को बिना शर्त सरेंडर जैसा बताया, खमनेई का पहला बयान, समझौते का समर्थन लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांग नामंजूर। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।

की सांसद के न पहुंचने पर सवाल, आज तक से बोली सांसद मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज नहीं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एक बार फिर मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में हम हाजिर हैं। अगले एक घंटे तक हम सारी खबरों के साथ होंगे जो हेडलाइंस में जगह पा चुकी है या फिर आज दिन भर सुर्खियों में छाई रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आगे क्या क्या है खास। आगे बात होगी शिवसेना डे पर बागियों पर महाजंग की। आज उद्धव ठाकरे और शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत की दावेदारी के साथ अलग अलग मंच पर होंगे, लेकिन असली मसला 6 बागी सांसद ही रहेंगे जिसे लेकर ऐलान अभी बाकी है। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां 2027 की लड़ाई तेज होगी और ऑपरेशन लोटस की अटकलें जोर पकड़ती जा रही। हम बताएंगे कि कैसे अखिलेश के सांसदों को लेकर बयानों का युद्ध छिड़ा हुआ है। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए, राम मंदिर में दान की लूट की जांच के बीच योगी के दौरे से कैसे बढ़ी है हलचल। लेकिन पहले बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील का, जिस पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों की ही टीमें आगे की बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक शहर जिनीवा नहीं आ रही है। ईरान ने दो टूक कहा है कि जब तक लेबनन में इजरायली आक्रमण नहीं रुकेगा तब तक वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। अब नतीजा ये हुआ है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भी अपना दौरा टालना पड़ा है। बुधवार की रात अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से पेजेश्कियान ने डील पर दस्तखत किए थे। इसके तुरंत बाद तमाम मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी ताकि एमओयू को अंतिम समझौते तक पहुंचाया जाए, लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो भीषण जंग जारी है उसने सारी डील पर अभी इस वक्त लग रहा है ब्रेक सा लगा दिया है। भीषण जंग जारी है उसने सारी डील पर अभी इस वक्त लग रहा है ब्रेक सा लगा दिया है। तो इतनी बड़ी डील, सबकी नजरें इस डील पर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस डील में शायद एक ब्रेक लग गई है। लेकिन पेच क्या है, दिक्कतें क्या है, यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिनीवा में यह बैठक होनी थी, लेकिन क्या अब यह बैठक टल गई है, क्योंकि जेडी वांस तो वहां अब जा नहीं रहे हैं और यह साफ होता जा रहा है कि डील पर कोई खींचतान अभी बाकी है। क्या दिक्कत है? लेबनान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तकरार चल रही है। ईरान कहता है कि यहां सीज फायर होना चाहिए, इसराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसराइल है जो चेता रहा है कि इसराइल को चेताया गया है अमेरिका की तरफ से, जो इसराइल मान नहीं रहा है और वहां पर हमले कर रहा है। अमेरिका कहता है कि ऐसा नहीं कर रहा है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इसराइल एक मुश्किल बन सकता है, ये तो सबको लग ही रहा था, लेकिन अब लेबनान को लेकर डील का एक ही दिन हुआ था जब सबकी तरफ से फोटो वीडियो सब जारी किया गया और अब मामला फिर से अटक गया है। वहां पूरा जिनीवा में तैयारी चल रही थी, वो अब रुक गई है।
1: बिल्कुल अंजलि, देखिए जब से ये एमओयू साइन हुआ था तब से एक बात बहुत क्लियर थी कि ये एमओयू एक कमजोर कड़ी से जुड़ा हुआ है और उसका नाम है लेबनन। और अभी भी अगर आप देखें कि लेबनन पर जिस तरीके से इसराइल के हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे नेतन्याहू की मजबूरी भी है, क्योंकि लगातार उनके ही देश में सवाल उठ रहे हैं कि जब 2023 से लगातार आपने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की थी, आपने अपने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, आप लगातार ईरान के खिलाफ भी जंग लड़ ली, तो आखिरकार जब ये सारी चीजें हुई तो आपने हासिल क्या किया? क्योंकि हिजबुल्लाह से लगातार वहां पे जो थ्रेट मिल रहा है, जहां से अटैक किए जा रहे हैं, वो नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में एक बड़ा खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इजराइल ये चाहता है कि साउथ ऑफ लेबनन के इन सारे इलाकों को, करीबन लितानी रिवर के पीछे के इलाके को, 10 से 15 किलोमीटर के इस इलाके को अपने हाथ में ले ले। और यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि कल सुप्रीम लीडर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वॉयलेशन होता है किसी भी एमओयू की किसी भी शर्त का तो फिर रेसिप्रोकल एक्ट होगा। और यही वजह है कि जब लेबनन पर जिस तरीके से हमले जारी रहे और इसी वजह से ईरान के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को आने के लिए मना कर दिया गया और फिर जेडी वेंस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो भी नहीं जाएंगे। शायद यही वजह है कि एक बड़ा कंसर्न अब भी बना हुआ है कि आखिरकार 24 घंटे के बाद ही जब इतनी बड़ी शर्तों का वायलेशन हो गया, सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ी, तो आखिरकार ये कैसे आगे बढ़ेगा?
0: बिल्कुल, सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं। शुक्रिया सुमित। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने बयान जारी कर डील को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दिया कि अगर एमओयू की शर्तों से खिलवाड़ हुआ तो ईरान डील से पीछे हटने से नहीं हिचकेगा। डील की शर्तों से साफ है कि ईरान ने हर वो बात मनवा ली जो वो चाहता था। यही वजह है कि इसराइल इससे नाराज है, वो लेबनान में डटा हुआ है। ईरान डील पर जिनीवा में बातचीत शुरू होने से पहले चाहता है कि लेबनान में सीज फायर हो, इसराइल युद्ध बंद करें।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया।
1: ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु है परमाणु हथियार और संवर्धित यूरेनियम का निपटारा, दोनों देश इसका तंत्र मिलकर तय करेंगे। हालांकि समझौते में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि वो तंत्र क्या होगा और किस तरह से विकसित किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि संवर्धित यूरेनियम को डाउनब्लेंड किया जाएगा, यानी उसकी संवर्धन क्षमता को कम किया जाएगा। साथ ही ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये कमिटमेंट ईरान की तरफ से दिया गया है। जहां तक संवर्धित यूरेनियम का सवाल है, उस मामले में तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये बात ये समझौता कहता है।
0: तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।
2: और अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां शिवसेना के फाउंडेशन डे पर तलवारें खिंच गई हैं। ठाकरे की विरासत की दावेदारी के लिए जहां उद्धव ठाकरे और शिंदे अपने अपने मंच से हुंकार भरेंगे, वहीं 6 बागी सांसदों पर संग्राम भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो जारी कर बागियों पर हमला बोल दिया है। इस वीडियो में बाला साहेब ठाकरे बोलते हुए दिख रहे हैं कि पार्टी टिकट से जीत कर जाने वालों की पिटाई करो। तो अब आज क्या होगा, विरासत को लेकर किस तरह की जद्दोजहद होगी, ये सब देख रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, फाउंडेशन डे की तैयारी। एक तरफ आप उद्धव ग्रुप की तैयारी, उद्धव गुट की तैयारी देख रहे हैं जहां पोस्टर लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 6 बागियों पर तकरार जारी है और इन 6 बागियों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। उधर ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। शायद ही किसी दल का कोई ऐसा फाउंडेशन डे जिस पर दो दो की दावेदारी हो, दोनों उस विरासत के लिए भिड़े हो, उसके लिए अलग मंचों से हुंकार भरने में लगे हो। आज मुंबई में उद्धव और शिंदे भी खुद को बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली वारिस बताएंगे, लेकिन जुबानी युद्ध तो बाकी सांसदों को लेकर ही असल में होगी।

0: मुंबई में मातोश्री के बाहर बाहें पसारे एकनाथ शिंदे का विशाल पोस्टर। दूसरी तरफ अपने पुत्र आदित्य के साथ उद्धव भी अपेक्षाकृत छोटी होर्डिंग में नजर आ रहे हैं। मुंबई में शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद में ये पोस्टर वॉर की तस्वीर है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है।
1: 19 जून शिवसेना पार्टी के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि 60 साल पहले ये पार्टी इसी दिन एग्जिस्टेंस में आई थी और 2022 में जब ये पार्टी स्प्लिट हुई उसके बाद दोनों ही फैक्शंस अपने अपने रूप से इसको मनाते आए हैं। इस वक्त हम हैं मातोश्री के बाहर और यहाँ आप देख लीजिए बड़े बड़े पोस्टर एकनाथ शिंदे गुट ने लगाए हैं। एक तरह से कह लीजिए तो पोस्टरों का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यूबीटी ग्रुप ने भी अपने पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन उनके पोस्टर गिने चुने छोटे छोटे बाहर मातोश्री के बाहर लगे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के देख लीजिए वहां पर बलून लगा हुआ है, ये बड़े होर्डिंग हर फ्लाईओवर पर लगे हैं।
0: शिवसेना की 60वीं सालगिरह पर आज जहां षणमुखानंद सभागृह में उद्धव ठाकरे रैली करेंगे, वहीं गोरेगांव में एकनाथ शिंदे की रैली होगी। शिवसेना का स्थापना दिवस इस बार ऐसे वक्त आया है जब उद्धव खेमे के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। दोनों खेमे की आज की रैली में इसका असर देखा जा सकता है। पहले ऐसी अटकलें थीं कि बाकी सभी 6 सांसद आज शिंदे की रैली में दिख सकते हैं, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कोई बाकी सांसद आज की रैली में शामिल नहीं होगा। हालांकि मुंबई पुलिस फिर भी अलर्ट है, डर है कि कहीं सांसदों की बगावत के विरोध में शिंदे की रैली में किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो। इस बीच कुछ दिनों से जो अटकलें थीं कल वो पूरी तरह पुख्ता हो गई। कल शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक में 9 सांसदों में सिर्फ 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। यूबीटी के 6 बाकी सांसदों ने व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग से दूरी बनाए रखी। शिवसेना यूबीटी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
2: नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे
3: क्या कार्रवाई की जाएगी?
4: स्पीकर को भी आप चिट्ठी लिखेंगे सर,
2: डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी गैर कानूनी कार्रवाई। तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी
5: सार्वजनिक की है,
2: सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं।
0: पार्टी में टूट से खिसियाए संजय राउत अब कह रहे हैं कि बागी सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जाएगा,
6: उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
0: इस बीच गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के DGP को बागी सांसदों और उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
1: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी। मुंबई से हमारे साथ है विद्या और दिल्ली से जुड़ रहे हैं हिमांशु मिश्र। विद्या, पहले रुख आपका करते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर टक्कर दिख रही है इन दो पार्टियों के बीच, आखिर वो किस तरीके से जमीनी तौर पर नजर आएगी वहां पर?
7: जी देखिए, एक तरह से कोशिश जरूर है, यूबीटी का एक रिएक्शन होगा तो पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो। यही वजह है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, मतलब एक डायरेक्शन पास किया है और एक Y+ सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई गई है, जितने भी बागी सांसद हैं उनको। इसके अलावा पोस्टरों का जो वॉर है वो एक तरह से चरम पे पहुंच चुका है, जहां एक तरफ पूरी की पूरी जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो अपने शक्ति प्रदर्शन पे लगी है, वहीं ये बागी हैं समय बस तरफ पूरी की पूरी जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो अपने शक्ति प्रदर्शन पे लगी है, वहीं ये बागी हैं समय बदल गया लेकिन बागी बदल गए लेकिन ठाकरे परिवार तटस्थ खड़ा है। इस तरह के काफ़ी सारे पोस्टर्स मातोश्री और मातोश्री के आसपास बांद्रा के जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी जगह पे लग गए हैं। तो एक तरह से कह लीजिए पोस्टरों का एक वॉर चल रहा है। कांग्रेस हम होने नहीं देंगे शिवसेना को, ऐसा बाल ठाकरे ने कहा था, उसको एकनाथ शिंदे बता रहे हैं।
1: विद्या, बाल ठाकरे ने क्या क्या कहा था? कभी बाला साहब ठाकरे ने उन बागियों को सबक सिखाने की भी बात कही थी, कहा था कि उन्हें पीटना चाहिए जो पार्टी की टिकट पर जीतकर अपने फायदे के लिए दूसरे दलों का दामन थाम लेते हैं। एक बार ये भी सुन लेते हैं।
8: खासदार मारल जोड़ना
3: शिवसेनेच्या तिकडावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा।
5: एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हिमांशु, जो सांसद हैं, जो बागी बताए जा रहे हैं, उनका जो शेड्यूल है बहुत व्यस्त रहा है, प्राइवेट जेटों से वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या आज हम उनको मंच पर देख सकेंगे, शिंदे सेना का जो आज प्रोग्राम हो रहा है उसमें?
8: देखिए, क्योंकि शिंदे ग्रुप की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इन छह सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात करके एक अलग गुट बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि वो विलय करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके अंदर, और उसके बाद उनको जो एक संसदीय दल की बैठक थी जिसमें थ्री लाइन का व्हिप जारी किया गया था, उस बैठक में वो नहीं आए हैं, स्पीकर के पास उनका पत्र जा चुका है। तो हो सकता है ये छह के छह सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे का ने जो आज शिवसेना के स्थापना दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम रखा है उसमें नजर आए, और एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आए कि देखिए ये वो छह सांसद हैं जो इस बात की और पुख्ता हो गई है कि उद्धव ठाकरे के लीडरशिप वाली जो शिवसेना है वो अपनी विचारधारा से भटक गई है। और इन छह सांसदों ने यही पत्र जो है वो स्पीकर को भी दिया है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो मूल विचारधारा से भटक गई है, उसके साथ साथ जो है कुछ वरिष्ठ नेता जो है यूबीटी का जो है वो विलय कांग्रेस में कराना चाहते थे। तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे आज इस मंच पर ये छह सांसद नजर आएंगे या कल जो है ये छह सांसद आके अपनी बात को रखेंगे कि उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की और बाकी उन्होंने पत्र में क्या कहा है।
5: बिल्कुल हिमांशु, इस पर रहेगी हम सबकी नजर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
1: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
2: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
3: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
2: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
3: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
4: दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या वहाँ नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरीटाइम फ्रीडम कहां होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान का जिनेवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जेडी वैंस का दौरा भी स्थगित। सबसे बड़ी डील पर दावेदारी की जंग, डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को बिना शर्त सरेंडर जैसा बताया, खामनेई का पहला बयान, समझौते का समर्थन लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांग नामंजूर। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों से मुलाकात, चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश। समाजवादी पार्टी में बगावत पर ओपी राजभर का एक और दावा, पीडीए की बैठक में मुरादाबाद की सांसद के न पहुंचने पर सवाल, आज तक से बोली सांसद, मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज नहीं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट।

प्रदेश भर में सियासी हलचल मची हुई है। विवाद के बीच आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अयोध्या में सीएम के कई कार्यक्रम है। खबर आ रही है कि सीएम योगी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं आज पांचवें दिन भी एसआईटी की जांच जारी है। मंदिर के करीब 125 कर्मचारियों से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की। सीएम अयोध्या राम मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि अयोध्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है उसके मुताबिक चंपत राय की ओर से उनके प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी टीम की पांचवें दिन भी जांच जारी है। चंपत राय के ड्राइवर टिनू यादव से एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी की टीम ये पूछताछ करेगी और उसके बयानों का मिलान अब तक जुटाए गए दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। एसआईटी की टीम मंदिर में प्राप्त आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही जमीन खरीद और उससे संबंधित पत्रावलियों को भी तलब किया जाएगा, जिनकी पड़ताल जांच के दायरे में शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार आभूषणों और चढ़ावे की वास्तविक मात्रा साथ ही उनके रिकॉर्ड को लेकर अभी तक स्पष्ट और सटीक जानकारी सामने नहीं आ सकी है। एसआईटी का प्रयास है कि दान राशि, आभूषणों और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों का मिलान कर किसी भी संभावित अनियमितता की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके।

0: तो राम मंदिर जो आस्था का इतना बड़ा स्थान है उसके चढ़ावे में चोरी हुई है, इसको लेकर के पूरा विवाद अब खड़ा हो गया। सिर्फ सियासी नहीं, या आस्था को लेकर भी बड़ा मुद्दा है। तो क्या है ये पूरा विवाद, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विवाद के बीच इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। योजना परियोजना तो है ही, इसके साथ ही एक बहुत अहम बैठक है जिसमें मुलाकात की जाएगी बंद कमरे में पदाधिकारियों के साथ। लेकिन जो चंपत राय हैं ट्रस्ट के महासचिव, उन्हें कहा गया है कि आप कार्यक्रमों से दूर रहिए, आप इस बैठक से दूर रहिए, क्योंकि इस वक्त एसआईटी चढ़ावा चोरी मामले में जांच कर रही है और इस जांच के दायरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जैसे कि चंपत राय के ड्राइवर। ऐसे में साफ कर दिया गया है चंपत राय को कि आप इस बैठक से भी दूर रहिए। जो ड्राइवर है उसका नाम है टीनू यादव। इसकी जमीन, इसके मकान, इसकी पूरी जो धनराशि, उसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे और उससे पूछताछ चल रही है और आज भी उससे पूछताछ की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि मंदिर में जो आभूषण दिए गए, जो चढ़ावे के तौर पे दिए जाते हैं, उसके जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाए, मिलान किया जाए कि वास्तविक तौर पर कितने चढ़ावे आए और कितने मौजूद हैं किताबों में और दस्तावेजों से। साथ ही जमीन जो खरीदी गई, जो ट्रस्ट के नाम है या मंदिर के नाम है, उससे भी जुड़े सारे दस्तावेजों को तलब किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जांच सही तरीके से हो। दान पात्र के साथ साथ वहां जो सुरक्षा व्यवस्था भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 करोड़ का खर्चा हो गया था एक महीने में, तो आखिर किस तरीके से वो की जा रही थी, इस सब को जांचा जाएगा। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम है वहां पर, लेकिन कार्यक्रम से भी ज्यादा नजरें जिस बात पर रहेगी वो बंद कमरे की बैठक पर रहेगी, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या, थोड़ी देर में वो मंच पर होंगे। पहले मैं आपको जरा दिखा देता हूं दृश्य, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर अयोध्या में जो चढ़ावा, जो चंदा आया और जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत पैसों के वारे न्यारे हुए, दरअसल उसकी जांच कहां तक पहुंची है तो बताऊं कि आज पांचवा दिन है जब एसआईटी जांच कर रही है। सुबह 9 बजे के करीब एसआईटी जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, ये मंदिर पहुंचती है। तमाम कर्मचारी जो कि इस दान से जुड़े हुए हैं, जो चंदे की रकम से जुड़े हुए हैं, मतलब उसकी गिनती से, उसके रख रखाव से, जो पूरे मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों को सुबह से रात तक मंदिर परिसर में ही रहना होता है, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव जांच ये चल रही है। बताया ये गया है अभी तक, जैसे नृपेंद्र मिश्र के जो बयान आए हैं उसमें उन्होंने एक चर्चा भी की है, एक बताया भी है कि कुछ संदिग्ध चीजें दिखी है, मसलन कर्मचारियों के पास कर्मचारी पैसे को पॉकेट में रखते दिखे हैं। इसके अलावा एक बात और है, 45 दिन के पुराना कोई सीसीटीवी नहीं रह पाता, वो डिलीट हो जाता है। तमाम जो पुराने फुटेज है उसे रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है, क्या कोई पेन ड्राइव पहले से मौजूद है जिसकी जांच हो, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच इस वक्त चल रही है। पांचवा दिन है और आज भी जो तमाम बड़े लोग हैं, खास करके जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने बड़े नाम हैं, सभी मंदिर परिसर के भीतर हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो एक्सटेंसिव जांच है, खासकर दानपात्र से हुई चोरी का, सीसीटीवी का खुलासा, इसके अलावा जो रत्न आभूषण ऐसे चीजों के गायब होने की जो कहानी आ रही है, इस पर भी एक एक्सटेंसिव जांच चल रही है। तो देखना है कि निकलता क्या है, लेकिन अगर कुछ ठोस तौर पर आना है तो वो इस जांच के बाद ही सामने आएगा।
0: जी बिल्कुल, हमारी नजर रहेगी इस पूरी जांच में जो सामने आ रहा है उस पर, क्योंकि इसमें रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच पड़ताल से ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं चोरी का खेल बाद में खेला गया, पहले सीसीटीवी फेल किया गया। नहीं तो क्या ये संभव है कि अचानक से गायब हो जाए ये फुटेज और किसी को कानो कान खबर ही ना हो? तो जिस राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हों, जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हों, वहीं 15 से 20 कैमरे हैं, जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन यानी कि HD और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे हैं जो चारों तरफ की रिकॉर्डिंग करते हैं।

0: राम मंदिर का दान गिनने वाले सीसीटीवी में क्या छिपा है? राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे टेबल पर रखकर कौन गिन रहा है? क्या राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे चोरी करने का पूरा रहस्य सीसीटीवी में ही छिपा है? क्या राम मंदिर का दान चोरी करने वालों ने सीसीटीवी का मैनेजमेंट देखने वालों को ही सेट कर दिया? एसआईटी की जांच लगातार चौथे दिन भी जारी है। रोज एसआईटी के अधिकारी राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों से घंटों की पूछताछ कर रहे हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी कैसे हो गई और पूरी दुनिया में फैले करोड़ों राम भक्त इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी करने वालों का असली सरगना कौन है। इस बीच आज तक के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि राम मंदिर की दान राशि गिनी जा रही है। साफ दिख रहा है कि श्रद्धालुओं के दान को टेबल के ऊपर रखकर गिना जा रहा है। इसमें कुछ कर्मचारी दो टेबलों पर दान राशि को गिनते दिख रहे हैं और कुछ कर्मचारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसके संचालन की क्या व्यवस्था है। इसी के आधार पर सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी भी जांच कर रही है। लेकिन सवाल है कि मंदिर का दान चोरी करने वालों की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? वो किस तरह से मंदिर में आए करोड़ों रुपए के चढ़ावे को चोरी कर रहे थे? इसी सवाल का जवाब एसआईटी खोज रही है। एसआईटी की पूछताछ का केंद्र बना है राम मंदिर में काम करने वाला रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ। सीसीटीवी के सभी फुटेज की जिम्मेदारी आरएमओ की। आरएमओ जब चाहे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है या उसे चालू कर सकता है। सीसीटीवी को चेक करना भी इसी आरएमओ के जिम्मे है। ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। और ये बताया जा रहा है कि ये रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर टिन्नू यादव और ट्रस्ट का खास आदमी है। वही टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर है और मौजूदा केस में चढ़ावा चोरी का आरोप इसी पर है। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर पर इतनी बड़ी कृपा है कि वो मंदिर में करीब पिछले 17 वर्षों से तैनात है और इन 17 वर्षों में उसका एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन्हीं सब बिंदुओं पर एसआईटी की जांच चल रही है कि कहीं चढ़ावा चोरी करने वालों ने इस रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर को तो सेट नहीं किया था कि जब चढ़ावे के पैसों की गिनती करनी हो और चोरी करनी हो तो उसी वक्त सीसीटीवी बंद कर दिया जाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस आरएमओ की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब कर लिया गया है। चढ़ावा चोरी के लिए बनाई गई एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। अब जांच की रडार में सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी आ गए। एसआईटी उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े थे। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। गेट चेकिंग और मंदिर की प्रवेश व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पास जारी करने का काम देखने वाले मुख्य कर्मचारी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
1: और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम ऐप को बड़ा झटका लगा है। सरकार की तरफ से लगाई गई रोक या बैन को जारी रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि सरकार को हक है कि वो इस तरीके का अस्थाई बैन जारी करे। आपको बता दें, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था जब टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई थी, उसके मैसेजिंग फीचर पर भी रोक लगा दी गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी अनीशा माथुर। अनीशा, क्या कहा है कोर्ट ने इस बैन को या रोक को जारी रखते हुए?
2: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात तो कोर्ट ने आज ये कह दी है कि सरकार के पास आईटी एक्ट के अंतर्गत पावर है कि सिर्फ कुछ अकाउंट ही नहीं बल्कि पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी एप्लीकेशन ही बैन कर दे। खासतौर से तब जब सरकार ने कहा है कि ये टेम्प्ररी है, केवल 5 दिन का है, केवल 16 तारीख से 22 तारीख तक के लिए बैन लगा है, सिर्फ एग्जाम के चलते बैन लगा है। और कोर्ट ने ये भी सरकार की बात मान ली है कि इमरजेंसी का मामला था, ऐप का मिसयूज हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग पेपर लीक लोगों ने पेपर लीक पहले भी किया है और अभी भी अप्रिहेंशन था, डर था कि कुछ और या तो लीक होगा वरना लीक के नाम पर कुछ अफवाहें उड़ेंगी जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर और स्टूडेंट्स के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात लेकिन अंजलि यही है कि सरकार की जो पावर है, जो पहले ये कहा जा रहा था कि केवल कुछ अकाउंट बैन करने की पावर है, कोई कुछ यूआरएल बैन करने की पावर है सेक्शन 69 के अंतर्गत, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ये बड़ी बात कह दी कि कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म भी बैन कर सकती है सरकार इस तरह से अगर इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने करना जो है वो जस्टिफाइड हो। तो आज टेलीग्राम जो बैन हुआ है उसके चलते कई बार जैसे सरकार ट्विटर को या यूट्यूब को या व्हाट्सएप को कह चुकी है कि अगर आप आपकी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल होता है तो हम आपका भी लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपको भी बैन कर देंगे। टेलीग्राम को जिस तरह से बैन किया गया है आज काफी बड़ी मिसाल हुई है।
1: जी अनिशा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि नीट की वजह से जो टेलीग्राम ऐप पर रोक लगाई गई थी वो जारी रहेगी। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया और 10-20 ब्राह्मणों को आगे बैठा करके समाजवादी पार्टी अपने सजातियों को पीछे बैठा कर टोपी पहना के ब्राह्मण बना दिया और बागी बलिया के लाल को तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, गेट में घुसने नहीं दिया।
10: किनका जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर?
9: सांसद हैं बलिया के, वो पहले से प्लानिंग थी
10: क्या?
9: यही प्लानिंग थी कि इस तरीके से करना है और बैठक करना है, इस तरीके से इनको रोकना है, उनको रोकना है और ये सब वहां मैनेज हो रहे हैं।
10: किसकी प्लानिंग थी?
9: ये समाजवादी पार्टी मुखिया की प्लानिंग थी, ये स्वतः ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके ऐसे लोगों को तिरस्कृत करते हैं जो उनके खुद के दल में।
11: हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए हैं। हम दो बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर यह उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन अपने जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
12: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
9: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
10: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
9: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई ना कोई यूज तो कर ही रहा है।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: और जापान की राजधानी टोक्यो से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. टोक्यो में एक स्कूल में लगी भीषण आग. आग लगने के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और कुछ बच्चों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं. हालांकि अभी तक बच्चों के फंसे होने या हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग बड़ी है और आग का धुआं इस वक्त निकल रहा है. लेकिन जितनी भी वहां पर एजेंसियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और कोशिश यही है कि इस आग को काबू में पाया जाए. बच्चे फंसे हैं या नहीं इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस स्कूल की जहां पर यह भीषण आग लगी है और इस आग को बुझाने के लिए इस वक्त वहां पर सारी एजेंसियां तैनात हो गई हैं. बच्चों को बाहर निकाला गया है, लेकिन कितने बच्चे उस वक्त थे, कितने बाहर आए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है. फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग. फर्स्ट अप वी've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca who's whispering affirmations to

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
3: Oh yeah.
2: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
6: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है? पाया क्या है? एक छापामार मंत्री बस, वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के, जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
5: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
7: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया?
5: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
8: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
5: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
9: समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं केवल दिखाने के दांत।
5: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
10: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ

0: कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
1: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट का 5 दिन की पाबंदी हटाने से इनकार। केंद्र का फैसला सही करार। बोली अदालत, सरकार को अधिकार।
1: चंदा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी का अयोध्या कूच। बंद कमरे में राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से मुलाकात। चंपत राय को बैठक से दूर रहने के निर्देश।
0: समाजवादी पार्टी में बगावत पर ओपी राजभर का एक और दावा। पीडीए की बैठक में मुरादाबाद की सांसद के ना पहुंचने पर सवाल। आज तक से बोली सांसद, मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज नहीं हूं।

0: उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट।
1: ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान की जिनेवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जेडी वांस का दौरा स्थगित।

0: होगा डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से। टेलीग्राम ऐप की रोक पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। टेलीग्राम ऐप पर 5 दिन का बैन बरकरार। सरकार के आदेश को बताया वैध। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आपात स्थिति में आदेश उचित, प्रक्रिया का पालन हुआ और कारण पर्याप्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया अपना रुख। आईटी एक्ट के तहत सरकार को ऐप या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई का अधिकार बताया। आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ पुराने कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी बस्ती के रुदौली से इस दौरे की शुरुआत कर चुके हैं। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रुदौली से गोंडा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुराने कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं पर करेंगे बैठक। सीएम योगी गोंडा से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे दौरे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। लखनऊ के लिए होंगे रवाना।
2: राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की एसआईटी जांच तेज। लगातार चौथे दिन ट्रस्ट सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ जारी। अयोध्या में दान राशि और भर्ती प्रक्रिया पर जांच केंद्रित। 100 से अधिक कर्मचारियों से हो चुकी है पूछताछ। चढ़ावा विवाद पर गरमाई सियासत। अजय राय और अखिलेश यादव ने जांच टीम की निष्पक्षता पर जताया संदेह। पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच कराने की मांग। एसआईटी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। अजय राय ने कहा सीएम योगी के अयोध्या दौरे से बदलाव नहीं होने वाला है। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर संदेह बना हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ। 11 महीनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संबल विवाद के चलते पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को किया गिरफ्तार। भाई की जमानत के लिए थाने में युवक ने जोरदार हंगामा किया था। युवक ने पहले खुद के भाई को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। थाने में सुनवाई न होने पर युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग से लपटा देखकर पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई। आग की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मुंबई में बस हड़ताल को लेकर हाहाकार। बस हड़ताल से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। नवी मुंबई अंधेरी रूट पर नजर आई भारी भीड़। बस में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल।
1: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाई वोल्टेज तार गिरने से ट्रक में लगी आग। वाहन पूरी तरह जलकर खाक। पुणे में चलती सीएनजी बस में लगी भयंकर आग। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री बचे सुरक्षित। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की पासिंग आउट परेड। ट्रेनिंग डॉग्स ने दिखाए करतब। हैदराबाद में एक बेकरी में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। जांच में कॉकरोच और कबूतर मिले। यूपी के जालौन में नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। एसडीआरएफ ने निकाले शव। श्रीनगर गढ़वाल में बिना चालक के दौड़ी एम्बुलेंस। 3 वाहन और मकान की बाउंड्री क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे 4 लोग। नालंदा में स्कूल में चोरी का विरोध करने पर युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। वारदात का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में लिफ्ट रुकने से नाराज युवकों ने ऑपरेटर को जमकर पीटा। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद। मंदिर में तोड़फोड़। 1 आरोपी गिरफ्तार।
2: शिमला में संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा गिरा। दोनों ओर से यातायात प्रभावित। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दिखा बवंडर। महेशमारी इलाके में हुगली नदी के ऊपर देखे गए 2 बवंडर। बवंडर के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। जामनगर में हुई भारी बारिश। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर लगा पानी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात में मानसून पहुंचने में लग सकते हैं 5 दिन। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो की वजह से मानसून में देरी। अमूमन 15 जून तक गुजरात पहुंचता है मानसून। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कांगड़ा कुल्लू मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का अलर्ट। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले 12 साल में देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत की कहानी केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। मोदी ने नए भारत की अद्भुत ताकत का एहसास कराया। उन्होंने सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश की बेमिसाल आर्थिक और डिजिटल प्रगति के आंकड़े गिनाए। पीएम ने फ्रांस के साथ भारत के मजबूत होते स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नए विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का सीधा आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच का सबसे मजबूत सेतु बताया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए कई बड़ी और राहत भरी घोषणाएं की।
1: आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव में और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी सायन में कार्यक्रम करेगी। 6 बागी सांसदों पर सबकी नजर। सूत्रों के अनुसार ये सांसद अपना अलग संसदीय समूह बना चुके हैं और शिंदे शिवसेना में शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे सेना में शामिल होने की संभावना पर भड़क सकता है विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने इंटरनल सर्कुलर में अलर्ट जारी किया। 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली। संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। शिवसेना के बागी सांसदों को मिली वाई प्लस सुरक्षा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई ये सुरक्षा। डीजीपी ने दी जानकारी। टीएमसी में बंटवारे पर आज पक्ष रखेंगे अभिषेक बैनर्जी। स्पीकर ओम बिरला ने दिया मिलने का वक्त। कोलकाता में फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच तेज। सीआईडी ने ममता बैनर्जी की बहन के कालीघाट स्थित आवास पर की जांच। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मंत्री उदयन गुहा के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की नारेबाजी और फेंके अंडे। भेजे गए 7 दिन की पुलिस हिरासत में। बिहार सरकार ने एसडी संजय को नया महाधिवक्ता अधियुक्त की नियुक्त किया और पीके शाही को की ली है उन्होंने जगह। आज वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ा करने के क्रम में गिराई जाएंगी 6 मस्जिदें। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
2: पंजाब में वायरल वीडियो मामले में आप प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपीसी की मुलाकात। फर्जी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। फर्जी वीडियो मामले पर बोले सीएम मान ने सफाई देते हुए कहा ये मैं नहीं मेरे जैसा दिखने वाला कोई एक्टर है। सीएम मान ने बीजेपी शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर बोला हमला। कहा चुनाव को देखते हुए बदनाम करने की साजिश हो रही है। पंजाब में 100 साल का इंतजार खत्म। ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। स्वदेशी कवच तकनीक से लैस होगी रेल लाइन। पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल की कंपनी से करोड़ों की साइबर ठगी। मामले पुलिस ने दर्ज की FIR। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का ISI कनेक्शन बेनकाब। पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी। ATS को सौंपी गई जांच। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तभी पाकिस्तान ऑपरेटिव हुसैन राणा और शहजाद भट्टी के संपर्क में था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हमले के बाद उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला जबकि 50,000 का सौदा हुआ था। बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। 29 IPS अधिकारी के बाद 21 IAS अधिकारियों का तबादला।
1: नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर सीकर में हाई अलर्ट। जयपुर रेंज IG ने ली तैयारियों की समीक्षा बैठक। गाइडलाइन को पालन करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर और SP ने भी कोचिंग संचालकों से बैठक कर नीट परीक्षा से संबंधित कोई भी इशू सामने आने पर प्रशासन को सूचित करने की दी हिदायत। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों दफादार चौकीदार का प्रदर्शन। नियमित करने और आश्रितों को बहाल करने की मांग। सूरत में TET परीक्षा मामले को लेकर शिक्षकों का कड़ा विरोध। सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और किया प्रदर्शन। संगरूर में ठेका कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। परिवारों समेत सड़कों पर उतरे कर्मचारी। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया। QS रैंकिंग में IIT दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। ग्लोबल रैंकिंग में हासिल किया 118वां स्थान। दुनिया में टॉप संस्थानों में DU जामिया समेत भारत के 52 यूनिवर्सिटी। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम। जामनगर में तीनों सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने किया योग। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। MP के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण, तेज फायरिंग की क्षमता से लैस जीपीएस और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करके लगाया सटीक निशाना। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ एयर कुशन व्हीकल H-561, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती, पूरी तरह मेक इन इंडिया है आधुनिक। चार धाम यात्रा में अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भीषण ठंड और स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से करीब 200 लोगों की मौत दर्ज।
2: उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चार धाम की यात्रा, अब तक 37,70,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 19,000 श्रद्धालु पहुंचे, अब तक 11,86,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में 9,506 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 12,70,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। गंगोत्री धाम में अब तक 6,00,000 भक्तों ने किया दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,87,000 के पार। हेमकुंड साहिब में 4,144 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, अब तक 1,09,603 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। S&P ग्लोबल ने चेतावनी दी कि होमस खुलने के बावजूद क्रूड सप्लाई सामान्य होने में 2-6 महीने लगेंगे, हालात सुधरने तक भारत में महंगाई बढ़ने और रुपया कमजोर होने का खतरा बरकरार। हेली रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया भर में 1.5 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्क में बसेंगे, UAE और सिंगापुर सबसे पसंदीदा देश। CEEW के मुताबिक देश में कुल तेल जरूरत का महज 9-10 दिन का रणनीतिक भंडार, IEA ने 2027 में तेल की ज्यादा सप्लाई से ग्लोबल स्टॉक फिर से बढ़ने का भरोसा जताया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आईफोन समेत तमाम एप्पल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की बात कही है।
1: अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते पर बड़ा दावा, अमेरिका का दावा IAEA को परमाणु ठिकानों के निरीक्षण का न्योता देगा तेहरान। ईरान खोलेगा परमाणु ठिकानों के दरवाजे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा अमेरिकी निरीक्षकों को ईरानी परमाणु ठिकानों पर जाने की मंजूरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हटी अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी घेराबंदी, कई दिनों से युद्ध के चलते फंसे जहाजों की आवाजाही शुरू। ईरान यूएस समझौते के बाद बड़ा फैसला, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिन तक नहीं लगेगा ट्रांजिट शुल्क। शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद सामान्य हो रही जहाजों की आवाजाही, हॉर्मूज पर ईरानी माइन हटाने का कार्य शुरू। मिडल ईस्ट युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शुक्रवार से खुलेगा हॉर्मूज जल डमरू मध्य और शांति समझौता होगा लागू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिर से शुरू हुई तेल टैंकरों की आवाजाही, अमेरिका ने हटाए 9 सैनिक प्रतिबंध। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते के बाद हॉर्मूज खुलने से तेल आपूर्ति में राहत, समझौते के बावजूद कई मुद्दों पर अब भी अनिश्चितता। खामनेई का अमेरिका ईरान समझौते पर सतर्क समर्थन, अमेरिका की शर्तों पर खरा उतरने की चेतावनी।

0: इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज है। विवाद के बीच अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सीएम के कई कार्यक्रम हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर का भी दौरा करेंगे। रामलला के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है।
0: वहीं आज पांचवें दिन एसआईटी की जांच जारी है। फिर टिन्नू यादव से पूछताछ की जा सकती है। करीब 125 कर्मचारियों से एसआईटी सवाल जवाब कर चुकी है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। कुमार अभिषेक से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आज जब मुख्यमंत्री का दौरा है तब भी एसआईटी की जांच जारी रहेगी, और क्या मुख्यमंत्री इस बारे में अपडेट ले सकते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है?
2: जाएंगे, फिर लौट करके अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, छोटी छावनी जाएंगे। कई कार्यक्रम में कहा जा रहा है, चूंकि जो
0: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है कुमार अभिषेक, के पीछे से बैकग्राउंड में आवाज है, दोबारा आपसे बातचीत करके संपर्क करेंगे। तो सीएम योगी कार्यक्रम से दूर रहने की हिदायत दी गई है चंपत राय को, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका नाम भी सामने आ रहा है चंदा हेरा फेरी के मामले में। ये चढ़ावा विवाद है। और इस बीच अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। अयोध्या के कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम, जिसमें वैक्स म्यूजियम का अनावरण शामिल है। ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक है। जाहिर तौर पर ट्रस्ट से इस बारे में भी बात की जाएगी कि आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं और अब तक मामले में छानबीन कहां तक पहुंची है। लेकिन इस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने के लिए कहा गया है।
1: तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या, उनका दौरा शुरू हो चुका है, लेकिन नजर सबकी उस बैठक पर है जो आज होगी एक बंद कमरे में। इस बंद कमरे की बैठक में क्या होगा, पदाधिकारियों से क्या कोई सवाल जवाब होगा, क्योंकि चढ़ावे में चोरी को लेकर जो जांच चल रही है उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर गड़बड़ी, सीसीटीवी ऑन ऑफ होना, चंदा गिनने को लेकर गड़बड़ी, ये सारी बातें अब पूछी जा रही है। उधर एसआईटी ने अब दस्तावेजों का मिलान करना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के उस मंच से जहां मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पहुंचे हैं। लेकिन क्या ये महज एक दौरा है जिसमें योजनाएं परियोजनाओं का अनावरण है, या इसके पीछे मंशा ये भी है कि जांचा जाए कि आखिर जांच एसआईटी की कहां तक पहुंची है और आखिर ये पूरा घालमेल हुआ कैसे। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा हमला हुआ है। एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ा, अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए, ऐसा बयान अखिलेश यादव की तरफ से अब आ रहा है। लगातार वो सियासत करते रहे हैं, बयानबाजी करते रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और शुरू से ही अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर उन्होंने बयान दिए हैं। अब नया बयान उनकी तरफ से।
0: तो अब सीएम योगी के इस दौरे को लेकर भी अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। उनका यह कहना है कि बार बार क्यों अयोध्या का दौरा सीएम द्वारा किया जाता है, ये रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्रा जो है उनकी जांच होनी चाहिए। जाहिर तौर पर सीधे तौर पर उन्होंने हालांकि चंदा चोरी के मामले में कुछ भी नहीं कहा है अखिलेश ने, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ है कि ये यात्रा दरअसल मुख्य मकसद इसका चंदा चोरी की पड़ताल है और कहां तक जांच आगे बढ़ी है इस पर योगी अपडेट चाहते हैं।
1: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अप
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
6: Swing and a foul out of play off to the left.
5: Big 12 Radio.
7: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
5: Talk Sport.
8: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
5: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
9: The electric Savari Sokudo.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
8: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Waiting. Come.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम। ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई, करीब 300 अरब डॉलर तक की सहायता की चर्चा है। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मकसद मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज हूँ।
1: शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट।
2: ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलझे सवाल, ईरान का जिनीवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जीडी वैंस का दौरा स्थगित।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
2: और अब बात उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर सियासत से जुड़ी हुई है, दूसरी मजहब से। टीएमसी में टूट हुई है, उद्धव की पार्टी में बिखराव की संभावनाओं के बीच यूपी का सियासी तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों की ओर से अब समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इन हमलों का जवाब दे रही, लेकिन अब मुरादाबाद की सांसद रुचि वोरा का बयान अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा सकता है।
1: उधर वाराणसी में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार जारी एक्शन को लेकर तनाव बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि दाल मंडी इलाके की कुछ मस्जिदों पर भी प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस बीच वाराणसी की एक और मस्जिद को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोटिस थमा दिया गया है।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टूट के दावों के बीच समाजवादी पार्टी के भीतर नया घमासान छिड़ गया है। मुरादाबाद में हुए पीड़े सम्मेलन में सांसद रुचि वीरा को ना बुलाए जाने पर राजनीति तेज है। आज तक शिकायतबाजी में रुचि वीरा ने सम्मेलन में ना बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और दावा किया कि कुछ लोगों की गुटबाजी के चलते ऐसा हुआ है।
1: दरअसल सांसद रुचि वीरा को पीडीए सम्मेलन में न बुलाए जाने का मुद्दा उठाते हुए यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। हालांकि रुचि वीरा ने पार्टी में टूट की अटकलों से पूरी तरह से इनकार कर दिया, लेकिन खबर यह है कि वो कह रही थी कि उनको नहीं बुलाया गया मुरादाबाद की इस बैठक।
4: ओपी राजभर का जो अभी बयान आया है, उन्होंने ट्वीट किया है
5: जी,
4: तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
5: देखिए, वैसे ओपी राजभर जी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि गलती की है चंद लोगों ने, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था या कराया था। ओपी राजभर जी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि गलती की है चंद लोगों ने, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था या कराया था।
4: जी,
5: आप एक महिला जो अकेली महिला रिप्रेजेंटेटिव हो पार्टी की तरफ से भी, और यहाँ पहली महिला सांसद हो, उन्हें उस कार्यक्रम में ना बुलाया जाना, मतलब ये किसी एक व्यक्ति की या चंद लोगों की हरकत हो सकती है, लेकिन ये कोई इसके लिए पूरी पार्टी को घेरा जाए ये ठीक नहीं है।
4: नहीं, जैसे वो लगातार ये बोल रहे हैं कि पार्टी टूट रही है समाजवादी पार्टी।
5: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं अखिलेश यादव जी, वो महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि भाई मुझे एक महिला को उन्होंने टिकट दिया और मैं चुनाव जीती
4: जी।
5: तो वो बराबर संगठन हो या टिकट में हो, महिलाओं को बराबर सम्मान देते हैं। मेरा पार्टी में पूरी तरह आस्था है। अब एक व्यक्ति यहाँ गुटबाजी कर रहा है तो इसके लिए पूरी पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता।
4: तो जो पीडीए की बैठक हुई थी उसमें क्या मतलब आपको नहीं बुलाया गया था इस तरीके?
5: नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था। यही मेरे लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है, मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें रोष है कि ना फोटो लगाया गया और ना बुलाया गया।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रुचि वीरा नाराज है। उनका कहना है कि पीडीए की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। ऑपरेशन लोटस पर जुबानी जंग भी चल रही है अखिलेश।
1: और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, रुचि वीरा नाराज है ये तो जाहिर हो ही गया है, उनकी अपनी जुबान से भी उन्होंने ये बात साफ कर दी है, लेकिन वो कहती हैं कि ये दरअसल एक आदमी की वजह से हो रहा है और ये स्थानीय नेता का किसी का किया हुआ षड्यंत्र है, ये कोई टूट नहीं है। लेकिन दावे कुछ और भी हो रहे हैं।
6: आप मुझे बताओ ना, हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से अब एक एक करके नाम या फिर उनके बयान सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को परेशान करने वाला है। देखिए कल तक सपा कह रही थी कि पूरी तरीके से एकजुट है, तो आज सुबह सुबह ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट कर दिया और रुचि वीरा को लेकर के उन्होंने इशारा किया। रुचि वीरा ने जो बात की है आज तक से, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इंटैक्ट है, कहीं कोई टूट नहीं है, उनकी आस्था अखिलेश यादव में है, लेकिन वो नाराज है क्योंकि जो पीडीए की बैठक हुई उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया, उनके लोगों को नहीं बुलाया गया, वो महिला है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। तो निश्चित तौर समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नाराज हैं और ऐसे लोगों को चुन चुन करके कहीं ना कहीं या तो
2: नाराज भी है और नाराजगी की वजह भी अलग अलग तरीकों से तलाशी जा रही है। वहीं ऑपरेशन लोटस पर भी जुबानी जंग तेज है। अखिलेश यादव के विरोधियों की ओर से लगातार ये दावा हो रहा है कि ममता उद्धव के बाद अखिलेश के सांसों में फूट की अटकलें हैं।
1: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने शगुफा छोड़ा है, फिर तो डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता भी इस शोर को आवाज देने में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं।
7: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
8: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
7: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
9: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
7: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप पार्टी टूटेगी और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी।
10: जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
7: अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान की। इन दिनों दाल मंडी में बुलडोजर गरज रहा है और यहां काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक कम करने के लिए वैकल्पिक रूट तैयार किया जा रहा है।
1: इसके तहत मुस्लिम बहुल दाल मंडी इलाके में सड़क को चौड़ा करने की योजना है। रास्ते पर आने वाली तमाम इमारतों को गिराया जा रहा है। अब खबर यह है कि इस सिलसिले में 6 मस्जिदों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।

0: वाराणसी का दाल मंडी इलाका, जहां बीते कई दिनों से सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण पर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, दुकानों मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।
1: उन सभी भवनों पर आज दिनांक 11/6/2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
0: लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी सेक्शन की जद में 6 मस्जिदें भी आ गई हैं। एक दिन पहले प्रशासन की टीम ने यहां नपाई की, मस्जिद पर निशान लगाए, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया जा सकता है।
2: वाराणसी के दालमंडी में जो मस्जिदें हैं, 6 मस्जिदें, उनकी नापी भी हुई है, जिसको लेकर एक बार और यहां लोगों में कौतूहल मच गया है। और ये दावा किया जा रहा है कि जून माह के अंत तक डिसमेंटलिंग का काम, ध्वस्तीकरण का काम वाराणसी के दालमंडी में पूर्ण हो जाएगा।
0: हालांकि प्रशासन के अधिकारी अभी ये बताने को तैयार नहीं है कि मस्जिद के कितने हिस्से पर एक्शन होगा, चौड़ीकरण में मस्जिद का कितना हिस्सा ध्वस्त होगा,
2: अभी कितने भवन और बाकी हैं, बचे हैं जिनको पूरा कर लिया जाएगा।
3: 181 भी घर थे, 140 के करीब पहुंच गए, 40 हैं।
2: ये बताइए कि जो इसमें सेंसिटिव प्लेस हैं, प्रार्थना स्थल हैं, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी है?
3: उस बारे में अभी हम नहीं बता पाएंगे कुछ।
2: उसकी नापी भी आज हुई है? नापी हुई है, उसका कुछ मेजरमेंट वगैरह हुआ है ताकि कितने भाग इससे
3: संज्ञान में नहीं है अभी नापी।
2: आप पिछली बार बता रहे थे कि कुछ पूरी तरह से हट जाएंगे, कुछ आंशिक रूप से।
3: नहीं, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि नापी हुई है कि नहीं।
0: वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, हालात ना बिगड़े इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। दाल मंडी इलाके में कार्रवाई के बीच वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब इसी सिलसिले में रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास मौजूद गंज शहीदा मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया है।
2: उत्तर रेलवे की तरफ से यहाँ पे नोटिस चस्पा की गई है, तो वहीं एक दावा और भी किया जा रहा है कि ये जो जमीन जिस पर ये मस्जिद बनी हुई है, ये रेलवे के आने के पहले, यहाँ तक कि भारत में रेलवे के आने के पहले से यहाँ मस्जिद बन चुकी थी। 1034 सन में यहाँ पर ये इस मस्जिद का निर्माण हो चुका था, जब भारत में रेलवे भी नहीं थी और यहाँ नज़दीक जो राजघाट पुल है, मालवी पुल है, वे भी नहीं बना था। तो अब यहाँ पर इस मस्जिद को लेकर यहाँ पर काफ़ी वाफों की स्थिति मची हुई है।
0: मस्जिद कमेटी इस फैसले का विरोध कर रही है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। मस्जिद कमेटी को 20 जून तक कैंपस खाली करने का निर्देश है। कमेटी के सदस्य इसे गलत बता रहे हैं। साफ है कि वाराणसी के कई इलाके में प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लेकिन अब 6 मस्जिदें भी इसके दायरे में आने से तनाव की स्थिति बनी हुई है।
4: अयोध्या में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
5: राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर, आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिनगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वाला की बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, उनका अपना एक अमर इतिहास है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने इस पूरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस कहरता के साथ क्रांतिकारियों के और भारत के युवाओं को दबाने का कुत्सित प्रयास किया था, उसे भारत का युवा उससे दबने वाला नहीं था, उसके लिए तो देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। वो देश की आजादी के लिए उसने कहीं चोरी गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना को अंजाम दिया, कहीं पर लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया। और जब भी देश के अंदर आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आह्वान किया, भारत का नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग लेता था।
6: तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand and you won't lose your fingers. Over 1,000 games including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
10: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
3: Oh, yeah.
2: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: वजह सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20 से 30 फीसदी कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहाँ सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है।

इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट। हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का 5 दिनों की पाबंदी हटाने से इंकार। केंद्र का फैसला सही करार दिया गया, बोली अदालत सरकार को है अधिकार। ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान का जिनेवा जाने से इंकार। लेबनन पर इजरायली हमलों को लेकर है नाराज, जेडी वेंस का दौरा भी स्थगित।

0: रियल डायलॉग, ये लगातार आप कॉन्क्लेव आज तक पर देख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा देश विदेश के लोगों से इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो डील, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, उससे क्या हासिल होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जल्दी से आपका परिचय उनसे करा देते हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी, जो कि प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ कोम ईरान से जुड़ रहे हैं सीधा। हमारे साथ प्रमित मकोड़ है, प्रेसिडेंट है ग्लोबल सिटीजंस फॉर फोरम यूएसए के, वो जुड़ रहे हैं सीधा न्यूयॉर्क से। लॉर्ड रैमी रेंजर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अन्य मेहमान भी, और हमारे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सैयद जमीर अब्बास जाफरी जी, आपके पास आते हुए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको ईरान में किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की जनता, ईरान के लोग क्या इस एमओयू पर भरोसा करने को तैयार दिख रहे हैं, और ये किसका पलड़ा भारी आपको इसमें दिख रहा है?
1: जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका जो हदफ और गोल लेके आया था इस वॉर में, तकरीबन उसने सरेंडर कर दिया है, और ना रेजीम चेंज हुआ और $300 बिलियन भी दे रहा है, और उसके बाद जो उनके तमाम क्लेम्स थे वो तमाम क्लेम्स उनके हट गए। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो ये भी अग्री कर रहा है कि ईरान के सराउंडिंग एरिया से वो अपने तमाम बेसिस को और मिलिट्री लोकेशंस को भी हटा देगा। तो ईरान के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि दुनिया का सुपर पावर घुटने पर आ गया है, और जिस तरीके से रहबर शहीद ने कहा था कि हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, इन्हें घुटनों पर ले आए हैं। ईरान की पब्लिक इसको कैसा देखती है? ईरान को पता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों धोखेबाज हैं। 2015 में अग्रीमेंट साइन किया था, 2018 में फाड़ दिया, दो बार ड्यूरिंग नेगोशिएशंस ईरान पर हमला किया है, तो बिल्कुल शक की निगाह से देखते हैं। कोई यकीन और भरोसा ना अमेरिका पे है ना इसराइल पे है। इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने 40,000 बच्चों को गाजा में मार दिया, और फलस्तीन और लुबनान के अंदर कंटिन्यूस वो जेनेसाइड करता है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके प्राइम मिनिस्टर को आईसीसी ने अरेस्ट वारंट दिया है, उस मुल्क के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो ईरान की पब्लिक के लिए ये कि हमने अपने हक के लिए खड़े रहे, लड़े, झुके नहीं, इसमें ईरान की पब्लिक खुश है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान की पब्लिक में भरोसा नहीं है ना अमेरिका पे ना इसराइल पे। लेकिन ईरान की पब्लिक को ये पता है कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ एक जबान समझते हैं, ना इंग्लिश ना फारसी, वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। उन्हें ताकत की जबान से ही समझाया जा सकता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पर्शियन में लिखे हुए एग्रीमेंट को साइन किया है। ये भी ईरान की कुव्वत और कुदरत की निशानी।
0: ठीक है, जवाब दीजिए इसका प्रमित मकोड़े जी। तीन बड़ी बातें जो वो कह रहे हैं, घुटनों पर आ गया है अमेरिका, ईरान ने जब मिसाइल की भाषा बोली तब जाकर अमेरिका को समझ में आया ताकत की भाषा से, और वो कह रहे हैं पर्शियन में लिखे हुए डील पर आखिर उनको हस्ताक्षर करना पड़ा है। प्रमित जी,
2: साइन किया तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, और दूसरा पर सबसे वेलकमिंग है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 60 डेज द वर्ल्ड विल सी सम काइंड ऑफ पीसफुल नेगोशिएशन और सम पीस, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, उससे वेस्ट एशिया और भारत और अन्य देशों में जो इन्फ्लेशन की जो मार पड़ी हुई है उसमें कुछ राहत मिलेगी। दैट इज द बेस्ट न्यूज आउट ऑफ दिस लास्ट 3 डेज ऑफ डेवलपमेंट। पर मेन चीज है कि अमेरिका हैज शोन द वर्ल्ड इट्स मिलिट्री डोमिनेंस, इट्स डॉलर डोमिनेंस एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस, तीनों में ही अमेरिका ने एक अपना प्रभुत्व दुनिया को दिखाया। जैसे मैडम ये कहते हैं कि इनकी मिलिट्री को ऑलमोस्ट 80-90% ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, इनके ऑलमोस्ट 40-50 टॉप के सेना के लीडर्स यानी मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हैज बीन एलिमिनेटेड। किसी की मौत पे हमको खुशी नहीं होती है, पर अब अगर आप जिहादी फंडामेंटलिस्ट रिजीम को सपोर्ट करें तो उनका इस दुनिया से जाना ही शायद उचित है। उसके बाद अमेरिका का न कोई पॉलिटिकल लीडर न कोई मिलिट्री लीडर, और अमेरिका की मेनलैंड में इनका एक ड्रोन भी नहीं पड़ा, और हमारे कम से कम 15,000 फाइटर जेट्स के प्लेन्स के जो फ्लाइट्स उनके ऊपर से गई है और 15,000 से ज्यादा उनके अटैक हुए हैं। ये तो अमेरिका की मिलिट्री की एक तरह से एक जिसको कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री के तहत हमने केवल उनके एस्टेब्लिशमेंट पे मोस्टली अटैक किए, जिसकी वजह से उनकी
0: आवाम को, सामान्य जनता को बहुत ज्यादा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपकी सरकार ने, मतलब आपकी नहीं, आप दोनों इंडियन हैं, एक ईरान में रहता है एक अमेरिका है, अमेरिका में रहता है, लेकिन आप हैं भारतीय, हम यही मानकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए प्रमित जी, तीन बातें। सबसे पहले क्या कहा गया कि भाई वहां पर जनता विद्रोह करना चाहती है, इसलिए हम उनके समर्थन में उतरे, उनका साथ नहीं मिला, वो और भी रिजिम की तरफ चले गए, जो कुछ एंटी लोग थे वो भी एक तरफ चले गए। फिर कहा गया कि भाई वहां पर जो रिजिम चेंज है वो करना जरूरी है, कट्टर रिजिम चेंज, हुआ नहीं। मिसाइल पार खत्म करना है, हुआ नहीं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करनी है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो किया क्या? $300 बिलियन देने के लिए गए थे युद्ध करने, या फिर हॉर्मूज को बंद करवा के खुलवाने के लिए गए थे? कुछ तो मतलब एक एक समझ में आना चाहिए ना प्रमित जी की एंड गोल था क्या?
2: आपने जो प्रश्न पूछा, नहीं देखिए, एंड गोल सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें राष्ट्रपति, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती थी कि कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन ईरान इज मोस्ट डेस्ट्रीमेंटल फॉर अमेरिका। उसमें IAEA से लेके तमाम लोगों ने कोशिश की, इन ईरानियों ने उनको काफी तरह से मूर्ख बनाया गया हर तरीके से, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टेकन अ फर्म स्टैंड और उनकी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को बुरी तरह से आगाह किया गया है। और इसमें भी एक सबसे मेन एजेंडा पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर वॉरहेड्स किसी भी प्रकार से उनको प्रोक्योर भी नहीं करने दिए जाएंगे ना बिल्ड करने दिए जाएंगे। इस पे अमेरिका किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेगा, वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लाइन रहेगी। और उस पे काफी हद तक इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और कुछ हद तक IRGC लीडरशिप भी मान गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है और उनको पता है कि अगर इस मुद्दे पे अगर वो अड़े रहे तो उसकी हालत बहुत और बुरी होगी। इसलिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, और ये केवल अमेरिका के लिए जीत नहीं मैडम, देर इज नो कैपेबिलिटी ऑफ ईरान टू हिट अमेरिकन मेनलैंड। ये हमारे आसपास के जो मुस्लिम देश है वो उनसे परेशान थे। और कई बार तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान को भी एक धन्यवाद करना चाहिए कि इस्लामिक फंडामेंटली जिहादी रजीम विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर एंड वॉरहेड्स फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years एटलीस्ट। उसके लिए पूरी दुनिया को इनको धन्यवाद देना चाहिए, अमेरिका को।
0: दैट इज वन पार्ट। सेकंड, $300 बिलियन
2: की जो बात की, $300 बिलियन बात की, उसमें मैं कहना चाहूंगा $300 बिलियन इज नॉट अ फ्री चेक टू ईरान, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट। और ये बहुत बड़ी जीत है अमेरिका की, बिकॉज अब पहले जो $400 बिलियन चाइना खर्च करने वाला था ईरान को रिबिल्ड करने के लिए, अब अमेरिका के फ्रेंड्स, अमेरिका के एलाइज और अमेरिका के सहयोगी उसमें $300 बिलियन खर्च करेंगे। तो आप देखेंगे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान के रीस्ट्रक्चरिंग और रीबिल्डिंग आर्किटेक्चर में अमेरिका का होगा। दैट्स अ ह्यूज विन। और तीसरी बात जो है, डॉलर में ये पूरा जो कारोबार होगा डॉलर में होगा। चाइना, ब्रिक्स और पूरे जो चाइना के आसपास के एक्सेस की जो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी कि डॉलर को डी डॉलराइज किया जाए और अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जाए, वो बात भी अब खत्म हो जाएगी। तो देर इज अ ह्यूज विन विच इज इनडायरेक्टली इंप्लाइड इन दिस होल MOU एंड दिस फोर मंथ ऑफ वॉर।
0: लॉर्ड रामी रेंजर,
2: एक बहुत बड़ी जीत है।
0: लॉर्ड रामी रेंजर, आप इसको कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं वापस जाऊंगी प्रोफेसर साहब के पास जवाब लेने। लॉर्ड रामी रेंजर,
3: सबको लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? Iran could have done this without the war, without the loss, without the damage it caused, and without losing its religious leaders. The world was asking them to open up, demonstrate that you don't have any nuclear capability. Unhone in the end itni maar kha ke wahi kaam kiya jo they could have done it beforehand, and itna, aur abhi main ek aur warning de raha hu Iran ko. Iran has made the surrounding countries very, very smart. Unko pata lag gaya hai ki humne Strait of Hormuz ko bhi neutralize karna hai, humne pipeline lagani hai. Unhone ye bhi pata lag gaya ki humne army defense system bhi tayar karna hai ki Iran is an unpredictable neighbor. Wo kisi dimag uska phir sakta hai. America was fighting from their ships. They were fighting in their home. Dekho kitni bewakoofi ki baat hai. Aapke ghar mein ghus ke बम मारे हैं और अमेरिका 5,000 माइल दूर है। तो ये मैं जो ईरान के लीडरशिप है उनको मैं अपील करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ए कंट्री इज पीपल। जो कंट्री अपने लोगों को दबा के रखती है आइदर विद रिलीजन और विद स्टेट, वो कभी डेवलप नहीं हो सकते, कभी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल इनोवेशन आ नहीं सकती। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्कॉलर्स 24/7 hated on religion. So इसलिए जो लोगों को दबा के रखते हैं, जैसे रशिया है, ईरान है, people should have a free to choose their government, free to choose their leader, and free to run their country, जैसे इंडिया है, the most diverse country in the world, आज तक कभी कू नहीं हुआ, कभी किसी लीडर ने वहां कुर्सी को जबरदस्ती नहीं बैठे, किसी लोगों को मारा नहीं उन्होंने। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, without एनी प्रॉब्लम, ईरान में क्या हाल हो रहा है, गरीब बच्चों को मार रहे जो सिर कवर नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री आर वी कि सिर लड़की ने सिर का कवर के उसको मार दिया। लोगों को, पीपल वॉन्ट टू मूव, दे डोंट वॉन्ट टू लिव इन द सेवन सेंचुरी अरेबिया, दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। यू हैव नो चॉइस, देर इज ए कंपिटिशन। आप अपने बच्चों को, अपने सिटीजन को स्ट्रेट जैकेट में डाल दोगे, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनसे दवाई आप लोगे, उनसे आईफोन आप उनसे लेंगे, कारें उनसे लोगे, हवाई जहाज उनसे लोगे, टेलीफोन उनसे लोगे, तेल कितनी देर तक चलेगा? कोई होश करो यार, ईरान के लीडर को होश कराओ, उनको बोलो लिबरेट योर कंट्री, लेट पीपल डेवलप लाइक द पीपल डेवलप इन इंडिया।
0: ठीक है,
3: नंबर वन फार्मास्यूटिकल, नंबर वन आईटी, फिल्म इंडस्ट्री नंबर वन। देखो अभी सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, चांद पे वो पहुंच गए, मार्स पे वो पहुंच गए, एयरक्राफ्ट कैरियर वो बना रहे हैं, टैंक वो बना रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन प्लेन वो बना रहे हैं। ये कुछ एक कंट्री अच्छी को जिसके पास तेल नहीं है, आपके पास तो तेल है। उसी ने, मैं कभी कहता हूँ 600 साल मुगलों ने राज किया, ना वुमेन एम्पावरमेंट की, ना कभी उन्होंने एजुकेशन पे पैसा लगाया।
0: ठीक है,
3: धर्म परिवर्तन, मंदिर तोड़ो, आग लगा दी, लाइब्रेरी, क्या मिला आपको? उसके बाद कंट्री तोड़नी पड़ी फॉर प्रोटेक्शन टू हैव पाकिस्तान। दिस इज दिमाग चेंज टेस्ट करने वाला है। जे हम यूके में आके हम कामयाब कैसे हुए कि हमने उनसे ज्यादा मेहनत की, हम उनके साथ मिलके उनके इंटीग्रेट हुए।
0: बिल्कुल
3: जो
0: बिल्कुल। और भारतीय
3: कंट्री
0: जहां भी रहते हैं लॉर्ड साहब, भारतीय जहां भी रहते
3: ना
0: हैं वो अपनी
3: अंजना जी, देखो
0: हाँ
3: हमें
0: पहचान
3: भगवान
0: बनाते हैं।
3: ने सनातनी सिविलाइजेशन अकल दे रखी है कि जहां जाते हो जिस देश की वैल्यू सिस्टम से वो देश आगे कर रहे हैं, आप उस वैल्यू को लेते नहीं। यूके में
0: ठीक है
3: आके भी मैं वैल्यू ना लू तो मेरे को कौन इंटेलिजेंट करेगा?
0: जी,
3: मैं देखो, मैं यूके में रहता हूँ, मुझे क्वीन ने 8 दफा ऑनर किया है, पार्लियामेंट में रहता हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ कंधे से कंधा लगा के आगे चलने की कसम खाई है। मैं अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करता कि मैंने वही करना जो मैं अपने गांव में करता था। वो दुनिया मूव कर रही है, आप मूव नहीं करोगे तो क्या होगा? ये सारी दुनिया
0: बिल्कुल
3: में
0: ठीक है। वैलिड
3: छोटा सा
0: पॉइंट
3: एक
0: है, वैलिड पॉइंट
3: छोटा
0: है। हमारे साथ प्रोफेसर
3: सा
0: दाऊदी भी जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, मिडिल ईस्ट। ठीक है, हाँ बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए लॉर्ड साहब।
3: ये छोटा सा इजराइल है, 6-7 कंट्रियों को उसने आगे लगा रखे है, टेक्नोलॉजी में नंबर वन है। अरे उनको तबाह क्यों करते हो? उनसे कुछ सीखो, उनसे जाके उनके स्कूलों में जाओ, उनके कॉलेजों में जाओ, उनकी यूनिवर्सिटी में जाओ, उनकी शॉपिंग करो, उनके मेडिकल डॉक्टरों को जाओ। तबाह करना, हमने तबाह करके क्या, ये तबाह वाली जो साइकी है ना, इसको निकालो दिमाग से। हमारे कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, हमने सबके साथ हमारा सब भाई बहनों की तरह रहना है, ऐसे रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन जे लीडर जो लोगों को कंट्रोल करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, दे शुड लिबरेट दोस्ट तो दे कैन ऑल्सो बिकम नोबेल पीस विनर।
0: जी
3: टू
0: बिल्कुल
3: हंड्रेड
0: बिल्कुल
3: ट्वेंटी फोर नोबेल प्राइज बाई इसराइल, 224,
0: जी
3: 10 मिलियन
0: जी
3: पॉपुलेशन,
0: जी
3: 2 बिलियन पीपल, 4-5, क्या यार, देखो ये है हमारे, दिस इज हाउ वी कंट्रीब्यूट द वर्ल्ड टू गो फॉरवर्ड, बाई कीपिंग पीपल, ब्रेकें लगा
0: ठीक है
3: कर
0: लॉर्ड
3: पीपल
0: साहब।
3: को।
0: एक बार प्रोफेसर साहब को रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, क्योंकि आपने इतनी बातें कही हैं। प्रोफेसर जाफरी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, फिर मैं, प्रोफेसर दाऊदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, सऊदी अरेबिया से सऊदी अरब जाएंगे, और प्रणय उपाध्याय और रोहित को दिखा, दोनों हमारे साथ हैं। जल्दी से प्रोफेसर जाफरी।
1: मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं खुद लंदन में रहा हूँ तकरीबन 10 साल, और मुझे बहुत अफसोस है कि वो कंट्री जिसने हमारे हिंदुस्तान के 3 मिलियन लोगों को जब मार दिया था बंगाल फेमाइन में, 30 लाख लोग मर गए थे, और जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया था तो उसने कहा था लेट देम डाई लाइक रैट्स, उन्हें चूहों की तरह मरने दो। तो वो कंट्री जिसने हमारे मुल्क को, जहां पर हम पूरी दुनिया की 23% इकोनॉमी थे, जब वो गए इस मुल्क से तो उन्होंने 3% इकोनॉमी छोड़ दिया हमारे मुल्क को, जो कंट्री ने लूट कर ले गया, जो कंट्री ने हमारे मुल्क को दो टुकड़ों में बांट दिया, उस कंट्री की वाह वाह कर रहे हैं, मुझे काफी ताज्जुब हो रहा है। तो मैं तो हमने तो कभी ना ब्रिटिश की गुलामी की है और ना कभी ब्रिटिश की गुलामी करेंगे, हम जहां जाते हैं भारतीय बन के रहते हैं, उनके सिस्टम के गुलाम बन के नहीं रहते। दूसरी चीज, अमेरिका, इसराइल बहुत प्रोग्रेसिव है और इसराइल ने बहुत तरक्की कर दी, और अरब देश, दोनों कह रहे हैं आप, अरब देशों ने तरक्की की है। तो मैं आपको कहूंगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के आप स्टैट्स उठा लें, इरानियन वुमन और ब्रिटिश वुमन, जो आपके आपके ब्रिटिश और यूरोपियन वुमन है उनको कंपेयर कर लें, ईरानियन वुमन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आपकी ब्रिटिश औरतों से भी बहुत आगे हैं। तीसरी चीज ये है कि आप ईरान को पहले आके पढ़ें, ईरान को समझें, ईरान के बारे में जानें। सिर्फ चार वेस्टर्न न्यूज देख के आपको लगता है आप ईरान को जानते हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब जहां तक ईरान के एजुकेशन सिस्टम की बात है तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये साबित हो गया है
0: ठीक
1: इस वॉर के अंदर कि ईरान ने क्या किया है।
0: ठीक
1: एक
0: है,
1: और चीज
0: इस
1: लास्ट
0: युद्ध
1: में
0: के
1: इसके
0: दौरान,
1: इजराइल
0: हाँ
1: के
0: ठीक
1: बारे
0: है,
1: में,
0: बोले
1: एक
0: बोले
1: थर्टी सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दें, जहां पर ये कह रहे हैं कि इसराइल से सीखना चाहिए। तो आप पहले तो ये देखिए कि हम भारतीय हैं, 1948 में इसराइल बना, पैलेस्टाइन की जमीन पे कब्जा करके बना, और तब से लेके अब तक 122 मैसेकर्स कर चुका है। वो कंट्री जो मैसेकर्स की बुनियाद पे बनी हुई हो और 77% किसी और कंट्री की लैंड पे कब्जा किया हो, मुझे शर्म आती है कि कोई भारतीय कहता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। भारतीय वो कंट्री है जिसने हमेशा से कोलोनियलिज्म का मुकाबला किया, कभी जेनेसाइड को सपोर्ट नहीं किया। हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं,
0: ठीक
1: इसराइल
0: है,
1: के मानने वाले नहीं है।
0: हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं। आप ईरान में हैं, आप ईरान के लिए बोल रहे हैं, वो लंदन में है, मुझे लगता है उन्होंने लंदन या इंग्लैंड को डिफेंड किया। वो ये कह रहे हैं कि सबको ये सोचना चाहिए कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है अंत में। और प्रमित जी भाई,
1: जी, युद्ध
0: यूएस में रहते हैं तो वो ट्रंप
1: शुरू
0: जी के
1: करता है
0: हाँ में
1: उसे
0: हाँ
1: पता होना
0: मिलाते हैं,
1: चाहिए,
0: तो
1: डेमोक्रेटिक।
0: सबकी अपनी अपनी है। बस इंडियन बन के हम सब सोचें, अपने अपने काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोफेसर दाऊदी के पास जाऊं, जल्दी से प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा इन दोनों को दिखा दीजिए। प्रणय जिनीवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने ये पूरा कवर किया G7 समिट, जिसमें भारत और अमेरिका मतलब दोनों की जो बायलैटरल हुई उस पर भी नजर रहा, लेकिन इस MOU को लेकर क्या चर्चा है? इस MOU में किसका पलड़ा फिलहाल भारी दिखता है? सवाल मुश्किल है, सब कोई अपने अपने चश्मे से इस MOU को असेस कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या चर्चा थी? प्रणय
4: देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो इस बात को लेकर थी कि किस तरीके से ये जंग जो चल रही है इसे
0: रुक
4: खत्म
0: जाए,
4: किया जाए। चाहे इसके समाधान का कोई भी रास्ता निकले, किसी भी तरीके से निकले, उसको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसके दुष्प्रभाव को झेल रही थी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 100 दिन से ज्यादा वक्त से बंद था, इसके अलावा ऊर्जा का संकट दुनिया के तमाम देश महसूस कर रहे थे, जिसके अंदर जापान जो कि G7 का सदस्य था वो भी मौजूद था, उसके वहां भी ऊर्जा का संकट है, और भारत जो कि दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसके सामने भी जो संकट है इस चीज का संकट है। तो ये जो एक ऐसी चीज है, ये पूरी G7 की शिखर बैठक के ऊपर ये एक मुद्दा हावी था, और ये दुनिया ने राहत की सांस ली कि वर्साइल के पैलेस के अंदर अगर ये समझौता हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 के शिखर बैठक के आने से पहले उन्होंने इस बात का आश्वासन दे दिया कि ये डील हो चुकी है, और उनके यहां से वापस लौटने से पहले उस पर दस्तखत हो गए। तो निश्चित रूप से इसे एक बड़ी कामयाबी, खासतौर पर G7 समूह के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि फ्रांस की मेजबानी के अंदर ये समझौता हुआ। लेकिन जहां तक इसमें नफे नुकसान का मामला है, कौन जीता कौन हारा, किसको कितना ज्यादा बढ़त मिली, देखिए समझौता तो JCPOA का भी हुआ था 2015 में, लेकिन 2016 में आके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खराब समझौता बताते हुए अमेरिका को उससे विड्रॉ कर लिया, और वो जो सारा कुछ जो प्रोसेस रही होगी, जो गेन्स हुए होंगे, वो सारे पानी के अंदर बह गए। अब ये जो नया समझौता हुआ है, इसका भी जो असली मूल्यांकन है वो जमीनी एक्शंस के आधार पर होगा, यानी ये कितना लागू हो पाता है, यानी अगले 60 दिनों के अंदर क्या ठोस समझौता हो पाएगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किस स्वरूप के अंदर खुलेगा। और खास तौर पर इस पूरे युद्ध के बाद में एक चीज तो तय है अंजना और तमाम जानकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि इस करीब 100 दिन के तनाव ने इस क्षेत्रफल को और इस पूरे इलाके को इस तरीके से बदल दिया है कि अब हम किसी भी हालात भी तरह से हम 27 फरवरी 2028 2026 की स्थिति में नहीं लौट रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यानी
0: बहुत टाइम
4: चीजें
0: लगेगा,
4: बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकेंगी।
0: सप्लाई चेन्स को फिर से बहाल करने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। रोहित, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये जो MOU में एक शर्त है जिसमें ये कहा गया कि 30 दिनों में नाकेबंदी यूएस नेवी हटाएगी, यूएस नेवल ब्लॉकेड। अब ईरान से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका दावा है कि यूएस ने 3 दिन के अंदर ही ये नेवल ब्लॉकेड हटा लिया है। तो पहले तो इस खबर को आप वेरीफाई करें, और इसी के साथ साथ अमेरिका में क्या चर्चा है? क्या वहां पर इस MOU का क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि हॉर्मूज पहले खुला था, अब खुलने के लिए ईरान माना है, हासिल क्या हुआ? आप पहले जो स्थिति थी वहां से अब आप $300 बिलियन देने की बात कर रहे हैं। ईरान पहले भी मतलब ये कह ही रहा था कि हम न्यूक्लियर पार नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना रहे हैं, वो अब भी यही कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे। हस्ताक्षर पर कितना भरोसा? तो दोनों तरीके से अमेरिका में कैसे इसे देखा जा रहा है?
5: देखिए, पहली चीज ये कि 30 डेज की जो आपने बात की है जना, वो अगेन वो एमओयू में लिखा गया था कि 30 दिन के भीतर भीतर अमेरिका जो है अपना ब्लॉकेट वहां से हटा देगा। ये खबरें यहां पे भी आई है कि अमेरिका ने चीजें हटा ली है। देखना होगा, जब तक ऑफिशियली अमेरिका नहीं कहता कि उन्होंने ब्लॉकेट हटा दिया है, हमें मानना चाहिए कि उसमें शायद वहां पे कुछ ना कुछ बचा हो या कोई प्रक्रिया बची हो अमेरिका की जो अमेरिका ने डिप्लॉय की होगी। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात जो आप कह रही है जना, देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा है इस डील का, काफी रिपब्लिकन सेनेटर्स जो है वो भी सवाल लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि हासिल क्या हुआ। जो जेसीपीओ था जिसका जिक्र प्रणय ने भी किया, वो उस डील में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस एमओयू में भी लिखी गई है और जो आने वाले समय में, अगेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमओयू में एक बात लिखी गई है कि अगले 60 दिन में निगोशिएशन होगी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, उस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं सवाल लग रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम जो बात कर रहे हैं, काफी लोगों का ये भी कहना है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही था फरवरी से पहले, तो आपने इस एमओयू में ऐसी कोई चीज बड़ी चीज नहीं कि आपने युद्ध किया और उसके बाद फंसा दिया मामला, जियोग्राफिकली ईरान को एक और एडवांटेज दे दिया हमेशा के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए। तो क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और काफी रिपब्लिकन का ऐसा मानना है कि ईरान पे भरोसा नहीं किया जा सकता था जेसीपीओके के अंदर, और अब जब जो अगले 60 दिनों में जो निगोशिएट करके एक प्रॉपर डील बनेगी उसमें गारंटीज दी जाएगी, प्रॉपर गारंटीज ली जाएगी ईरान से कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना कर पाए। इनफैक्ट यहां तक की भी बात की गई है कि अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल दे सकता है ईरान को अगर उन्हें सिविल यूज के लिए यूरेनियम चाहिए। तो हमें देखना होगा। और जहां तक $300 बिलियन की बात है अंजना, मैं इस बात से जरूर अग्री करता हूं कि कोशिश ये की जाएगी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि ईरान को जो चाइना का करीबी माना जाता है उसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसे वेस्ट के साथ जोड़ा जाए, वहां पे डेवलपमेंट की जाए और ऐसा अगेन कोशिश की जाए। होगा नहीं होगा, ओनली फ्यूचर विल टेल। तो आई थिंक उसे इस तरह से सेल किया जा रहा है कि हम $300 बिलियन जो है उसे अनफ्रीज करके वी विल रिलीज दोज फंड्स अगर ईरान ए बी सी और डी करता है। तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है
0: ठीक
5: इस
0: है।
5: एमओयू
0: एक
5: का।
0: छोटा सा सवाल है, एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा, जिसके बाद मैं प्रोफेसर दाऊदी के पास जाऊंगी, कि ये क्रिटिसिज्म की बात अपनी जगह पर है, लेकिन नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि लेबनान वाला भी एक एक शर्त इसमें है कि लेबनान पर अब हमले नहीं होंगे, क्या अब नेतन्याहू की इतनी चलेगी कि वो सुने ही ना, वो लगातार अटैक करते रहें और डील तोड़वा दें, ऐसी स्थिति बन सकती है, या अब वो प्यार मोहब्बत की बातें पुरानी हो गई हैं, क्योंकि ट्रम्प तो अब उनको भी खरी खोटी सुनाने ही लगे हैं रोहित?
5: देखिए, इसराइल के साथ अमेरिका का रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि अभी इस फिलहाल अभी इस समय अंजना ये डील बहुत महत्वपूर्ण थी, ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ये वॉर को रुकवाना चाहते थे। तो उन्होंने दबाव जरूर डाला है नेतन्याहू के ऊपर कि वो जो हॉस्टिलिटीज है उनको रोक दे, लेकिन आने वाले समय में स्पेशली मुझे लगता है कि अगर ये डील सही तरीके से नहीं जाती है तो मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू सुनेंगे किसी के। अगर इसराइल अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अगर वो कुछ करना चाहेगा तो वो जरूर करेगा, और हमने देखा भी था पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक वॉलेटाइल रहेगा इसराइल का रुख कि किस तरह से उस डील को देखता है। और साथ ही साथ बिफोर आई रैप अप, एक और चीज अंजना, अभी फिलहाल मिड टर्म्स का दबाव भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इसलिए ये डील बहुत जरूरी थी उनके लिए।
0: एक एक
5: नवंबर के
0: उधर
5: बाद अगले साल
0: नेतन्याहू पर
5: शायद
0: भी तो
5: बदल
0: दबाव
5: सकता है।
0: है, बिल्कुल, एक नेतन्याहू पर भी तो दबाव है, उनको भी तो इलेक्शन फेस करना है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन देखना होगा, फिलहाल अगेन यू नो स्टेप बाय स्टेप अंजना, फर्स्ट स्टेप की पहले जेडी वैन जो है जिनेवा जाने वाले थे ऐसा हमें बताया गया था, अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो पता चलेगा वो जेनेवा जा रहे हैं किस रूप में जा रहे हैं। और उसके बाद आई थिंक ये 60 डेज का पीरियड जिसमें ये डील निगोशिएट होगी, और ईरान को जैसे कि मैंने कहा ईरान को गोल्स टास्क दिए जाने वाले हैं कि आप
0: ठीक
5: ए बी सी और डी करिए तो हम इस जो है डील को आगे तक लेके
0: प्रोफेसर
5: जाएंगे और फिर
0: दाऊदी,
5: वो डील
0: बिल्कुल बिल्कुल,
5: कंफर्म होगी।
0: थैंक यू प्रोफेसर दाऊदी। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट के देशों को ही मुश्किल आने वाली है, क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने जो भी मिसाइल विसाइल के हमले हुए, ड्रोन से अटैक हुआ, उन्होंने झेला, रमजान के महीने में झेला, और ये देखिए क्लॉज नंबर 6 जो खुद मसूद पेजेश्कियान, राष्ट्रपति ईरान, ने पोस्ट किया है एमओयू का, उसको मैं पढ़ रही हूं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स टू डेवलप अ डेफिनेटिव म्यूचुअली अग्रीड प्लान विथ एटलीस्ट US dollars 300 billion फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईरान। मतलब ऐसा लगता है कि खाड़ी के ही देशों को पैसा देना पड़ेगा ईरान को, तो पहले तो बम भी खाए, अब पैसा भी देना पड़ेगा।
6: जी, मैं शुरू से आपने ये डेवलपमेंट की बात कही है, और मैं शुरू से कहता रहा था कि डायलॉग डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन 3 डीज, उसमें एक और डी ऐड हुआ डील, और उसमें एक आपने अभी ऐड कर दिया वो डेवलपमेंट। और उसमें अब अगर 5 डीज के स्कोर जहन में रखते हुए अगर बात करते हैं तो इसका पैसा कौन देगा, क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रही है बात, के ये एक राहत की बात है इस पूरे इलाके के लिए। जो आपने थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि अगर एक भारतीय होने के नाते हम बात करें या एक इंसानियत के नाते अगर बात करें, तो अगर ये युद्ध कहीं से भी, जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी पूरी तरीके से छाई हुई थी, कल परसों तक भी लग रहा था कि क्या ये 112वें दिन जाके इस पे डील पे कोई सील लगेगी या नहीं, लेकिन अगर कम से कम ये बात आई है कि हॉर्मोज जो पहले खुला था और अगर दोबारा खुल जाता है, या फिर अगर ये तमाम चीजें जो रीजनल एस्केलेशन दोबारा से शांति की तरफ बढ़ता है, और इस पूरे मिडिल ईस्ट में खासतौर से सप्लाई चेन और जो ऑयल एनर्जी और एक अशांति का माहौल, और लेबनान की बात करें या ईरान या पूरे इलाके की बात करें, उससे अगर कहीं ना कहीं 60 दिन के लिए अगर और भी ज्यादा शांति की बातें होती हैं और थोड़ा आगे जाके चीजें और बेहतर होती है और डेवलपमेंट की बात होती है, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली होगी। वो इसलिए कि ये पूरा रीजन जीसीसी में, अगर मैं सऊदी अरब
0: जी
6: की बात करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट की ही बात होती है, यहाँ पे प्रोग्रेस की ही बात होती है, यहाँ पे विजन की ही बात होती है। विजन 2030 के बारे में आप जानती होंगी और हम सब ये जानते हैं, हम सब भारतीय भी यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वजह से एक बड़ा रोल प्ले होता है कि पूरी दुनिया आकर्षित होती है आज सऊदी अरब की तरफ। और एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से यहाँ पे एक पीस लविंग कंट्री होने के नाते इतने सारे मसले मसाइल आए, अभी आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो रिटेलिएशन होता है एक पेशेंस के जरिए, एक सब्र के जरिए, कि कैसे भी डीएस्केलेट हो, कैसे भी ये मामला बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, और उस विजन का हिस्सा था कि हम किसी भी तरीके से विनाशकारी किसी भी चीज में हिस्सेदार नहीं बने, बल्कि दुनिया में अगर शांति आए, दुनिया में अगर प्रोग्रेस आए, दुनिया में अगर डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसके हम हिस्सा बनेंगे और बने रहेंगे आने वाले दिनों में। देखें, अभी मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि चीजें और बेहतर हो, मैं चाहता भी हूं कि चीजें और बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी जो हमारे एक और हमारे पैनलिस्ट एक जिक्र कर रहे थे इसराइल का, खास तौर से मैं आपको बताऊं कि उनका पूरा राइट है कि वो इसराइल की पूरी तारीफ करें, हमें हम सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन अगर इंसानियत की हम बात करें तो हम 7 अक्टूबर की चीजों को बहुत बुरी तरीके से कहते हैं ना, उससे दिल दुखा और उससे हम चाहते हैं कि उसको कंडेम करें स्ट्रांगली, लेकिन इसराइल ने जिस तरीके से गाजा को पूरा साफ किया, जिस तरह से मैसेकर किया, जिस तरीके से जाने ली, जिस तरीके से तमाम चीजें गई, तो हम बैलेंस बात अगर करें कि जान अगर उधर गई और जान इधर मासूम बच्चों की भी अगर गई, लेबनान में जो जाने जा रही है, पूरी दुनिया में जो जान जाने का सिलसिला है, अगर वो रुकता है, और कहीं ना कहीं अगर इसराइल, जो अभी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी कुछ चीजें बिगड़ती नजर आई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, अगर ये चीजें बरकरार रही और कहीं बीच में डीरेलमेंट की कोशिश हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डीरेलमेंट नहीं करके, डीरेल
0: ठीक
6: नहीं
0: ठीक
6: करके,
0: जी
6: बल्कि
0: ठीक है,
6: इसकी
0: चलिए
6: तरफ शांति
0: जल्दी
6: की
0: से
6: तरफ।
0: प्रणय प्रणय एक कमेंट जल्दी से आपसे अंत में लेना चाह रहे हैं, जल्दी से छोटा छोटा कमेंट सबसे, दो दो लाइन का प्लीज प्रणय। ये
4: जी
0: डील डायलॉग आज हम लोग कर रहे हैं, दिन भर अलग अलग सेशंस कर रहे हैं, अभी मामले ना माने ना, मतलब विश्वास करें ना कि हस्ताक्षर हस्ताक्षर हो गया तो कुछ दिन शांति रहेगी, ऐसा उम्मीद बांधकर तो चलें।
4: देखिए अंजना, उम्मीद पर दुनिया बहुत सारा टॉकबैक आ रहा है
0: ऑडियो डाउन कीजिए, एको कर रहा हूं उनको। हाँ
4: जी।
0: बोलिए।
4: तो देखिए अंजना, जहां तक इसका सवाल है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और क्या ये लॉन्जिटिविटी रहेगी, क्या ये कामयाब हो पाएगा। अभी कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो करनी ही चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं और संशय के सवाल हैं। जैसा जिस जिक्र अभी रोहित कर रहे थे कि डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर, आपने जिक्र किया कि बेंजामिन नेतन्याहू के भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है, चुनाव उनके यहाँ भी होने हैं, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन अभी जिस तरीके का डायनामिक इस लड़ाई के बाद बदला है इस पूरे इलाके का, उसके बाद ये आकलन करना कि ये चीजें स्थिर हो पाएंगी, स्थायी हो पाएंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि खाड़ी के इलाके के लिए ईरान का वो खतरा, जिससे बचने के लिए उसने अपने यहाँ पे 19 जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं उनको जगह दी थी, वो खतरा तो पहली बार साबित हुआ। बड़े रणनीतिक हथियार के तौर पर दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखा है, तो इससे कहीं भी स्थायित्व का आश्वासन नहीं मिलता है, बल्कि
0: बिल्कुल
4: कहीं ना कहीं आशंकाएं ही ज्यादा बढ़ती हैं, डर
0: बिल्कुल
4: बढ़ता है,
0: बिल्कुल
4: भय बढ़ता है और हथियारों की
0: आई कुडंट
4: खरीद का
0: अग्री
4: की
0: मोर,
4: होड़ बढ़ती
0: बिल्कुल
4: है।
0: प्रमित जी, अच्छा ठीक है, दिल पर आप देखिए हैं तो हिंदुस्तानी ही सारे जो अलग अलग देशों से जुड़ रहे हैं, ट्रंप साहब पर आप कितना भरोसा करते हैं?
2: देखिए व्हाट ही इज डूइंग, जैसे अपने मोदी साहब इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, इंडिया आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ही ऑल्सो टेक्स मोस्ट ऑफ हिज मेजर्स विद दैट एटीट्यूड ऑफ अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। तो उसमें तो आई थिंक मैं ज्यादा किसी भी प्रकार से एक आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं करूंगा। निश्चित रूप से उनकी कई सारी चीजें जो है वो अमेरिका फर्स्ट के तर्ज पे है एंड इट इज शोइंग सम रिजल्ट्स। मैडम 25 साल से हम यहां पर रह रहे हैं, हमने देखा है कि अमेरिका वॉज इन डिक्लाइन। यू कैनॉट कंटिन्यू द सेम ओल्ड जिससे आपको डिक्लाइन, आप और प्रोग्रेस करें डिक्लाइन की तरफ, आपको कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना होगा। उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन चेंज किया है और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है, बिकॉज चाइना वॉज गेटिंग मोर एंड मोर डोमिनेंस। His effort has definitely able to cut down
0: Lord sir, on Lord sir, छोटा सा कमेंट आपसे लॉर्ड साहब।
3: अंजना जी, सबसे पहले विदाउट पीस ह्यूमैनिटी कैन नॉट प्रोग्रेस, सो पीस इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव पीस एंड द लीडर मस्ट इंस्टिल कि हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है, हमने जैसे सबसे मिलके रहना है। देयर इज नो विनर इन वॉर। अगर मैं आपको तबाह कर रहा हूँ, मैं खुद भी तबाह हो रहा हूँ उसके साथ। जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि बंगाल में चर्चिल ने किया था, एक दिन वो भी आया जब हमारे मूल का प्राइम मिनिस्टर था नंबर 10 में, वो टाइम भी है। वो दिन जो पास्ट है वो पास्ट है, क्योंकि हम फ्रेगमेंटेड कंट्री थे, वी वर नॉट यूनाइटेड। एक एक करके उन्होंने हमारे ऊपर, आज कोई आए, आज चाइना को हम आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को आंखें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आज वो दिल्ली, वो इंडिया वो नहीं है जो 1962 वाला था जब चाइनीज आ गए थे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ह्यूमैनिटी मस्ट प्रोग्रेस, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिटीजन, फॉर योर कम्युनिटी, कि वो भी एक दिन नोबेल प्राइज दे और ब्लू चिप कंपनियों को रन करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए, बड़े बड़े लोगों को फायदा दे ह्यूमैनिटी को।
0: ठीक है,
3: आपके पास तेल है, गुड लक टू यू, बट तेल विल नॉट रिमेन फॉर एवर। इज द ह्यूमन माइंड, जो सिटीजन है, इंडिया के पास तेल नहीं है, लेकिन आज कहां पहुंच गया इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गेट्स अवार्ड फ्रॉम सुन्नी एंड शिया, कहां कहां से मिलता है उनको अवार्ड, ही गेट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम पुटिन एंड ट्रंप। देखो ये है इंसान की वैल्यू और विजन, कहां कहां जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे को वीजा फ्री।
0: ठीक है, प्रोफेसर जाफरी जल्दी से छोटा छोटा कमेंट प्लीज।
1: जी मैं छोटा सा कमेंट सबसे पहले ये दे दूं कि ह्यूमैनिटी की सर्विस अमेरिका और यूरोप ने ऐसे किया है कि लास्ट 50 इयर्स में 4 करोड़ लोगों को उन लोगों ने मारा है। ये लैंसेट की स्टडी है, अमेरिकन खुद ब्रिटिश जर्नल है जिसको वो पढ़ सकते हैं, तो ये उनकी खिदमत है पूरी दुनिया को। जहां तक ये वॉर की बात है, वॉर ना ईरान ने शुरू किया था ना ईरान चाहता है, ईरान के ऊपर वॉर थोपा गया था, ईरान ने अपने राइट्स के लिए खड़ा रहा और पूरी दुनिया में जो इनकी इंपीरियलिज्म और गुंडागर्दी और दादागिरी है उसका मुकाबला ईरान ने किया और उनको घुटने पे ले आ गया। ये पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव लेसन है जो ट्रंप की बातों से।
0: रोहित, क्या एक टेम्पलेट भी इसके साथ सेट हुआ है कि भाई अमेरिका ने अटैक किया ना इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर, लेकिन वो डटे रहे, खड़े रहे और आज फिर ये MOU आया है सामने?
5: बिल्कुल, आई थिंक वो जो आई थिंक समय था कि यू नो एक पावर यूनिलैटरली चीजें चेंज कर सकती थी, आई थिंक वो समय नहीं है। जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये युद्ध का युग नहीं है, हमने देखा है किस तरह से यू नो ग्लोबली जब सारे इकोनॉमिकली वर्ल्ड कनेक्टेड है तो इम्पैक्ट होगा, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि फोर्स किया गया इस MOU के लिए। और आई थिंक आने वाले समय में जैसे कि आप कह रही है ये टेम्पलेट याद रहेगा दुनिया को, विश्व को, बड़े बड़े पावर्स को, कि वो यूनिलैटरली इतने बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। अंजना
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डील डायलॉग के इस सेशन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: बाद अब रुख करते हैं योगी के चुनावी यज्ञ हमारी खास पेशकश का। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। यूपी के यज्ञ में आज सीएम योगी ने अयोध्या मामले पर विरोधियों पर बड़ा पलटवार किया है। सीएम योगी ने अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले को लेकर की जा रही राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि माफिया की कब्र पर काफिया पड़ने वाले लोग राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों ने मंदिर के दर्शन पर तक रोक लगा दी थी और आज राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने एसआईटी जांच के नतीजों का इंतजार करने के लिए भी बात कही है और कहा है कि 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात दोहराई है।
1: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
0: सीएम योगी आज अयोध्या खुद भी जा रहे हैं। उससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़े हमले किए। योगी ने कहा कि जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो आज अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: जिस उत्तर प्रदेश को लोग आज से 10 वर्ष पहले बीमारू कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, जहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, जिस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जहां पर बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उत्सव के पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है।
0: और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक का रुख करते हैं। कुमार, देखिए लगातार अयोध्या जाने वाले हैं सीएम योगी और इसके साथ ही लगातार कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर उनके आक्रामक तेवर और उनके जो बयान है वो दिखाते हैं कि वो अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर कटघरे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही खड़ा कर रहे हैं।
3: नहीं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री इनफैक्ट अयोध्या में ही थे। आज जो उन्होंने भाषण दिया है वो रुदौली में एक कार्यक्रम में आए थे, कामाख्या माता का मंदिर है और वहीं पर उन्होंने बोलते हुए ये तमाम बातें कही हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। 15 दिन धैर्य रख लें और 15 दिन में एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को आश्वासन दिया है और कहा है कि जिससे इतनी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है ये एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। लेकिन साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम दलों और नेताओं को एक तरह की उन्होंने नसीहत या कह लें चेतावनी दी है कि कोई भी अयोध्या धाम के बारे में गलत बयानी ना करे, कोई इसे बदनाम करने की कोशिश ना करे। उन्होंने कांग्रेस, सपा सब पर जमकर प्रहार किए हैं। ये कहा है कि जिन लोगों ने कभी इस मंदिर को न बनने देने के लिए पूरी अपनी ताकत आजमा ली थी, उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक दर्शन करने आना चाहते थे तो उन्हें आने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव आज तक दर्शन करने नहीं आए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया, लेकिन अयोध्या धाम पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
3: सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरीके से एक स्वीकारोक्ति तो है कि अंदर गड़बड़ी हुई है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और 15 दिन इंतजार करें। तो बड़ा बयान है, पहली बार योगी के बयान को लेकर के लोगों में उत्सुकता भी थी कि आखिर सरकार ने एसआईटी बनाई है तो आखिर कहती क्या है, तो 15 दिन कम से कम इंतजार करना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और देखिए कुमार भी ये बात कह रहे थे कि सीएम योगी ने यह भी आश्वस्त कर दिया कि 15 दिनों में इस पूरी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और दूध का दूध पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में के बाद यूपी के एक और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बहराइच के सरार मसूद गाजी की दरगाह से करोड़ों रुपए के चढ़ावा चोरी का आरोप दरगाह के खादिम पर ही लगाया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर सरार मसूद गाजी दरगाह में चल रहे घोटाले की एसआईटी जांच की मांग की है।
4: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच पिछले 5 दिनों से चल रही है और ऐसे मौके पर यूपी के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहराइच की दरगाह में बरसों से चल रहे चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच की मांग शुरू कर दी है। बहराइच का वक्फ नंबर 19 यानी सैयद सलार मसूद गाजी की वो दरगाह जो यूपी की सबसे बड़ी दरगाहों में एक है। 50-60 बीघे में फैली इस दरगाह की मिल्कियत में जमीन, दुकानें, मकान, मदरसे तमाम चीजें हैं। पिछले बरस तक इस दरगाह पर यूपी के प्रसिद्ध उर्स और मेले लगा करते थे। अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इस दरगाह में 20 वर्षों से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला चलता आ रहा है।
5: लगभग 20 साल से वहां बड़ी तादाद में करप्शन है। लगभग 14 करोड़ इनकम एक साल में उन्होंने दिखाई है, लेकिन जो लोगों से मालूम हुआ, लगातार उसकी जानकारी हुई, तथ्य निकल करके आए और लगातार शिकायतें हुई, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं।
4: बासी टली ने सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि इस दरगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शमशाद अहमद, मौजूदा अध्यक्ष बकाउल्लाह, खादिम अजमतुल्लाह, दरगाह कमेटी मेंबर यासिर शाह, उनके परिवार के वकार शाह, मारिया शाह और रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच की जाए। इसके अलावा पिछले 20 साल में हुई आय, संपत्तियों, चढ़ावे, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक फैसलों की भी जांच कराई जाए।
5: मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे, समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है, इसकी जांच जरूरी है।
4: बीजेपी सियासी सवाल उठाती है कि इस दरगाह से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी की सियासत करते हैं, इसलिए राजनीतिक साठगांठ के तहत दरगाह में चल रही अनियमितता की आवाज नहीं उठाई जा रही है। उधर दरगाह कमेटी के लोग इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और इसे खालिस सियासी तोहमत बता रहे हैं। दरगाह कमेटी भले सैयद सलार गाजी की दरगाह और वक्फ नंबर 19 के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हो, लेकिन जिस तरह संभल से बहराइच और बहराइच से लखनऊ के मलियाबाद राजा कंसा पासी किले की सियासत में सैयद सलार मसूद के नाम की सियासत शुरू हुई है, उसमें बड़ी संभावना है कि इस दरगाह में कथित घोटाले की जाँच शुरू न हो जाए। वैसे भी इन दिनों कई कार्यक्रमों के मंचों से सीएम योगी राजा सुहेलदेव से लेकर सालार गाजी का जिक्र करते नजर आते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में बहराइच की जमीन इस बार की सियासी जंग में बड़ी अहमियत रख रही है। इसकी एकमात्र वजह है यहां चल रही हिंदू मुस्लिम की सियासत और इसके केंद्र में है हजारों साल पुरानी वो तारीख जिसमें मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार गाजी की दरगाह की है। राजा सोहेलदेव के संग 1033 ईस्वी में इस जंग में मारे गए सलार गाजी की याद में उसी जमीन पर 200 साल बाद दरगाह बन गई थी, जिसे तुगलक काल में विकसित किया गया। वक्त के साथ साथ इस दरगाह को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां जोड़ती चली गई और यहां उर्स के मेले लगने लगे, जिसमें देश के कोने कोने से लोग अकीमदन चादर और पलंग पीढ़ी चढ़ाने आने लगे। इससे दरगाह की कमाई करोड़ रुपए होती चली गई, लेकिन धर्म मजहब का मामला होने की वजह से वक्फ की इस संपत्ति में होने वाले आय व्यय का सार्वजनिक शुद्ध ब्यौरा कभी सामने नहीं आया और अब सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर इस बात की आग्रह किया गया है कि वो इसकी जांच कराए। वक्फ की दुकानों, भवनों और अन्य संपत्तियों के आवंटन, बिक्री और पट्टों की जांच कराने की मांग भी की गई है, क्योंकि असली कीमत और आप कह सकते हैं कि दर्ज जो कीमत में बहुत बड़ा फर्क देखा जाता है। इसके अलावा खादिम अहमदुल्लाह ने लेकर एडवोकेट दिलशाद अहमद तक की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है और साथ ही वर्फ के फंड से खरीदी गई जमीन, इमारतें और अन्य संपत्तियों की जांच कर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज संपत्तियों को वापस वर्फ के नाम करने की मांग भी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पूर्व अध्यक्ष आबाद खान ने जब कार्यभार सौंपा तो ब्यौरा में दर्ज सोने चांदी के सिक्के, मुकुट, जेवरात और दूसरे बहुमूल्य चढ़ावे का भौतिक सत्यापन जरूर कराया जाए। बीजेपी का आरोप है, आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि इस दरगाह की संपत्ति वक्फ नंबर 19 के नाम से दर्ज है और इस वक्फ के अंदर ही जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसमें तमाम तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार की आशंका लगातार बनी हुई है। लिहाजा इस दरगाह में पिछले 20 वर्षों के आय व्यय और बैंक खातों, चढ़ावों, ठेकों, किरायों का विशेष ऑडिट कराना और ऑडिट न कराने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। साल 2024-25 के ठेकों में कथित रूप से 1 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। करीब 40 वर्षों से प्रबंधन के रूप में कार्यरत अलीमुल हक की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं तथा उनके परिजनों की संपत्तियों के स्रोतों की जांच की मांग भी की गई है। साथ ही 2005 में माल खाने में हुई डकैती के दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच कराने की भी मांग की जा रही है। तो अयोध्या से बहराइच तक, राम मंदिर से लेकर सलार मसूद गाजी की दरगाह तक, यूपी में इस बार की चुनावी राजनीति पे जोर शोर से चली हुई है। दरअसल तो दूसरी तरफ विकास की रफ्तार की चपेट में आ रही मस्जिदों को लेकर भी सियासत चल रही है। अब वाराणसी में विकास के नाम पर जब एक साथ 6-6 मस्जिदें शहीद की जा रही है तो सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस वाराणसी के विकास के लिए दर्जनों प्राचीन मंदिर ढहा दिए गए, अब भी सिर्फ मस्जिदें ही नहीं ढाई जा रहे हैं। और वहीं वाराणसी के मुस्लिम बहुल दाल मंडी को लगभग 17.4 मीटर यानी 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है। इस चौड़ाई को दाल मंडी की पूरी लंबाई 650 मीटर तक किया जाना है। काशी विश्वनाथ धाम के लिए बनाए गए वैकल्पिक मार्गों की जद में 6 मस्जिदें सहित 187 भवन आ रहे हैं। लगभग 140 भवन को जमींदोज करने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अब बारी उन 6 मस्जिदों की भी है। एक दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी और वीडीए ने नगर निगम के दालमंडी चौड़ीकरण की जद में आने वाले 5 मस्जिदों की नपाई भी कर ली थी, जिसमें मिर्जा करीमुल्ला और बेग मस्जिद और संगे मरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद है। जबकि नई सड़क की तारीफ जो हाफिज मस्जिद की पहल की नापी जा चुकी है और कल 181 भवनों में से 100 भवन ध्वस्त किए जा चुके हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
8: To kids, summer isn't just time off, it's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर,
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार,
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
15: हमें एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है।
16: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
14: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
17: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
14: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
18: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है जनता हमेशा

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
5: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
6: आप कितने लोग हैं
5: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
6: समाजवादी पार्टी के।
5: हाँ, उनके लोग
6: विधायक भी हैं, केवल सांसद
5: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
4: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
7: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
8: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पहले जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
4: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
9: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
4: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
10: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई ना कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
4: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
11: इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
4: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
12: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
4: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
9: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे। मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए क्योंकि वो बहुत तनाव में है। वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
10: उनके दावे और उनके वादे ये सब लोडर लोग हैं। इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
6: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई? राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
10: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई ना कोई यूज तो कर ही रहा है।

चार बोले राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले हमें ना दिया उपदेश, एसआईटी करेगी दूध का दूध और पानी का पानी। समाजवादी पार्टी में बगावत पर ओपी राजभर का एक और बड़ा दावा, पीडीए की बैठक में मुरादाबाद की सांसद के नहीं पहुंचने पर खड़े किए सवाल, आज तक से बोली सांसद मुझे नहीं बुलाया गया पर मैं नाराज भी नहीं हूं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। डील डायलॉग के इस चरण में आपका स्वागत है और इस चरण में हम बात करेंगे इजराइल और लेबनन की, क्योंकि लेबनन लेबनन लेबनन अमेरिका ईरान के एमओयू के पहले पैराग्राफ में 3 बार लेबनन का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि उस पर भी जोर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। 14 मुद्दों का यह एमओयू है लेकिन उसमें लेबनन का जिक्र है। दोनों देश दरअसल लेबनन समेत हर मोर्चे पर युद्ध खत्म करने की ओर एक दूसरे पर बल का इस्तेमाल न करने का भी वादा कर रहे हैं। कागज पर तो यह पूरी तरीके से शांति की तरफ एक कदम है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल शायद इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि वो इस समझौते से के लिए बंधा हुआ नहीं है, खासकर जब बात हिजबुल्ला की हो रही हो और लेबनन की हो रही हो। और हिजबुल्ला का खतरा इसराइल के लिए हमेशा से रहा और इसी मुद्दे को लेकर इसराइल लेबनन पर हमले करता रहा है। वो लेबनन में इसराइल की किसी भी कार्रवाई पर अमेरिका के पास जा सकता है और सवाल पूछ सकता है कि ये एमओयू का उल्लंघन है। तो क्या ये एमओयू तनाव घटाएगा या एक नए जंग की पटकथा भी लिखेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के भीतर हमेशा नजर आया है। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजय मेस्टन है। संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट है, कई बार हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं। सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक है, पूर्व सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जो ईरान से अभी अभी लौटे हैं। अशरफ फानी मेरे दूसरे सहयोगी जो लेबनन से अभी अभी लौटे हैं और उसके साथ साथ पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट है डॉक्टर वायल अवाद, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आप ही से सुरेश गोयल जी, क्योंकि ये समझौता दिखने में तो शांति का समझौता नजर आ रहा है लेकिन, और समझौता है वैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन लेबनन का जिक्र, हिजबुल्ला का जिक्र और जिस तरीके से इसराइल को कहा गया है कि अब यह हमला बर्दाश्त नहीं होगा और उसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि हिजबुल्ला आपके सुरक्षा के लिए खतरा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं लेकिन हमला नहीं होगा, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा लेबनन से, तो इसराइल एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि लूजर की तरह इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये शांति बनी रहेगी या इसराइल इसे नहीं मानेगा आगे जाकर?
1: देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है यहां पर, ये क्योंकि इस सवाल में बात खाली हिजबुल्ला की नहीं है, इस सवाल में बात यह है कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी पैरामीटर्स चाहिए। आप याद कीजिए कि जहां तक लेबनान का सवाल है और सीरिया का सवाल है और यमन का सवाल है, इसराइल के हमले और इसराइल का जो टेरिटरी में ऑक्यूपाई किया गया था यमन में भी, सीरिया में भी, गोलन हाइट्स में और यहां पर लेबनान में, ये तीनों ही जो टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई थी वो बिफोर हिजबुल्ला के बनने के, हमास के बनने के और हाउथीज़ के बनने से पहले ही इसराइल उन टेरिटरीज को अटैक कर चुका था और काफ़ी सारी टेरिटरी सदर्न लेबनान में ऑक्यूपाई कर चुका था। हिजबुल्ला का क्रिएशन उसके ऑक्यूपाई होने के बाद में हुआ है और इसकी साफ वजह यह है कि बात यहाँ पर हिजबुल्ला हमस की उसकी नहीं है, बात यह है कि इसराइल को अगर अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, वो पहले भी कह चुका है कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ये जो सारे एरियाज हैं यहाँ पर उसका कंट्रोल रहे। अब अगर ये एरियाज में यहाँ पर हिजबुल्ला भी है जो भी हैं, किसी भी वजह से किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि इसराइल उन एरिया से अपना कंट्रोल ख़त्म करने को तैयार होगा, और अगर इसराइल अपना कंट्रोल वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकता है तो ये एक्सपेक्ट करना कि इसराइल वहाँ से खाली कर देगा, अपनी सेना को बुला लेगा या हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, मेरे ख्याल है थोड़ा सा जाति होगा और थोड़ा सा समझ में फ़र्क हो जाएगा। ये तो किसी भी तरीके से मुझको ये नहीं लगता है कि इस एग्रीमेंट में जो ये पैरा वन है कि सब तरह की वॉर ख़त्म हो जाएगी, सब तरह के ये एक्शन ख़त्म हो जाएंगे। ट्रंप साहब ने मान तो लिया, ईरान ने भी मान लिया है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ईरान भी समझता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये डील साइन हो जाएगी या एमओयू साइन हो जाएगा, लेकिन साइन होने के कुछ ही अरसे के बाद में मुझको लग रहा है कि और भी हालत खराब होने के आसार हैं।
0: 60 दिन का वक्त दिया गया है, अगर कंक्लूसिव डील बनानी है उसके लिए 60 दिन का वक्त दिया गया और उससे भी इसराइल संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान रीग्रुप करने की कोशिश करेगा, अपनी ताकत एक बार बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और एक सबसे बड़ा मुद्दा है और जो सुरक्षा को लेकर दरअसल सिर्फ लेबनन के मामले में नहीं है, तो इसराइल इस बारे में यह भी सोच रहा था कि जब जब ये युद्ध शुरू हुआ था डॉक्टर वायल आबाद कि उनका यह कहना था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के पास है वो खतरा है, ईरान के पास है वो इसराइल के लिए खतरा है, और इसीलिए इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना यह भी उनकी एक प्राथमिकता थी उस पूरे मामले में, प्रायोरिटी थी। लेकिन अगर इस एमओयू को देखें तो अब अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं वो तो मिसाइल रख सकते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आसपास के जो नेबर से उसी की तरह ईरान के पास भी मिसाइल्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसा दिया जाएगा, उनके जो एसेट्स हैं वो भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि कभी ना कभी तो हमें उन्हें वापस लौटाने पड़ेंगे वरना हमारे पास कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें अगर हम नजर उस पर नजर डालें तो इसराइल की कोई भी बात अमेरिका ने नहीं मानी है, अलग थलग पड़ गया इसराइल, और यही पर कहीं ना कहीं अशांति के बीज बोते हुए नजर आ रहे इस पूरे एमओयू के भीतर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद है, और बिल्कुल जो अम्बेसडर सुरेश में बात की जीत किया था मैंने बिल्कुल सही है कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसराइल में जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एक ही है तो डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज उनके नजदीक है, मतलब सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लिबनान, इराक, ईरान और लीबिया भी है, सबको मतलब ये जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव में उसमें कुछ नहीं हुआ था। ये इस जंग में सिर्फ इलेजिटिमेट भी है, इलीगल भी है, और खुद अमेरिकन में खुद उन्होंने इज्जत अन अमेरिकन वो, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए, तो अभी ये जंग शुरू हो गया था, ऑब्जेक्टिव अगर न्यूक्लियर डील है तो अमेरिका और ईरान में बातचीत हो गया था जिनेवा में, उन्होंने दोनों का मतलब देवर क्लोज डील, लेकिन उन्होंने ब्रेक थ्रू भी किया था जो मंत्री का वो ओमान का मंत्री के कहते, और वो यूके वाले के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद बताया था हमको इसके मतलब देवर टू क्लोज टू अदीद, पर अमेरिकन और इसराइल में ये जंग रुक गया था। इसलिए इसराइल के प्रधानमंत्री में नेतन्याहू मांग रहे, ये तो अमेरिकन राष्ट्रपति है उसके साथ ही है ये जंग शुरू करना चाहती है, इसलिए आज का तो जो 14 पॉइंट में लिखा है उसकी बात भी नहीं करता। इसराइल का इंटेंशन एक रीजनल पावर तोड़ने के लिए तैयारी है, निकालने के लिए ईरान के लिए, वो तो नहीं हुआ था। तो इसका मकसद ये है, अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही आप कह रहे, और अगर उनके न्यूक्लियर बात करनी चाहते तो ईरान ऑलरेडी अग्रीड फॉर द न्यूक्लियर डील। सिर्फ अभी तक जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, जो अभी तक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक हो गया था, अमेरिकन सीज कर दिया था, उसका एसेट भी फ्रीज भी किया था, ये तो सबकी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, ये मकसद है। ईरान का जो एसेट भी है आप ये समझ लो 47 ईयर तो अभी तक अमेरिकन फ्रीज कर रहा है, और अभी तक जो नजदीक है 10 साल के पहले जो कतार के थ्रू हो गया था या यूएई के वाले के थ्रू हो गया, सबका ये पैसा का ईरान का है। लेकिन इसराइल नहीं मांग रही ये जंग रुकने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री के लिए उसका पॉलिटिकल करियर बंद हो जाएगी। आज तक सारी दुनिया मालूम हो गया था, पर नेतन्याहू खुद ये कह रहे हैं अमेरिकन के लिए वो इसके लिए राइट विंग वाला शुरू किया था पॉलिटिशियन में सबको मतलब अपोज करना चाहते, इवन टू दिस डील टू बी ब्रोक एंड ही डज नॉट वांट टू साइन एनी डील विद ईरान, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं किया।
0: ये बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में शामिल था, इसराइल का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहे हैं और नेतन्याहू बार बार अपनी जनता को वादा कर चुके हैं कि ईरान का वो खात्मा कर देंगे, ईरान किसी भी तरीके से इसराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा, और इसीलिए इस युद्ध में वो जाना चाहते हैं। कई आरोप ये भी लगे कि उन्होंने ही अमेरिका को युद्ध के लिए उकसाया, और इससे पहले भी उनकी कोशिश रही है लेकिन अमेरिका कभी इस युद्ध में नहीं उतरा, इस बार ये मौका उनको मिल गया था। तो मेजर जनरल संजय मेस्टन, आज की स्थिति में जब इसराइल अलग थलग पड़ा हुआ है वो कितनी बात मान लेगा अमेरिका की, क्योंकि ये आखिरकार ये जो एमओयू है वो तो अमेरिका और ईरान के बीच में है। कल अगर लेबनन पर हमला होता है इसराइल की तरफ से तो ईरान एक बार फिर अमेरिका के पास जा सकता है, लेकिन क्या इसराइल अमेरिका की बात मानेगा, या आज की स्थिति में ये बात ओपन एंडेड एक तरीके से रखी गई है और इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया?
3: देखिए साहिल, मेरे को लगता है ये बात ओपन एंडेड ही रहेगी। कारण ये है कि देखिए अभी जिस प्रकार बातचीत हुई है इसमें कई स्टेक होल्डर्स है। पहली बात तो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, उसके बाद इसराइल, फिर गल्फ स्टेट्स है, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये सिर्फ डील जो हुई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है, और किसने कराई है? पाकिस्तान, और बाद में कतार ने भी अपना उस पर रोल निभाया है। सवाल ये उठता है कि जब कोई डील होती है तो पहली बात तो सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। इसमें ऐसा दिखाया गया अमेरिका ने कि इसराइल उसका छोटा पार्टनर है, जो आपने कल सुना था यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी फ्रांस में G7 में, उन्होंने क्लियरली बोला कि इसराइल मेरा छोटा पार्टनर है। तो स्टार्ट पॉइंट ही ये काफी प्रॉब्लम्स है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो ये मेरे को लगता है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने चाहिए वो नहीं हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्दी में थे, खासकर उनके सामने ये G7 समिट थी, उनका खुद का बर्थडे था जो अभी निकला है, उसी दिन उन्होंने डील का अनाउंस किया था, और अभी 4 जुलाई की सेलिब्रेशन है। तो ये सब देखते हुए उनके लिए ये बहुत ही एक हरी, बहुत जल्दी से इन्होंने ये डील साइन करा दी है, उन्होंने इसका पूरा परिणाम भी नहीं सोचा है कि ये इसराइल के ऊपर क्या, इसराइल इसको कैसे लेगा। तो ये मैं इसलिए बोलूंगा ये ओपन एंडेड है।
0: सुमित हमारे साथ में, सुमित आप ईरान में थे, ईरान में इस बात को लेकर क्या बात बनी हुई है? क्योंकि एक बात तो साफ है कि इसमें ईरान ने यह भी कहा जाता है कि इस डील का सबसे बड़ा फायदा ईरान को होगा, क्योंकि उनका कुछ खो नहीं रहा है इसमें। तो आज की स्थिति में ईरान इसको किस तरीके से देखेगा, और क्या सिर्फ MOU में है इसके लिए, ये मान लेगा ईरान की ठीक है लेबनन सुरक्षित रहेगा उसमें, क्योंकि इसका उसका जिक्र ईरान की तरफ से बार बार किया जा रहा था, या अभी भी उनके मन में संदेह होगा कि इसराइल इस बात को नहीं मानेगा?
4: साहिल एक चीज बहुत क्लियर है, पिछले 4 दशकों से 5 दशकों से अमेरिका ईरान और खासतौर पे इसराइल के बीच में जो अदावत चलती आ रही थी उसमें हमेशा कोशिश की गई कि देखिए ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसे कमजोर किया जाए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस की जाए, लेकिन इस पूरे कन्फ्लिक्ट ने 109 दिनों के अंदर ईरान को एक पूरे रीजन की सुपर पावर बना दिया। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा प्रेशर पॉइंट ईरान के हाथ में आ चुका है, जब मर्जी इस MOU को छोड़िए ईरान जब चाहे 24 घंटे में दोबारा से चीजों को रोक सकता है, और उसमें फिर अमेरिका को या मिडिल ईस्ट के देशों को उनकी माननी पड़ेगी। अभी हो क्या रहा है कि अब तक जो सारे मिडिल ईस्ट के देश से वो अमेरिका से एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करवाते थे और ईरान से शर्तें मनवाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश जो है वो ईरान से सीधे संपर्क करना चाहते हैं, अपने अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि लेबनन की आपने बात करें, लेबनन पर पूरी कोशिश थी, आपको याद होगा कि ये जंग जो है वो किसी अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं थी, ये इसराइल की तरफ से शुरुआत की गई थी कि इसराइल ने लगातार हिजबुल्ला पर अटैक करने शुरू किए, क्योंकि गाजा के ऑपरेशन के बाद उसे लगा कि खतरा हिजबुल्ला की तरफ से भी बढ़ रहा है, फिर उसने ईरान पर भी अटैक कर दिया और बढ़ते बढ़ते दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। तो अभी अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ईरान के लिए अभी रास्ता बहुत क्लियर हो गया है, ये कॉन्फिडेंस उसने पैदा कर दिया है हिजबुल्ला हमास सबके अंदर कि वही सुपर पावर है, वही अमेरिका से लड़ सकता, और शायद ईरान भी यही सी कोशिश में लगा हुआ था। अब मौजूदा हालातों में अगर आप देखें कि भले ही इस MOU के अंदर सारी की सारी शर्तें अभी भी ईरान के फेवर में हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर हिजबुल्ला के ऊपर बड़े अटैक्स किए जाएंगे, अगर कहीं से भी उसके प्रॉक्सीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को साइडलाइन किया जाएगा, वो तमाम वो चीजें करेगा जो उसने 109 दिनों के अंदर किए, तो आपने ये मान के चलिए कि अमेरिका की ना सिर्फ पोजीशनिंग कमजोर हुई है बल्कि इसराइल को लगातार इसराइल जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था वो भी लगभग उनके के लिए साबित हुई 109 दिनों के बाद।
0: सूर्य जी ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पहली बार इस डील में ये भी देखा गया है, जो डील हुआ है उसमें और इस पूरे युद्ध में, कि पहली बार स्टेट ऑफ होमूस को एक एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उसके दबने के वजह से अमेरिका पर भी प्रेशर पैदा हो रहा था पूरी दुनिया का कि आप ये इस पूरे झगड़े को खत्म करिए, और इसीलिए हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इस डील की बात की गई, और इसीलिए ईरान की वो सारी बातें करीब करीब मान ली गई कि हम नए सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, आप अपने न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम जारी रख सकते हैं, आप मिसाइल्स वहां पर रख सकते हैं, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, ये और यहां तक कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स है वो भी खोलने की बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात होगी आगे के लिए। तो वेस्ट एशिया में जो अब तक जो तराजू अगर हम लगाकर देखें तो जो बैलेंस था वो ईरान के पक्ष में इसके वजह से जाता हुआ, और जिसके वजह से इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
1: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर पूरे MOU को देखा जाए, मैं न्यूक्लियर की एग्रीमेंट की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो 28 फरवरी के अटैक से पहले भी जब ओमान के फॉरन ऑफिस में बातचीत हो रही थी तब इंडिकेशन ये आए थे, खबरें ये आई थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार है, और कुछ ही दिनों की बात है कि वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और 28 फरवरी को अटैक हुआ और ये अटकलें ये लगाई गई कि क्योंकि प्रेशर पड़ा इसराइल की तरफ से तो अटैक हो गया वो। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर देखा जाए उसको छोड़ करके तो सारा आउटकम जो है बेसिकली क्या है इसमें, ईरान को रेपरेशंस के लिए $300 बिलियन का फंड मिल रहा है, सैंक्शन रिमूव करने की बात हो रही है, $12 बिलियन जो उसके फ्रोजन फंड हैं, 24 बिलियन वो उनको दिए जा रहे हैं, 12 बिलियन पहले 12 बिलियन बाद में। अगर देखा जाए और उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर अटैक नहीं होगा, तो हैरानी की बात मेरे लिए है कि ईरान को काफ़ी कुछ मिल गया है इसमें, ये वो कब तक चलेगा, क्योंकि इसराइल को एक सेफ एंड सिक्योर ईरान उसके लिए खतरा है। तो मेरे को ये पक्का अंदाजा है कि
0: एक कॉन्फिडेंस भी मिला है क्या
1: जी? कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस,
0: कॉन्फिडेंस भी उनको एक मिला ईरान को कि हम अमेरिका जैसे पावर के सामने खड़े हो सकते हैं।
1: लेकिन एक चीज है, देखिए आप ये सोचिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को एज ए लीवरेज काम में लिया है, इससे पहले कभी काम में नहीं लिया, क्यों? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि ईरान ने इसको एज प्रेशर पॉइंट काम में ले लिया है। और इसके बाद में अब इवन अगेंस्ट द लॉज ऑफ सी अनक्लोज के खिलाफ जाकर के भी जो जितना मैरीटाइम नेविगेशन है, चाहे वो हमारे लिए मलक्का स्ट्रेट्स हो या जो भी हो, उनमें खतरा पैदा हो गया है। अब तक चाइना मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात भी नहीं कर सकता था, अब हो सकता है वहां पर भी नौबत पहुंच जाए। जी,
0: एक नई चीज यहां पर शुरू हुई। सुमित, आप जो कह रहे थे, जिसका जिक्र अभी सुरेश जी भी कर रहे हैं वहां पर, कि ये बात तो साफ है कि ईरान का कॉन्फिडेंस इस पूरे डील के बाद बढ़ेगा, और ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और इसीलिए बार बार सवाल ये होता है कि सबसे अनसेटलिंग थिंग अगर ये पूरे एमओयू में देखी जा रही है, तो वो ये देखी जा रही है कि लेबनान और इसराइल के बीच में शांति होगी नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी फिलहाल कोई नहीं ले सकता। कल अगर इसराइल इस एमओयू को मानने से इनकार करेगा, खास करके हिजबुल्ला के मामले में, तो क्या एक बार फिर स्टेट ऑफ होर्मुज को खतरा हो पाएगा? क्या ईरान यह रिस्क उठाएगा एक बार फिर, जो जिसके वजह से एक बार फिर ऑल आउट वॉर शुरू हो सकता है और वेस्ट एशिया ही नहीं पूरे दुनिया की शांति बिगड़ सकती है?
4: साहिल, अगर आप इस पूरे एमओयू को देखें तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक विंडो है जिससे यूएस निकलना चाह रहा था, अमेरिका इस पूरे विंडो के माध्यम से निकलना चाह रहा था, इस कंफ्लिक्ट से निकलना चाह रहा था, क्योंकि वो प्रेशर डोमेस्टिक भी था, इंटरनेशनल भी था, उसके अलायंस जो थे खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे मिडिल ईस्ट के, वो उस पर दबाव बना रहे थे, नाटो के देश उस पर दबाव बना रहे थे, तो एक विंडो था जिससे अमेरिका निकलना चाह रहा था। अब अमेरिका चाहेगा कि अगर ये वॉयलेशन हो भी जाता, क्योंकि देखिए इस एमओयू के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया साहिल कि देखिए जो इसराइल है वो अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है और वो ऐसा करने के लिए सक्षम है। तो ये सारी बातें इसलिए की गई क्योंकि अगर इसराइल और ईरान के बीच में कल को कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका कह सकता है कि हम तो पीछे खड़े हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के पीछे वो ईरान को प्रेशराइज कर सकता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर सकते। अब अगर आप पूरे एमओयू को पढ़ें, अगर आप उन चीजों को देखें, आप देखें कि क्यों ईरान ने मान लिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल या उनको बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। उसके दो मकसद थे, एक तो पूरी रीजन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना, वो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एस्टैब्लिश कर लिया। दूसरा बड़ा इशू था कि देखिए अगर उसके पास ऐसे हथियार हो जिससे वो इसराइल के ऊपर या फिर आगे के देशों के ऊपर लगातार अटैक कर सके, जो कैपिंग थी बैलिस्टिक मिसाइलों वो 3000 किलोमीटर से नीचे की रहे, वो भी उसने आगे बढ़ा ली, उसने इसी दौरान अपनी कैपने उन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर लिया, तो ये तमाम चीजें उसने कर ली है। लेकिन अभी उसको ऐसा लगता है ईरान को कि अगर मेरे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी फाइनेंशियल इशूज, यानी जो पैसे की कमी थी, फाइनेंसिस की कमी थी, वो लगातार इससे भरपाई की जाएगी। और आप मान के चलिए कि जब तक ईरान वो पैसे, यानी आप $300 अरब की बात कर लीजिए, ऑयल एक्सपोर्ट के फंड आप चीजों की बात कर, जब तक वो भरपाई करके अपनी चीजों को सेटल नहीं करेगा,
0: अभी हट गए
4: बिल्कुल। और अब धीरे धीरे ये होगा साहिल कि अब ईरान जो है अपने फाइनेंसिस को मजबूत करेगा, अपने प्रोग्राम को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और जैसे उसको लगेगा कि हाँ अब इसराइल उसके लिए खतरा बन रहा है, वो अदावत फिर शुरू होगी। और इसराइल भी मान के चल रहा है कि देखिए धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करना है और फिर से हिजबुल्ला पर, गाजा पर, ईरान पर हमले की तैयारी करके बैठने, क्योंकि ये दोनों के बीच में अब ये बहुत तय हो गया है कि हाँ खतरा एक दूसरे से बहुत बड़ा है, हमें तैयारियां करते रहने पड़ेगी।
0: इसकी जड़ पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट है, और जिसका जिक्र इससे पहले डॉक्टर अवार्ड भी कर रहे थे, संजय बेस्टन। जब तक पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट हल नहीं होता है, तब तक क्या ये सारे एमओयूज या शांति वार्ता या ईरान की न्यूक्लियर डील या शांति का एमओयू, इस सब के कोई मायने नहीं रखते हैं? तो क्या उसके तरफ अब कदम उठाना जरूरी हो गया है कि अगर इस रीजन में शांति बनाए रखनी है, तो अगर लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू में या पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो?
3: देखिए ये टू नेशन थ्योरी तो कई बार, टू स्टेट थ्योरी तो कई बार बात उठी है, और मेरे को लगता है कि वो एक फीजिबल एक्शन है जो इसराइल पे प्रेशर काफी आएगा। देखिए यूरोपियन देश से भी आया, कई देशों से आ रहा है, और अब तो ईरान भी और पावरफुल हो गया तो वो भी करेगा, और मेरे ख्याल जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो भी इस पे अभी ज्यादा जोर लगाएंगे। तो विश्व में एक ओपिनियन ऐसा बढ़ता जा रहा है कि पैलेस्टीनियन होमलैंड के लिए तो बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पे अभी इसराइल पे बहुत प्रेशर आएगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में अभी होम ग्राउंड प्रेशर तो रहेगा, और एक ये वर्ल्ड से अब ये प्रेशर आएगा, उसकी होने की संभावना है या नहीं बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि देखिए उसको भी लार्जर पर्सपेक्टिव में दिए देखिए तो आज इसी इलाके में वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन है वो है कुर्द, और कर्ज की पॉपुलेशन है 45 मिलियन, तो उसको तो आज कोई नहीं देख रहा है, और वो इसी इलाके में है, कुछ ईरान के पोर्शन में, कुछ इराक के में है, कुछ सीरिया के में, कुछ टर्की में, तो ये फिर ये एक नई कहानी शुरू होगी। और ये तो जो भी ये टेरिटरी है वो सारी इन देशों के अंदर है, तो वो एक होमलैंड उसके पास नहीं है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो आउटकम ऑफ वॉर है आज की तारीख में, मैं इसको अगर दो शब्द में बोलूं, नंबर वन, एज ऑन डेट इट इज विन विन फॉर ईरान, कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ ईरान के फेवर में है। नंबर दो, ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन से भी सबसे पावरफुल चीज दो चीज है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेवरेज जब मर्जी कर ले, दूसरा जो उसके पास इतना अंडरग्राउंड सिटीज हैं मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो उसने वो ताकत से दिखा दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए गल्फ स्टेट्स को प्रेशर मारना पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि आपको ये, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में वो कितने टारगेट हुए, तो ईरान ने तो प्रूफ कर दिया है कि ये विन विन सिचुएशन उसके लिए। तीसरा ये फैक्टर निकलता है, अब जो इसको इतना पैसा आएगा ऑयल से आएगा, ये $300 बिलियन आएंगे, इसके सैंक्शन हट जाएंगे, नेट आउटफ्लो क्या होगा, IRGC की वहां पर कमांड कंट्रोल ज्यादा रहेगी, क्या पीपल डेवलपमेंट पे फोकस होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी देखते हुए ज्यादा फोकस रहेगा प्रॉक्सीज को और आर्म करना, पैसा चाहिए उसके लिए, हथियार मिलेंगे, फंडिंग मिलेगी।
0: बात तो साफ है ना यहां पर, क्योंकि ईरान के रिजीम को चेंज करने की बात बार बार यहां पर की जा रही थी, और इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, आपने उनके नेता को तो मार दिया लेकिन वहां के रिजीम चेंज नहीं हो पाया है। आज की स्थिति में भी जो ईरान में जो जिस रिजीम की हुकूमत वहां पर चल रही थी वो अभी भी कायम है। आखिर में मेरा सवाल यही रहेगा गोयल जी कि इस बात को लेकर जो मैंने ओरिजिनली जब मैंने बात इस पूरी बातचीत को शुरुआत किया था कि ये पूरा MOU क्या तनाव घटाएगा या नए जंग की नए तरीके से पटकथा लिखेगा, क्या आपको लगता है कि इसमें उसके बीज है, जो मैंने ओरिजिनल सवाल यहां पर पूछा था इस पूरी चर्चा के
1: बाद। बहुत छोटा सा जवाब, इस एरिया में अरब वर्सेस पर्शियन वॉर हजारों सालों से चली आ रही है। इस्लाम के आने से पहले भी जब ईरान में सासनी एम्पायर थी तब भी अरब ट्राइब्स और पर्शियंस के बीच में झगड़े होते थे, ग्रीस के टाइम पर भी वो जो झगड़े होते थे अरब्स के बीच में और पर्शियंस के बीच में, वो झगड़े ख़त्म नहीं हुए हैं। और दिक्कत ये है कि विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब ये जो झगड़े हैं ये अरब और पर्शियंस के और ज़्यादा भयानक होंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ये, और इसके बढ़ने में आगे अगर ट्रंप साहब को अगर नोबेल प्राइज मिलता है तो कम से कम वो ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को नोबेल प्राइज मिला, चाहे पीस बने या ना बने।
0: इससे पहले भी हमने देखा हुआ है कि इसराइल और हमने देखा कि पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए दो दो नोबेल प्राइज दिए गए थे, और उसके बाद भी इस पूरे मामले का हश्र या कोई सॉल्यूशन उस तरीके से निकल नहीं पाया था, यह बात भी हमने उस पर देखी थी। लेकिन आज की स्थिति में यह 14 पॉइंट MOU जो साइन हुआ है अमेरिका और इसराइल के बीच में, फिलहाल के लिए तो देश पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यह शांति बरकरार रहेगी, लेकिन इसमें क्या नए जंग की पटकथा लिखी गई है, नए जंग की बीज बोए गए हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। लेबनन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, हिजबुल्ला का कॉन्फ्लिक्ट, ये इस पूरे MOU के बीच में MOU तोड़ने के लिए क्या एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा होना जरूरी था। अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। डील डायलॉग में और भी चर्चा हम करेंगे, फिलहाल आप आज तक के साथ बने रहिए, मेरे साथ फिलहाल सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
5: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
3: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
8: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta steel TMT se bana.
9: Roongta nahi, to ghar strong nahi. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
15: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
14: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
16: जबरदस्त हंगामा बरपा है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली न चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहाँ पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
17: घोर अन्याय हुआ है, मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
16: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए, ये जो गोली चला रहा है इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
17: सुबह हमें 8 बजे के करीब में धूप गई, डरे धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमने के, और छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन ले।
16: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया।
1: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सीसीटीवी फुटेज नदारद है, गायब है, खो गए हैं।
3: जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।

नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे रामदान की लूट की, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जहां एक ओर जांच हो रही है, दूसरी ओर सियासी चढ़ाई भी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है, तो आज योगी ने अयोध्या खुद पहुंचकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि माफिया की कब्र पर फातिया पड़ने वाले हमें राम भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। एसआईटी जांच के बीच करीब डेढ़ घंटे बाद सीएम योगी राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही आज कई अहम और बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। माफिया की कब्र फातवा पढ़ने वाले हमें राम भक्ति सिखा रहे हैं। सीधे तौर पर अखिलेश पर उन्होंने साधा है निशाना कि अखिलेश लगातार दान चोरी के मामले में आवाज बुलंद करते रहे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। तो योगी ने जवाब देते हुए कहा है कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी जल्द कर देगी।

0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: योगी ने भी अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि गोली चलवाने वाले अब हमें उपदेश दे रहे हैं,
0: आज उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को लोग आज से 10 वर्ष पहले बीमारू कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, जहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, जिस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जहां पर बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उत्सव के पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंचप्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है, इसका श्रेय आपको जाता है। आपने मोदी जी पर विश्वास किया।
1: और इससे पहले अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चुनाव में चोरी का आरोप लगाया था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के गायब होने पर भी सवाल उठाए थे।
2: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।
1: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, जो अखिलेश ने पहले आरोप लगाए थे कि सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया है, कुछ फुटेज उड़ा दिया गया है इधर उधर, उस पर एसआईटी ने कोई कंफर्मेशन दिया है, ऐसा हुआ भी है या नहीं?
3: देखिए, एसआईटी की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। 3 सदस्यीय जो एसआईटी है वो लगातार पिछले कई दिनों से सुबह 9 बजे उस मंदिर प्रांगण में जाती है, पूरे दिन भर एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चलता है और देर रात को ये निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब वो अयोध्या में थे तो उन्होंने साफ कहा है कि आप 15 दिन इंतजार कर लें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईटी की जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी कि एसआईटी जांच पर ही सब कुछ टिका हुआ है। एसआईटी प्रदेश सरकार ने बनाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यकीन है, और उन्होंने जो भी राम भक्त हैं या जो भी इस मंदिर से जिनकी श्रद्धा है उनको उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही जो दोषी भी होंगे तो उनको हम किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो आप देखेंगे लगातार इन्वेस्टिगेशन में चीजें आ रही हैं, वो कम से कम इस ओर इशारा तो जरूर कर रहा है कि गड़बड़ हुआ है। यहां तक कि नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि एक कर्मचारी को सीसीटीवी में देखा गया है पैसे को रखते हुए। इसी तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं कि अब इसको एक नया सीईओ अपॉइंट होना चाहिए जो कि इस पूरे मामले की देखरेख करे। तो देखिए सरकार के भीतर और जो प्रशासन है उसको भी अंदाजा है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको अयोध्या धाम की से ऐसे ना जोड़ा जाए कि अयोध्या धाम की बेइज्जती हो। लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं जैसे मानो ये अयोध्या धाम में की कोई गड़बड़ी है, तो उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी है, नेताओं के लिए भी है कि भाई आप पॉलिटिक्स करें लेकिन भगवान राम को इससे अलग रखें। अब देखना है कि इसमें आगे होता क्या है, लेकिन सीसी जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी, ये मामला रुकने वाला फिलहाल नहीं है। 15 दिन योगी ने कहा है कि इंतजार करें।
1: कार्यक्रम में शिरकत करने वहां पर योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से श्रद्धालु सन्न और आहत दोनों हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने की अयोध्या के कुछ लोगों से बातचीत।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का कथित विवाद सामने है, एसआईटी जांच कर रही है, आज बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री को सुनने आए। रुदौली पहुंचे थे और कामाख्या माता के मंदिर के पास उन्होंने ढेर सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी, लेकिन नजरें थी कि मुख्यमंत्री अयोध्या को लेकर और खासकर ये चढ़ावे में जो पैसे के वारे न्यारे हुए हैं उस पर कहते क्या हैं। बहुत साफ कहा कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग जो उन्हें सुनने आए महंत हैं मंदिर के, ये तमाम लोग क्या सोचते हैं बात करते हैं। ये बताइए कि आज जो योगी जी ने कहा क्या कहा और आप लोगों ने क्या समझा?
4: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आज तक आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो।
3: आप बताइए कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
5: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: तो ये बताइए कि जो बात कही है मुख्यमंत्री ने आप लोग उससे संतुष्ट हैं या लगता है कि अभी राम मंदिर?
5: नहीं, योगी जी जो कहते हैं, जैसे एक बार कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हम लोगों ने देखा कि जब बचाना चाहे सिक्योरिटी लगाया तो यम के दूत आए और सिक्योरिटी के बीच से लेकर चले गए, और मैंने देखा कि एक यहाँ का माफिया वहां रहता था पंजाब में, कई सरकार बचा रही थी, जब लोगों ने कहा वो तो व्हील चेयर से चलता है, वेंटिलेटर पर रहता है, तो हम योगी जी का प्रताप देखा कि वो वेंटिलेटर से चढ़ाया गया, जब यूपी में आया तो वो तंदुरुस्त हो गया, जो नरक के द्वार पर गया तो वो जो इनके सिक्योरिटी थी सोजी वगैरह उनसे टटसो के भागने लगा, तो ये सब संत की शक्ति जो कहते हैं वो सत्य है।
3: तो ये इन्होंने जो आज कहा है कि दूध का दूध पानी का कार्य करेंगे, 15 दिन धैर्य रखिए, तो वो धैर्य रखें?
5: बिल्कुल धैर्य, वो कहे तो 15 साल धैर्य रखेंगे, जैसे 500 साल राम जन्मभूमि के लिए रखा।
3: ये बताइए कि आप लोगों को भी उम्मीद है जो कहे?
6: पूरी उम्मीद है योगी जी पे, और जो कहा उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरा भरोसा रखते हैं उनके ऊपर।
3: जो योगी जी कह के गए हैं कि 15 दिन धैर्य रखिए, तो आप लोगों को लगता है धैर्य रखना है?
7: नहीं, धैर्य हम लोगों को रखना भी चाहिए, क्योंकि योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है इस पे वो हमेशा खरे उतरे हैं। और मैं तो जन्मभूमि को बहुत नजदीक से देखा हूँ, जिस दिन से ईंट रखी गई जब तक प्राण प्रतिष्ठा हुई तब तक मैं वहीं रहता था, डेली मैं वहाँ पे आता जाता था, देखता था। तो जो कुछ ये
3: चोरी जैसे की बात निकल करके आई और अब कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ हुआ है, तो आप लोगों को अंदर से कैसा लगा?
7: अब अंदर से तो बुरा लग ही रहा है कि किसी के ऊपर लांछन लगा दिया जाएगा, सही हो या गलत हो, लेकिन बुरा लगता है, बेशक वो गलत ही हो क्यों ना हो। तो उसका जांच होना जरूरी है, लोगों को संतुष्ट करना जरूरी है, जहां से अफवाहें पैदा हुई हैं उनको भी ब्लॉक कर देना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी ऐसी व्यवस्था ना बिगड़े।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी टीम की पांचवें दिन भी जांच जारी है। चंपत राय के ड्राइवर चिन्नू यादव से एक बार फिर पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी और उसके बयानों का मिलान अब तक जुटाए गए दस्तावेजों से किया जाएगा। एसआईटी की टीम मंदिर में प्राप्त जेवरात और आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही जमीन खरीद और इससे संबंधित पत्रावलियों को भी तलब किया जाएगा, जिनकी पड़ताल जांच के दायरे में शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार आभूषणों और चढ़ावे की वास्तविक मात्रा तथा उनके रिकॉर्ड को लेकर अभी तक स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं हासिल हुई है।

0: करोड़ों राम भक्तों की आस्था राम मंदिर, लेकिन अब इसी आस्था से जुड़े चढ़ावे को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या राम मंदिर में आए दान की गिनती के दौरान कोई खेल हुआ? क्या करोड़ों के चढ़ावे और आभूषणों की हेराफेरी का राज इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में कैद है? आज तक के हाथ लगी इन तस्वीरों में दिख रहा है राम मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती की जा रही है। टेबल पर नोट रखे हैं, कर्मचारी दान राशि गिनते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। अब यही फुटेज एसआईटी की जांच का अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जांच एजेंसी पता कर रही है कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था क्या थी और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वो कैसे हुई। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच आज पांचवें दिन भी जारी है। एसआईटी आज एक बार फिर पूछताछ करेगी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से। टिन्नू यादव, जिसका नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। एसआईटी अब तक करीब एक दर्जन अहम लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है और टिन्नू के बयानों का मिलान जुटाए गए दस्तावेजों से किया जा रहा है। जांच का दायरा अब सिर्फ टिन्नू यादव तक सीमित नहीं है, एसआईटी मंदिर की पूरी व्यवस्था की कड़ियों को जोड़ रही है। सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग, पास व्यवस्था, दान गिनने वाले कर्मचारी और सुरक्षा से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर चढ़ावे में गड़बड़ी हुई तो कैसे हुई? क्या किसी अंदरूनी व्यक्ति ने सिस्टम का फायदा उठाया या कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है?
1: अयोध्या मंदिर में चढ़ावे के कथित चोरी के बाद जिस बयान का सबसे ज्यादा इंतजार था वो आज आ ही गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने जो सबसे बड़ी बातें कही हैं वो ये कि इस पूरे मामले का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लोग 15 दिन धैर्य रख लें। 15 दिनों में उनकी एसआईटी जो लगातार काम कर रही है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बहाने विपक्ष को भी ललकारते दिखे और नसीहत भी दी कि बेशक मुद्दे उठे हैं लेकिन अयोध्या धाम को बदनाम करने की कोई साजिश नहीं करें।
2: फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
9: यू कैन नेवर हैव टू मेनी टूल्स, शॉप DeWalt डील्स एट लोज। Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
12: Swing and a foul out of play off to the left.
11: Big 12 Radio.
13: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
11: Talk Sport.
14: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
11: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
15: जो सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पक्षात पार्टी का अध्यक्ष नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग है, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
16: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
15: देखेंगे कोर्ट। चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
17: सर जिस दिन
15: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनेगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनेगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव है।

0: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे। लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
1: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
3: देख लेंगे,
4: जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे बेईमान गद्दार।
0: उद्धव के 2 सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
1: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
5: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
0: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

से योगी आदित्यनाथ ने की हम लोग की बौछार, बोले राम भक्त पर गोलियां चलवाने वाले हमें ना दे उपदेश, एसआईटी करेगी दूध का दूध पानी का पानी। समाजवादी पार्टी में बगावत पर ओपी राजभर का एक और दावा, पीडीए की बैठक में मुरादाबाद की सांसद के ना पहुंचने पर सवाल, आज तक से बोली सांसद मुझे नहीं बुलाया पर मैं नाराज नहीं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में तनाव के आसार, उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली, शिंदे की भी जनसभा, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन अलर्ट। हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का 5 दिनों की पाबंदी हटाने से इनकार, केंद्र का फैसला सही करार, बोली अदालत सरकार को है अधिकार। ईरान अमेरिका डील की कामयाबी पर सुलगे सवाल, ईरान का जिनीवा जाने से इनकार, लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी, जेडी वैंस का दौरा भी स्थगित।

राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है। SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। अयोध्या के प्रभु राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही जो टीम है वो लगातार वहां पर जा रही है। दस्तावेजों की पड़ताल हो रही है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उधर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं। वो कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सरकार पर इस वक्त हमलावर है। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। थोड़ी देर बाद सीएम योगी राम मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। ये चार तस्वीरें जिसमें एक तरफ एसआईटी की जांच है, एक तरफ टिन्नू यादव जो कि मुख्य आरोपी के तौर पर फिलहाल आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की इसी अयोध्या के की भूमि से हुंकार आप देख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जहां एक ओर जांच हो रही है, दूसरी ओर सियासी चढ़ाई भी तेज है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमले की बौछार की तो आज योगी ने अयोध्या पहुंचकर जवाब दिया। कहा कि माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले हमें राम भक्त पर उपदेश ना दे। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं, माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले लोग राम भक्ति पर हमें उपदेश ना दे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की भूमि से जवाब दिया है।
1: इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं, जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोले ये राम भक्तों का अपमान हो गया। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: और आइए आपको इसी अयोध्या में सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी कुमार अभिषेक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज बड़ा सवाल यह है कि ये एक सियासी लड़ाई में तो बन तब्दील हो चुका है, फुल ब्लोन सियासी लड़ाई जिसको कहते हैं, लेकिन मामला ये है कि क्या वाकई राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या वाकई जो चढ़ावा चढ़ा वही किसी ने चोरी कर लिया। जांच कहां तक पहुंची और मामला कैसे आगे बढ़ता दिख रहा है?
2: देखिए अंजना, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि गड़बड़ी हुई है, चोरी भी हुई है और ये इनके बयानों से भी झलक रहा है। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरी जनसभा में पहली बार इस पूरे मामले पर जम करके बोला है और उन्होंने ये कहा है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में भी इस मामले में लोग दोषी हैं। देखिए, जिस तरीके से मीडिया में बयान आए हैं नृपेंद्र मिश्र के, उन्होंने कहा है कि एक सीसीटीवी में एक शख्स दिखा है जो कि पैसे को अपने जेब में रखकर ले जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई है, ये भी निकल करके आया है कि कब से ये है इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि पूरे मामले की एक बड़ी जांच चल रही है। आप देखें तो SIT जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक पूरे टाइम मंदिर परिसर में सिर्फ और सिर्फ इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज तमाम CCTV खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जहां जहां लोगों ने अपने आभूषण हीरे जवाहरात जो दिए हैं उन सबों को देखा जा रहा है। जो लोग इससे जुड़े हैं एक एक करके सबकी पेशी हो रही है, सबसे पूछताछ हो रही है। तो जांच का दायरा बड़ा है और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन धैर्य रखिए, यानी कि अभी इस जांच में वक्त लगेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो दोषी है वो भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बात तो मान लीजिए कि आस्था पर इतना बड़ा अगर जब मामला उठ गया तो अब सरकार को भी बहुत सीरियसली बहुत शिद्दत से इस काम को पूरा करना है कि इसमें पारदर्शिता दिखे, इसमें सरकार की तरफ से एक सीरियसनेस दिखे कि हाँ जो कुछ हुआ है उसका लॉजिकल एंड क्या होता है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, देखिए नेचुरल है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं ये भी मान लीजिए, क्योंकि चंदा चोरी CC जिसे अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी को भी परेशान करेंगे। जो पूरा का पूरा एक हिंदू ही को सिस्टम है जिसे लगता है कि इस घटना से एक छवि को धक्का लगा है, एक साख को धक्का लगा है, वो भी इस ऐसे मुद्दों से परेशान होंगे। तो मुख्यमंत्री ने तो आज अपनी जनसभा में बहुत कुछ साफ कर दिया है कि आप धैर्य रखिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई भी उसी अंदाज में भी चलती हुई दिखाई देगी। अंजना,
0: अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं अभिषेक?
2: जी बिल्कुल, मैंने कई लोगों से बात की और जब उनके कार्यक्रम का खत्म हुआ तो मैंने कई लोगों से बात की। उनका कहना है कि देखिए जो बातें कह रहे हैं योगी जी उसमें दम है और उनकी बातों पर हम लोगों को भरोसा है।
0: जी, तो
2: जो जब हम लोगों ने 500 साल इंतजार कर लिए तो 15 दिन हम क्यों नहीं इंतजार करेंगे।
0: बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। और इस वक्त राम मंदिर से जुड़े हुए चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच एक बवाल जरूर देश में है जो सियासी है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसका है। ऐसे लोग जो इस मंदिर से सीधे जुड़े हैं, ऐसे अनेकों राम भक्त जिनकी श्रद्धा इस मंदिर में है, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नृपेंद्र जी आज तक पर।
3: धन्यवाद
0: निपेन जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि इसके पहले अनेकों आपके इंटरव्यू लिए, लेकिन या तो वो पावन मंदिर की भूमि पर इंटरव्यूज हुए या उसी के आसपास हुए, तो हमेशा बात होती थी बड़ी पॉजिटिव कि भाई मंदिर आज कैसे इतना बड़ा हो गया। आप भी हमेशा बताते थे कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, आपकी आंखों के सामने हर स्टेज गुजरा है, वहां से जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंट्रोवर्सी?
3: बहुत सही
0: है, तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंट्रोवर्सी?
3: आपने बहुत सही कहा है, जैसे सभी श्रद्धालु वो एक तरीके से अचंभित हैं कि उनके दान का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ
0: जी।
3: ऐसे ही हमें भी पीड़ा है कि ये जो घटना है वह श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है। आज ट्रस्ट के प्रबंधन के अलग अलग जो अंग हैं उन सभी पे एक प्रश्न सूचक संकेत है।
0: बिल्कुल,
3: और एक माने में आप कहते हैं ना कभी कभी
0: जी
3: वॉर्न्ड एट द राइट टाइम, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि सभी एसेट्स जो बने हैं, जो आपने भी बताया, अब वो सभी लगभग ट्रांसफर हो गए हैं ट्रस्ट को, यानी रिकॉर्ड्स साइन हो करके LNTTC से अब ट्रस्ट के पास है। तो अब तो पूरा प्रबंधन ट्रस्ट के हाथों में है और वहां पर ये कमजोरी अब दिखाई देने लगी है।
0: और उस कमजोरी में सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एक करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या प्रबंधन में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि अब यह तय है कि अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सारा प्रबंधन का काम दिया हुआ है, अब ऐसे में कौन उसको देख रहा है, नहीं देख रहा है, नाम तो सारे हैं लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई ना बने, इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
3: मैंने औपचारिक रूप से तो सुझाव नहीं दिया है, लेकिन मीडिया चैनल्स में मैंने अपने विचारों को साझा किया है। मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आलोचना नहीं है, ये उसका स्वरूप है। हाँ। आज के प्रबंधन का जी। जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं वो स्वयं सेवक हैं, उनको अनौपचारिक ढंग से बता दिया गया है कि आप अमुक कार्य करें, ऐसे करें वगैरह, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है वह नहीं है। और लगभग लगभग 1500 लोग कार्य कर रहे हैं आज पूरे इस परिसर में, इट इज ए मिनी सिटी।
0: बिल्कुल।
3: तो ऐसे में प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, हायरार्की तय करनी होगी और जिम्मेदारी स्पष्ट करनी होगी, और वो सभी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है
0: जी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भी है और उसके बाकायदा CEO भी होते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इसी उन्हीं लाइंस पर यहां पर भी एक प्रोफेशनल तरीके से एक व्यवस्था तय की जाए जिसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, सबका रोल तय होगा, सबका पैसा तय होगा, सैलरी?
3: तिरुपति देवस्थानम जो है
0: जी,
3: वहां पर यद्यपि वो कानून से टेकओवर सा हो गया है सरकार का, लेकिन वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफाइंड है और फॉर्मल है। नियमित रूप से लोग नियुक्त होते हैं एक निश्चित अवधि में और कार्य करते हैं। तो मैं कभी यह सुझाव नहीं दूंगा कि ट्रस्ट की ऑटोनॉमी को समाप्त करके सरकारीकरण हो जाए, लेकिन अयोध्या के ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको अवश्य एक तरीके से एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिलनी चाहिए उन्हें कि वह किस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मल ढंग से वह करें, और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
0: निपेन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे, क्योंकि आपने सब कुछ निर्माण का काम भी अपनी आंखों के सामने कराते हुए देखा है, एक लंबे वक्त तक एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपने सर्व किया है, तो आप सारे नियम कानून जानते हैं और अयोध्या को भी अब बहुत अच्छे से समझते हैं, सही नहीं कह रही हूं मैं?
3: नहीं, आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों, मैं सेवा काल में चल रहे अधिकारी को इसलिए नहीं सुझाव दे रहा क्योंकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, वो फिर जिलाधिकारी जैसे हो जाते हैं, तो वो नहीं, सेवानिवृत्त अधिकारी को ट्रस्ट के अंडर में नियुक्त किया जाए, तो ऐसा अधिकारी जो है वह निश्चित रूप से जो ये कमियां उभरी हैं उनको दूर करने में सक्षम होगा।
0: ठीक है, अब निपेन जी आपसे, मतलब चूंकि मामला क्लियर है, आप निर्माण से जुड़े थे, आपने खुद ही शुरू में बताया कि निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद जितना भी L&T, TCS, जितना जितना काम था सारे कागज वगैरह ट्रस्ट को दे दिए गए, सौंप दिए गए। अब ट्रस्ट की भूमिका पर आते हुए चढ़ावे तक पहुंचते हैं सर। निपेन जी, आपकी नजर में भी आया होगा कि कैसे चढ़ावे की वहां पर काउंटिंग होती है। ये जानकारी आई कि 40 पेटियां वहां पर हैं जहां पर लोग चढ़ावा देते हैं और बहुत सारे हीरे जवाहरात या लोग सोना वगैरह भी दान कर रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं तय की जा रही है कि वो कहां है या उसका लेखा जोखा कहां है। जो 40 पेटियां हैं उसमें पैसों की गिनती, बताया तो यह गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती, हीरे जवाहरात या लोग सोना वगैरह भी दान कर रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं तय की जा रही है कि वो कहां है या उसका लेखा जोखा कहां है। जो 40 पेटियां हैं उसमें पैसों की गिनती, बताया तो यह गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग भी, SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो। आपको इस बारे में क्या जानकारी है और इस व्यवस्था में, चढ़ावे की व्यवस्था में क्या बदलना होगा ताकि इस तरह से श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो, चढ़ावा की चोरी की नौबत ना आए?
3: जो आपकी चिंता है और जो स्वाभाविक है वही मेरी चिंता है। मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
0: जी,
3: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है, SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
0: जी,
3: अंगूठी
0: जी,
3: कड़ा
0: चेन,
3: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थीं और उससे भी अधिक नियंत्रण जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली, और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: निवेन जी, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से कोई समझा नहीं सकता था, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से भी जुड़े थे कि कैसे इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि SBI की तरफ से इस चढ़ावे की गिनती और चढ़ावे की देखरेख को लेकर, प्रबंधन को लेकर भारी लापरवाही और चूक की ओर आप इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा स्थिति में मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सीधे कई उंगलियां उठ रही हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, उनको लेकर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। उनके कोई शायद ऑपरेटिव है टिन्नू यादव नाम के। आपने इन सबके साथ मिलकर काम किया है जब निर्माण का काम हो रहा था, इस पर आपकी तरफ से क्या टिप्पणी आएगी?
3: कदाचित बहुत से लोग मेरे, अब जो मैं टिप्पणी देने जा रहा हूं, उसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रकार से अनक्वालिफाइड प्रमाण पत्र दे रहा हूं। श्री चंपत राय जी एक बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं, वो एक महत्वपूर्ण संगठन से जीवन उनका पूरा व्यतीत हुआ है, उन्होंने जीवन के हर क्षण उस संगठन को दिए हैं और राष्ट्र को दिया है। जहां तक उनके निष्ठा चरित्र सादगी का प्रश्न है, मैं कभी भी, जब तक कोई मेरे समक्ष ठोस साक्ष्य नहीं हो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब आपने कहा उनके साथ जुड़े हुए लोग, निश्चित रूप से लोगों ने श्री चंपत राय जी की सादगी, सरलता और मानवता का दुरुपयोग किया है, भीषण दुरुपयोग किया है, छोटा मोटा दुरुपयोग नहीं किया है। ये जो सारी व्यवस्था विश्वास पर चल रही थी जी, उसमें एक तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है, और यही आप देखेंगे SIT में जांच में आएगा। अभी तो मैं इस बारे में इससे अधिक बोल भी नहीं सकता
0: जी,
3: लेकिन वास्तविकता यही है जो मैंने आपके समक्ष बताया।
0: निपेन जी, मेरा अगला सवाल, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन और प्रबंधन दोनों से रिलेटेड है, सीसीटीवी को लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के दौरान भी आप वहां पर रहे होंगे। क्या चढ़ावे के कमरे में सीसीटीवी ऐसे थे जिनसे निगरानी रखी जाती थी, जिस कॉरिडोर से लोग आते जाते हैं वहां पर कितने सीसीटीवी लगे थे? और ऐसी भी जानकारी आई सर कि कुछ ऐसे कैमराज लगाए गए थे जिसके बारे में मंदिर के अधिकांश लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई थी, क्या ये इस बात में सच्चाई है? नृपेन जी,
3: सीसीटीवी दो अलग अलग विभागों से लगे
0: जी,
3: एक तो पूरा पुलिस और पुलिस इंटेलिजेंस विभाग ने लगाए, और दूसरा जो कि पुलिस के कहने से ट्रस्ट ने लगवाए। इन सब का एक कॉमन कंट्रोल रूम है, जो पुलिस विभाग के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जगहों पे जो सीसीटीवी लगे हैं उनके कार्य पर निगरानी के लिए ट्रस्ट ने भी अपने कर्मचारी रखे थे और लिंक प्राप्त कर लिया था। अगर मैं समझाऊं कि जो डोनेशन रूम था
0: जी,
3: यहां पर जो सीसीटीवी लगा इसका कंट्रोल दो जगहों पे था,
0: ठीक है,
3: एक जो ट्रस्ट के पास था, दूसरा जो पुलिस के पास था। यहां पर जो सीसीटीवी लगा इसका कंट्रोल दो जगहों पे था,
0: ठीक है,
3: एक जो ट्रस्ट के पास था, दूसरा जो पुलिस के पास था। पुलिस के कंट्रोल रूम में बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन पर शॉट्स आते हैं और बहुत तेजी से वो वहां पर जो स्टाफ है उसके सामने गुजरते हैं। ये जो स्पेसिफिक था ये ट्रस्ट को देखना था। अब अनुभव है, तकनीकी कार्य में कभी कभी अनुभव नहीं मिल पाता। पहली कठिनाई तो यह हो रही है और होने जा रही है
0: जी,
3: सीसीटीवी का कुल समय वो 45 दिन का है,
0: 45 दिन
3: उसके बाद वह स्वतः इरेज हो जाता है, ऑटोमेटिक इरेज है। तो आपको तो खैर बहुत जानकारी होगी, आप कहेंगी तुरंत कि इसका वीडियो क्यों नहीं बना लिया गया, वीडियो बना करके इसके कैसेट्स क्यों नहीं रखे गए। जी हाँ, ये है, मेरा अनुमान है, मैं जानता नहीं, मैंने कोई स्पेसिफिक प्रश्न न पुलिस से पूछा है न ट्रस्ट से पूछा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि काउंटिंग रूम के रिकॉर्ड्स सीसीटीवी में 45 दिन के अतिरिक्त कदाचित नहीं हो, या एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेंगे,
0: बहुत बड़ी।
3: तो जो आप लोग सवाल पूछते हैं वो यह है ना कि कितने दिनों से ये गड़बड़ी चल रही थी और इसका आयाम क्या था। यह कदाचित एसआईटी के समक्ष चुनौती होगी और वो अनुमान तो कर सकेंगे लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक पकड़ हो जाए, चित्रों से पकड़ हो जाए। जैसे 45 दिन में कुछ चित्र आए हैं मैंने सुना है, जो यही 44 लोग हैं इनमें से कुछ लोगों के चित्र मिले हैं, पिक्चर मिली है, लेकिन देखना तो 44 लोगों को है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 44 लोग में से 6 चोर होंगे और बाकी साधु होंगे, सबको वहां जानकारी होगी, तो ये जानकारी दी क्यों नहीं गई। जो लोग नहीं चोरी कर रहे थे वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे थे। तो ये एक एसआईटी के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी निष्कर्ष निकालना, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं।
0: आखिरी के दो सवाल, क्योंकि मुझे पता है सर आपका एक अभी आपकी कहीं जाना है आपको एक मीटिंग के लिए। जी आखिरी के दो सवाल, ये जो पुलिस का की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर में है, अगर आप हमें बता सके कि किस स्तर के अधिकारी तक है वहां पर, क्या अलग से पुलिस चौकी में एक डीसीपी अयोध्या मंदिर, मतलब किस स्तर के अधिकारी को वहां पर दिया गया है और देखरेख के लिए चढ़ावे के दौरान किस स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होती है।
3: जो पुलिस विभाग है उसके इमीडिएट जो लोग प्रेमिसेस में जिम्मेदार है, एसएसपी डीआईजी बाहर हैं, लेकिन प्रेमिसेस में पुलिस की तरफ से एसपी सिक्योरिटी है,
0: ठीक है,
3: और उनके अंडर में पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन बाकी पुलिस के विंग जो हैं वहां पर, जैसे सीआईएसएफ है, टेंपल की स्पेशल टास्क फोर्स है, बीएसएफ है, इन पर भी उनका एक तरीके से सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन उनके असर की बात है। सीआईएसएफ से एक मौके पर डिप्टी कमांडेंट परिसर में रहते हैं, वो इसको देखते हैं। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। आपने पूछा कि डोनेशन कक्ष के पास पुलिस की क्या व्यवस्था थी?
0: जी,
3: मैं समझता हूं यहां कोई कमी थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को पूरा पूरा यहां पर चार्ज नहीं, मैं समझता हूं यहां कोई कमी थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को पूरा पूरा यहां पर चार्ज नहीं दिया गया कि वो पुलिस जो लोग अंदर जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बाहर निकलेंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बक्से में रुपया गिन करके बैंक जाएगा उसके साथ पुलिस जाएगी। ये सारे कार्य कदाचित पुलिस को औपचारिक रूप से नहीं दिए गए हैं।
0: ये अपने आप में सबसे बड़ा लूपहोल है अगर ऐसा नहीं हो रहा था निपेन जी। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने खुद ही मुझे इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन अचानक आपको कॉल आया था, आपने हालांकि खुद भी इच्छा जाहिर की थी कि भाई राम मंदिर के निर्माण का पूरा काम अगर आप देखना चाहें तो आप देखें। उस कॉल से लेकर आज तक लोग ये जानते हैं कि आप इस उम्र में भी कैसे धूप सर्दी लगे रहे वहां पर मंदिर के निर्माण में, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, तो आपकी बात जाहिर तौर पर मायने रखेगी। तीन बड़ी बातें जो आप कहते हैं कि भाई ये तुरंत कीजिए ताकि आस्था से श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो। निपेन जी,
3: सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था नए सिरे से देखकर उसको पुनर्स्थापित या स्थापित किया जाए। पुनर्स्थापित नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दूसरा, जो ट्रस्ट है उसकी जो वर्तमान संरचना है उसमें एक ये व्यवहारिक कठिनाई है कि जो रेगुलर मेंबर हैं, देखिए मैं पदेन सदस्य हूं, जिलाधिकारी पदेन सदस्य है, लेकिन जो रेगुलर मेंबर हैं उसमें दो तीन को छोड़कर सभी बाहर के हैं, तो उनके द्वारा जो योगदान मिलना चाहिए या उनसे जो योगदान लेना चाहिए कॉन्शियस एफर्ट करके वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मिलजुल कर ट्रस्ट में एक ये सीमा है जनरल सेक्रेटरी की कि वो मिलजुल कर एक ही दो लोगों से परामर्श करते हैं
0: जी।
3: जो अयोध्या में है, तो ये जो ट्रस्ट का जो संरचना है
0: जी,
3: मेंबरशिप की, इसे भी एक नए सिरे से देखना चाहिए। और तीसरा
0: जी,
3: मैं समझता हूं जो इट कैन नॉट वेट इवन फॉर अ डे, पूरे जो वर्क मैनुअल जितनी चीजें हैं उनका एक तरीके से वर्क ऑडिट करना होगा, लंबा समय दे करके नहीं, 15 दिन में वर्क ऑडिट अलग अलग स्टेशंस के हों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जनरेटर सेट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ड्रेनेज, जीरो डिस्चार्ज, हर चीज का वर्क ऑडिट हो, दान पत्र। आपने कहा बहुमूल्य मेटल्स, भगवान के आभूषण और वस्त्र, उनका हिसाब, जो भगवान के वस्त्र उतारे जाते हैं उनका सदुपयोग क्या हो रहा है, हर चीज को क्वेश्चन मार्क करके उसका वर्तमान क्या स्थिति है ऑडिट करके उसमें क्या सुधार लाया जाए वह करना होगा। ऐसे मेरे तीन सुझाव हैं।
0: नवीन मिश्र जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया और काफी लोग हो सकता है नाराज भी हो, खुश भी हो आपकी बात से, लेकिन एक उम्मीद जरूर बनती है कि आपके सुझाव के जरिए पूरे सिस्टम से लूपहोल को हटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपेन जी।
3: धन्यवाद आपको।
0: तो निपेन मिश्र जी को आप सुन रहे थे, जिनका यह मानना है कि अयोध्या के जो फिलहाल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें भी मूल चूक परिवर्तन पूरी प्रबंधन में करने की जरूरत है। सुरक्षा के नाम पर उनका कहना है कि बहुत बड़े लूप होल्स हैं जो चढ़ावे का वहां पर भंडार है वहां पर। इसी के साथ साथ अनेकों उन्होंने अन्य बात सुझाए हैं जिसके जरिए जांच की प्रक्रिया को तेजी के साथ लागू करना और प्रबंधन को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब आइए आपको दिखाते हैं डील डायलॉग, हमारे ईरान और अमेरिका के बीच हुए डील पर कॉन्क्लेव का अगला सेशन। डील डायलॉग देखिए।

0: ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 सूत्रीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है उसे लेकर अमेरिका और इसराइल दोनों में जबरदस्त बवाल है, हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? वो जो 14 बिंदु हैं, क्या उसमें इसराइल की भी अनदेखी की गई है? इसराइल के जितने भी सुरक्षा को लेकर उनके पहलू थे, और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ भारत में इसराइल के राजदूत एम्बेसडर रूवन अजार हैं। एम्बेसडर साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। डील और डायलॉग में सबसे पहले ये बताइए, क्या इसराइल के हितों की अनदेखी हुई है, और क्या ये जो 14 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग है ये इसराइल पर बाध्य है?
1: I also read the G7 statement, by the way, which also is worth reading.
2: मैंने G7 का बयान भी पढ़ा, जो पढ़ने लायक है। इसराइल और अमेरिका को एक शानदार सैन्य जीत मिली है, क्योंकि हम अपने देश पर मंडरा रहे अस्तित्व के खतरों को दूर करने में कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ ईरान के आपराधिक नेतृत्व को हटाया, बल्कि सैन्य लिहाज से ईरान को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान भी पहुंचाया है। कूटनीति की बात करें तो हम ऐसे मोड पर हैं जहां अमेरिका को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना पड़ा, जिसका संबंध फौरी हितों जैसे कि एनर्जी मार्केट से है।
1: What we are seeing here is a situation which the Strait of Hormuz are going to go back.
2: हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात सामान्य होने वाले हैं, और पूरी कूटनीतिक बातचीत अभी शुरू ही हो रही है।
1: Negotiation was it's just beginning.
0: लेकिन एम्बेसडर साहब, ये बताइए, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले होने की आप बात कह रहे हैं, 27 फरवरी तक तो वैसे ही खुला था। उस समय ईरान का कोई वहां पर वर्चस्व नहीं था, कोई टोल लेने की बात नहीं थी, कोई चोखोल नहीं था, उस समय सब खुला था। और अब ईरान ने उस पर बिल्कुल अपनी पकड़ बनाई हुई है कि जिसको वहां क्रॉस करना है उसको पैसे देने होंगे, तो ईरान की शक्ति तो बढ़ी है।
1: At what price? At the end of the day, this is not something you can use.
2: किस कीमत पर? आखिरकार यह ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल आप हमेशा के लिए कर सकें, क्योंकि इस इलाके और दुनिया के सभी देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेंगे। इस बार जरूर वो हॉर्मुज का इस्तेमाल कर पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में भी ऐसा कर पाएंगे। अब हर कोई समझता है कि एक सहयोगी के तौर पर ईरान कितना खतरनाक और भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस समय वो इसका फायदा उठा पाए हों, लेकिन इससे उनकी सैन्य हार कम नहीं हो जाती, और न ही इस बात से कि इस सैन्य अभियान और कूटनीतिक वजहों से इसराइल अब कहीं ज्यादा सुरक्षित है।
0: लेकिन इस एमओयू के हस्ताक्षर के बाद क्या आज इसराइल ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही थी कि कल भी इसराइल का एक सिपाही मारा गया है, कुछ सिपाही घायल हुए हैं, और ये जो पैराग्राफ 1 है ये क्या कहता है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम होगा और परमानेंट युद्ध विराम होगा, अभी से लागू होगा, और उसमें लेबनान का मोर्चा शामिल है।
1: Well, there is the call for a ceasefire that is not being respected.
2: सीज फायर की मांग तो है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। हालांकि ईरानियों के दावे के उलट लेबनान से इजरायली सेना हटाने की कोई मांग नहीं है। इसराइल तब तक दक्षिणी लेबनान में बना रहेगा जब तक हमें गारंटी नहीं मिल जाती और शांति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हमारे और लेबनान सरकार के बीच बातचीत चल रही है। 3 जून को बातचीत का तीसरा दौर खत्म होने के बाद हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति जताई है। इससे यह देखा जाएगा कि क्या लेबनानी सेना हिजबुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों को खाली कराकर उन्हें नियंत्रित कर सकती है या नहीं। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता, इसराइल दक्षिणी लेबनान में ही रहेगा।
0: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो क्या इसराइल पलटवार करेगा, या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
1: वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स एंड
2: हम अपना बचाव करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो इसराइल अपना बचाव करेगा।
0: लेकिन जिस तरह की भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिसका इस्तेमाल किया कि उन्होंने बीबी को कहा, यानी बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि गो इजी ऑन हिजबुल्लाह, कि एक हिजबुल्लाह का आदमी एक बिल्डिंग में घुसता है, पूरी बिल्डिंग मत गिराओ, हल्के हाथ से काम करो, क्या आज इसराइल अकेला अलग थलग पड़ता जा रहा है? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसराइल के लिए या इसराइल के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो इसराइल का या बेंजामिन नेतन्याहू का कोई वजूद ही नहीं है।
2: सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि इन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के लिए पहले के किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा काम किया है। उन्होंने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी है। उन्होंने गोलान हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। उन्होंने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में शिफ्ट किया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हालांकि इस बात पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उससे मैं यह समझता हूं कि ईरान को लेकर वो अपना फैसला ले चुके हैं। ठीक है, वो चाहेंगे कि इसराइल कम आक्रामक हो। जैसा कि मैंने कहा, हम कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आत्मरक्षा के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और हम दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन जारी रखेंगे और अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे।
0: नहीं, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के लिए बहुत किया, जेरूसलम को राजधानी के रूप में स्वीकार भी किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मोहम्मद बगैर गलेबाफ के बयान आते हैं कि जेरूसलम पर फतेह करेंगे, तो क्या अमेरिका ने इसराइल के हितों की इस एमओयू में अनदेखी की है?
2: देखिए, गालिबाफ वही कह रहे हैं जो उनके आपराधिक सुप्रीम लीडर पिछले 40 सालों से कहते आ रहे हैं कि वो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं और यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें यह सब सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर नहीं मिल सकता। हमने उन्हें सैन्य रूप से हराया है, अब उनमें हम पर हमला करने की क्षमता नहीं है क्योंकि हमने उन खतरों को बेअसर कर दिया है। ईरान की सेनाएं हार चुकी हैं, लेकिन हम खबरदार रहेंगे क्योंकि हम ईरान के कट्टरपंथी धार्मिक शासन से जुड़े खतरों को कम करके नहीं आंकते।
1: The Prime Minister of Israel has announced a program of investment of more than 100 billion.
2: ईरान से भविष्य में होने वाले हमलों से खुद को बचाने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और रक्षा तकनीक में 100 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वह करेगा। हम इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका सैन्य स्तर पर हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी कूटनीतिक स्तर पर हमारे बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे हित और लक्ष्य एक ही हैं। यह सुनिश्चित करना कि ईरान अब इस क्षेत्र के देशों को पूरी तरह खत्म करने की धमकी न दे सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका द्वारा सेनको के तहत बनाया गया सिस्टम ईरानी खतरे के बावजूद इस क्षेत्र के देशों की कामकाज जारी रखने की क्षमता को बनाए रखे।
0: तो आप कह रहे हैं कि इसराइल करीब 100 बिलियन डॉलर का खर्चा करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसको देखिए, इस एमओयू के मुताबिक 300 बिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे इस समय ईरान को। तो सोचिए, ईरान अपनी सुरक्षा में कितना पैसा खर्च करेगा।
1: दे विल हैव टू डिसाइड, गौरव, वेदर टू डाइवर्ट दिस मनी।
2: उन्हें यह तय करना होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें यह पैसा मिलेगा ही, ठीक है? ये सब तो आखिरी डील के बाद ही होगा, लेकिन मान लेते हैं कि उन्हें पैसा मिल जाता है। उन्हें यह तय करना होगा कि इस पैसे से उस $1 ट्रिलियन के नुकसान की भरपाई करें जो इस युद्ध में हुआ है, या फिर अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करें। 80 मिलियन लोग जो इस शासन की वजह से परेशान हैं और जिन्हें इस इलाके पर कब्जा करने के झूठे सपने दिखाकर बंधक बनाकर रखा गया है।
0: आप कह रहे हैं कि इसराइल की शक्ति बढ़ेगी और ईरान की शक्ति कम होगी। यहां तो पैराग्राफ 4, जिसे अमेरिका में भी सरेंडर कहा जा रहा है, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्दर अंडरटेक्स टू रिमूव इट्स फोर्सेस फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विद इन 30 डेज ऑफ द फाइनल डील। यानी अमेरिका अपनी सेना और अपने खेमे ईरान के आसपास से कम करेगा डील के 30 दिन के अंदर। तो ये इसमें अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है कि ईरान का वर्चस्व बढ़ रहा है सर?
1: If we reach a final deal in which the threats of Iran will be neutralized,
2: अगर हम किसी ऐसे फाइनल समझौते पर पहुंचते हैं जिससे ईरान से होने वाले खतरे खत्म हो जाएं, तो अमेरिका के लिए उस सैन्य तैनाती को बनाए रखने का कोई कारण नहीं होगा जिसे उसने अभी तैनात कर रखा है।
1: Of the future of the aspirations of Iran,
2: तो सवाल यह है कि अब हम ईरान की बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने की इच्छाओं और भविष्य की शर्तों पर कूटनीतिक बातचीत करेंगे। अगर हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित कर सकें कि ये खतरे खत्म हो गए हैं, तो इस इलाके में इतनी बड़ी फौज रखने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। हमारे लिए चुनौती ये है, और मैं आपसे सहमत हूँ कि इन 14 पॉइंट्स में वो चीजें शामिल नहीं है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा और प्रॉक्सी गुटों को समर्थन। हमारे लिए यह एक कमी है, बेशक हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाते रहेंगे ताकि उन्हें इस पर फिर से सोचने और हमारे साथ सहयोग करने के लिए राजी किया जा सके, ताकि यह पक्का हो सके कि इन खतरों से निपटा जाए, क्योंकि अगर इनसे नहीं निपटा गया तो भविष्य में टकराव की स्थिति बन सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, इज़राइल अपनी रक्षा खुद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा।
0: मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान के हितों की इसमें ज्यादा रक्षा की गई है। आप पैराग्राफ 10 को भी देखिए कि यूएसए विल अंडरटेक इमीडिएटली अपॉन साइनिंग ऑफ एमओयू अंटिल टर्मिनेशन ऑफ सैंक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी विल इशू वेवर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इरानियन क्रूड ऑयल। तो जो 47 वर्ष तक प्रतिबंध लगाए थे कि वो कभी क्रूड ऑयल दे सकता है नहीं दे सकता है, कोई खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है, अब तो जो चाहे उसे खरीदेगा, उससे हम लोग का तो बहुत फायदा होगा और देशों का तो फायदा होगा, लेकिन क्या इसमें इज़राइल के हितों की अनदेखी हुई है?
2: मुझे लगता है कि आप लिखी हुई बातों का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं है। अंतरिम समय के दौरान अमेरिका कब और किस हद तक राहत देगा और कितनी राहत देगा, यह अभी देखना बाकी है। पेपर से यह बात बिल्कुल साफ नहीं है, यह बहुत अस्पष्ट है। और जो बात साफ है वह यह है कि जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक प्रतिबंधों में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो अपनी मनचाही सोच के हिसाब से इसे देख सकते हैं, आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं और मनमाफिक नतीजे निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसका बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए यह उन मुद्दों को शामिल नहीं करता जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए ताकि यह डींग मारी जा सके कि अमेरिका एक तरह से हार गया है, मुझे लगता है कि यह बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। और आखिर में अभी हमारे सामने जो स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैन्य रूप से ताकत का संतुलन हमारे पक्ष में हो गया है, इस क्षेत्र में अमेरिका की अभी भी बड़ी मौजूदगी है। हमारे पास 60 दिनों के लिए सीज फायर है जो शायद न टिके। ठीक है, और इसलिए नतीजे निकालते समय हमें ज्यादा सावधान रहना होगा।
0: ठीक, तो आपका मानना है कि इसराइल के कुछ हितों की तो अनदेखी हुई है, लेकिन सैन्य कार्रवाई में इसराइल ज्यादा ताकतवर निकला है इस पूरे ऑपरेशन के बाद। बाकी आपकी नजर रहेगी, हम भी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रखेंगे। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, नमस्ते।
0: नमस्ते। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ये है वाराणसी का दाल मंडी इलाका। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 60 फीट चौड़ा वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाना है। इसके लिए रास्ते में आने वाली इमारतों को ढाने का काम जोर शोर से चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लिए जाने वाले इस वैकल्पिक रूट पर 6 मस्जिदें भी चिन्हित की गई हैं। PWD, VDA और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गुरुवार को वाराणसी के इस मुस्लिम बहुल इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 5 मस्जिदों की नपाई का काम पूरा किया। जिन मस्जिदों की पैमाइश की गई है उनमें मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारण मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल है। नई सड़क की तरफ स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद की नापी का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है।
8: अभी लगभग 140 के करीब मकान जो है अंडर डिसमेंटलिंग है, अप्रॉक्सिमेट 100 प्लस जो है वो डिसमेंटलिंग किया है।
9: तो कब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य माना जा रहा है?
8: जून तक लैंड खाली होने की उम्मीद हो जाएगी। जून तक, दिन के बाद से 3 महीने में कर देंगे।
7: इसके पहले नोटिस चस्पा कर मस्जिद खुद हटाने की अपील की गई थी, लेकिन अब प्रशासन एक्शन में है और सड़क किनारे पड़ने वाली अन्य इमारतों के साथ ही मस्जिदों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दर बढ़ा था उसमें अब कमी दिखेगी, और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर या खाद के जो दाम बढ़ रहे थे उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रोफेसर अरुण कुमार, एससी गर्ग और संजीव आलूवालिया। सबको आप जानते हैं, परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ से आपसे सवाल पूछूंगी कि युद्ध के दौरान 4 बार कीमतें बढ़ी पेट्रोल डीजल की, और पूरा प्राइस था 7 से 8 रुपए का, क्या वो अब कम होगा, और अगर वो कम होगा तो क्या हमारे पॉकेट पर उसका असर दिखेगा?
1: देखिए, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। फरवरी 27-28 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 पर बैरल थी, और जब हम ये शो कर रहे हैं आज $80 से कुछ ज्यादा पर बैरल है, और बीच में मार्च में $157 पर बैरल तक कच्चे तेल की कीमत पहुंची, तो आज भी कच्चे तेल की कीमत फरवरी की कीमत से लगभग 17-18% ज्यादा है, और हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि 7-8% की हुई है। दुनिया के विकसित और एमर्जिंग देशों की अगर हम तुलना करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण सबसे कम वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ 7-8% की ही वृद्धि हुई है। उसका कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी है आज भी इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी, और ईश्वर करे ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए उसके बाद भी, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ है। दुनिया की मल्टीलेटरल एजेंसीज के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के आसपास GDP ग्रो करेगी। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $680 बिलियन से कभी कम नहीं हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 4% से कम बना हुआ है। तो हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, रेजिलियंट है, और इस कारण से हमने इस चुनौती का डटकर सामना ही नहीं किया, इसको हराया।
0: सो प्रोफेसर अरुण कुमार, आप मुबारकबाद देंगे सरकार को, क्योंकि जो जो इंटरवेंशंस हुए उसके वजह से जो बाकी सब इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट दिखा, अर्थव्यवस्थाओं पे इम्पैक्ट दिखा, वो भारत पे उतना असर नहीं पड़ा।
2: नहीं, ऐसा है कि हमारे
0: फिर भी उतना नहीं पड़ा।
2: हमारे डेटा में बहुत सारी चीजें आती नहीं है, है ना? जैसे कि अगर ब्लैक मार्केट प्राइस है वो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा नहीं, और अभी ब्लैक मार्केट का प्राइस तो अभी 15 दिन पहले तक चल रहा था। मैंने गुड़गांव में देखा कि वहां पे जो सिलेंडर 950 का 3500 में जा रहा था,
0: लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री पैसेज है।
2: तो अब फ्री होगा तो वो 3-4 महीने में सप्लाई रेस्टोर हो जाएगी और फिर उसका असर होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सप्लाई शॉक जो होता है ना वो सिर्फ क्रूड ऑयल का नहीं है, वो और भी बहुत सारी फर्टिलाइजर है, फिर आपके जब बाकी और चीजें हैं जो इससे निकलती हैं, जैसे APIs हैं, आपके जो प्लास्टिक्स हैं, आपके पैकेजिंग मटेरियल है, सब चीजों में वृद्धि हो रही थी, है ना? तो इसलिए अब ये अगर खुल जाएगा, पर होता क्या है कि दाम अक्सर कम नहीं होते, एक बार बढ़ जाते हैं तो कम नहीं होते हैं।
0: हाँ, तो ये दाम क्या कम होंगे?
1: देखिए, इसका निर्णय तो सरकार ही करेगी। मेरा इसके बारे में यहाँ
0: टीवी आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री ने काफी सारी मीटिंग बुलाई थी
1: आज तक के चैनल पे बैठ के मेरा इस पे टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई दर अंडर कंट्रोल है, GDP बढ़ रही है, और मेरा प्रोफेसर साहब से एक हमेशा, आज से नहीं है, हमेशा से इनसे एक रहता है कि जब भी डेटा के ऊपर कोई बात होती है तो प्रोफेसर साहब उस डेटा की कलेक्शन पे सवाल उठा देते हैं। अब जैसे CPI के इन्फ्लेशन पे 4% से कम है तो इन्होंने CPI के बड़ा मैक्रो क्वेश्चन उठा दिया। GDP ग्रोथ पे भी आपने कई बार मेरे साथ आपने वार्ताएं करी है, उसमें GDP के नंबर पे भी आपने एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इनका आर्ग्यूमेंट रहता है, मुझे पता है वो। तो मुझे लगता है कि आज हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ पर है और भारत किस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दिखाने का काम कर।
2: लेकिन मेरा मानना है कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो अलग अलग चीजें देखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो वहां से सप्लाई वगैरह होगी, 3-4 महीने में रेगुलराइज हो जाएगी। ये भी है कि इसराइल पता नहीं क्या करेगा, संधि होगी या नहीं होगी, पर लगता है। लेकिन एक जियोपॉलिटिकल चेंज बहुत बड़ा आ रहा है, यानी कि अमेरिका की जो साख है वो दुनिया में कम हो गई है। अब जो अमेरिका की साख कम हुई है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, और हम क्या कदम उठाएंगे उससे, क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ का भी अटैक था अमेरिका से, हमारे ऊपर बाकी और चीजों की भी परेशानी थी। तो अब चीन जो है,
0: परेशानी थी खाद
2: खाद की, और जो सूखा
0: इसीलिए मैं एसी गर्ग साहब से जानना चाहूंगी। एसी गर्ग फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। एसी गर्ग, आप खाद के दाम को कैसे देखते हैं, वो उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ रही थी, इसलिए भी क्योंकि ये एग्रीकल्चर सीजन है और एग्रीकल्चर सीजन में अगर किसानों को फायदा ना पहुंचे कम प्राइस के खाद से तो फिर दिक्कत हो सकती है।
3: देखिए, हमने देश में यूरिया, स्पेशली यूरिया के प्रोडक्शन में काफ़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन उसका जो इनपुट है वो अभी भी हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरा डीएपी वगैरह जो है वो फर्टिलाइजर पे भी हमारी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण से फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी और ये खरीफ का सीज़न अभी चल रहा है उसके लिए विशेष तौर से फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला था। हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है वो हमारी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने फर्टिलाइज़र की प्राइस में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। सरकार यूरिया तो प्रैक्टिकली फ्री 90% से ज़्यादा सब्सिडी पर देती है और डीएपी वगैरह भी 80-85% सब्सिडी के आसपास देती है। तो ये सारी कॉस्ट सरकार ने बियर की। हालांकि सरकार जब बियर करती है तो लोग ही इनडायरेक्टली बियर करते हैं, सरकार के पास अपना पैसा तो है नहीं, टैक्स लेके या ऋण लेके ही सरकार बियर करती है, तो पीपल इनडायरेक्टली बियर करते हैं, लेकिन उन पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फर्टिलाइज़र की जहां तक सवाल है, मेरे नज़र में इस समय सप्लाई का इशू है, अवेलेबिलिटी का इशू है, प्राइस का इशू नहीं है एज फार एज फार्मर्स आर कंसर्न।
0: जी
3: दुनिया में प्राइसेस अब घटनी शुरू हो गई हैं। अभी जो नया टेंडर हुआ उसमें यूरिया के लिए तकरीबन आधा दाम रह गया जिसपे पिछला टेंडर किया गया था, तो ये अब नॉर्मलाइज की तरफ बढ़ेंगी आने वाले समय में। लेकिन चूंकि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नुकसान पा गया है और इसकी सप्लाई में, इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई में काफ़ी समय लगेगा, तो भारत की प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है उस पर अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फर्क आता नजर नहीं आता,
0: जी।
3: लेकिन सरकार निश्चित रूप से ये पास ऑन नहीं करेगी, किसानों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है।
0: हाँ, तो आपने ये सही कहा कि किसानों पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, सरकार ने पास ऑन नहीं किया। संजीव आलूवालिया जी, इस खाड़ी युद्ध का जो 110 दिन चला उसमें एक बार बार सवाल उठ रहा था कि कब तक चलेगा, और क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे थे, जब जब पीस की बात हो रही थी तो फिर नेक्स्ट डे अटैक हो जाता था ईरान पर, तो उसके वजह से क्या ये जो 60 दिन है बहुत अहम है, और आप ये मानेंगे क्या भारत ने ये इंश्योर किया था कि जो सप्लाई चेन बहुत सारे कंट्रीज में डिसरप्शन दिखा उसका असर भारत में उतना नहीं दिखा?
4: हाँ, नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि भारत ने जो व्यवस्थाएं की इस क्राइसिस को डील करने के लिए वो बहुत ही उच्च कोटि की थी और उनका बड़ा कुप्रभाव पड़ा जनता पे। प्रोफेसर साहब कुछ अपना बता रहे हैं कि इधर उधर कोई समस्याएं हुई, ज़रूर हुई होंगी, पर जनरली अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव था। जो सब आपूर्ति थी तेल की, ईंधन की, वो लागू रही, और उससे भी आगे बढ़ के मेरे ख्याल जो भारत का जो हमारा एक बड़ा पुराना सिद्धांत है मल्टीलैटरलिज्म का, कि हम किसी एक देश के एलाय नहीं हैं, हम सभी के दोस्त हैं, तो अब ये यहाँ पे अजीब चीज़ ये थी कि इज़राइल भी हमारे बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं और ईरान के साथ तो हमारे बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं। तो एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री और हमारा गवर्नमेंट, हमारे विदेश मंत्रालय के लोग, फॉरेन मिनिस्टर साहब, वो इन दोनों देशों को बहुत करीब से जानते हैं, और मेरे ख्याल भारत अगर मौका मिलता तो बहुत बड़ा काम कर सकता था इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हकीकत यह है कि यहाँ युद्ध कौन लड़ रहा है, यहाँ अमेरिका नहीं लड़ रहा है, अमेरिका तो सिर्फ साथ दे रहा है इज़राइल का, और मेन जो लड़ाई है वो इज़राइल और ईरान के बीच है, और उसमें हमारे गल्फ के और भी दोस्त हैं जो जुड़ जाते हैं, पर अगर भारत इन्वॉल्व रहता तो मेरे ख्याल इस तरह की समस्याएं नहीं आती जो आज आ रही हैं कि समय समय पर पता लगता है साहब कल डील साइन होगी, फिर डील नहीं साइन होती है, फिर एक और कोई डेट दी जाती है। तो अनसर्टेनिटी की जो बात है वो तो आज भी चल रही है, क्योंकि कल अटैक हुआ है फिर से, तो ख़त्म कहाँ हुआ है, युद्ध डील कहाँ हुई, अभी तो टेबल पे कोई आया ही नहीं है, टेबल खाली है।
0: चलिए महंगाई की फिर बात करते हैं।
4: हाँ बिल्कुल,
0: महंगाई का असर जो देखने को मिला, क्या वो खत्म अब हो जाएगा?
4: नहीं, कैसे खत्म होगा जब आपको मालूम ही नहीं, अगर कल एक अटैक हो जाए और सपोज रिटेलिएशन हो जाए तो वही प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। जब तक वहां पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते,
0: पीस कहां से मुमकिन है अभी? 60 दिन तो अभी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पर टेस्ट होगा।
4: बिल्कुल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब कोई लोग दो पार्टी टेबल पे बैठती हैं तो उसका प्रायर ये है कि साहब आप लड़ाई बंद करिए और आइए बात करिए। और यूक्रेन और रशिया में भी तो यही सब चल रहा था ना, पर हमेशा वहां पे भी अटैक हो जाते हैं तो वो सब रद्द हो जाता है। कितने 3 साल हो गए, वो आज भी चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, ये भी 4 साल चल सकता है। तो हमें सचेत रहना है, हमें इस पे नहीं निर्भर रहना कि साहब शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया, कुछ नहीं। हम हमेशा वॉर फुटिंग पे हमको होना चाहिए और अपनी जो रेजिलियंस बढ़ानी चाहिए,
0: सेल्फ रिलायंस खास करके
4: बिल्कुल
0: ऑयल सेक्टर में,
2: ऑयल नहीं टेक्नोलॉजी में।
0: टेक्नोलॉजी
2: आज जो वैश्वीकरण है ना उसमें टेक्नोलॉजी सबसे है। मैं टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो आप स्टैंड ले सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो सबसे दब जाएंगे। चीन से हमारा $102 बिलियन का डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है ना, हम उनको जो रोकते रोकते भी वो बढ़ता गया, 80-85 बिलियन डॉलर से $102 बिलियन हो गया। रूस से भी हमारे जो क्रिटिकल इक्विपमेंट आता है, अमेरिका से भी। तो टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन ये बहुत ही क्रिटिकल है आज अगर हमें करना है, और खासकर जो AI आ रहा है उसके चलते तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट।
0: लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, क्योंकि CPI की आप चर्चा कर रहे हैं, आप क्या इन्फ्लेशन को, जो महंगाई दर है, उसको कम होते हुए देख रहे हैं?
2: नहीं, दाम एक बार बढ़ जाते हैं
0: तो कम नहीं होंगे,
2: कम अक्सर नहीं होते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक चीज है कि इन्फ्लेशन का मतलब दाम बढ़ने की दर, अगर ऑयल का क्राइसिस चलता रहा जैसे कि संजीव एक कह रहे हैं, या हमारा सूखा पड़ जाता है जिससे कि फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, तो वो एक अलग फैक्टर है जिससे कि दाम बढ़ते रह सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक चीज नहीं है सिर्फ।
0: और सुपर एलिनो दिख रहा है,
2: सुपर एलिनो दिख रहा है ऑलरेडी पश्चिम भारत में, जहां पे कि जो मानसून आने चाहिए वो 10 दिन डिले है, बाकी जगह सुपर एलिनो का भी असर जो होगा अगर जून जुलाई वगैरह में हुआ। तो इसलिए ये जो परेशानियां हैं, हम ये कह सकते हैं वॉर की वजह से या क्रूड शॉर्टेज की वजह से हो सकता है थोड़ा बेनिफिट मिले, लेकिन बाकी और जो चीजें हैं
0: मल्टीपल फैक्टर्स।
1: देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जिस तरह से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, और विशेषकर जो सप्लाई चेन डिसरप्शन पूरी दुनिया के देशों में हुआ, पर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर इन डिसरप्शंस का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उसका नतीजा यह है कि मई महीने का जो CPI का नंबर है वो 3.9% है, 3.9% विच इज बिलो द RBI का जो टारगेट है 4% का, ±2, उससे कम है। तो ये रेजिलियंस है भारत की अर्थव्यवस्था की, और दुनिया के देशों ने इसमें एक बहुत बड़ा भारत को एक कोलेटरल बेनिफिट ये मिला कि दुनिया के देशों ने देखा कि जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुए, भारत ने अपने इश्यूज को, अपने जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो भारत को बनना है उसमें दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो बड़ा निवेश भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करने को तैयार है। और मैं एक बात से बिल्कुल प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी और AI ये भारत के आगे ले जाने का, और भारत को लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने रहना है 10 साल 20 साल 25 साल, तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत सहायता देगी। हायर एजुकेशन, रिसर्च, पेटेंट्स, इसमें हमने 12 साल में खूब काम किया, और भी हमें बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने हैं।
0: जी, क्योंकि खाड़ी के देशों में भारतीयों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए ऐसे गर्ग साहब मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि ये रेमिटेंस पर भी असर पड़ता दिख रहा था कोई कोई स्टेट में, कोई कोई राज्यों में रेमिटेंस पर भी असर पड़ता दिख रहा था, तो क्योंकि क्या आप वो देखते हैं वो भी स्टेबलाइज अब हो जाएगा?
3: देखिए, रेमिटेंस का सवाल दो बड़ी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो जो मिडल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ये निश्चित रूप से अगर ये 300 बिलियन डॉलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए अरेंज करके ईरान में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन बाकी देशों में भी होगा। उनके पास अपने साधन हैं, सब रिच हैं, सऊदी अरेबिया भी, कतार भी, यूएई भी, सब रिच हैं, ये कंस्ट्रक्शन वापस से शुरू कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हिंदुस्तान, एक चीज मुझे आई थिंक हमें स्वीकार करना चाहिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और जो ये समझौता हुआ है उसमें हम एक बाईस्टैंडर हैं, हम लोग पार्टी नहीं हैं। हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन भले ही पाकिस्तान ने काफी इमर्ज करके आगे वो पार्टी बन गया, ब्रोकर बन गया, और हिंदुस्तान साइड में रहा। अब इसका असर हमारे जो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये जो इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे होगा पूरे मिडल ईस्ट में, उस पर क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे यहाँ से लेबर, हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं या कम मिलते हैं? उस पे रेमिटेंसेस की इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है।
0: जी, क्योंकि
3: दूसरा
0: आपने
3: जो
0: बोला
3: दूसरा जो
0: 300,
3: दूसरा
2: 300 बिलियन
0: हाँ,
2: डॉलर
0: 300 बिलियन डॉलर्स हैं फॉर
2: रिकंस्ट्रक्शन।
0: रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, पैराग्राफ 6। जी बोलिए गर्ग साहब।
3: ये तो रिकंस्ट्रक्शन रिलेटेड रेमिटेंसेज हैं, लेकिन एक दूसरी जो जो चीज प्रभावित करती है बहुत रेमिटेंसेज को, वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी है और हम क्या डिपॉजिट्स और रेमिटेंस के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं। अभी आपने देखा रिजर्व बैंक ने FCNR डिपॉजिट्स को पे वही रेट देना स्वीकार कर लिया है जो रुपी डिपॉजिट्स पे मिलती है। ये मेरी नजर में तो एक्चुअली एक बड़ा साइन ऑफ वीकनेस है, क्योंकि अगर हम डॉलर पे वही रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं जो रुपी डिपॉजिट पे दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी डॉलर के लिए जो क्रेडिट है, हमारे बैंकों की क्रेडिट है, वो दुनिया के बाकी और बैंकों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है दूसरों को कम। बट उसका प्रभाव जो रेमिटेंसेस पे पड़ने वाला है वो ये है कि हमारी ज्यादा डिपॉजिट्स जो हैं वो NRE डिपॉजिट्स में हैं। आज के दिन करीब 100 बिलियन डॉलर की NRE डिपॉजिट्स हैं और करीब 30-32 बिलियन डॉलर की FCNR भी डिपॉजिट है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये होगा आने समय में देखने के लिए कि क्या लोग रुपी जो NRE डिपॉजिट्स है उसको कन्वर्ट करके FCNR डिपॉजिट्स में बदलते हैं।
0: जी,
3: निश्चित रूप से काफी पैसा आएगा, लेकिन ये पैसा वापस भी जाएगा।
0: चलिए
3: तो
0: अलुवालिया जी।
3: ये
0: जी,
3: और एनआरओ
0: हमारे पास 2 मिनट
3: डिपॉजिट्स
0: का
3: में
0: वक्त है,
3: पैसे
0: इसलिए
3: बहुत
0: मैं
3: घटे हैं।
0: अलुवालिया जी से शुरू करूंगी। अलुवालिया जी,
4: हुक्म
0: कितनी
4: बताएं।
0: राहत देख रहे हैं आप? जल्दी देख रहे
4: देखिए
0: हैं या कुछ वक्त लगेगा राहत हो?
4: देखिए इसमें
0: किसानों को तो राहत दिख रही है, फर्टिलाइजर प्राइसेस
4: नहीं
0: स्टेबलाइज होंगे। और
4: डोमेस्टिक देखिए देखिए एक चीज स्पष्ट है कि मोदी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास, ये इनका सेंट्रल मोटो है। उस बेसिस पे चलने वाली जो सरकार है वो ये जो लॉन्ग टर्म कष्ट है ये लोगों तक पहुंचने नहीं देगी। सरकार में व्यवस्था है, सरकार के पास पर्याप्त रिजर्व्स हैं, कुशन है। आपका जो आप एक चीज देखिए, एक छोटा सा मैं आपको मानक दूं, जैसे अपना फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए आप, 4.3 पे पहुंचा हुआ है। ठीक, अब बहुत बढ़ जाएगा तो 5 पे चला जाएगा, 5.5 पे चला जाएगा। हम लोगों ने 3 साल पहले 7 भी जो झेला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी हमारे बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में है। जब कोई इमरजेंसी होती है हम एडिशनल पैसा खर्च सकते हैं, वो सरकार खर्चेगी। और ये कष्ट अगर मीडियम टर्म भी होगा तो वो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा जनता को, पर पूरा कभी वो पास ऑन नहीं करेंगे
0: चलिए
4: निश्चित।
2: देखिए दो
0: तीस
2: तरह की
0: सेकेंड
2: चीजें हैं,
0: जी।
2: एक तो जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां तक पॉलिसीज पहुंचती नहीं है। अब बजट में
0: अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,
2: अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो क्या होता है कि जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इससे में खत्म हो गया है। VBG राम जी बिल आया नहीं है, जो लोग पलायन करके वापस गांव गए उनको काम नहीं मिला, है ना। दूसरा ये कि जो उनको जो दाम जो अफेक्ट करता है वो हमारा कैप्चर नहीं होता, जो असंगठित क्षेत्र में प्रोडक्शन डाउन हो जाता है वो हमारा कैप्चर नहीं होता क्योंकि वो तो अगले साल डेटा आएगा, तो इसलिए क्या क्या हुआ वो पता नहीं। दूसरा ये कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा फॉरेन कैपिटल नहीं आने वाला है, है ना, जो अभी कदम उठाए हैं। वजह उसकी ये है कि अगर जैसे साउथ कोरिया का मार्केट आप देखें, स्टॉक मार्केट, वहां पे 110% जो प्राइस राइज हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, तो हमारे यहाँ जो डॉलर रिटर्न है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल नहीं आने वाला। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारा 2024-25 के बाद गिरना शुरू हो गया था, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब पिछले साल से गिर रहा है, पहले $1 बिलियन हुआ
0: एफडीआई,
2: वो फॉरेन कैपिटल नहीं आने वाला।
1: देखिए, जो हमारी रेमिटेंसेज आती है जिसका आप प्रश्न कर रहे थे, सालाना लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की आती है, और मेजर इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जीसीसी रीजन है, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, जिसमें 6 देश है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुछ लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, तो अब ये जो चीजें सेटल हो रही है वापस वो लोग अपनी जॉब पे आ रहे हैं, तो हमारा जो फॉरेन इनफ्लो आता है रेमिटेंसेस के द्वारा वो इंटैक्ट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको देखता हूं कि जब ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के ऑल्टरनेट रूट्स दुनिया तलाश रही है, और वो ऑल्टरनेट रूट्स अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के से निकलते हैं, तो इंडिया कैन बी द ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। जो जबल अली पोर्ट की जो ताकत है यूएई में, वो ताकत अब भारत के पोर्ट्स की बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और जिसका फायदा अभी भी जब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में ब्लॉकेज है, तो जो फुजेरा पोर्ट पे जो सामान जा रहा है वो इंडिया के ट्रांसशिपमेंट हब, भले जेएनपीटी हो, विनियम पोर्ट हो, मुंद्रा हो, यहाँ से वो सामान जा रहा
0: है। अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए जी, एक ऑल्टरनेटिव
1: ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड।
0: चलिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, आई एम श्योर आपने ये प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में जरूर बता दिया है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रोफेसर अरुण कुमार एससी गर्ग और आलूवालिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देखते रहिए आज तक, मेरे साथ बस इतना ही।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सो कुडो। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

खाड़ी युद्ध का प्रभाव डायरेक्टली हमारे घर में पड़ा, आपको देखने को मिला कि आपका हर दिन का बजट उस पर इम्पैक्ट हुआ है। क्या जो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी थीं वो अब कम होंगी? क्या जो इन्फ्लेशन या महंगाई

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जब डगमगाने लगती है तब रईसों से लेकर आम आदमी तक को गोल्ड ही याद आता है। मुश्किल दौर में सोने की चमक फीकी पड़ने की जगह बढ़ जाती है। इसी भरोसे की वजह से सेंट्रल बैंकों का रुझान एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया भर के 76 केंद्रीय बैंकों पर किए गए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक 89% रिजर्व मैनेजर्स को 12 महीनों में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं 84% केंद्रीय बैंक 5 साल में ग्लोबल रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ने की बात कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंकों ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में गोल्ड स्टॉक बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक वैश्विक भंडार में अमेरिकी डॉलर का दबदबा लगातार घट रहा है। ऐसे में 74% रिजर्व मैनेजर्स का अनुमान है कि 5 साल बाद दुनिया में डॉलर की हिस्सेदारी बेहद कम हो जाएगी। इस उठापटक की वजह से केंद्रीय बैंक डॉलर का मुंह छोड़कर सोने को अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बदलाव आम खरीदारों की जेब पर सीधा असर डालेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों का नजरिया बहुत आक्रामक और तेज दिखाई दे रहा है और एक साल में ग्लोबल मार्केट में सोना 6100 से $6,500 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। देश के भीतर भी देखें तो पिछले एक साल में कीमतों में करीब 40% की बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी की बड़ी वजह सेंट्रल बैंकों की तरफ से की जा रही रिकॉर्ड खरीदारी और डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी है। दुनिया के तमाम देश इस समय भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कागजी मुद्रा या सरकारी बॉन्ड के मुकाबले सोने पर भरोसा सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले 4 साल में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने औसतन 1000 टन सोना हर साल खरीदा है। सर्वे में शामिल 90% बैंकों ने माना कि संकट के समय गोल्ड का बेहतरीन परफॉर्मेंस ही उसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह है। भारत के लिहाज से देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। रिजर्व बैंक का कुल भंडार 822 टन से बढ़कर अब करीब 880 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक सोना खरीदने के साथ ही उसे सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज लोकेशंस में भी बदलाव कर रहे हैं। तमाम देश अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर वापस अपने देश के भीतर सुरक्षित तिजोरियों में शिफ्ट कर रहे हैं। साफ है कि दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए लेकिन जब बात सबसे सुरक्षित संपत्ति की आती है तो सोने का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल मार्केट में सोने की बढ़ती ताकत और सेंट्रल बैंकों की इस महा खरीदारी से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के दाम आम आदमी को और चौंका सकते हैं। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध था वो थम चुका है, क्योंकि डील पर हस्ताक्षर, एमओयू पर हस्ताक्षर दोनों तरफ से हो चुके हैं। लेकिन इसके मायने हम क्या समझें, क्योंकि अभी हस्ताक्षर हुए हैं और 2 महीने का समय और है जिसके बाद आखिरकार हम समझ सकते हैं कि फुल एंड फाइनल कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद तो अभी लगाई जा सकती है या फिर नहीं। कितने दिन टिक सकती है ये शांति? आप कहेंगे ये शांति अभी ठीक से आई भी नहीं है और हम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, एक एक करके मैं परिचय उनका करवा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त, पूर्व डीजी इन्फेंट्री भारतीय सेना के। हमारे साथ है मार्शल संजीव कपूर, जुड़ रहे हैं सेवानिवृत्त, पूर्व डीजी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं। और साथ में हमारे कैप्टन डी के शर्मा हैं, पूर्व स्पोक्सपर्सन भारतीय नेवी और कंसल्टेंट भारत शक्ति के। तो हम चूंकि इस पूरे युद्ध में आपने हर पहलू देख लिया है और इसीलिए जरूरी है ये समझना कि खासकर ये जो 14 पॉइंट जनरल प्रसाद जो हमारे सामने इस पूरे डील के, एमओयू के जो सामने हैं, वो इशारा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये देखकर तो ये लग रहा है कि अमेरिका जीता तो नहीं है, ज्यादा तो ईरान के टर्म्स में हमें यह दिखता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि शांति अभी कम से कम 2 महीने तो रहेगी।
1: जी, उम्मीद सभी करते हैं कि शांति रहे और शांति बनी रहे। ये डील किसके बीच में हुई है? ये डील बीच में हुई है अमेरिका के और ईरान के। अब ये समझना जरूरी है कि इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है, विच आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डील। एक तो अमेरिका है ही, एक ईरान है, आपने बता दिया। हमने ये नहीं बताया कि इसमें IRGC कहाँ है।
0: जी,
1: IRGC आप सबको मालूम है कि IRGC यूनिट बाई इटसेल्फ, वो अपने सरकार के नीचे काम नहीं करती है ईरान के अंदर।
0: मतलब आपको लग रहा है पेजेशकियन के दस्तखत है, उसके बावजूद IRGC की सहमति हो सकता है ना हो?
1: कागज पर तो नहीं आई है ना, ना कोई इसका बयान आया है। सो दैट इज अनदर प्लेयर इन द गेम। इसमें इसराइल का साइन तो नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं कि वो मान चुके हैं। इसमें हिजबुल्ला का साइन तो है नहीं, जिसको वो मान चुके कि नहीं मान चुके। हमास कहाँ है, हूती कहाँ है, यमन कहाँ है? तो इस गेम में खिलाड़ी बहुत हैं। अभी 2 खिलाड़ियों में तो बातचीत हो चुकी, मान गए, क्योंकि दोनों इस लड़ाई से निकलना चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा तो अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब निकलना चाह रहे थे, किसी प्रकार से निकले यहाँ से, बहुत परेशान हो चुके थे डोमेस्टिकली इंटरनेशनली। और आपने बीच में शुरू में बड़ा अच्छा सवाल कहा कि इसमें जीता और हारा कौन। इसका सवाल का जवाब यह है कि इस युद्ध में जीता ही कोई नहीं है। इस युद्ध में पूरा विश्व हारा है, अमेरिका भी हारा है, ईरान भी हारा है और बाकी सभी वर्ल्ड का। देखिए, आज की तारीख में श्वेता जी, कहीं भी युद्ध होता है, द वर्ल्ड इज सो मच इंटरडिपेंडेंट, तेल पे, फूड पे और हजारों चीजों पे। तो कहीं भी कुछ युद्ध होता है उसका असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, और ख़ास तौर से ऑयल, जो कि सबसे बड़ी नेसेसिटी है, वो और हॉर्मोज के थ्रू आती है। ईरान इज़ ए मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल, तो इट हैज़ हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। और दूसरी बात इसके साथ जोड़ना ये चाहूँगा कि जो ईरान के अंदर रिफाइनरीज हैं
0: जी,
1: जो पूरे गल्फ एरिया में रिफाइनरीज हैं, पिछले 2 महीने में उनका भी बहुत डैमेज हुआ है। दे हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट ऑफ डैमेज। और अगर आप उसको क्वांटिफाई करके देखेंगी तो आपको लगेगा कि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट कितना ह्यूमंगस है, और उसको दोबारा उसी हैसियत में लाने के लिए कितना समय लगेगा। अगर आज लड़ाई रुक गई, एमओयू साइन हो गया, इसका यह मतलब थोड़ी कि कल से रिफाइनरी 100% शुरू हो जाएगी। इट विल टेक टाइम टू रिपेयर इट, विल टेक इट टाइम टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस। और जहां तक हॉर्मोज का सवाल है, वो भी नेवल के सीनियर ऑफिसर साहब बैठे बताएंगे आपको कि हॉर्मोज के अंदर माइंस लगी हुई हैं, अभी भी वो क्लियर नहीं हुई हैं। ये मालूम है कि शायद रूट, लेकिन ये माइन के बारे में बताएंगे, जो सी के अंदर माइन लगती हैं वो काफ़ी फ्लोटिंग टाइप की होती है। सो टू आइडेंटिफाई देम एज इजीली एज यू डू द ग्राउंड माइंस, इट्स नॉट सो ईजी। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। सो वाइल द MOU हैज बीन साइन, अच्छा साइन हुआ है, सब खुश हैं इससे, और सबसे बड़ी खुशी तो ये लग रही है कि ऑयल बैरल के दाम $78 के आसपास आ चुके हैं, कहाँ 110 हो गए,
0: बस वो ट्रांसफर भी हो जाए कंज्यूमर्स तक।
1: और जहां तक हम ये देख रहे हैं कि भारत का रुपया 130-131 रुपए पहुंच गया, शायद वो भी कुछ डाउन हो जाए। सो देर आर मेनी गुड्स टू इट, बट there are many questions today as well.
0: नहीं, इसीलिए लोग भी पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाहते हैं मार्शल कपूर, जो चीजें चल रही हैं. लेकिन ईरान भी तो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि उसके जो फंड्स हैं वो जो फ्रीज लगा हुआ है लगातार उसे, और इनके इनके जो क्लॉजेज हैं उनमें है वो चीजें शामिल हैं, उन पैसों की उसे जरूरत है. पर फिर भी ईरान अगर पूरी ईमानदारी से मान, हम अगर 1% ये मान लें कि IRGC की भी हामी है इस चीज को, तो केवल ईरान से यह होगा या फिर इजराइल आपको लगता है हाथ खींचेगा लेबनन को लेकर?
2: जिस वक्त 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू हुआ, तो हमें बैकग्राउंड ध्यान रखनी पड़ती है कि अमेरिका वेनेजुएला का जो ऑपरेशन जनवरी में किया उसके बाद आया था, और उसकी जितनी नेगोशिएशन हो रही थी वो बहुत अच्छी थी, और इसराइल ने हमास को और सीरिया में काफ़ी बढ़त बना ली थी, और उसने काफ़ी हद तक हिजबुल्ला को भी चेक में रखा था, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स है. तो इनको लगा कि हम मिलके इनको सब्जुगेट कर सकते हैं ईरान को. और सबसे बड़ा लेसन जो मैं लिखता भी हूँ और जो बोलता भी हूँ, वो सबसे बड़ी गलती की जब जून 2025 में ईरान और अमेरिका ने मिलके जब अटैक किया कि इनके टारगेट्स पर, जो जून 2025 से लेके और फरवरी 2026 का पीरियड था, उसमें ईरान ने जितनी गलतियां हुई उनसे अभी तक, और इसमें उनकी चाहे वो मिसाइल की इंटरसेप्शन है, चाहे उनके बॉम्बर्स जो ड्रोन्स की क्षमता बढ़ाने की वो है, उन्होंने उस पर बहुत काम किया. उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू इंटरकनेक्ट करके, एंड जैसे सर ने बोला कि इनकी दो नेवीज हैं ईरान में, आपके व्यूअर्स के लिए डीके विल टेल बेटर, एक तो उनकी रेगुलर नेवी है और एक नेवी इज कंट्रोल्ड बाय IRGC. वो कामाकाजी ड्रोन बोट्स एंड कामाकाजी शिप्स के थ्रू और फिशिंग बोट्स के अंदर अपने हथियार, तो इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत कम दुनिया समझ पा रही है. तो जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया है, अब हुआ यूं है कि 40 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, 100 से ऊपर दिन हो गए हैं, अभी 60 दिन का फिर हुआ है, इक्का दुक्की स्कर्मिश चलती रही है, बस पूरे उसमें इसराइल मेरी समझ से वीक हुआ है. वीक इसलिए हुआ है कि अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में कम होती जा रही है. अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला दिया था वो एक्सपोज हो गया. इस युद्ध में जो साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, उधर से इन्होंने अपने असेट्स खींच के मिडल ईस्ट में लेके आए, तो वो देश बोले कि इस वक्त अभी हमारे पे चीन अगर अटैक करते तो हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है. बोला नहीं, मुझे चाहिए. तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि हम अमेरिका को अपना गारंटर मानते हैं, बट जब चिप्स डाउन होंगे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ में खड़ा होगा.
0: कैप्टन शर्मा, पहले मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना क्रूशियल रहेगा इस लास्टिंग पीस के लिए. भले ही ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये डील साइन हुई उस दिन से वहां से अमेरिकी जो नौसेना है उसके हटने का क्रम शुरू हो जाएगा, ओमान से अभी बात आगे होगी बारीकियों को लेकर कि कैसे निकलें, लेकिन आपका जजमेंट क्या कहता है?
3: ओके श्वेता, तीन चार बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. मंडे से जब से ये बात शुरू हो रही थी एंड देन यस्टरडे इट हैज बीन साइंड, द शिप्स हैव स्टार्टेड मूविंग नाउ. धीरे धीरे शिप्स बाहर आ रहे हैं, बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सर सेड, इट्स ऑल माइंड, द होल एरिया इज माइंड. सो नाउ इट इज बींग गारंटेड बाय ईरान. ईरान उनको बता रहा किस रास्ते से आना है, शिप्स को बाहर आना है. सो वो धीरे धीरे बाहर आएगा. एंड श्वेता, दिस कंडीशन ऑफ मेकिंग द शिप्स कम आउट और गो इनसाइड एंड पिकअप द एनर्जी एंड कम आउट, दिस फ्री बिजनेस विल बी फॉर 60 डेज. एक तो ब्लॉकेट बाहर लगा हुआ है, वो ब्लॉकेट हटा नहीं है अभी हटा नहीं है, बोला गया है कि हट रहा है. और ये इन्होंने बोला है एज पर द MOU दैट इट विल बी कंप्लीटली लिफ्टेड इन 30 डेज. दे आर स्टिल लुकिंग एट इट के वेदर इट इज हैपनिंग, ये हो जाएगा कि नहीं हो गया. सब कंडीशनल है. सो 5 शिप निकले हैं आज, 38 शिप्स लाइंड अप हैं वहां पर. मैं पढ़ के आ रहा हूं कि वो लाइंड अप है और सब लोग देख रहे हैं इस वक्त एक एक करके. यू नो वी आर वेरी हैप्पी कि वो लोडेड थे शिप्स. एंड यस्टरडे व्हेन ट्रंप सेड दैट ओके फायर अप योर इंजन्स, यू आर नाउ रेडी टू मूव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ विल बी ओपन्ड, बट दिस इज ऑल कंडीशनल. सो taking the ships out, taking the energy out. All this free business is for 60 days. Thereafter, Iran with all the Persian Gulf countries, because, you know, aap baat kar rahe destruction ki. Destruction is the fund which they have to now, you know, cater for is 300 billion. 24 lakh crore. Kehna aasaan hai. 24 lakh crore ka fund is required. And who is going to fund that? The US allies in the Gulf with Iran. And immediate release of the sanctioned amount. ये जो आप बोल रहे हैं कि ये पीस अकॉर्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, इतनी कंडीशंस हैं श्वेता इस पे, अगर आप इसको देखना शुरू करें एक एक करके.
0: सही बात.
3: एंड आईआरजीसी जो सर ने पॉइंट उठाया, दे आर अगेन अ वेरी वेरी टफ कस्टमर, वेरी टफ कस्टमर. दे विल, यू सी राइट नाउ, आफ्टर दिस मच ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, व्हाट दे वांट राइट नाउ, इमीडिएट हॉस्पिटल्स शुड बी बैक, logistics lines should be back, you know, the houses,
0: sir, Hindi.
3: ghar, hospital, infrastructure, roads, schools. Abhi ye focus yahan rahega 2-3-4 mahine, uske baad aap dekhna red flag aayega IRGC se, that, you know, you have destroyed so much of things for us. To inka kaise wapis aayega? To ye jo points aaye hain, jo aapne 14 points bataye hain
0: ji,
3: ye is waqt, yes, very good, because the whole वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे जा रही थी, जो प्रेशर था यूएस के ऊपर टू सॉर्ट इट आउट, इंक्लूडिंग टेकिंग अ लाइन ऑन दैट देयर विल बी नो अटैक ऑन लेबनान. अब जो ये निकला है, और सर भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू कितना अग्री करेगा इस पे,
0: ग्राउंड पे तो एक्चुअली रुका नहीं है वो, थोड़ी अपना जो आगे वो एडवांस कर गए हैं जहां तक लेबनन में, वो कंसीड नहीं करेगा इसराइल. और इसराइल सर अगर सीधे तौर पर देखें तो एक आम आदमी भी ये बता सकता है कि ये युद्ध हुआ क्यों, कोई चीज एक पॉइंट नहीं बताया जा सकता है कि अमेरिका ने अचीव किया. इसराइल को लेबनन में एडवांस करना था, इसराइल ने फिर भी थोड़ा बहुत अचीव कर लिया हो शायद अपने गोल्स को, लेकिन अभी उन्हें लग रहा है कि वो एक पीछे हट रहे हैं. दूसरी चीज, अमेरिका को जिस दिन कमिट करने की जरूरत पड़ गई कि उसे ग्राउंड फोर्स भेजना पड़ सकता है और वहां पर वो खत्म हो जाता पूरी तरीके से, वहां उसको समझ में आया कि अब धीरे धीरे कदम अपने उल्टे ले लो.
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप. आपने जो लास्ट वर्ड के कदम उल्टे ले लो इज द प्राइम इशू विद अमेरिकन प्रेसिडेंट. वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मैं निकलूं. लेकिन इसमें बड़ी जरूरी बात ये, देखिए आपने एक बीच में पूछा शुरू कहाँ से हुई हरकत. ये शुरू हुई जो कि तीन प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हमास, हिजबुल्ला और हूती. ये पिछले 40 साल से परेशान कर रहे हैं इसराइल को. 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हम सब ने देखा है, समझ रहे हैं आप, तो वहां होके भी आई उस समय. हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले आपने एक लफ्ज सुना होगा, अब्राहम अकॉर्ड.
0: जी,
1: अब्राहम अकॉर्ड में ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान एंड पाकिस्तान हु हैव नॉट साइन, जिन्होंने साइन नहीं किया है उसको साइन कर दें. मैं समझता हूं ये कि अगर किसी प्रकार से डिप्लोमेटिकली कोअर्सिवली किसी प्रकार से अब्राहम अकॉर्ड पर साइन हो जाए ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा. आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो ये सबूत सामने आ गया वर्ल्ड के कि क्योंकि ईरान इतना पीछे पड़ा हुआ है हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए, इतना पीछे पड़ा हुआ है लेबनान. एक बात आपको शायद मालूम होगी, आप तो वहां रह के आई हैं, कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल हिजबुल्ला. हिजबुल्ला उनकी नहीं मानता है, ये तो पता ही है आपको,
0: ये बात वो कहते भी हैं जी.
1: तो लेबनान अब जो साइन होगा, जो किसी तरह से अगर उनसे बातचीत हो भी गई, तो वो कौन एग्री कर रहा है, लेबनान की सरकार कर रही है कि हिजबुल्ला कर रहा है?
0: लेबनान की सरकार
1: कर रही है ना, तो हिजबुल्ला देख रहा है तमाशा. और यहां से ईरान ने एक दफा नहीं कहा कि हम इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे. जितने मिसाइल हिजबुल्ला के पास हैं, जितना कारगर हथियार मैमोनेशन जो कुछ भी उनके पास है, जितना हमास के पास है, जितना हूती, वो कहाँ से आ रहा है भाई? क्या उनकी अपनी फैक्ट्री है, क्या अपना बना रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है वो? इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम ईरान. और ये जितना आप देख रही हैं पिछले कई एक डिकेड से जो हिजबुल्ला, मैं आप भी गई है, मैं भी इसराइल के बॉर्डर पर मैंने लेबनान के अंदर झांक के देखा है
0: जी.
1: और वहाँ हिजबुल्ला की जो हरकतें हैं वो बड़ी साफ नज़र आती हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से. सो द मेन इशू इज किसी प्रकार से अगर वर्ल्ड की पावर्स इस पर्टिकुलर 14 पॉइंट्स को कामयाब देखना चाहती हैं, तो कोई किस्म का प्रेशर डले कि ये अकॉर्ड साइन, अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाए, जिससे कि ये साबित हो जाए वर्ल्ड को आज कि इसके बाद हमास हिजबुल्ला को ईरान अब सपोर्ट नहीं कर पाएगा, दे विल ड्राई एंड दे विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए पोटेंशियल फोर्स।
0: पर शायद युद्ध शुरुआत करने का तरीका अलग हो गया, मतलब जिस तरीके से अटैक किया गया उस चीज की वजह से भी। और
1: नहीं नहीं, मैं उसका अगर आप एक मिनट दे तो देखिए, एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, सिखाया जाता है मिलिट्री हमारे कंट्री के अंदर। एम कैसे इवॉल्व होता है? एम वैसे इवॉल्व होता है कि आप एम ऐसा बनाए जो कि मुकम्मल हो सके, वो कोई टाइम बाउंड हो सके, इट शुड बी अचीवेबल।
0: पर इस के एम में तो वो गोल पोस्ट भी बदलते रहते
1: हैं, वही तो होता है ना, दैट इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, मेंटेन नहीं हो पाया ना
0: सर। केवल मतलब वो पैसे और उस वो पूरा फिगर बहुत बड़ा जरूर है, मुझे प्रोटेक्टर भी एक्सपोज हुआ। अभी तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में सब ये देखेंगे कि अपने डिफेंसेस को और अपने अटैक करने की क्षमता को कितना मजबूत किया जाए, क्योंकि अमेरिका उनके लिए करेगा नहीं। ईरान का जहां तक सवाल है, आईआरजीसी भी ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो रही है लेकिन वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ेंगे, जो कि इसराइल चाह रहा है। इसराइली एम्बेसडर हमारे यहां थे और वो कह रहे थे कि हम तो बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर हमारा एम अभी और अचीव कंप्लीटली होना है, तो ये सारी चीजें भी तो इस शांति के आड़े आएंगी। अभी
2: जो मैं पढ़ रहा था, करीब 70-75% ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल क्षमता इंटैक्ट है। आपके व्यूअर्स के लिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉम्बर है वो अमेरिका के पास है, B-2 बॉम्बर। वो एक वेपन कैरी करता है GBU-57, इट्स एन ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो कि सबसे ज्यादा गहराई तक जाता है और मैक्सिमम डेप्थ जो डैमेज कर सकता है इन एनी कॉन्क्रीट और एनी हार्डन्ड दिस थिंग इज 200 feet, विच इज अराउंड 60 meters। तो ईरान ने जब लड़ाई हुई गल्फ वॉर, तो उन्होंने रियलाइज किया कि सतह के ऊपर कुछ भी चीज है उस अमेरिकन सैटेलाइट्स पकड़ रखी हैं और वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो उन्होंने गल्फ वॉर से सबक लिया और उन्होंने अपना अंडरग्राउंड काम स्टार्ट किया और उन्होंने बेंचमार्क और 100 feet बोला कि हर चीज 300 feet से नीचे होनी चाहिए। तो अब ईरान के अंदर बकायदा हाईवेज हैं, सड़कें हैं, टनल्स हैं, इंटरकनेक्टेड इनके लॉन्चर्स हैं, जो कि 1,000-1,500 feet धरती से नीचे हैं।
0: और एक गाजा पट्टी जिसको पूरी तरीके से बॉम्बार्ड किया इसराइल ने, उसके बावजूद महीनों महीनों लग गए और सारे हॉस्टेजेस जीवित ले भी नहीं पाया इसराइल। ये ईरान जैसा देश जो कि इतना बड़ा आकार में, जिसकी पहाड़ियां भी हैं, समुद्र भी है उसके कंट्रोल में, सर एक सिंपल चीज समझाइए, ये उतनी सिंपल भी शायद ना हो, डी माइनिंग कितना समय लगेगा?
4: डी माइनिंग, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एज पर द अनक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी, जिस भी कंट्री ने माइनिंग किया होता है ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर सीज फायर और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द हॉस्टेलिटीज आपको जाके क्लियर करना है। बट ये जो सर्कमस्टांसिस है जिसमें ये ओवरनाइट इनको करना पड़ा कि इनके यू नो व्हेन दे सॉ दैट द होल अर्माडा यूएस फ्लीट विद 150 ships इफ इट इज कमिंग एंड क्लोजिंग ईरान, तो आप एज ईरान आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आपने अपने अनमैंड वेसल्स से, वेदर इट वॉज ड्रोन्स और वेदर अनमैंड सर्फेस वेसल्स और अनमैंड अंडर वाटर वेसल्स, उससे जाके आपने माइंस बिछा दिए। माइंस बिछाना मीन्स बॉम्ब्स आर बींग ड्रॉप्ड। ये बॉम्ब्स ऐसे हैं, ये अलाइव हैं बॉम्ब्स बट वेटिंग फॉर अ शिप टू कम
2: कॉन्टैक्ट।
4: तो जैसे ही कॉन्टैक्ट, प्रेशर, अकूस्टिक,
2: तीनों,
4: ये तीनों से एक्टिवेट हो सकता है। जैसे ही बड़ा शिप कोई आएगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर वो लगा रखा है कि अगर इससे ज्यादा नॉइज लेवल हुआ, जैसे कि बड़ा शिप है तो बड़ा इंजन चल रहा है, अगर वो नॉइज डिटेक्ट होता है तो वो बस द मोमेंट इट इज क्लोजिंग एंड इट विल ब्लास्ट, और वो जो ब्लास्ट करेगा शिप खत्म, वहीं
0: मतलब
4: खत्म।
0: अमेरिकी जो कहते हैं कि हमारी शिप्स जो पूरी फ्लीट चलती है और उसमें कितना प्रोटेक्शन है, एक यूएसएस मान लीजिए फॉर दैट मैटर,
4: एब्राहम लिंकन लगा दीजिए आप बाहर चले जाएंगे, वो
0: अच्छा
4: वो अंदर नहीं आए, वो गल्फ ऑफ ओमान में ही रहे।
3: जो ब्लॉकेड लगा है वो गल्फ ऑफ ओमान पे लगा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी 100 किलोमीटर आगे थी, दे कांट गो देयर बिकॉज उन्होंने लगा दिया, बिकॉज मैं तो मर रहा हूं। अगर देखो जब इन्होंने बोला दैट वी हैव एनिलिएटेड द इरानियन नेवी, वी हैव एनिलिएटेड मतलब बर्बाद कर दिया हमने आपकी एयरफोर्स, तो आपका बचा ही क्या है? नाउ इट इज योर चांस, अब आपके पास माइंस हैं, आपने माइंस लगा दी इन्यूमरेबल, यू डोंट इवन नो कितने माइंस लगाई हैं।
1: बड़ी बात यह है आप सजेसी को इलेबोरेट कर रहे हैं कि माइंस कहीं भी लगाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है,
3: रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने तो मेरी पूरी नेवी बर्बाद कर दी। अगर मैं जाता, अगर मेरे को आप जैसे ओके कंसिडर दैट वी हैव स्कर्मिश विद आवर वेस्टर्न नेबर, अब वेस्टर्न नेबर है, मेरे को खतरा है कि यू नो मेरा ये जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं उसके बाद यू नो ड्रिलिंग प्लांट्स हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम कुछ ऐसे इंतजाम करते हैं। मुझे मालूम है कि अगर उसकी सबमरीन आएगी तो वो अपने आप खुद ट्रैप हो जाएगी, तो यू नो इट कि मैंने 17 यहां लगाई, 16 यहां लगाई, अब जैसे थ्रेट खत्म हुई रिमूव। बट इस केस में तो आपने उनकी नेवी खत्म कर दी, विच यू नो अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट यूएस नेवी हैज डिस्ट्रॉयड द नेवी ऑफ ईरान। अब कहता अब वो कल को बोलेगा मैंने लगाई नहीं, आपने तो मेरी नेवी तब बर्बाद कर दी थी, हु हैज डन इट, आई डोंट नो। आपको मालूम है टैंकर वॉर आज तक उसके माइंस हैं वहां पर, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर जैसे अपना ये डीएनडी है ना, जिसमें एक रास्ते से आप आते हैं और एक रास्ते से जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज एग्जैक्टली लाइक दैट। चाहे आप बोल रहे हो कि वो यू नो 30 किलोमीटर चौड़ी है, बट रास्ता एक ही है उसमें, जो कि रास्ता क्लियर है, सो दैट योर शिप कैन गो सेफ एंड योर शिप कैन कम आउट सेफ। नाउ दैट इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन मार्क।
0: चलिए चर्चा को हम खत्म करते हुए बहुत छोटे छोटे में आप सबसे ये जानना चाहेंगे सर, आपसे शुरुआत करते हुए, कि अगर ये लास्टिंग पीस होनी है तो आपके हिसाब से क्या एक या दो या तीन फैक्टर्स जिनका ख्याल रखने की जरूरत होगी दुनिया को?
1: मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले ईरान ये एक्सेप्ट कर ले कि इसराइल हैज गॉट अ रीजन टू सर्वाइव। इसराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, तो ईरान ईरान कह दे कि हम इसराइल के बरखिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, एक दफा ये भी कह दे और कह दे हम इसराइल को अब रिकग्नाइज करते हैं,
0: ठीक है,
1: मेरे ख्याल से काफी हद तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
0: सर
2: मेरा टेक जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का है वो बिल्कुल उल्टा है। जब तक युद्ध शुरू हो रहा था और शुरू शुरू में जब ट्रंप ने कहा कि ये जो देशों ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किए उनको नहीं किए उनको करना चाहिए, इस युद्ध और सीज फायर के बाद जिन्होंने साइन किया वो भी मना कर देंगे, क्योंकि दी गल्फ स्टेट्स हैव नाउ रियलाइज के अमेरिका के झांसे में नहीं आना। अमेरिका जो दुबई एंड यूएई जिसने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की थी अपनी एज द सेफेस्ट कंट्री वाज हिट द मैक्सिमम, उनकी जो रियल एस्टेट है, उनके जो होटल्स हैं, जो उनकी टूरिज्म है, उनके जो हैं वो बहुत बुरी तरह से नीचे आ गया है, उनकी रेवेन्यूज एंड एंड नॉट ओनली दैट, चाहे वो कुवैत हो चाहे बहरेन हो, सो इन दिस होल स्कर्मिश ऑफ 40 डेज आई थिंक सो द लेसन विच द गल्फ कंट्रीज विच आर द मेजर सप्लायर्स, बिकॉज अमेरिका जब ये ट्रंप गए थे पिछले साल बनते ही इन्होंने बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स की उनको बोली थी कि हम F-35 भी लेंगे आपसे, टॉमहॉक मिसाइल भी लेंगे, पेट्रोल भी लेंगे, अब वो कह रहे हैं कि आप अपने ही टॉमहॉक और उससे थार्ड से मतलब अपने आप को नहीं बचा पाए इजरायली
0: बैटरीज ही पर बैटरीज अटैक कर दिया
2: था, वो हमें क्यों बेच रहे हैं?
0: सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
1: ये कहना चाह रहा हूँ एक सवाल का जवाब सब दे दें, क्या इजराइल को अपनी रहने की इज्जत है? इज इजराइल अलाउड टू लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ कंट्री? कौन कहता है कि इजराइल का एक बर्बाद करके खत्म कर दीजिए, कहाँ जाएंगे वो? सो प्लीज अंडरस्टैंड अब्राहिम अकॉर्ड ओनली सेज कि प्लीज रिकग्नाइज इसराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट।
0: कैप्टन ठीक है आपके हिसाब से?
3: मेरे हिसाब से यू सी व्हाट जनरल सर इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव टू इफ यू हैव टू कम ऑन द टेबल कम विद जस्ट थिंग्स, मतलब आपने इतनी बड़ी डिमांड कर ली है कि मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करिए, मेरे को ये करिए, मेरे सैंक्शंस यू नो सारे के सारे, I should be paid back whatever you know was held back by US, but then they also have to come on board.
4: उनको भी आना पड़ेगा
0: टेबल ईरान की भी जिम्मेदारी yes. रहेगी.
4: ईरान शुड कम एंड यू नो व्हाट जनरल प्रसाद इज सेइंग
2: द विजिट बाय ट्रंप टू चाइना इन माय ओपिनियन लेफ्ट हिम मोर वीकर देन एनीथिंग एल्स
1: अनडाउटेडली
2: हैड ही नॉट गॉन he still would have been in a better bargaining position. He exposed himself to a level where even the Chinese have understood that he is not left with much power. Mm. So that
0: तो लड़ाई इधर हुई लेकिन सबसे बड़ा फायदा चाइना का रहा इसमें. बहरहाल इस सबके बीच पाकिस्तान भी बहुत सारी उम्मीदें लगा रहा होगा लेकिन दुनिया को इस समय एक ही चीज चाहिए वो है शांति. अब MOU जो है उस पर साइन हो चुका है लेकिन इंतजार है कि अगले दो महीनों में क्या होगा कि दुनिया को कम से कम उस अनिश्चितता की तरफ न धकेला जाए. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।
1: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय संडे को सब लोग एक्सपेक्ट

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। करीबन 109 दिनों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो गई है, यानी एमओयू साइन हो गया, जो आने वाले वक्त में एक परमानेंट डील का आधार बन सकता है। लेकिन आखिरकार क्या ये जो अस्थाई समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ है, क्या ये आने वाले वक्त में एक बड़ी परमानेंट शांति का दौर भी लाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे विषय पर, क्योंकि लगातार 109 दिन के संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों देश 14 शर्तों पर एक दूसरे की बातों पर मान गए हैं और दोनों ने एमओयू साइन भी कर दिया, और इस बड़ी बातचीत पर हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से डील आगे बढ़ सकती है। हमारे साथ रविंदर सचदेव सर हैं, जो लगातार कई विदेश मामलों के जानकार है, इस पर हम उनसे भी जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ राजीव डोगरा सर भी फॉर्मर डिप्लोमैट है, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे अमेरिका और ईरान की इस जीत में या फिर इस डील के अंदर कौन जीता कौन हारा। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर हरिंदर शेखौन सर मैम भी है, और मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन चीजों पर, किन पहलुओं के ऊपर इस डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी जुड़ी होंगी। गीता हमें बताएंगी कि आखिरकार, क्योंकि वो ईरान में लंबे समय तक रिपोर्ट कर चुके हैं, कई मामलों के अंदर वो गहराई से जानकारी रखती है, कि आखिरकार ये डील आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो क्या क्या शर्तें होंगी जिसको लेकर आगे बात की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं राजीव सर, अभी जो ये एमओयू साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, कई शर्तें थी जिसमें कहा गया था कि एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, मिसाइल प्रोग्रामों को लेकर, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने उन सभी शर्तों को मान लिया। क्या आप इस एमओयू को एक बड़ी जीत के तौर पर देखते हैं ईरान की?
1: पहले तो एक गुजारिश है आपसे कि आप ट्रंप की तरह इसको डील ना कहिए। डिप्लोमेसी में डील वर्ड नहीं यूज होता है, डील बिजनेस में यूज होता है। तो ट्रंप तो खैर बिजनेसमैन है, और डील का पहला संदेश यही होता है कि हार जीत हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है
0: जी।
1: तो वाकई में जब एमओयू हो दो देशों के बीच में, तो उसका मतलब यह है कि दोनों ने एक दूसरे को परख लिया है और एक प्रॉमिस, अनरिटन प्रॉमिस टाइप का किया है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, वो एग्रीमेंट से पहले की स्टेज है। तो उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमने ये वायदे किए हैं और उम्मीद है हम दोनों उसी पे खरे उतरेंगे। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक खाई है, वो खाई का नाम है ट्रंप, क्योंकि आज वो इधर है कल उल्टे हो जाते हैं।
2: खाई ट्रंप है कि नेतन्याहू, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं और आप देखें कि लेबनान पे अटैक्स फिर से शुरू हो चुके हैं।
1: बिल्कुल ठीक गीता आप कह रही हैं, आप बिल्कुल गहराई में जाती हैं। सो मैं तो खाई की बात कर रहा हूँ, आप वो समुंदर की गहराइयों में जा रही हैं जहाँ पे नेतन्याहू ले चुका है ट्रंप को, तभी तो हॉर्मुज हुआ।
0: बिल्कुल,
1: अगर नेतन्याहू की बातें नहीं मानते तो ये सब चीजें नहीं होती।
0: और शायद मुझे लगता है उस युद्ध की शुरुआत भी नेतन्याहू के वजह से हुई थी, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो सब कुछ हुआ 2023 में, उसके बाद ये वॉर गाजा के खिलाफ थी या हमास के खिलाफ थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ते हिजबुल्ला के बाद ईरान और पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। मैम अगर आप देखें, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं इसराइल की, इसराइल का ऑब्जेक्टिव पहले दिन से बहुत क्लियर था, 7 अक्टूबर के बाद से हमने देखा, पहले उसने ऑपरेशन शुरू किया गाजा में, फिर हमने साउथ लेबनन में उनके ऑपरेशन देखे, फिर हमने सीरिया में भी देखा, साउथ सीरिया के अंदर, और अभी हाल फिलहाल के वक्त में हमने देखा कि ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसमें उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उनके मिसाइल पावर या उनकी शक्तियों को कम करना नहीं था, उनका मकसद ये था कि सीधे तौर पर मैं पूरी तरीके से उनके रिजिम को ही वाइप आउट करवा दूं। हुआ कुछ नहीं। आखिरकार इसराइल को भी क्या हासिल हुआ इस पूरे ऑपरेशन में?
3: इसराइल का एक्चुअली अगर देखा जाए, उनको तो शुरू से 1948 से खतरा रहा है, बिकॉज दैट्स द ओनली ज्यूइश स्टेट सराउंडेड इन दिस रीजन। तो इसराइल को अपना प्रिपेयर्डनेस वगैरह रखना पड़ता था, उनको स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बहुत है इस रीजन में। बट जो नेतन्याहू ने जो बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग शुरू कर दी पिछले 2-3 साल से, वो जो है आई थिंक इट वाज फॉर हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब उसके खिलाफ करप्शन केसेस एंड ये जो इलेक्शन भी जीता, इट वाज अ डिवाइडेड इलेक्शन, उसका रिजल्ट नहीं था, तो एक तरह से नेतन्याहू ने जो ताना कि मैं ईरान के खिलाफ, यू नो ही वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ कि मैं एक स्ट्रांग लीडर हूं और मैं इसराइल को और मजबूत बनाने के लिए ईरान को खत्म कर दूंगा। बट उसने आई थिंक या तो उसकी अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करेगा. ट्रंप ने तो ऑलरेडी कहा कि नेतन्याहू ने मुझे मिसलीड किया, और अब जब नेतन्याहू को बोल रहा है कि सीज ऑल ऑपरेशंस अगेंस्ट लेबनान, नेतन्याहू नहीं मान रहा है. मतलब ही इज कंटिन्यूइंग टू शो कि वो इस डील से, इस एमओयू से सहमत नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है. सो इसराइल के कुछ कंसर्न्स तो जेन्युइन है. और इसमें जैसे आपने पहले कहा, तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा रोल, उनको पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये जो मतलब जैसे एक टाइम पे जो इजिप्ट ने डील करी थी इसराइल के साथ, सो उस किस्म का कुछ यू नो वी कैन वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर.
0: लेकिन क्या इसराइल मानेगा मैम, क्योंकि इसराइल तो कहता है कि हिजबुल्ला का खात्मा ही, संपूर्ण खात्मा ही.
3: पर वो तो सबको यू नो बहुत मुश्किल है, पर जो दूसरे हैं अब जो हिजबुल्ला वगैरह, उनके साथ कौन बातचीत करेगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है. और जब भी देखो वो वेस्ट बैंक एंड ये और वो, इसमें जो है मतलब सारे जो प्लेयर्स हैं हर एक का कुछ ना कुछ योगदान रहा है टू डिस्टेबलाइज द रीजन.
0: गीता, आप तो ईरान में होकर आई हैं, आप लगातार उनकी लीडरशिप से, आईआरजीसी से बात करती आई हैं, आपने कई बार उनके बड़े लीडरशिप से उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में बातचीत की. ईरान जिस तरीके का एक वीक पोस्टरिंग दिखा रहा था इस युद्ध से पहले, 2025 के बाद माना जा रहा था कि देखिए ईरान टूट रहा है, लगातार वहां पर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इस पूरे करीबन 39 दिन 40 दिन के इस कन्फ्लिक्ट में, तो वो तो एक सुपर पावर बनकर आया मिडल ईस्ट की, जहां पर वो इसराइल से भी ज्यादा पावरफुल है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक ऐसा प्रेशर पॉइंट उसके हाथ में लग गया कि जब चाहे विदाउट किसी न्यूक्लियर वेपन के वो पूरी दुनिया को झुका सकता है.
2: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईरान की रेजिलियंस का टेस्ट था, और कहीं ना कहीं वो वहां पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं. अगर आप देखें, ईरान न केवल स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग नजर आ रहा है, उन्होंने न केवल इसराइल को वीक और वल्नरेबल दिखा दिया है, वो ये भी दिखा रहा है कि इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें, उन्होंने अपने देश को पूरी तरीके से बिखरने नहीं दिया. चार दशक के सैंक्शंस के बाद और उसके बावजूद जिस तरीके से ईरान खड़ा है, वो क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर जो है,
0: बिल्कुल
2: मॉडर्न वॉरफेयर बदल चुका है. सुमित, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बस किसके पास कितना एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री पावर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अब मायने रखते हैं. और इसमें ईरान कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली काफी देशों से कई ज्यादा आगे नजर आता है.
0: बिल्कुल, और उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी की था कि आखिरकार उनकी जमीन कहाँ पर है, किस जगह पर उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो भी.
2: और वेपनाइज करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर देना अपने में ही एक ताकत है.
0: बिल्कुल, रविंद्र सचदेव सर, इस पूरे कन्फ्लिक्ट में हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ये तबाही फैलती हुई देखी. हमने देखा कि देखिए ये युद्ध बहुत सीमित दायरे में था, पहले तीन देशों के बीच में था, बढ़ते बढ़ते बढ़ते मिडिल ईस्ट के तमाम देश इसमें आ गए, यूएई, कतर, बहरीन. क्या आपको लगता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है मिडिल ईस्ट का देशों का यूएस के साथ में, क्योंकि एक तरीके का सिक्योरिटी गारंटर था यूएस उनके लिए कि उनको प्रोवाइड कर डिफेंस इक्विपमेंट, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म कर दी इस वॉर ने.
4: ओ एब्सोल्युटली, ट्रस्ट डेफिसिट कहें, ट्रस्ट एब्सेंस कहें, वैक्यूम कहें, पूरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रस्ट का हो गया है. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग टू थिंक कि ट्रंप ने कहा था जब वॉर शुरू हुई, इससे पूछा गया शुरू शुरू जब ईरान ने अटैक करना शुरू करा इन देशों को, कतर वतर को, तो ट्रंप सेड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हम सरप्राइज हुए कि इसने गल्फ की कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया. आई मीन दैट्स वेरी स्ट्रेंज और बहुत ही अजीब दिखाता है. इन्होंने वॉर प्लानिंग क्या करी, वॉर सिनेरियोज क्या करे, जब इन्होंने ये नहीं सोचा कि ईरान इनको अटैक कर सकता है, ईरान हॉर्मुज को बंद कर सकता है. इनफैक्ट अभी जैसे बात हो रही थी, मेरे मानने में तो यह कि वॉर जब शुरू हुई तो मुद्दा केवल यूरेनियम था ईरान का, अहम मुद्दा रेजिम चेंज थी बट यूरेनियम निकालना. जब वॉर रुकी आकर के तो एक नया वेपन पैदा हो गया, और इसको मैं कहता हूं हॉर्मुज़ी पंजा.
0: बिल्कुल,
4: ये सुपर वेपन है, और इस सुपर वेपन को पूरी अमेरिकन मिलिट्री माइट, पूरी इजरायली मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक माइट लगा करके भी नहीं कर पाए, तो बैटल टेस्टेड है. तो अब ये तो इटर्निटी के लिए ईरान के पास एक सुपर वेपन बन गया.
2: रॉबिन, एक सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि ये जो मिसस्टेप है या मिसकैलकुलेशन, ये कैसे हुआ, क्योंकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में उन्होंने कह रखा है, लिखा हुआ है कि अगर आप ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा. तो आपकी क्या मजबूरी रही, आपको क्यों सुनना पड़ा इसराइल के जो दावे थे उसको, कि आप ऐसे देश के साथ लड़ने चले गए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन, जो ऑयल सप्लाई चेन है, उसको डिस्टर्ब्ड कर दिया है।
4: ग्रेट पॉइंट। इसमें एक कारण ये भी है, ट्रंप ने आकर के अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टाफिंग है ना, आधी कर दी है।
2: बिल्कुल।
4: इससे पहले इनके करीब 200 थे एनएससी में, एक्सपर्ट्स जो भी कहिए, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब कांग्रेस को था कि प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड करे जा रहा है, उसको कोई एक्सपर्ट्स हो उसको एडवाइस करने को, तब से अमेरिका में चल रही थी। ट्रंप ने आके अपना विचवर वे, और उसको वो इसलिए करा इसने, क्योंकि इसके मागा वालों ने, बहुतों ने बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो लोग है ना, बहुत सारे तुम्हारे लॉयल नहीं है, तो इनको निकालो। तो जब एक्सपर्टीज आपने निकाल दी, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस नहीं मिल रही है आपको, दैट्स वन। सेकेंडली, ये वेनेजुएला के सक्सेस से थोड़ा ज्यादा हाई में थे कि ये तो हमने कर ही दिया, तो हाउ कैन दे नॉट इमेजिन कि ईरान, कोई भी सिंपल पॉइंट इसकी वॉर गेमिंग हुई होगी, बट वो लेवल ट्रंप तक नहीं पहुंचा। इनके जनरल्स ने तो करा होगा कि ईरान कतर को भी कर सकता है, बहरीन में मारा बेस है, बगल में कर सकता है, बट उनकी वो जो वॉर गेमिंग सिनेरियो मॉडलिंग थी वो ट्रंप के सामने नहीं आई, और आई भी तो इसने इग्नोर।
0: एक बात कहते हैं ना, आईना दिखाने वाले का आईना तोड़ दिया। मुझे लगता है कि जिस जिसने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश की, उसी को हटा दिया। अगर हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी जुड़े, प्रणय देखिए, आप डिप्लोमेटिक चीजों को और खासतौर पे जो नए समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने देखा कि एक वक्त था कि जब ईरान को लेकर कहा जाता था कि रूस और चीन जो है उनकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने देखा कि इस पूरे वॉर में 2025 के बाद जब दोबारा से वॉर सिचुएशन बनी, उसमें हर जानकारी ईरान के पास पहले से मौजूद थी। पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर अटैक किए गए, और आप कह सकते हैं कि जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, इतने ज्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं छोड़ी जहां पर अमेरिका को नुकसान ना पहुंचा। क्या आपको लगता है कि इसने अमेरिका को, भले ही मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया में, उसकी साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है?
5: दो तीन पहलू ऐसे हैं जिन पर हमें यहाँ पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो हम डील डायलॉग कर रहे हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस डील में जो युद्ध की विवेचना है वो अलग है, लेकिन अब हम डील से आगे कहाँ देख रहे हैं, और इस डील से क्या वास्तविकता में कोई समाधान निकल रहा है, या इसने इस पूरे क्षेत्र को और अस्थिर किया है, क्योंकि इसके बाद विश्वास का संकट जो है वो इस इलाके के अंदर और बढ़ा है। क्या खाड़ी के देश इसके बाद और सुरक्षित महसूस करेंगे? जवाब हाँ में तो कम से कम बहुत मजबूती के साथ नहीं निकल पाएगा। साथ ही क्या ईरान और अमेरिका के बीच में वाकई में दोस्ती हो सकती है, जो बातें कही जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई के बाद में, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कोई बहुत भरोसे का ऐसा हाईवे बन सकता है जिसके बाद अमेरिका का जो गुड है या ईरान और अमेरिका के बीच में पूरी दोस्ती हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके पेंच अभी उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिर ये सब हालात क्यों हुए। मैं रविंद्र जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह देखना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब सत्ता है वो काफी व्यक्ति ड्रिवन सत्ता है, और ऐसी सत्ताएं जहां पर सारी चीजें एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, उसकी इच्छाओं या उसकी राजी मर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती हैं, तो वो जो व्यवस्था आधारित होती, जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड व्यवस्था होती है, उसके मुकाबले काफी वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती है। आप ये देखिए कि इस पूरे संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही कमिटमेंट कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर हिला हुआ नजर आया। वो बयानों में भले ही बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद गोल पोस्ट क्या होना चाहिए, इस लड़ाई को कितना लंबा करना चाहिए, लगातार ये कॉमेंट्री आ रही थी, और शायद गीता मुझसे सहमत होंगी इस चीज को लेकर कि लगातार ये कॉमेंट्री आ रही थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में या किसी लंबे युद्ध में ईरान के साथ नहीं उलझना चाहते हैं। ये एक तरीके से डेडलाइन तय की गई थी।
0: हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की। जब आपके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, आप दुश्मन को चौंका सकते हैं, आप लगातार उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2025 के बाद जब दोबारा से फरवरी के अंदर जंग शुरू हुई, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिसिंग था, और अब आने वाले वक्त में जब भी ऑपरेशन होंगे, आपको लगता है कि ईरान उसके लिए ज्यादा और मजबूत तरीके से तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि देखिए उसके पास लड़ाई ही एक अकेला विकल्प है, क्योंकि उसके बिना वो घुटनों पे आ जाएगा और लगातार अमेरिका और इजराइल का मुकाबला नहीं कर पाएगा?
1: देखिए, ईरान तो ये कह रहा है कि आपने लड़ाई बंद क्यों की, पर आपके सवाल का जवाब मैं जरा विस्तार से देना चाहता हूँ। इसराइल को एक नशा सा हो गया था कि मैं एक ग्रेटर इसराइल
0: तैयार कर लूँगा,
1: और उसको ये लग रहा था कि 27 फरवरी से पहले जो उसकी कैपेबिलिटीज थी मोसाद की और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, कि जब भी जाके इसराइल के अंदर किसी ना किसी को मार सकता था। कोई अगर हमास का लीडर है किसी बिल्डिंग में रात के लिए रुका हुआ है तेहरान में, तो वो बिल्डिंग को अटैक करके उसको एलिमिनेट कर दिया। रिमोट कंट्रोल से रॉबर्ट्स उसने लगाए थे कि एटॉमिक साइंटिस्ट कोई ईरान का है, उसको ख़त्म कर दिया। इस लड़ाई के बाद उसकी वो क्षमता के ऊपर बहुत दरार पड़ी है। दूसरा, आर्मी स्ट्रेंथ जो है इसराइल की वो भी ईरान की मिसाइलें, ईरान की वो ड्रोन्स वहाँ जाके उनके एयर बेसिस को अटैक कर रहे हैं और डिफेंस फैसिलिटीज को अटैक कर रहे हैं और इसराइल कुछ कर नहीं पा रहा। जो इनवेंसिबल इसकी रेपुटेशन थी उसमें दरार पड़ गई है।
0: हमने एक और बात, क्योंकि इस पूरे डील के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बिल्कुल उलट है। उन्होंने बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए थे कि देखिए उन्होंने आर्थिक मदद नहीं की होती तो आज जो यूरेनियम इतना एनरिच लेवल तक नहीं पहुंचा होता। अब 300 अरब डॉलर का मदद दे रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि और भी जो प्रतिबंध है वो हटा दिए जाए। क्या ईरान को ये एक ऐसी मदद है जो एक खड्डा है जो अमेरिका ने अपने लिए खुद खोद लिया?
4: एब्सोल्युटली, आई थिंक ये सही एनालॉजी आपकी, अमेरिका ने खुद खड्डा खोदा है अपने लिए। और ओबामा की जो डील की बात करते हैं, अभी बात हो रही थी, ओबामा डील में था ये केवल यूरेनियम का मुद्दा था, उसमें मिसाइल्स का मुद्दा नहीं था और हूती प्रॉक्सीज का नहीं था। तभी नेतन्याहू कहते थे नहीं तो बड़ी खराब डील है, और नेतन्याहू अमेरिका में जाके लॉबी करी कि डील को कैंसिल, ट्रंप ने करी। अब आज जो डील आ रही है, इस डील में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई मेंशन नहीं है,
0: प्रॉक्सी का कोई जिक्र नहीं,
4: प्रॉक्सी का मेंशन, बल्कि रिवर्स हो गया है
0: बिल्कुल,
4: कि भाई लेबनान को तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट? तो अमेरिका ने अपने लिए खड्डा खोदा है, नो डाउट। बट क्विकली टू दिस पॉइंट ऑफ नेटो आल्सो, आई थिंक नेटो का एक और भी कारण हुआ है। देखिए इसराइल और नेतन्याहू को थोड़ा हम अलग भी रख सकते हैं कई बार। यूरोप में इसराइल को लेकर के सेंटिमेंट्स डाउन गई हैं,
2: नेतन्याहू
4: स्पेशली बिकॉज ऑफ नेतन्याहू, राइट? आपकी स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे ने तो जो आईसीसी में केस है फॉर वॉर क्राइम्स एट नेतन्याहू, जो भी केस है यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ डेथ, नॉर्वे ने उसको सपोर्ट उसके साथ खड़ा है। सिमिलरली अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के अंदर ज्यूइश लॉबी यस डेफिनेटली है, बट ये नहीं ज्यूइश लॉबी एक सिंगल ब्लॉक है, वो सारे के सारे
2: नहीं, वो भी डिवाइडेड है।
4: एग्जैक्टली, वो भी डिवाइडेड है, उनमें से काफी ये भी होंगे चलो इसराइल को करते हैं, बट वो फिर जो नेतन्याहू देख कर रहा है उनको लगता है कि नेतन्याहू देश को गड्ढे में ले जा रहा है
0: बिल्कुल।
4: तो इन सब फैक्टर्स को लेकर के आई थिंक नेटो का जो पॉइंट था वो आया। एंड जो गीता जी बात करते, एब्सोल्युटली यस, जो इन्होंने अपनी ये सेवन टीयर्स वाली स्ट्रैटेजी बनाई, एक लेसन है एक्चुअली दुनिया भर के लिए। इसको शायद ये लोग ऑल्सो दे कॉल इट अ मोज़ेक स्ट्रैटेजी, कि एज अ मोज़ेक उन्होंने बना लिया। एंड ईरान, यू नो, 8-10 साल इराक से लड़ा था, वो एक्सपीरियंस था, तब भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुई थी।
0: और शायद मुझे लगता है कि सर वही एक्सपीरियंस ईरान के लिए बहुत मददगार। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डील डायलॉग में हमने बात की कि आखिरकार ये 14 सूत्री एमओयू जो है वो आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच में कोई अस्थाई या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्थाई लेवल पर जाकर कोई पीस टॉक में तब्दील हो सकता है या नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड पॉडकास्ट्स ऑल इन वन प्लेस। बट हियर समथिंग यू माइट नॉट नो, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू साउंड। With TuneIn Explorer, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
7: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
9: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
10: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
9: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। I want a ring. Wait. Come.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या अब वहाँ नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरीटाइम फ्रीडम कहाँ होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, 14 पॉइंट एमओयू इसे कहा जा रहा है। क्या इसके बाद मध्य पूर्व में शांति लौटेगी? क्या वहां पर एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही सामान्य होगी? और जिस तरह के पैसा देने की बात ईरान को की जा रही है, जा रहा है, क्या इसके बाद मध्य पूर्व में शांति लौटेगी? क्या वहां पर एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही सामान्य होगी? और जिस तरह के पैसा देने की बात ईरान को की जा रही है, सैन्य और सामरिक दृष्टि से क्या यह अमेरिका की हार है जैसा कुछ लोगों का आकलन है? सैन्य और सामरिक दृष्टि से इस बड़ी घटना को भारतीय सेना में रहे 4 बड़े लेफ्टिनेंट जनरल इस समय मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। सभी का मैं आपसे परिचय करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आप पूर्व कोर कमांडर हैं लद्दाख कोर के। उस लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री हमारे साथ हैं। जनरल राज शुक्ला, पूर्व आर्मी कमांडर, मेंबर यूपीएससी हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, पूर्व कश्मीर कोर कमांडर हमारे साथ हैं। और सैन्य दृष्टि और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो 28 फरवरी को जब पहली गोली चली थी, उसके बाद से हर गतिविधि पर बहुत पैनी निगाह पूरी दुनिया की रही है, क्योंकि दुनिया के समीकरण इसके बाद बदलेंगे। जनरल शर्मा, आप ही से शुरुआत करते हुए, 14 पॉइंट एजेंडा एमओयू जो है, कुछ लोग इसे कह रहे हैं अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, कैसे अमेरिका के सरेंडर के रूप में देखा जाए?
1: थैंक यू गौरव बुलाने के लिए। सो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 27 फरवरी को देखें और आज का दिन देखें तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा, अगर उसको उस इस सांचे में मिला के देखें तो किसी हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना जो स्टैंड था उससे हटना पड़ा। बस उन्होंने 28 फरवरी को जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो बोला था कि मैं ईरान से यूनिलैटरल सरेंडर मांगता हूं। वो यूनिलैटरल सरेंडर जो 28 तारीख को उन्होंने स्पीच में मांगा था वो आज की डेट में यूनिलैटरल नहीं रहा, बिकॉज ईरान ने अपने काफ़ी हद तक बातें मनाई हैं और इसमें से कई बातें ऐसी भी हैं जिसको इंप्लीमेंट करना भी आसान नहीं होगा। तो कहा जाए कि अगर बिग पिक्चर देखी जाए तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत हुई या हार हुई, तो जीत के मामले में यह है कि एक पीस आया है। पीस बहुत जरूरी था, सारा संसार में इस वक्त इसका प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो एक पीस आया है तो इस हिसाब से। दूसरी बात देखिए,
0: एक एक बिंदु अगर हम लेकर चले तो जनरल कुलकर्णी, अमेरिका की जीत या ईरान का पलड़ा भारी?
2: अभी देखा जाए तो ईरान का पलड़ा भारी। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि कम से कम 60 दिन के लिए जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा और टोल नहीं लिया जाएगा तो वाकई भारत के लिए जबरदस्त एक मैं कहूँगा ह्यूज विन विन सिचुएशन। पर 60 दिन के बाद क्या होगा, अगर टोल वसूली शुरू हो जाती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे तो परेशानी तो होगी, क्योंकि फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है, बाकी भी स्टेट से सबको यह टोल वसूली करना चाहेंगे, वो एक दिक्कत आएगी। दूसरी जो बड़ी बात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर छोड़ते हैं, अगर हम देखें जो 14 पॉइंट एजेंडा है, पहला ही पॉइंट में 3 बार लेबनन
0: जी,
2: ये डील है यूएसए और ईरान के बीच में और 3 बार जिक्र है लेबनन का। इसका मतलब लेबनन इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या होगा आगे।
0: ठीक, लेबनन के मुद्दे पर निर्णय होगा, लेकिन क्या निर्णय जनरल शुक्ला ईरान ने ले लिया है? क्या ईरान का पलड़ा भारी है कि ईरान हिजबुल्ला की रक्षा कर पाया है और अमेरिका अपने मित्रों की रक्षा नहीं कर पाया है?
3: मेरे समझ में गौरव ये अर्धविराम है, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप। और ये फौरी इलाज जिसे आर्मी में कहते हैं ना, फौरी इलाज, इट इज द एमओयू हुआ है बट अभी जो है ये 60 दिन में घमासान शुरू होगा निगोसिएशंस का। और जो ट्रंप साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसके 4 बिंदु हैं, अगर आप समय हो तो मैं फटाफट बोलूँ कि पहली बात तो उनको बहुत दिनों से ये ज्ञात हो गया था कि ही हैड नो मिलिट्री ऑप्शंस। अब जो अंदर की कहानी है, दो कहानियां नजर आती हैं कि भाई ट्रंप साहब वाज कीन टू डू इट एंड द मिलिट्री सेड नो, द अदर स्टोरी इज कि मिलिट्री ऑफर्ड सम ऑप्शंस ही सेड नो, बट कलेक्टिवली ही सेड, एक बार उन्होंने बोला था कि अमेरिका तैयार नहीं है जमीनी युद्ध के लिए, ही मेड दिस इफ ही हैड नो मिलिट्री ऑप्शंस। दूसरा जो उन पे प्रेशर था वो था ये रिसेशन का, द इकोनॉमी वाज हेडिंग टू हिट द आइसबर्ग ऑफ रिसेशन, तो प्रेशर ये था। तो दोनों साइड ने यह कहा एमओयू कर लेते हैं, स्ट्रेट को खोल लेते हैं, बाकी चीजों पे बातचीत होगी।
0: जी, इसराइल के एम्बेसडर से बात की जनरल पांडे, और इसराइल के एम्बेसडर को लगता है कि इसराइल के हितों की अनदेखी हुई है। वो कह रहे हैं वो सीजफायर को तो दे विल गिव इट अ चांस, क्योंकि सीजफायर हो गया है, अगर हिजबुल्ला ने हमला नहीं किया तो वो पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन वो अब लेबनान से समय निकलेंगे नहीं। तो इस समय 14 सूत्रीय जो एमओयू है, किसका पलड़ा भारी?
4: देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा किसका पलड़ा भारी है क्या है, मगर जब ये लड़ाई शुरू हुई 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी को पहली बार शुरू हुई, सबके एक स्ट्रेटेजिक एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जब आप पब्लिक पोस्टिंग करते हैं तो आप कभी हाफ मेजर्स की बात नहीं कहते। ईरान बोलेगा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, अमेरिका बोलेगा कि हम रजीम चेंज करेंगे, मगर जो लोग उस लेवल तक चढ़ते हैं उनको मालूम होता है कि ज़मीन की रियलिटीज़ क्या होती हैं। और मुझे यकीन है कि जो अमेरिकन के जो स्ट्रेटजिक प्लेयर्स थे, पार्टनर्स थे, कितना भी इंटरनल डिसोनेंस रहा होगा उनके आपस में, घमासान होगा, उनको पता होगा कि हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आज अगर हम देखें तो हाँ, भले ही इसराइल ये बोले कि उनके साथ में धोखा हुआ, बट ये पब्लिक पोस्टिंग भी होती है। इसराइल के पास तकरीबन एक साल से ऊपर समय हो चुका है जिसके अंदर वो पूरी कार्रवाई, पहले हमास के ऊपर तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया है, और हिजबुल्ला के ऊपर आप ये समझिए कि 3 महीने, उसने 4 महीने तकरीबन खुले हाथ से काम किया है। सो उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है इस लड़ाई की आड़ के अंदर, और ये लड़ाई 2 सतहों पे चल रही थी। हम कई बार बोलते हैं कि अमेरिका की लड़ाई इसराइल के लिए थी, इसराइल के लिए नहीं थी। इसराइल की लड़ाई का नाम है ऑपरेशन लायन रोर, और इनका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अगर दोनों की लड़ाई का मत एक था तो नाम एक होता, ठीक है। इसराइल की लड़ाई पहले से चल रही है,
0: ठीक,
4: अमेरिका की लड़ाई बाद में एंजॉइन हुई है। उनकी लड़ाई सिर्फ ईरान के साथ रही, हिजबुल्ला हमास के साथ नहीं रही। इसराइल का ज्यादा जोर हिजबुल्ला हमास के ऊपर रहा है, लोकल रहा है। सो दोनों के एम्स, जो लार्जर एम्स है, वो अलग थे,
0: ठीक।
4: तो मुझे लगता है कि आज इस पॉज के अंदर, इस समय के अंदर, अमेरिका ने मेजर जो उसको अपनी रिक्वायरमेंट थी वो हासिल की।
0: अमेरिका ने अपनी मेजर रिक्वायरमेंट्स हासिल कर ली। अगर आप टैक्टिकल एम्स की हम पहले बात करते हैं, आप ही लोगों से मैंने सीखा है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर का, कि एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ एम। क्या अमेरिका अपने एम्स को जो उसने क्लासिफाई किया था लगभग 4 महीने के ऑपरेशन में, वो अपने एम्स को पा पाया है?
1: सो इसका जवाब सिंपल यह है कि एम्स को नहीं पूरा कर पाए। जो अगर आप शुरू से देखा जाए तो उनके जो एम्स थे वॉर में, के रिजीम चेंज और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना, तो ईरान की पहले से ही पॉलिसी थी। आयतुल्ला ने पहले बोला था कि मैं बॉम्ब नहीं बनाऊंगा। अभी भी पेशनियान जब नवंबर में गए थे यूएन में, तो उन्होंने पेशनियान ने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। सो तो वो उनकी ऑलरेडी पॉलिसी थी। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ईरान को इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और इस डील में, और अमेरिकन्स की जो इनिशियल थॉट प्रोसेस थी, जो हम वो अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं कर पाए। इनको उनके अपने जो उन्होंने इतने पिछले 4 महीनों बोला है, उसमें हर चीज़ में 2 स्टेप पीछे लेने पड़े इसको साइन कर। मैं बात कर सकता हूँ पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 8 या 4, उसमें हर एक इशू को देखा जाए तो हर इशू में एक ईरान को एडवांटेज हुआ है।
0: तो क्या इस रूप में देखा जाए कि ईरान, उसने अपने एम्स को मेंटेन किया, उसने न केवल होर्मुज को चोक किया, उसने आसपास के देशों पर भी अंकुश बनाकर रखा, उन अमेरिकन बेसिस को बॉम्ब किया, तो क्या ईरान अपने एम्स को मेंटेन कर पाया इस ऑपरेशन में?
2: ठीक है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज किया, ईरान ने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को पूरा स्टडी किया, उसको मालूम था कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख सकता है, अगर रखेगा तो इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर टू, बिकॉज बॉडी बैग्स अमेरिका डज नॉट एक्सेप्ट और कैन नॉट एक्सेप्ट। तीसरी बड़ी बात, ईरान को मालूम था कि 79 के सैंक्शंस के बाद जिस प्रकार से उसने अपने माउंटेन रेंजेस में डीप पेनिट्रेटिंग टनल्स में जिस प्रकार से उसने अपना पूरा मिसाइल सेटअप, अपना न्यूक्लियर सेटअप, सेंट्रीफ्यूजर्स, द वे दे वर गोइंग अबाउट, ये साफ साबित करता है कि ईरान को मालूम था कि उसको ये दिन देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अमेरिकन्स के साथ उसको लड़ना पड़ेगा। उस मकसद को देखते हुए अब जो एमओयू हुआ है, जिसपे सारे सैंक्शन हट गए, मतलब नाउ फ्रॉम 79 से आज तक जो सैंक्शन थे सैंक्शन हट गए सारे के सारे, प्लस $300 बिलियन का एक एड पैकेज, चाहे अमेरिका कहे वी आर नॉट कमिटेड, ट्रंप इज सेइंग कि ये तो फेक है जो भी है,
0: नहीं लेकिन अब तो लिखित में आ गया, लिखित में आ गया यहां पर
2: $300 बिलियन द वे इट इज टू बी गिवन, फ्रोजन एसेट्स $24 बिलियन रिलीज्ड। अगर इतना सब कुछ करने के बाद ईरान जो है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी लिखा हुआ है फॉर 60 डेज ओनली नो टोल विल बी कलेक्टेड, आफ्टर दैट अगेन देयर विल बी अ पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, तो वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, यानी इट्स अ एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर ईरान।
0: तो विन फॉर ईरान, जनरल कुलकर्णी का कहना है, जनरल शुक्ला उससे क्या आप सहमत हैं? इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ईरान का वर्चस्व, ईरान की इंपॉर्टेंस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनको ईरान को या तो हफ्ता देना पड़ेगा वो स्ट्रेट क्रॉस करने के लिए, या ईरान का महत्व बढ़ ही गया है।
5: सी देयर इज नो मिलिट्री इन द वर्ल्ड अमेरिका की तरह विच कैन प्रोजेक्ट पार टू ओशंस अवे, वो तो मानना पड़ेगा। 100 नेवी को ध्वस्त कर दिया, एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया, बट एक अंग्रेजी में एक कहावत है, मैं एक मिनट दूंगा, बहुत बढ़िया कहावत है, विच से स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक्स, अगर आपकी रणनीति ठीक है और टैक्टिक्स गड़बड़ है, इज द स्लोएस्ट रूट टू विक्ट्री, आप पहुंच जाएंगे वहां पे, पर टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी, अगर आपकी रणनीति गड़बड़ है, इज जस्ट द नॉइज बिफोर डिफीट। अब अमेरिका की कहानी क्या रही है, इराक अफगानिस्तान यही रही है, बगदाद में तो 3 हफ्ते में पहुंच गए थे और फिर 10 साल दलदल में फंस गए। यहाँ पे शायद मैं ट्रंप साहब की दाद दूं कि उनका जो जो शस्त्र का तंत्र है उसकी समझ बेहतर है। अब कल वो बता रहे थे तो जनरल्स वर आर्ग्यूइंग, ही सेड व्हाट विल यू डू, ही सेड सर वी विल टेक आउट देयर बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ही सेड ईरान को क्या इतना भी हक नहीं है कि वो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल रखते, सो ही वॉज क्वेश्चनिंग देम एंड ही डिडंट फॉल इन टू दिस ट्रैप बिकॉज ही रियलाइज्ड the limits of American military power, which I will concede is the best in the world. चीन को तो मुश्किल हो रहा है 100 किलोमीटर पार प्रोजेक्ट करना, हम मलक्का के अक्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, so that way they were a great military, but he drew the line when it was required. लेकिन ये जो समझ, एक मिनट, the point I'm making is, और ये हुआ क्यों, क्योंकि चीन ईरान ने इनके सामने और चुनौतियाँ रख दी, भाई स्ट्रेट तो खुला था 27 को, आपने तबाह कर दिया और स्ट्रेट बंद। What is the purpose of American military power? बस मैं 30 सेकंड और लूंगा। These 11 aircraft carriers, 800 bases, it is to keep business, commerce, oil going. Iran challenged that.
4: बहुत हमारी एक नासमझी आती है, हम लोग सब उसमें शामिल होते हैं, जब कोई नया सिस्टम आता है हमें लगता है इस सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता और यही सिस्टम चाहिए, बाकी सब जो पुराना है वो खत्म हो गया। तो इंसान की जब लड़ाई होती थी इंसान के साथ में, जब तलवार आई, उसके बाद में स्पीयर्स आए, उसके बाद में टैंक्स आए, फिर हवाई जहाज आया, फिर उसके बाद में आजकल रॉकेट्स और प्रिसीजन सिस्टम्स हो गए। तो हर एक टाइम पे ये लगता है कि अभी जो पुराना इंसान था, तलवार थी या स्मॉल वेपन्स, समय खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये सब लेयर्स हैं जो जुड़ते चले जाते हैं, तो प्रिसीजन सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सिस्टम्स, एयरफोर्स, इनका जमाना कभी जाएगा नहीं, वो इवॉल्व होगा, मगर आपकी जो लो एंड टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हैं जो नॉन स्टेट एक्टर टाइप यूज करते हैं, सस्ता टिकाऊ, उसका भी रेलेवेंस रहेगा। तो एक जो बड़ी पावर है वो जो गेम खेलनी है आपको डिस्ट्रक्शन की, लॉन्ग रेंज की, आपको लो एंड टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते दिस और दैट,
0: नहीं दिस और दैट, ठीक है सर। 30 सेकंड सर,
5: जो जनरल पांडे ने उठाए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, एंड वी मस्ट एंगेज विद इट सो दैट वी गेट टू व्हाट इज द ट्रुथ।
0: आखिरी 30 सेकंड जो है बस यस नो में, किसका पलड़ा भारी अगर मैं पूछना चाहूं, जिससे मैंने आरंभ किया था, अमेरिका या ईरान, अमेरिका या ईरान,
1: जिसकी इकोनॉमी $350 बिलियन है और उसको इस डील में $300 बिलियन मिल रहा है, तो उसको तो एक जीडीपी पूरी पूरी पूरी फालतू मिल गई ना, तो उस कंट्री का जो अभी जीडीपी है वो डबल हो गया। तो एक बात है,
0: केवल यस और नो चाहिए, ईरान या अमेरिका?
2: ईरान, और मनोबल ऊंचा, ईरान का मनोबल भी ऊंचा हुआ है और ईरान का जो स्थिति है वो भी मजबूत हुई।
0: जल साहब
5: ईरान,
0: जल साहब
4: स्ट्रेटजिकली अमेरिका,
0: स्ट्रेटजिकली अमेरिका, टैक्टिकली
4: टैक्टिकली ईरान,
0: स्ट्रैटेजिकली अमेरिका, टैक्टिकली ईरान। आपके पास चार लेफ्टिनेंट जनरल्स इंडियन आर्मी के आर्मी कमांडर्स और को कमांडर्स जिन्होंने युद्ध में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ट्रूप्स को कमांड किया है, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर दी है, वो बता रहे हैं किसका पलड़ा भारी। डील, डायलॉग, लेकिन हथियार का जो ज्यादा इफेक्टिव इस्तेमाल करे टैक्टिक्स का, जीत उसी की होती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप, पार्टी टूटेगी, और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
4: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
5: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
4: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच सीएम योगी ने रामलला के दिए किए दर्शन। अखिलेश के आरोपों पर कहा, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों वाले ना दे उपदेश, सबूत है तो एसआईटी को दे। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में कोताही, कहा पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। आरा एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार के मंत्रियों ने ही पुलिस एक्शन पर उठाए सवाल, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे अभिषेक बैनर्जी, पार्टी छोड़ने वालों को दल का हिस्सा नहीं मानने की मांग, सांसद सौगत रॉय ने दिया जानकारी। फ्रांस में कसीदे पढ़ने के बाद ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मेरे लिए प्रधानमंत्री सबसे प्रशंसनीय, बोले वो एक बेहद सख्त वार्ताकार।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo।

0: आएगा। अब याद कीजिए, दो हफ्ते पहले भी, यानी जस्ट दो हफ्ते हुए थे कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एकता की कैसी कैसी डींगे आकी जा रही थी, और नतीजा बिहार और झारखंड में दिख गया है। और ये एकता सिर्फ कांग्रेस के कारण नहीं बिखर रही है, आरजेडी और जेएमएम वाले भी आपस में झगड़ते रहते हैं, और बाकी देश में इंडिया के साथियों का क्या रुख है दिख ही रहा है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के नाम पर उद्धव की पार्टी तक के अंदर एकता नहीं बचा पा रही है, तो गठबंधन की एकता क्या ही बच पाएगी। ऐसी सूरत में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि जुबानी दावे भरपूर है और चुनाव में चूर चूर है, बस यही इंडिया गठबंधन की तकदीर रह गई है। यही सूरत रही तो यूपी में क्या हाल होगा, तमाम मुद्दे आएंगे, किसने कहां दगाबाजी की ये भी चर्चा होगी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए।
1: छप्पन साल के राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय समर्थकों से अटा पड़ा है। देश भर से सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता नेता मुबारकबाद देने पहुंचे। उधर वाराणसी में तो बीच गंगा के घाट परशुराम अवतार बताकर दुग्धाभिषेक कर दिया गया। भगवान परशुराम की तरह एक हाथ में हरसा लिए राहुल की, दूसरे हाथ में संविधान की किताब दिखाई गयी और बाकायदा स्वस्ति वाचन के साथ अभिषेक होता रहा।
2: आज माँ गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया।
1: जिस उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन एक एक ब्राह्मण वोट जोड़ने के लिए नेताओं में होड़ मची, कभी अखिलेश ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे, कभी जनेश्वर मिश्र जयंती मनाने की प्लानिंग, वहाँ राहुल को भगवान परशुराम का अवतार दिखाना सनातनियों और खासकर बीजेपी को बड़ा नागवार गुजरा है।
3: जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी, कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृत को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। आपने तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स की है, आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते।
1: राहुल की आस्था, क्षमता और धार्मिकता पर बीजेपी सवाल उठाए तो और बात, लेकिन अब राहुल गांधी की राजनीति, संगठन, चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे। वजह ये, एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और चार में से तीन सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में दो सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
4: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
5: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
6: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बात लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
7: आरजेडी और माले जो है, इसने धोखा दिया हमें।
8: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
1: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
9: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
10: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग, जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
1: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर दो महीने पर मीटिंग कर रही है।
11: लेकिन

0: बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख ने सुहा दी। यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है। केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
1: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
0: और कांग्रेस कहती है किसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: महज दो हफ्ते भी नहीं हुए थे कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई, वहां पर साथ में रहने के कस्बे वादे लिए गए, लेकिन दो हफ्ते के बाद ही आप सुन रहे थे कि किस तरीके से झारखंड में हार के बाद इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक दूसरे पर ही उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिकने वाले तो बिक गए लेकिन आरोपों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। तो आखिरकार राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर यह चर्चा तो होनी चाहिए कि आखिरकार इंडिया अलायंस की ये पूरी कहानी कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व अध्यक्ष है, पीसीसी के झारखंड के अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार रांची में ऐसा क्या हुआ, कौन टूटा कौन फूटा कौन बिका, इस पर भी चर्चा होगी। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या आरजेडी ने बिहार का बदला ले लिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत दिन के बाद वो दिख रहे हैं, बिहार के हार के बाद आरजेडी आजकल दिखाई देना थोड़ा कम हो गया है। पहली बार नवल किशोर साल भर के बाद मेरे ख्याल से शो में दिखाई दे रहे हैं। आनंद दुबे आजकल चर्चा में रहते हैं शिवसेना यूबीटी के, जब भी टूटती है फूटती है आनंद दुबे दिखाई देते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफी दिलचस्प डिबेट होगी ऐसा मुझे लगता है। तीन सवाल एक बार फिर मैं हमारे पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या इंडिया गठबंधन की जुबानी एकता के दावे चुनाव में चूर चूर हो जा रहे हैं? हर चुनाव में ये जुबानी जो एकता है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती है और उसके बाद तो अलग ही मामला निकल कर आता है। दूसरा सवाल, क्या बिहार में कांग्रेस की दगाबाजी का बदला आरजेडी ने झारखंड में ले लिया है, जो सवाल नवल किशोर जी से पूछा जाएगा। और तीसरा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हर बार अगर कोई हारता है तो ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ा जाता है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत कांग्रेस से ही करेंगे क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं राज्यसभा के भीतर। मेरे ख्याल से देखिए यही होता है कि कांग्रेस का कनेक्शन थोड़ा लेट हो जाता है। शुरुआत कर रहे हैं हम चर्चा की, जुड़ गए थे राजेश ठाकुर और अब एक बार फिर डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा, 56वें जन्मदिन पर कैसे दूध का अभिषेक किया गया। ये राहुल गांधी की तस्वीर यहां पर परशुराम की सूरत में और वहां पर दूध का अभिषेक वहां पर किया गया। सैयद जफर इस्लाम क्या कहेंगे आप कम से कम आज तो बधाई देनी चाहिए। देखिए आगे क्या होगा, किस तरीके से लड़ेंगे, क्या होगा, वो सब तो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम आज के दिन देखिए स्टालिन भी उनको आज विश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है अभी भी।
3: देखिए मैं एक सिविलाइज पार्टी का जो है वो प्रवक्ता हूं, तो मैं उनको उनके जन्मदिन पर उनको जरूर जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन आज पूरा देश देख लिया कि जो विपक्षी एकता की बातें जो करते थे वो पूरे तरह से धरातल पर बिखरा हुआ दिख रहा है। ये अगर इस तरह के राज्यसभा के चुनाव में एकजुट नहीं हो सकते तो ये कैसी बातें करते हैं? ना इनमें कोई नेता तय है, ना नियत तय है और ना कोई नीति तय है। कोई भी नेता बताइए इसमें जो एक नेता को सब मानते हो, और वही इंडिया ने दिखाया कि यूनिटी इज आर स्ट्रेंथ। हम एकजुट होकर एक मकसद, इसलिए कि हमारा एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इनका एजेंडा है मोदी विरोध, हमारा एजेंडा है देश को आगे बढ़ाओ, देश की जनता को मजबूत करो। तो दोनों में एजेंडा में फर्क है, इसलिए आज देखिए ये पूरे तौर से पूरे देश में जो है खोखली राजनीति जो करते हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी या एक दूसरे को आंख से आंख देख नहीं सकते। दिल्ली में आते हैं लोग हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि भाई हम साथ हैं। भाई कौन सा यूनिटी है बताइए? तो विपक्ष की नीति जो है सिर्फ मोदी विरोध की है, और जब मोदी विरोध नहीं चलता है तो देखिए आज सामने आपके दिख जाता है। इसलिए कि वहां उनके यहां भी लोग देखते हैं कि सिर्फ क्या काम है इनका, मोदी विरोध के, मोदी के खिलाफ नारे लगाना। जनता के बारे में चिंता नहीं रखते, देश के बारे में चिंतित नहीं होते।
2: नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए सैयद जफर इस्लाम जी, बीजेपी की सूझबूझ को तो मानना पड़ेगा। परिमल नाथवानी को सपोर्ट देने के लिए कम से कम आपने गौरव वल्लभ का जो नामांकन था वो वापस ले लिया, ये बड़ी सूझबूझ है। आपने भाप लिया था कि अगर किसी को तोड़ना है तो नाथवानी ही काम आएंगे, गौरव वल्लभ के नाम पर वो नहीं हो पाएगा। आपने बड़ी दिलचस्प तरीके से किया है, क्योंकि सवाल तो यह भी बनता है कहीं ना कहीं, 240 सांसद
3: नहीं,
2: हाँ जी
3: नहीं नहीं एक मिनट, गौरव वल्लभ जो है हमारे, पहली बात के जो नॉमिनेशन जो उनका कोई पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था, इसलिए उसको वापस लेने की क्या बात है, वो नॉमिनेशन ही नहीं था वहां पर, जो पार्टी ने जो नॉमिनेशन
2: मन ही मन में वापस ले लिया, जाहिर है, कह दीजिए।
3: तो इस तरह की बात है, ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कोई अगर किसी की इच्छा भी हो, लेकिन अगर पार्टी जो चाहती है वही लोगों को मरना पड़ता है। ये बातें जो है विपक्ष के पार्टी के बारे में बोलिए, कोई अपने नेता को मानने को तैयार नहीं है तो नियत ही नहीं है, न नेता है तो नीति कैसे हो सकती है, इसका जरा सोचिए। तो हकीकत में ये है कि
2: राजेश ठाकुर है ना, आप ही बता दीजिएगा राजेश ठाकुर जी,
3: दरार है
2: आखिरकार क्या हो गया,
3: जनता को दिख रहा है।
2: दो हफ्ते पहले सभी नेता, जेएमएम के नेता, आरजेडी के नेता सारे दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, कस्बे वादे लिए गए कि भाई अब तो बीजेपी पूरी तरीके से हमें खत्म करने में लगी हुई है, अलग तरीके से लड़ना होगा, साथ में मिलकर रहना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा। लेकिन यहां पर तो आपके तीन लोग टूट गए, कौन टूटे वो समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हुआ क्या आखिरकार राज्यसभा?
4: देखिए सबसे
2: आपको क्या लगता है?
4: देखिए सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया जफर इस्लाम जी से, और वो इधर उधर की बातें करके और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम किया उन्होंने, जो गौरव वल्लभ जी की बात है, गौरव वल्लभ जी के ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से पर्चा खरीदा था और उनको ये परमिशन दिया गया था। दो दिन तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहते हैं और वो एक उम्मीदवार तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाथवानी जी का इतना दबाव था कि उनके विधायक उनके साथ नहीं रह गए थे, 10 विधायक उनके प्रस्तावक बनने के लिए तैयार थे। तो ऐसे में उनको निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, ठीक है, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो बैरंग वापस चले गए। उसके बाद फिर खेल शुरू होता है, आवाजाही इधर उधर की बातें होती रहती है, उतने में इनके कई विधायक जो है प्रस्तावक बन जाते हैं नाथवानी जी के। उसके बाद मजबूरी इनकी कि इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का काम किया, उसके बाद उन्होंने गलत ब्यौरा दिया, फिर ना जाने कैसे कैसे, आप जानते हैं चुनाव आयोग की नियत भी कैसी है, और अंततः उनका जो पर्चा इनवैलिड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में भी नीति जो हमारी मीनाक्षी नटराजन जी थी उनको किस तरह से
2: राजेश जी
4: उनका पर्चा रद्द किया,
2: वो हो गया, वो सब डिस्कशन हो चुका, मीनाक्षी नटराजन वगैरह की बात हो चुकी है। चुनाव में आते हैं, चुनाव तो आपके कैंडिडेट ने लड़ा, हमारे प्रणव जी वहां पर गए थे,
4: क्योंकि
2: आपके लोगों के वोट बचा नहीं पाए, उसके बारे में बताइए ना, कौन नहीं बचा पाया,
4: बीजेपी सबसे अनुशासित,
2: किसके विधायक टूटे, किसके विधायक बिके या जो भी है, कौन टूटे?
4: बीजेपी सबसे अनुशासित पार्टी है, उसके 21 में से 21 विधायक बिक गए। तो आप जो ये कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब, हमारे बारे में तो वैसे ही बहुत तरह की लोग बात करते हैं, तो उसमें अगर कोई जो बात सामने आ रही है, जब हमारे 26 लोग थे और हमको वोट 26 लोगों को करना था, तो उसमें कहीं ना कहीं 5 वोट जो है नहीं पड़े और एक जो पड़ा वो इनवैलिड हुआ, और इसलिए हमें हार का सामना।
2: लेकिन राजेश जी, मैं आपका
3: 10 सेकंड दीजिएगा,
2: नहीं माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूं राजेश जी, आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैंने आपका कल का बयान में पढ़ रहा हूं यहां पर, एक सेकंड, आपका बयान में पढ़ रहा हूं राजेश जी, आपने कल बयान दिया वहां पर रांची में कि हमारे विधायक बिक गए, आपने बिक गए ये शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये कौन बिक, क्योंकि राज्यसभा के मामले में क्या है ना, थोड़ी आश्चर्य की बात ये होती है, क्योंकि राज्यसभा में ओपन वोटिंग होता है, आपको आपका पर्चा दिखाना पड़ता है, जो वहां पर पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है उसको दिखाना पड़ता है, उसके बावजूद इस तरीके से क्रॉस वोटिंग होता है या वोट आपको नहीं गिरते हैं, इसीलिए सवाल है आप किसको बिका हुआ कह रहे थे, आप वो जरा
4: नहीं, नहीं देखिए कि आपका हाँ, जी, जी, मैं कह रहा था बंगाल के उन विधायकों के बारे में भी, सांसदों के बारे में भी, महाराष्ट्र के सांसदों के बारे में भी और झारखंड के विधायकों के बारे में भी, किस तरह से खरीद बिक्री हो रही है ये तो सरेआम दिख रहा है, पोलिंग एजेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी पर मैं कह रहा हूं कि किस तरह की बिकवाली हुई है, किस तरह की खरीदारी हुई है, ये तो जांच का विषय है।
2: किसके? आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, किसके?
4: नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि प्रथम दृष्टया जो दिखाई दिया, जिस बात को हमारे प्रभारी के राजू साहब ने कहा, चुकी वो अंदर में थे, पोलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे और जो मतगणना के कक्ष में भी थे, तो उसके बाद उनको जो फीडबैक होगा उस आधार पर उन्होंने कहा कि राजद और माले के लोगों ने वोट नहीं किया हमारे को।
2: हाँ, तो ये अभी ये, एक मिनट, अभी अभी जफर हाँ, इस्लाम जी आरोप लगाया नवल किशोर जी की पार्टी पर, तो उनको जरा जवाब देने दीजिए। नवल किशोर जी, ये क्या है, आपके नेता उधर जाकर कहते हैं कि कांग्रेस हमसे बातचीत नहीं करती, नहीं जरा उनको उनको बोलने दीजिए, उनके आपस में चल रहा है, आप कहां बीच में आ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम जी, आपस में चल रहा है, जरा उनको करने दीजिए ना जरा थोड़ा। नवल किशोर जी, क्या है, उस दिन तेजस्वी यादव कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अचानक आकर चुनाव के बारे में बात करती है, यहां पर तो पहले से तय था ना कि कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली, अब कह रही है कि आपके विधायक बिक गए, नहीं पड़े आपके वोट, ये क्या है?
5: नहीं साहिल जी, बहुत साफ है कि पूरे इतिहास में और जब से भाजपा अपना पूरा काम कर रही है इधर उधर करने का, उसके बावजूद भी देश में यह लोग मानते हैं कि आरजेडी का कोई बिकाऊ नहीं, कोई भी आरजेडी का विधायक और आरजेडी कभी समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये साफ साफ संदेश दीवारों पे लिखी हुई है और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि आरजेडी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं दबी नहीं, बिहार में अभी भी उनसे ज्यादा वोट हमारे पास है, 1,15,00,000 इंडिविजुअली हमारे पास वोट है वहां पर, और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि धर्मनिष्पक्षता के सवाल पे, समाजवाद के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे आरजेडी कभी भी किसी भी वक्त में कंप्रोमाइज कर सकती है। तो जहां तक ये बात है, ये तो कहीं सवाल हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए और उस पर रोक लगाना चाहिए। यहां पर इंडिया गठबंधन
2: तो किसके बिके,
5: एकता एक नहीं नहीं अब बिके
2: ये नवल तो किशोर जी किसके बिके,
5: बिकाऊ हम लोग तो नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं हम लोग बिकाऊ नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, सैयद जफर इस्लाम साहब भी जानते
2: तो
5: हैं।
2: कांग्रेस के लोग बिके,
5: कांग्रेस किस तरह से कहां कहां पे कैसे कैसे क्या हुआ है ये पूरा पटल पे है, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो जफर भाई बोल रहे थे कि हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, इसके बावजूद भी आप चुनाव आयोग का खुला दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, इसके बावजूद भी पूरा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, अब उसके बावजूद भी
2: वहां पर आपके प्रदेश प्रभारी जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बिक गए, आप तो कह रहे हैं कि हम तो पाक साफ है, हमारे लोग तो नहीं बिके हैं, लेफ्ट कह रहा है कि हम पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कौन बचा फिर?
5: नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे तरफ से तो इस तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, इसमें कोई दौरा स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पूरे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को, खासकर चुनाव जिसका मुख्य चीज है, उस चुनाव को कितना चोटिल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के 10-12 साल के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको कहा जा रहा है कि कोई भी संस्थाएं नहीं है जो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र की प्रहरी है। इसलिए सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि झारखंड में या बिहार में या उड़ीसा, आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ और तमाम तरह के ऐसे उदाहरण है, बिहार में क्या हुआ उस पर हम नहीं जाते, हम जाते हैं कि जिस तरह से
2: जो इशारा आप कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के तरफ से बिहार के 3 कांग्रेस के विधायकों का बयान जारी किया गया था, वो जरा एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद राजेश जी के पास चलूंगा मैं, जरा वो एक बार बयान दिखा दीजिएगा।
6: तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे, नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए, ये सच्चाई है।
7: महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहां किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार, तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोगों को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया।
8: अब लग रहा है कि वोटिंग वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चल का आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी के तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है।
2: देखिए राजेश जी, कहीं इसका बदला तो नहीं लिया गया है?
4: नहीं देखिए, यहां पर बात इस बात की नहीं कि राजद ने क्या किया, माले ने क्या किया, विधायकों ने क्या किया वो कहा जा रहा है। वरना आप देख रहे हैं टीएमसी के 60-60 विधायक, जहां चुनाव नहीं है, जहां विधायक को की खरीद बिक्री हो रही है, 20 सांसद खरीद लिए गए, तो यहां तो चुनाव है। देखिए हम लोगों को चर्चा इस बात पे करनी चाहिए ज्यादा कि आखिर स्तर और कितना गिरेगा और इस तरह की खरीदारी कब रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे खरीदारी से कब बाज आएगी। ये ठीक है, अभी थोड़े देर के लिए हमारी बात हो सकती है, नवल जी की बात हो सकती है और जो राजद के अन्य नेतागण हैं उनकी बात हो सकती है, ये सही है। आपने वो दिखाया वीडियो, वो भी सही है, मैं मान रहा हूं कि वो सही है, लेकिन बावजूद बात ये है कि बिक्री कहां हो रही है, बिकवाली कहां हो रही है, खरीदारी कहां हो रही है, इस पर थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको भी देखना होगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने
2: जाते
4: हैं।
2: बात तो वही करनी थी। देखिए सवाल तो यह हमेशा बनेगा कि कौन खरीद रहा है, ये बात तो सवाल बनेगा, खरीदने वाला भी वहां पर है, लेकिन बिकने वाले में ये तो पता चले कि बिका कौन है, उसके बाद तो पूछेंगे कि खरीदने वाला क्या, खरीदने वाला कौन है वो तो दिख ही रहा है भाई, जिसके पक्ष में वोट गया है उसके पास गए हुए हैं, वो बात तो साफ नजर आ रही है, उन पर तो सवाल उठाएंगे। हाँ जी नवल किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात साफ हो जाए ना पहले कि बिका कौन है, कोई मानने को ही तैयार नहीं कि हम बिके हैं।
5: साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत दल के सारे विधायक बिक गए, ये तो चर्चा का विषय ही नहीं बन रहा है, ये तो पूरा देश जान गया कि जिसको कैंडिडेट देना चाहिए उसके विधायक बिक रहे थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए, मोदी
2: जी खरीदते हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, देखिए सैयद जफर इस्लाम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कौन बिका है उसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में झगड़ा हो सकता है, लेकिन खरीदा किसने उसको लेकर उन दोनों के बीच में एकता नजर आती है, यही एकता इंडिया अलायंस को कहीं आगे ना ले जाए, और उसी एकता का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। सही,
3: देखिए ऐसा है साहिल जी, इस चुनाव ने, झारखंड के चुनाव ने, राज्यसभा के चुनाव ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है कि विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी दरार है, जब ये खुद वहां उनकी सरकार है झारखंड में, इंडिया गठबंधन की सरकार है, नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उनके, अरे एक मिनट, बीच में इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां, उसके बावजूद उनके विधायक उनसे नाराज है, अपने सरकार से नाराज है, तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि अगर नियत नहीं हो, नीति नहीं हो, नेता नहीं हो, जनता की चिंता नहीं हो, समाज की चिंता नहीं हो, सिर्फ परिवार की चिंता हो, तो नतीजा यही होगा जो वहां हुआ है, लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, जनता से खुश
4: कहना चाहिए,
3: अरे भाई खुश नहीं है विधायक, अपनी सरकार से खुश नहीं है, अभी राजेश भाई क्या बोलेंगे, इनके पास कोई जवाब है, आपस में जरा इनको सुनवा दीजिए, एक दूसरे को
4: क्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री देश छोड़ के,
3: अरे पहले आप अपने घर के बच्चे को तो संभाल लीजिए, 56 साल के बच्चे को, 56 साल के बच्चे को तो संभाल लीजिए, उनको पहले संभालना पड़ेगा, पार्टी जब तक उनके बच्चे के हाथ में रहेगी यही हालत होती रहेगी।
4: रजत
2: सेठी, चलिए जरा ये अभी देखिए, ये जरा थोड़ा सा रुक जाइए, आज की स्थिति में दो चीजें निकलकर सामने आती है रजत सेठी, नंबर एक कि इंडिया अलायंस साथ में आने की कोशिश तो कर रहा है, उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से एक महीने के भीतर हर पार्टी के भीतर एक डर बना हुआ है कि हमारे लोग टूट सकते हैं, सरकार है या नहीं है, झारखंड के भीतर सरकार थी फिर भी जिसके भी विधायक टूटे होंगे, पता नहीं कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है, कांग्रेस के लेफ्ट कह रहा है हम तो दोनों तरफ थे, हमारा तो कोई टूटा नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे की, फिर भी उनके लोग टूट गए, अब ऐसी स्थिति में यह डर कहीं सबको साथ में लेकर चलेगा आगे, क्या राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है, क्योंकि इस बात को लेकर तो दोनों का झगड़ा साफ नजर आ रहा है।
9: साहिल जी मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि किसी के मन में डर है, कोई उनको उनकी पार्टी के विधायकों को लेना चाहे। समस्या यह है कि जिसके मन में दर्द है वही उठ के चल दे रहा है भाजपा की तरफ, तो दर्द का कोई पैरामीटर नहीं बचा है। देखिए जब जब यू नो जब आप देखिए यूनिवर्सिटी में जब तैयारी करते हैं नौकरी के लिए तो इंटर्नशिप करने जाते हैं, ऐसा लग रहा है विपक्ष के जितने पॉलिटिशियन हैं
2: डर या डर
9: पहले नहीं नहीं विपक्ष के
2: मैं
9: जितने
2: तो क्या कह रहे हैं
9: पहले इंटर्नशिप करते हैं,
2: मैं तो डर कह रहा था।
9: पहले पहले विपक्ष के जितने नेता है ना वो इंटर्नशिप करते हैं अलग अलग पार्टी में है, फिर साथ में उस पार्टी में रहते हुए इंटर्नशिप दूसरी जॉब जॉब एप्लीकेशन डाल देते हैं भाजपा में, और वो जॉब एप्लीकेशन जो है स्वीकृत हो जाती है तो रहते हैं उधर में, वहां पे एक जॉब लग जाती है, धीरे से सरक लेते हैं इंटर्नशिप छोड़ के मेन जॉब में। सारा विपक्ष का यहां पे बैठे हुए, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं नवल किशोर जी वगैरह का, लेकिन क्या हम में से कोई भी दर्शक दीर्घा में जो बैठा होगा वो क्या गारंटी से कह सकता है कि नवल जी रहेंगे आरजेडी में? मैं आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा हूं नवल जी, मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्या है आप जैसी पार्टियों में कि आप लोग नहीं बंध पा रहे हैं? नहीं मैं नवल जी में पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखिए आप एग्जांपल को एग्जांपल की तरह देखिए, जनता भी त्रस्त आ चुकी है ऐसे। नवल जी जनता भी मुझे पता है आप टिके, आप एक साल नहीं आए टीवी पे तो हम लोग को डर लगने लगा था कि कहीं आप भी तो नहीं चले गए उधर, क्योंकि आप लोग जब बोलते नहीं तो डर लगता है।
2: आप
10: जवाब
2: जरा एक मिनट, मैं आपका सवाल डाइवर्ट करता हूँ आनंद दुबे के पास, नहीं नवल किशोर जी आपके पास आता हूं मैं जरा, लेकिन ये सवाल मैं आनंद दुबे जी से भी पूछा जा सकता है, बराबर है? मतलब आरजेडी हो या शिवसेना यूबीटी हो, उनके पास डाइवर्ट कर देते हैं ना आपका सवाल। रजत आनंद आप जवाब दे दीजिएगा
9: प्लीज करिए।
11: साहिल भाई नमस्ते, मैं बात करूं
2: जी?
11: साहिल भाई सबसे पहले तो आज 19 जून है, आज ही के दिन 1966 में हमारे मार्गदर्शक हम सबके नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी। सभी देशवासियों को उस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना। एक चौपाई है तुलसीदास की साहिल भाई, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हर ली। हम लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि टूट रहे हैं हमारे विधायक, टूट रहे हैं हमारे नेता, छोड़ के जा रहे हमारे नेता, तो जब तक हमारे लोग बिकते रहेंगे खरीदार आते रहेंगे, खरीदारों की कमी नहीं, वो तो दुकान में मंडी लगी हुई है, बैठे हुए हैं ग्राहक, हमारे लोग बिक रहे हैं, जब तक बिकते रहेंगे सैयद जफर इस्लाम की पार्टी उसको खरीदती रहेगी। जिस दिन हम बिकना बंद करेंगे वो खरीदना बंद करेंगे। गलती हमारी है, आत्मचिंतन हमें करना है। जो झारखंड में हुआ उसके लिए मैं कतई किसी सरकार में या विपक्ष जो इसमें बीजेपी है उसको दोष क्यों दूं? हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, विधायकों का वोट होता है इसमें, वहां राज्यसभा जाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम काम क्यों नहीं कर पाते? क्या कमी रह जाती है? कितनी बारों कविता गाऊं की क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, अब तो गा गा के मैं भी थक चुका हूं। एक डिसीजन, एक कोई तरीका, एक कोई उपाय, एक कोई योजना हमें अब करना होगा। राजनीति कोई खेल नहीं है, गिल्ली डंडा का खेल नहीं है, ये एक संघर्ष है, संघर्ष।
2: देखिए राजनीति में इतना फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ आनंद जी, एक सेकंड मैं जरा आपके पास
3: देना चाहता हूँ।
2: हाँ एक एक मिनट मैं आता हूँ सबके पास, सबको एक एक करके मौका मिलेगा, लेकिन जरा आनंद जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लोग टूटते हैं आपके, इशारा दिखाते हैं कांग्रेस की तरफ, कहते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ आप लोग जाने वाले थे इसके लिए हम लोग टूट के जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास, ये क्या है? मतलब हर चीज के लिए आप कांग्रेस की तरफ इशारा करके भाग रहे हैं।
11: देखिए ये तो बहानेबाजी है, जो 6 लोग भागे हैं ये बिल्कुल बहानेबाजी करके भागे हैं, इसको हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, आज उसका स्थापना दिवस है, हम कहीं क्यों विलय करेंगे? हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम आज अब तो 3 रह गए हैं, हम 300 से 300 जाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस अपना दल है वो खुद अपना आगे बढ़ेगी, हम तो 30 साल बीजेपी के साथ थे ना, तब तो कांग्रेस
2: नवल किशोर जी के पास जाने से पहले
11: कांग्रेस में क्यों मिले,
2: जरा एक बात बता दीजिएगा, जो झारखंड में हुआ
11: फैलाई जा रही है,
2: जो झारखंड में हुआ इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? आप भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उसके बाद नवल किशोर जी जवाब देंगे, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आनंद?
11: देखिए वहां तो महाविकास आघाड़ी जो बनी है, जो भी गठबंधन है वही बिके होंगे ना, अब आप ही बता रहे हैं विश्लेषण की कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, सीपीएम है, इनमें से कौन फूटा है ये तो पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा, ये तो गुप्त मतदान हुआ होगा। इस पर एक बहुत बड़ी अब क्या कहें साहिल भाई, अब जनता सब समझ रही है, आपके दर्शक
2: अरे ओपन वोटिंग होता है आनंद दुबे जी, राज्यसभा का वोटिंग है, ओपन वोटिंग होता है, लोग तो, खुला वोट दिखा कर बिक रहे हैं।
11: क्यों नहीं बोल रहे हैं
2: तो बड़ी अलग,
11: क्यों नहीं बोल रहे कौन बिका? क्यों नहीं बोल रहे को? आप बताइए साहिल भाई कौन बिका, लिस्ट बताइए उसकी।
2: नवल किशोर बताइए, अभी अभी बताइए,
11: कोई तो बिका
2: अभी
11: है,
2: बताइए,
11: कोई तो भेदी है, किसी ने तो घर का भेदी बना है।
5: साहिल जी मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बिका उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में खरीदने वाला, यहाँ पर लुटेरा की चर्चा ही नहीं हो रही है। आनंद भाई कह रहे हैं जब तक हम दिखते रहे, आनंद भाई ये कहिए कि जब तक इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होते रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का इस्तेमाल होते रहेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये खुले तौर पे हो रहा है, चुनाव और चुनाव के उदाहरण तमाम तरह इस पर कोई आया, डकैत को आप कैसे माफ कर दीजिएगा, लुटेरा को आप कैसे करके
2: तब तक आप टूटते रहेंगे, आप कह रहे हैं कि तब तक आप टूटते रहेंगे, आप टूटते रहेंगे,
5: बिल्कुल नहीं,
3: हम चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई।
5: मैं ये कह रहा हूँ
3: अपनी सरकार में खामी
5: कभी बिका नहीं और न कभी बिकेगा, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के विचार ऐसे है कि न कभी टूटेगा न बिकेगा।
2: और जफर इस्लाम के पास जाने से पहले ठीक है, नवल किशोर जी ठीक है, ठीक है, ठीक है,
5: जो चोरी कर रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा
2: है? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए उस पर भी उनके पास जाएंगे ना, जफर इस्लाम जी को बहुत लंबा जवाब देना है। लेकिन रजत सेठी देखिए, खरीदना सत्ता का गुणधर्म होता है। अब देखिए कर्नाटक के भीतर क्या हुआ, कौन टूटा, किसने खरीदा, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो ताकतवर है वो खरीद लेता है, झारखंड में शायद नहीं होंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है फिर भी नहीं बचा पाए राज्यसभा की सीट, कैसे हो गया वो आपस में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तोड़ दिया बीजेपी के लोगों को,
9: तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ही जो बैठी है उन्होंने बीआरएस पार्टी को सिटिंग विधायकों को टिकट दे देकर तोड़ा है, तो ये कोई दूध के धुले ऐसा नहीं है। देखिए मूल तत्व ये है कि एक ये नेतृत्व की क्षमता के ऊपर आती, क्या आप सारे लोगों को बांध के एक ऐसा विजन दे सकते हैं क्या राहुल गांधी, जिसमें सब बंध जाएं? और आप लोग बोलते हैं कि आप एजेंसी, क्या सीबीआई की एजेंसी को नहीं प्रयोग में लाया गया था जब भाजपा विपक्ष में बैठी थी? क्यों ऐसा नहीं होता है? आप लोग करिए ना आंदोलन, आप बोलिए लोग जेल भरेंगे, आप लोग सत्याग्रह से आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, बोलिए ईडीआई ईडी जो हरिए ना आंदोलन, आप बोलिए लोग जेल भरेंगे, आप लोग सत्याग्रह से आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, बोलिए ईडीआई ईडी जो है आए हमको भरे जेल में, हमको डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन इन सब के अंदर डर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इन सब लोगों ने ऐसे कुकर्म किए हुए हैं कि हरिए ना आंदोलन, आप बोलिए लोग जेल भरेंगे, आप लोग सत्याग्रह से आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, बोलिए ईडीआई ईडी जो है आए हमको भरे जेल में, हमको डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन इन सब के अंदर डर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इन सब लोगों ने ऐसे कुकर्म किए हुए हैं कि इनको मालूम है कि सब पकड़े जाएंगे।
2: राजेश जी हंस रहे हैं,
9: पढ़ते नहीं है,
2: आपके मन की बात छीन लिया राजेश जी।
9: साहिल जी मैं आखिर में बोलूंगा, जेल गए बिना राजनीति नहीं शुरू होती है, जेल जाके ही सत्याग्रह होता है, जेल जाना
2: पड़ेगा। जवाब दीजिएगा,
9: से बोल रहा हूँ, जेल जाने से बचिए, बहानेबाजी मत करिए,
3: आदमी होना चाहिए,
9: बहाने करेंगे क्योंकि जनता भी त्रस्त हो रही है।
2: नहीं ठीक है, आप लोगों को जो मुद्दा उठाया उस पर बोलिए ना,
9: आप एक पल
2: मुद्दा उठाया उस पर बोलिए,
9: जनता इससे दुखी होती है, जनता एक वायबल ऑप्शन चाहती है।
2: ये क्या है, ये फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गया?
4: ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि पेपर लीक करेगा एनटीए और कार्रवाई होगी इंस्टाग्राम पे, उस पर रोक लगाया जाएगा, इनके पूछेगा मामा का नाम क्या है, ये बोलेंगे फूफा का नाम बताएंगे, लड़की अगर कोई अपहृत हुई है, किसी का अपहरण हुआ है, तो जब आप थाने में जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं बिटिया तुम्हारी अपहरण हुई है, हम पूछताछ उससे करेंगे। तो इस तरह की बातें कि तुम्हारी बिटिया क्यों चली गई ये तुम बताओ, अरे भाई पहले जो किया है उसको तो पकड़ो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति यही है, और इसलिए ये सब हो रहा है।
3: मैं जवाब दूंगा,
4: नहीं जवाब तो आप देंगे,
2: लेकिन फिर भी राजेश जी ये सवाल तो उठता है ना, 2023 पे गठबंधन बनता है, 2023 से लेकर एक लोकसभा और 13 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, उसमें से एक विधानसभा झारखंड में आप जीते, बाकी सब जगह पे आप हारे, कर्नाटक में आप जीते लेकिन वो कांग्रेस की जीत है, वो तो कोई गठबंधन की जीत नहीं मानी जाएगी। तो ये कब तक यह हार का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा? कम से कम आज 56वां जन्मदिन है,
4: आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, और आप जानते हैं कि वो छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरह से छात्र उम्र के सामने आ रहे हैं, आने वाला कल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के साथियों का है, और जो तमाम
2: राजनीति में कम से कम पहले फिलहाल अपने दल के नेता का भविष्य फिलहाल बचाने की जरूरत आ पड़ी है राजेश जी,
4: वो ईडी और सीबीआई भी स्वतंत्र होगी और ऐसे तमाम खरीदारों को जेल भेजने का काम करेंगे।
2: जफर इस्लाम जी,
4: हम यही कह सकते हैं,
2: जवाब आपके पास मौका है।
4: सच्चे आदमी का जन्मदिन है, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, और देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से उत्साह से छात्र नौजवान उनके जन्मदिन
2: परशुराम अभिषेक देख रहे हैं।
4: लोगों से मुक्ति मिलेगी, ये जो संकट में छोड़ के देश को चले जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री से छुट्टी मिलेगी,
2: ठीक है,
4: और शिक्षा मंत्री प्रधान
2: जफर इस्लाम
4: जी से भी छुट्टी मिलनी है।
3: सबसे पहले तो इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको अपने अंदर जरा छानबीन करनी चाहिए कि सरकार इनकी महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी, इनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, टूटी सरकार, इसलिए कि लोग विधायक खुश नहीं थे अपनी सरकार से। आज झारखंड में जो भी हुआ
4: क्रॉस
3: वोटिंग हुए, किसके लोगों ने वोटिंग खिलाफ दिया, इसलिए कि लोग सरकार से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हीं के विधायक ने
4: आपने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया,
3: गरीबों में झांकी ने कि हमारे में कमी की है। आप एक भी कोई आज राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज भी वो देश के लिए नाम पे आप बच्चा ही बनाते हैं उनको। आप बच्चे के पास ना उनको कोई तस्लीम करता है ना मानता है कि कोई वो लीडर है, आपके पार्टी के अपने कार्यकर्ता उनको लीडर नहीं मानते। हम बाहर के छोड़ दीजिए, हम तो आपके छोड़ दीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको लीडर मानते
2: हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जफर इस्लाम जी आपके पार्टी के टारगेट पर वही रहते हैं।
4: आज आप इसलिए मत कहिए कि आप ही के प्रधानमंत्री जी ने लीडर मानते
3: हैं। टारगेट पे नहीं रहता, मैं किसी को टारगेट नहीं, मैं तो
4: लीडर है वो विपक्ष के,
3: नहीं मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर
4: इनमें गलत बात मत कीजिए।
3: अरे भाई लीडर होते तो मानते ना लोग,
4: अरे जो भी नहीं, नहीं, उस बात को तो मानिए प्रधानमंत्री जी ने।
3: अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि लीडर आप ऑपोजिशन है, लेकिन क्या आप उनको मानते हैं लीडर? वो तो आपके आपके अपने लीडर नहीं माने जाते हैं, वरना आपके गठबंधन के साथियों से पूछ लीजिए। आज आपके अभी देखिए इसी चैनल पे कई लोगों ने बताया कि राहुल गांधी जी के बारे में कांग्रेस को कोसा, कांग्रेस ने किसी और को कोसा, आरजेडी ने कांग्रेस को कोसा,
2: ठीक है, एक मिनट जफर इस्लाम जी, 30 सेकंड है मेरे पास,
3: बताइए
2: जफर इस्लाम जी, 30 सेकंड है, एक सेकंड जफर इस्लाम
3: जी,
2: अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी में दब नहीं है, अभी भी आप जो कह रहे थे, तो अभी भी बीजेपी के प्राइमरी टारगेट पर राहुल गांधी क्यों रहते हैं?
3: देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अपने बलबूते पे तो नहीं, 4-5-10 पार्टियों के बलबूते पे हैं, लेकिन
4: अरे आपके
3: मैं ये कह रहा हूँ उन पार्टियों का तो उधर के नेताओं का तो बयान सुनिए, कह रहे हैं क्या नहीं कि कह रहे हैं क्या इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में, जब इस तरह के अपने गठबंधन के बारे में आने लगे, साथियों का स्टेटमेंट आने लगे, तो समझ में आता है खोखला गठबंधन है, कोई नियत नहीं है, कोई इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी की कमी है, आइडियोलॉजी होता तो होता
4: यूबीटी के भरोसे सरकार,
3: अरे हम स्वीकार कर
2: लेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई नई राजनीति की सुगबुगाहट भी नजर आ रही है, लेकिन जो लड़ाई यहां पर दिखाई दे रही थी आज पैनल के भीतर, वही लड़ाई कम से कम इंडिया अलायंस के भीतर भी दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद अगला साल इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां टूट रही है, उसके बाद इंडिया अलायंस को साथ में बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। फिलहाल उसी पर नजर बनाए रखेंगे, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
8: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
9: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप, पार्टी टूटेगी, और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

0: रूस की राजधानी मॉस्को का वो इलाका जिसे पुतिन का सबसे सुरक्षित किला कहा जाता था, वो अब धुएं के काले गुबार में तड़प रहा है। आज तड़के यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर कपोतनिया में वो तबाही मचाई जिसने रूस के घमंड को राख कर दिया। रूसी आंतरिक मंत्रालय खुद मान रहा है कि धमाके इतने भीषण थे कि मॉस्को रिंग रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। दावे बड़े बड़े थे, कहा गया था कि कपोतनिया रिफाइनरी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ एंटी ड्रोन नेट की दीवारें थीं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोनों के आगे ये लोहे के जाल मकड़ी के जाले की तरह बिखर गए। स्थानीय निवासियों के कैमरे गवाह हैं कि कैसे रूस का एंटी ड्रोन सुरक्षा कवच इस बारूदी बारिश को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ। यूक्रेन के 60 से ज्यादा ड्रोन बेरोक टोक मॉस्को में मंडरा रहे थे, एक एक कर बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा रहे थे। कई इमारतें तो ऐसी थीं जिन पर यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए रूस ने पेंटेसिर एयर डिफेंस मिसाइलों को तैनात कर रखा था। एक के बाद एक यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में इमारतों से टकरा रहे थे, वहीं दहशत के मारे लोगों की चीख निकल रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रूस के मिलिट्री प्राइड पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए यूक्रेनी ड्रोनों को सुरक्षा की एक दो या तीन नहीं बल्कि चार अलग अलग परतों को भेदना पड़ा। रास्ते में कम से कम 5 पेंटेसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जो ऊंचे टावरों से आसमान पर नजर रख रहे थे, लेकिन यूक्रेन के लोहे के परिंदों ने इन सब को छकाते हुए सीधे निशाने पर अचूक वार किया। यूक्रेन के निशाने पर ये रिफाइनरी पहले भी रही है। सितंबर 2024, मार्च 2025 और इसी साल सीधे निशाने पर अचूक वार किया। यूक्रेन के निशाने पर ये रिफाइनरी पहले भी रही है। सितंबर 2024 मार्च 2025 और इसी साल मई में भी यहां हमले हुए। रूसी टेलीग्राम चैनल एक्सेल नोवा प्लस का दावा है कि यहां सैकड़ों एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं, लेकिन यूक्रेन का ये हमला अब तक का सबसे घातक और सफल हमला साबित हुआ है जिसने रूस की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। ये रिफाइनरी सालाना 11 मिलियन टन यानी 1.1 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है और मॉस्को की 50% डीजल की जरूरत को अकेले पूरा करती है। इस पर चोट का मतलब है रूसी सेना और जनता दोनों पर बड़ा हमला। इस हमले ने रूस को घुटनों पर ला दिया है और इसकी गवाही दे रहा है मॉस्को का ये नया फरमान। घबराए रूस ने 20 जून से मॉस्को और उसके आसपास के 6 से ज्यादा राज्यों में कड़े हवाई प्रतिबंध लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब इन इलाकों में छोटे विमान और ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे और उड़ानों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5200 मीटर तय कर दी गई है ताकि यूक्रेन के ड्रोनों को पकड़ा जा सके। व्यावसायिक उड़ानें चलती रहेंगी, लेकिन ये पाबंदी चीख चीख कर कह रही है कि पुतिन की नजर में अब मॉस्को का आसमान महफूज नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बस इतना ही, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि राम मंदिर को किसने लूटा। राम मंदिर न्यास के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी आकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। उस पर भी चर्चा होगी अल्लाह बोल में। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: प्रभु श्री राम के मंदिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंचे। अब की बार योगी का अयोध्या आना ऐसे समय में हुआ है जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोप बहुत तूफान खड़ा कर चुका है देश में। एसआईटी की जांच का आज पांचवा दिन है, लेकिन जब मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोग ही संदेह के घेरे में, तब विपक्ष भी इस मुद्दे को बड़ा बना रहा है और बीजेपी को इस मौके पर घेर रहा है। हालांकि आज योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हमको ज्यादा ज्ञान न दे, उपदेश न दे। एसआईटी हमने गठित कर दी है, 15 दिनों में उसकी रिपोर्ट आने वाली है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ये भरोसा राम भक्तों को लौटा पाएंगे? क्योंकि आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भगवान राम के चढ़ावे में जो पैसा दिया गया उसको गिनने वाले लोग, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग ने ही वहां चोरी कर ली है। अभी तो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। और खुद जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में माना है कि चढ़ावा निगरानी की व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है। उधर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूदा एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। 500 सालों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना और मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो, इसको कौन देश में स्वीकार कर सकता है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता बीएचपी के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छल के इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही एसआईटी जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा, लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया।
1: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था, जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है, तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है।
3: आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
0: जी,
3: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस

0: मैनर में इंप्लीमेंट किया, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया, फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT तो बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को SIT पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है।
2: ये जो SIT में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के कई एस अफसर हैं और इधर के पुलिस के IG हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है, तो ये बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी पूरी संभावना रहती।
3: अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले की
2: जी,
3: सांसद जी अखिलेश जी को राम मंदिर में पूजा के लिए तो ला नहीं पा रहे, राम मंदिर का मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन अखिलेश जी यहाँ पूजा के लिए नहीं आए।
2: अखिलेश जी पूजा के लिए परिवार सहित आएंगे और उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद अखिलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे।
3: कौन सा मंदिर? वही मंदिर ना,
2: मंदिर बन के तैयार हो गया है
3: जी,
2: अखिलेश जी द्वारा जो मंदिर बन रहा है बड़ा भव्य मंदिर है।
3: कहाँ पर?
2: इटावा में।
3: इटावा में, अच्छा,
2: बहुत बढ़िया मंदिर।
4: जब सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और पेज पर लिखा कि चढ़ावे में चोरी हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण सूचना सामने आ रही है, तो ट्रस्ट को सामने आकर बोलना चाहिए था। अगर चोरी नहीं हुई थी, अगर कोई ऐसी घटना नहीं थी, तो ट्रस्ट को सामने आकर खंडन करना चाहिए था, अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट की चुप्पी और ट्रस्ट का मुंह चुराना जनता के बीच से ये प्रमाणित करता है कि ट्रस्ट में बहुत बड़ा घोटाला, डकैती, चोरी हुई है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं।
5: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
1: राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई, इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा, 6 लोग हैं, सबका पक्ष है और ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों के भी सवाल ले पाऊं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज आरोप गंभीर लग रहा है, खुद नृपेंद्र मिश्र जी जो कि इस पूरे निर्माण से जुड़े हुए थे वहां से लेकर आज तमाम लोग ये बता रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बनाया और इस वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। अब यह आरोप तो बड़ा गंभीर है, क्या इससे पूरी जो व्यवस्था है राम मंदिर की वो उस पर सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि किया क्या आपने?
6: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्तों की और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरा आघात लगा है यह जानकर के कि वहाँ पर चोरी हुई है और जो चढ़ावा था उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन हम दोनों दो चीज़ों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, तो शुरू में आपकी टिप्पणी थी, प्रबंध समिति और प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। प्रबंध समिति में वे लोग हैं जो वरिष्ठ लोग हैं शामिल है, जैसे नृपेंद्र मिश्र जी हैं, चंपत राय जी हैं, बाकी सारे लोग हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी हुई है जो पैसे की गिनती में शामिल लोग थे उन्होंने गड़बड़ी की है। यदि आज तक के में काम करने वाला व्यक्ति तमाम ये के व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई कर्मचारी यदि चोरी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज तक का प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूँ जिसका जिक्र नहीं हुआ है, ये पूरा जो ये करना था, गिनती करना था, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टेट बैंक इंडिया की निगरानी में होना चाहिए था, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र कोई आदमी भी
1: नहीं, मैंने प्रश्न पूछा है नृपेंद्र मिश्र से। अच्छा। लेकिन दो सवाल के दो बात का आपका करेक्शन कर दूं। एक तो किसी भी प्रबंधन समिति में नृपेंद्र मिश्र है ही नहीं, वो एक सेकेंड, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। निर्माण का काम पूरा हो चुका है, एक एक जगह की फाइल चाबी सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दिया है। प्रबंधन समिति नहीं, ट्रस्ट होता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसके चाहे वो आप चंपत राय जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, प्रबंधन की जिम्मेदारी उन लोगों की होती
6: है।
1: निर्माण अलग है, प्रबंधन अलग है।
6: मैं बिल्कुल इस पर भी आना चाहता था, मैं इसका जिक्र करना चाहता। अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र की भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई थी, बाकी जो ये सारी चीजें का प्रबंधन एक अलग विषय था।
1: कौन जिम्मेदार कौन था फिर?
6: देखिए उसमें जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसको देख रहे थे।
1: कौन देख रहा?
6: लेकिन देखिए दो हिस्से है, एक तो नियत पर सवाल उठाना और दूसरा जो है वो व्यवस्था में कमी हो गई इस पर सवाल उठाना। तो मुझे लगता है कि जो प्रबंधन से संबंधित जो लोग थे उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
1: क्यों?
6: है इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि उनको कोई अपनी मूल रूप से किस पर आ रहा है।
1: आप क्यों सर, आप क्यों एसआईटी से बड़े आप हो गए?
6: नहीं नहीं, मैं एसआईटी से बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना तो मैं तो कह रहा हूँ तो फिर डिस्कशन ही वेट कर लेता।
1: हाँ।
6: थोड़ा सा 10 दिन बाद ही हम लोग बात करते इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसआईटी उसमें देख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर दो धोती और दो कुर्ते पर बैठने वाला आदमी जो पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना कि वो पैसे की चोरी में, जिसका आगे नाथ ने कहा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है आगे नाथ ने पीछे पगा, उनके पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं, उस पर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, यहां मेरा सवाल है। बाकी मैं इससे कतई इतराज नहीं करता कि जो गिनने में लोग शामिल थे उनका हो सकता है ड्राइवर शामिल हो, बहुत सारे उसमें जो कर्मचारी हैं 40 के आसपास कर्मचारी थे, उन लोगों ने गलती की है, उन लोगों ने बदमाशियां की है, उन पर सवाल जरूर उठाना चाहिए, उनको
1: जरूर अनुराग जी।
7: सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है, इस पे भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताइए? वैसे तो बहुत बातें करते हैं प्रभु राम की, जब प्रभु राम के घर में चंदे में गड़बड़ी पाई जा रही तो देखिए कहीं है, देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं आए, समाजवादी खड़ी है। क्यों पता है?
6: क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में जिक्र किया था?
7: मैं आपके बीच में नहीं बोला,
6: समाजवादी पार्टी ने यह बताया था क्या कि चंदे में चोरी हो रही है?
7: मैं आपको सुना भाई, ध्यान से सुना, मैंने आपको सुना भाई फर्जी प्रोफेसर बोलता हूँ भाई, किसी के बीच में बोलो, मैं आपने सुना, मैंने आपसे बोला कि देखिए प्रभु के घर में जब चोरी हुई जिस तरह की बात आई तो किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े, अरे ठीक है अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1,00,000 बार बोलूंगा, मैंने धर्मचंद को सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर, और बताइए 1,00,000 बार बोलूंगा, कहूंगा
8: फर्जी प्रोफेसर कैसे कह रहे हैं आप?
7: क्यों क्यों मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मैंने उनको धैर्य से सुना है, बात कर रहे हैं प्रभु के राम की चर्चा करने आए, झगड़ा करने नहीं आए। ठंडी सांस लीजिए, जोर से बोलिए जय श्री राम, ठंडी सांस लीजिए, जो प्रभु का नाम लीजिए।
1: जब वही भगवान राम कहते हैं अब शब्द से बचिए तो आप भी बचिए, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए बोलेंगे, फिर मैं यही
7: सवाल
1: यही
7: कि हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ के शिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे, पत्रकारों का भी सम्मान होगा।
8: समाजवाद की परिभाषा क्या है?
7: अभी सुन लो आपके बीच फिर आप ही जो टोक
3: पड़े। सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाए भी गए, एक से प्रभु राम के
7: आशीर्वाद।
3: सवाल नहीं सुनिए,
7: सुन रहा हूँ,
3: पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते?
7: अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए, प्रभु के आदर्श शासनों पर चलते हैं ना,
8: कैसे
7: प्रभु कण-कण में है कि नहीं? आप बताइए, प्रभु कण-कण में है कि नहीं?
8: गोली चलवाने वाले
7: मंदिर में बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। और प्रभु के घर में अगर कोई चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? क्योंकि मेरे कानों में समाजवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तब उन्होंने आवाज उठाई ना।
3: अरे पूजा करिए ना, थोड़ा बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। सुनिए ना, जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, नृपेंद्र मिश्र खुद कह रहे हैं उन्होंने निर्माण का पूरा काम किया, हम लोगों ने जब से वो जमीन थी वहां से मंदिर का उनको पूरा निर्माण कराते, वो कह रहे हैं कि कोई ढंग से वहां पर सिस्टम ही नहीं बनाया गया, प्रबंधन नहीं बनाया गया। ऐसे 3-4 लोग थे उसी ट्रस्ट के जो ऐसे घुसते थे वहां पर मंदिर में, पुलिस वालों से ऊपर अपने आप को समझते थे, फ्रिस्किंग नहीं होती थी उनकी, कौन कितना चंदा इकट्ठा अंदर से ला रहा है, चढ़ावा का पैसा ले जा रहा है, चढ़ावे का क्या कर रहा है, कुछ नहीं था। कोई भगवान से ऊपर कैसे हो गया, प्रबंधन से ऊपर?
9: भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और भगवान को हम चंदा भी नहीं दे सकते। समर्पण है, लोगों ने समर्पण किया है, एक चीज। दूसरी चीज, नृपेंद्र जी ने जो प्रश्न खड़े करे हैं, समाज के कुछ और लोगों ने भी खड़े करे हैं, हमारे मन में भी दर्द है कंजना जी, ऐसे विषय निकल कर आए हैं। लेकिन आप देखिए, न्यास ने जैसे ही उसके मन में संज्ञान में आया उसके विषय, अखिलेश जी ने तो उसको पॉलिटिकल देने के लिए वो सारा विषय किया, लेकिन न्यास के जैसे ही संज्ञान में विषय आया, न्यास ने दुरुस्त तरीके से जांच हो, एक एक व्यक्ति उसमें पकड़ा जाए, इसके लिए सीधा सरकार को SIT के लिए कह दिया। ये कम काम किया क्या? आप ये देखिए अंजना जी, इस हिंदू समाज ने 500 वर्ष इंतजार किया है, क्या हम 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 15 दिन इंतजार करिए। और दूसरी चीज, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी के यहां से 12 लाख मिले, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी के यहां से जेवर मिले, तो ये सूत्रों पर विश्वास मत करिए। SIT क्या कह रही है? 2 दिन बाद आ रही है ना उसकी रिपोर्ट, थोड़ी सी रिपोर्ट जो है, सरसरी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी, उस पर आप देखिए। उसके बाद फिर 7 दिन और लगेंगे, यानी 15 दिन टोटल। 500 वर्षों का हिंदू समाज ने इंतजार किया, 1 लाख से ज्यादा बलिदान हुए, 15 दिन का इंतजार हिंदू समाज कर सकता है? लेकिन सुनिए सुनिए अंजना जी, ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं, जिनको राम से कुछ लेना देना नहीं है। राम द्रोही
7: है, बताओ, खुद राम द्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे?
9: जिन्होंने
7: ये राम द्रोही बोलने वाले खुद राम द्रोही है।
9: इतने ही राम भक्तों को मार दिया, और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम भक्तों पर गोली चला दी। ये समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं
3: जवाब दी।
9: इनके आपके लिए राम पॉलिटिकल है, हमारे लिए राम पॉलिटिकल नहीं है, आस्था का प्रश्न है, हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत अस्मिता का प्रतीक है।
3: ठीक है प्रोफेसर साहब, आप रुक जाइए,
9: आपके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं,
7: ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए, बोल नहीं पाए कि वहाँ पे इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, आवाज हमने उठाई है और हमने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्रभु के भक्तों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है।
1: आपको क्रेडिट चाहिए, मिलेगा जनता देगी।
10: लेकिन राम मंदिर का विरोध करते थे,
11: कभी नहीं करते, कभी नहीं राम मंदिर का विरोध किया, कभी नहीं किया। माननीय सर्वोच्च हमेशा का प्रभु का राम मंदिर और भव्य बनना चाहिए। हम लोग तो मंदिर बनाने वाले लोग हैं, हम तो इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं। यहाँ का विरोध करने वाले लोग हैं, हम तो राम बनाने वाले लोग हैं। किसने बनाया? समाजवादियों ने बनाया। केदारेश्वर तो वो बोलेंगे तो मैं बोलूं नहीं,
1: वो अगले
9: राम कौन कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा।
11: तो फिर
9: आपके मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा,
11: मंदिर तो आपका मंदिर कमाल आपका भी है प्रभु,
9: हमने
11: आपका भी मंदिर है, मंदिर सबका होता है, आपका हिंदू ने बनाया है, सबका मंदिर है, आपका मेरा मंदिर बांटो मत। ये राजी क्या आपका मंदिर, मेरा मंदिर, मेरा मंदिर, तेरा मंदिर, मंदिर सबका है, मंदिर को मत बांटो, वो भी मंदिर आपका है,
9: आपका और हमारा,
11: आप हमारे तुम्हारे की बात करें, सब मंदिर मंदिर में सभी का है और सभी आस्था का विषय है, सनातनियों का मंदिर होता है।
1: ठीक है, एक सेकेंड हो गया आप दोनों का, चलिए।
10: रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी हिंदू राम राम चिल्लाएगा। देखिए जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ
11: नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है,
10: लगे हुए हैं राम भक्तों के,
11: नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है,
10: चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको, आप देखिए जय सियाराम बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन चीजें हुई जो कि अखिलेश जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना, उन्होंने फर्जी बातें फैलाई। पहली चीज, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था शुरुआत में कि चंदा चोरी हुआ या वहां पे चढ़ावा चोरी हुआ। सबसे पहले जो न्यास है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके उन्होंने ही सरकार को बोला था कि यहाँ पर कोई परेशानी है, और उसके बाद एफआईआर
11: क्यों नहीं कराई,
10: और
11: एफआईआर क्यों नहीं कराई, एफआईआर क्यों नहीं कराई, पूछे अंजना जी, पूछे एफआईआर क्यों नहीं कराई,
10: पूछना
11: अगर आप इंक्वायरी करते हैं, एफआईआर कराते ना,
10: अरे
11: एफआईआर कराते ना, एफआईआर कराते ना,
10: एफआईआर
11: कराई, फर्जी कर रहे हो, एफआईआर करा नहीं पाए, क्यों नहीं एफआईआर कराई आपने, क्यों नहीं आपने एफआईआर कराई, जब आप कह रहे थे जब सरकार को बोला, उन्होंने जब सरकार को बोला एफआईआर होती ना, बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे बैठे यहाँ पे, कि हमने सबसे पहले सरकार को बोला, हम लोगों ने मांग की सरकार से, तब सरकार ने एसआईटी बनाई है, और ये एफआईआर करनी बाकी है, हम कर रहे थे, हम कर रहे थे।
1: भदौरिया जी, भदौरिया जी प्लीज, नहीं नहीं आप अपना संभाल लीजिए बहुत जल्दी से।
10: एक होती है नियत और एक होती है बद इंतजामी। देखिए नियत साफ है, क्योंकि सब में सबकी रामलला विराजमान में आस्था है। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है राम, हमारे लिए मरने और जीने का प्रश्न है राम, लेकिन इनके लिए राजनीति है। जब इनको सूट करता है तो ये ऐसे टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं, और जब इनको सूट करता है कि अब बंगाल में जमीन हिल गई है, हिंदू खड़ा हो गया है, हिंदू
11: एकजुट हो गया है,
10: तो जय श्री राम का नाम
1: है। सतीश जी जल्दी से मुझे फिर सवाल लेना है, उसके बाद सवाल
12: जी। देखिए अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर होती है, सरकार एफआईआर ना दर्ज करके इसकी जांच करा रही है, सरकार
10: अपराध हुआ है नहीं हुआ, अपराध नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
12: मेरी बात को सुनिए,
10: अरे अपराध हुआ है नहीं हुआ, इसी की तो इन्वेस्टिगेशन
12: किस बात की,
10: कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए बात की कौन है,
12: आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोर हैं, आपने चोरी की है भगवान राम के घर में जाकर के,
10: आप बताइए अपराधी कौन है,
12: सजा मिलेगी आपको,
10: आप नाम बताइए,
12: सजा मिलेगी,
10: सुनिए
12: मेरी बात सुनिए। देखिए अंजना जी, अगर सरकार आपकी है आप क्या कर सकते हैं भगवान राम के लिए। श्राइन बोर्ड में बाकायदा वैष्णो देवी में ये घोटाला हुआ था, 1986 में जाकर के जम्मू कश्मीर सरकार ने श्राइन बोर्ड बनाया, और वो दुनिया का सबसे शानदार प्रबंधन है,
1: बाकायदा सीईओ है, ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस वर्किंग ऑफिसर, वहां पर सीईओ भी होते हैं, सब प्रबंधन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है, सैलरी डिसाइडेड
12: कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए नहीं, सुनिए इनको चंदा इसलिए चोरी करना है, इन्होंने बहुत सारी सरकार गिरानी है, घूम फिर करके वो उस पॉलिटिकल यूज हो रहा है उस पैसे का, पकड़े जाओगे 100%, ये जनता तुमसे पूछेगी भगवान राम के नाम पर आपने वोट लिया, भगवान राम के नाम पर जो चंदा लिया था उसका पॉलिटिकल उपयोग करना चाहते हो, सवाल पूछेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग 100% इस बात का जवाब देना पड़ेगा,
10: फिर काय
1: अपराधी
8: सबसे बड़ी हास्यास्पद बात आज क्या है, सारे लोग यहाँ राम भक्त हैं, लोग सब अपने को राम भक्त कहते हैं, आरोप लगा है तो आप शांति से कहिए जांच हो रही है, इसमें आप लड़ क्यों रहे हैं? आप कुछ सवाल पूछने वाले को देशद्रोही और रामद्रोही क्यों बता रहे हैं? चंदा भी गायब, चढ़ावा भी गायब, जो जनता पूछे हिसाब तो जवाब भी गायब। आज बात यह है तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी, तो राम जो है ना वो अमंगल के हरण करने वाले, तो राम ने ही ऐसा चक्र रचा कि इनके सारे कुचक्र सामने आ गए, इनके सारे कुचक्र जब सामने आ गए तो अभी कह रहे कि
10: राम को मानते हो,
8: देश में चंदा चोरी हो जाए, पेपर चोरी हो जाए,
10: विश्वास न करना चोरी हो जाए, जो राम को काल्पनिक कहते हो यहां पे बैठ के
8: किसान राम राम चिल्ला रहे हैं, सड़क पे राम राम चिल्ला रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे
1: हैं, चिल्ला चिल्लाहट हो गया तो कुछ सवाल ले लेते हैं।
8: मैं तो पूरी बात ही नहीं कर पा रहा,
1: कर ही नहीं पा रहे, आप उधर उलझ रहे हैं ना, मुझे देख के बोलिए।
8: किसान सड़क पे आ जाए तो कहेंगे खालिस्तानी, विद्यार्थी सड़क पे आ जाए तो कहेंगे जैन जी, अगर विपक्ष सड़क पे आ जाए तो उसको देशद्रोही कहते हैं, और चंदा चोरी के लिए एसबीआई ने अगर एसआईटी के लिए मांग किया तो कहते हैं वो तो एसआई भी
10: हो गया,
11: ताली भी नहीं बजी, अब समझ जाओ क्या हालत है
1: आप लोगों का, हो गया बच्चों का,
11: ताली भी नहीं बज
1: रही। सवाल सुनिए,
13: मेरा नाम दीपक कसे मिश्रा, मैं मिथिला से आता हूँ, माँ सीता की धरती से। आप सनातन बोर्ड की कब बनाएंगे? बफ बोर्ड है तब सनातन बोर्ड क्यों नहीं, क्योंकि सरकार के अधीन हमारे मंदिर क्यों रहे? सरकार में तो अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। आपको नसीहत है, मैं माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो, ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे।
11: अरे भाई
8: पद्म विभूषण दे दिया था, पद्म
14: विभूषण बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिलम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के आपने आपको दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है जो सपा है उस राम प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप राम भक्तों राम मंदिर के विरोधी, आप बताइए ना जरा।
11: जवाब दे रहा हूँ,
15: मेरा क्वेश्चन तो पूरे पैनल से ही है कि जो अभी करंट पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है कंट्री में कि ऑपोजिशन डिसइंटीग्रेट हो रही है, एंड सडनली ये 200 करोड़ का कैश आउटफ्लो मतलब जो हमने अपनी आस्था से मंदिर में चढ़ाया, तो इज इट अ टू गुड टू बी ट्रू कोइंसिडेंस की दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं?
16: 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अंधाधुन फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पर, क्या वो सही था?
11: जवाब दे रहा हूँ,
17: जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो विपक्ष ने क्यों दूरी बनाई पहली बात?
11: जवाब,
8: सबके सवाल एक जैसे हैं,
1: जितने हो गए बैठ जाइए प्लीज,
10: जेन जी है,
1: जल्दी जल्दी सवाल,
10: यही जेन जी है,
11: ये परेशान हो,
8: पेपर लीक
1: हो रहा है, कैमरा आप पे,
18: अनुराग भदौरिया जी और ये विवेक जी है, आपको पहली बात तो राम सॉरी जो भी आपका नाम है मैं भूल गया, आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए, आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे,
11: सबके
18: आपके नहीं है सर,
11: आपके नहीं,
18: मेरा क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि गलती सिर्फ कुछ लोगों की थी और कुछ लोगों की गलती के कारण सबको दोष नहीं ठहराया जाता था, लेकिन आप एज ए रूलिंग गवर्नमेंट आपको एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उस पर ध्यान दें, राम मंदिर एक सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर ध्यान देना चाहिए, और ये और ओपोजिशन मेरा सवाल है कि आपको नीट के पेपर लीक सुसाइड हो रहे हैं और ये जितने भी अभी चीजें चल रही हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामले को भटकाया जा रहा है?
8: बहुत बढ़िया
18: टॉपिक से,
1: बहुत बढ़िया, क्या आप ही लोग उठा रहे हैं? राहुल जी तो गए भी, इस पार्टी को तो एक ही काम है आज
8: तो हमारे पास।
19: सर मेरा सवाल आपसे,
8: बात कर रहे हैं अंजना जी,
19: सर आपने बताया इनको कि ये फर्जी है, आपने इस पार्टी में ऐसा क्या घिनौना काम होते हुए देखा जो आपने इस पार्टी दल को फर्जी बताया?
8: सवाल
1: जिसका हो गया बैठ जाइए जल्दी,
8: टोपी लगा, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाता हूँ बच्चों,
1: दो आखिरी के दो सवाल हैं प्लीज,
8: नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाता हूँ जो कहते हैं पत्थरों में भगवान नहीं है,
19: जैसे कि इंडिया में देखा जा रहा है राम मंदिर सेंसिटिव टॉपिक है, बट इस पे जैसे कि अभी देखा जाता है कि यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई
20: भटकाने का तरीका है कि लोगों को।
21: और जैसा कि सर आपने कहा कि ये राम भक्त है और इनको पेशेंस रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जांच हो रही है, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं इधर से कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है? आप भी पेशेंस रखिए। और आप बीइंग ऑपोजिशन, आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पे आपको बात करनी चाहिए, जिन पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए।
22: हम तो कह रहे हैं कि परम भक्त
21: है। ये कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी गलत है या कांग्रेस गलत है, उनको ये मतलब है कि सिस्टम में जो गलतियां हो रही है, जो इनकंसिस्टेंसी है, उनको किस तरीके से ठीक करा जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से कौन सी पार्टी ठीक कर रही है। हमारे को कोई पता नहीं है कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, आरजेडी गलत है। आप लोग काम कीजिए ना, हम आपको
23: ठीक से कीजिए। हाँ, जल्दी से
24: आखिरी हमारी वोट चोरी की बातें आती है, पेपर चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, तो हमारी सरकार इन सब चीजों पे काम कब करेगी? कितनी और चोरियों के बाद काम करना स्टार्ट करेगी?
23: आप लोग देंगे और इन सवालों का जवाब आप
22: देखिए। नरेंद्र मोदी, देखिए
25: सवाल ये है, सवाल ये, इन्होंने जो सवाल पूछा,
10: 6 दिसंबर
25: इन्होंने बताया निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी।
10: 6 दिसंबर को काहे गोली चलवाई? पहले इसका उत्तर दीजिए।
25: बोलता रहो फिर हल्ला मचाने लगे।
10: अरे वो
25: प्रभु की बात हो रही है, हल्ला मचाने की बात नहीं हो रही है। प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो? मैंने कहा निपेंद्र मिश्रा जी की बात,
26: समाजवादी पार्टी बोल रही है।
25: देखिए निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला उस तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं और उनको अध्यक्ष बना रखा है। ये बीजेपी वाले हैं, सोचो ये ऐसा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर में। और जब इनको हमने घेरा है, इनको पकड़ा है, इनको बुरी तरह से पकड़ लिया है कि प्रभु के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इनसे कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो ये देखिए चिल्ला रहे हैं, तब से चिल्ला रहे हैं, भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई साहब, अगर आप संतुलन खो गए, हमने एक सवाल क्या पूछा प्रभु राम पे, संतुलन खो गए, ये फोटो लिए घूम रहे हैं, इनको इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया है या फोटो लाइक लेने लायक बच गए? बस और उससे ज्यादा इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए। हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो सच सामने आए, जनता क्या कहना चाहती है? आप क्यों हल्ला मचा रहे हो? आपके मन में चोर है क्या? आपके मन में चोर है क्या? ये चोर है, मन में चोर है, देखो कैसा चोर चिल्ला रहा है, देखो मन में चोर है तभी चिल्ला रहे हो ना। अरे हम तो चिल्ला नहीं रहे, हम तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, प्रभु की इंक्वायरी होनी चाहिए। हल्ला मचा रहे, कमाल है भाई। आप बोलना, मैं बोलूंगा, आप कैसे बोलोगे बताओ? अब मैं बोलूंगा तो गलत
23: आपका हो गया थोड़ा सा,
25: तो मेरे बीच बोल रहे थे मैं कैसे?
23: धन्यवाद धन्यवाद।
25: देखो ये
23: बोलिए जल्दी,
25: ये अचीव कर पाए पूरी जिंदगी भर, इनका अचीवमेंट देखिए, फोटो ये इनका अचीवमेंट है, बधाई बधाई बधाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट लाए हो, क्या अचीवमेंट लाए? देखो ये नफर, ये कैसे लगा के बता के घूम रहे हैं? देखो ये दिखाना चाहते हैं,
23: एक घंटा आप ही बोलेंगे क्या अनुराग जी? आज एक घंटा आप ही बोलेंगे?
25: अरे तो
23: नहीं, हम लोग चेहरा देखने आए हैं।
25: अरे भाई वो बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं।
23: प्रोफेसर जी,
27: प्रभु राम भारत की अस्मिता है और इस अस्मिता को प्राप्त करने के लिए 500 वर्षों का संघर्ष, 1,00,000 बलिदान ये हुए हैं और इस हिंदू समाज ने किया है। और हम बार बार कहते हैं कि मंदिर जो है ये हिंदू समाज ने बनाया है, विश्व हिंदू परिषद कभी ये नहीं कहता कि हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया, ये करोड़ों हिंदू समाज ने बनाया है। और हिंदू समाज के मन में एक प्रश्न आया,
23: एक सवाल मेरे मन में, सुनिए इधर सुनिए प्रोफेसर साहब,
27: बस
23: चढ़ावा चोरी
27: नहीं,
23: जो निपेंद्र मिश्रा जी को भी दिख रहा था, एक सेकंड, आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये गलत है, अकाउंटेबल सबको होना पड़ेगा,
27: बिल्कुल है।
23: और ये सवाल है कि वहां पर अगर चढ़ावा चोरी हो रहा था, किसी को दिख ही नहीं रहा था? वो लोग जो ठाट बाट से वहां घूमते हैं मंदिर में, क्योंकि सारे नियम तो श्रद्धालुओं के लिए हैं, यहां से जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, जिनको एक्सेस था, 40 दान पेटियों का पैसा जा रहा था, कलेक्शन हो रहा था, फ्रिस्किंग हो रही है नहीं हो रही है, किसी को दिख ही नहीं रहा था?
27: अंजना जी ये हो रहा था, ये जानकारी में आया तभी ये डिबेट हो रही है ना,
26: बैंक का
27: तभी डिबेट हो रही है ना,
23: फिर किसे
27: उठाए
23: क्रेडिट लेना?
27: सुनिए अंजना जी, ऑडिट हो रहा था,
26: अंजना जी
27: ये ऑडिट हो रहा था,
23: कौन कर रहा था?
27: नहीं, ऑडिट के लिए अधिकारी लगे हुए,
26: एसबीआई कर रहा था,
27: ऑडिट सुनिए, उस ऑडिट के दौर में ये विषय निकल कर आया।
23: अंजना जी, एसबीआई की तरफ से कोई सिस्टम नहीं था, ये निलंबित कह रहे हैं।
12: अंजना जी, दूसरी चोरी ना होती,
27: आपका न्यास पर प्रश्न खड़ा करना ही इनवैलिड है, इसलिए इनवैलिड है।
12: देखिए, हमने कुछ गलती करी,
27: सारे काम कर रहा था,
23: किसकी थी? ठीक है, अगर ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं थी तो किसकी जिम्मेदारी थी?
27: बिल्कुल ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, फिर कुछ अव्यवस्था हुई है।
25: आपने माना, आप सच्चे भक्त हैं प्रभु के, आप मान गए इसलिए प्रभु के भक्त हैं, हमारी तरह आप हैं।
27: अगर भदौरिया जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अखिलेश यादव उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी जवाबदेही उन करोड़ों हिंदुओं के प्रति है, हमको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको जवाब दे रहे हैं। आप सब विश्वास करिए,
12: आपने गलती करी। अगर जब पहली बार चोरी हुई थी, जब जमीन घोटाला हुआ था, चंपत राय जी पर आरोप लगे थे ना,
27: क्या हुआ?
12: बीजेपी के मेयर ने बाकायदा 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके 13 करोड़ में बेची थी ना, अगर आप तब जांच कर लेते तो आज घोटाला ना होता।
23: झा जी, नियत
27: में झा जी, सूत्रों के हवाले से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती की। आज भी आप सूत्रों के हवाले से आरोप लगा रहे हैं,
12: सच्चाई
27: आज भी सूत्रों के हवाले से आरोप लगा रहे हैं।
23: इतना लड़ने का मन है तो चले जाइए चौराहे पे, प्लीज। आप लोग, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस प्लीज। झा जी, बच्चों का नहीं, सवाल सुनिए, खाली दिखाइए मत। पूछ रहे हैं कि मंदिर से काहे दूरी बना ली है।
26: देखिए, मंदिर से किसी को दूरी नहीं है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। आदि जो पुरुष है, आदि जो देवता है ना, राम से पहले भी सृष्टि थी, राम से पहले भी संसार था, राम के बाद भी हो, तो राम का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का जन्म राम के रूप में हुआ। तो शिव और राम, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, तो राम से पहले भी ईश्वर थे। ईश्वर आवास मिदम सर्वमयत किंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्त्या न भुंजिता, तो ईश्वर का आवास पूरा संपूर्ण जगत है, तो आपको मानना पड़ेगा राम से किसी की दूरी नहीं है, राम के अस्तित्व पे किसी को कोई सवाल नहीं है।
27: तो
26: आस्तिक हो या नास्तिक हो,
27: इससे शास्त्र में कोई बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, पत्थरों में भगवान नहीं बसते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था पत्थरों में भगवान नहीं बसते हैं, क्या है? राम को मानते ही नहीं आप तो, अंजना जी राम राम जी जादू को
23: मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था झा जी, आप बोलने क्या लगे जवाब में? हम पूछे मंदिर का ही नहीं गए।
26: मैं मंदिर पे जा रहा हूँ, मैं मंदिर पे जा रहा हूँ।
23: कब जाइएगा?
26: देखिए, इस देश में
23: यही तो हम पूछ रहे हैं,
26: इस देश में कितने मंदिर हैं? इस देश में कितने मंदिर हैं? शिव का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, जहाँ जाइए मर्जी जाइए। आप बताइए, राष्ट्रपति महोदय को आपने क्यों नहीं बुलाया था? राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुलाया था?
0: अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो और अर्जुन सिंह जो है एचआरडी मंत्री थे, अयोध्या में एक उन्होंने एक प्रदर्शनी लगवाई, सहमत ने लगाया। राम और सीता को भाई बहन दर्शाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर नहीं बने इसके लिए कौन काम करने वाला? देखिए, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला कौन? मुलायम सिंह। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं?
12: झूठ बोल रहे हैं,
0: झूठ
12: है, सरासर झूठ बोल
0: रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि निगरानी में गलती नहीं हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि निगरानी में गलती हुई है, उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद SIT जांच निकल करके आएगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। FIR कोई जरूरी नहीं करना था, एक सवाल
23: किसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। ताली के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
11: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath, phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabrein 7 tak, dekhte rahiye. आज तक
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। वेट कम।
15: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
16: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां CCTV फुटेज नहीं मिले थे और CCTV फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और CCTV से, क्योंकि CCTV से CC का राज खुल जाएगा, CCTV के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि CCTV से CC का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छल के इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही एसआईटी जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा, लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया।
1: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था, जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया, फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एसआईटी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है।
3: ये जो एसआईटी में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के कई अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है, तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है जी। तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं।
4: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
0: राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई। इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो।

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया और 10-20 ब्राह्मणों को आगे बैठा करके समाजवादी पार्टी अपने सजातियों को पीछे बैठा कर टोपी पहना के ब्राह्मण बना दिया और बागी बलिया के लाल को तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, गेट में घुसने नहीं दिया।
3: किनका जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर?
2: सांसद हैं बलिया के, वो पहले से प्लानिंग थी।
3: क्या?
2: यही प्लानिंग थी कि इस तरीके से करना है और बैठक करना है, इस तरीके से इनको रोकना है, उनको रोकना है और ये सब वहाँ मैनेज हो रहे हैं।
3: किसकी प्लानिंग थी?
2: ये समाजवादी पार्टी मुखिया की प्लानिंग थी। ये स्वतः ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके ऐसे लोगों को तिरस्कृत करते हैं जो उनके खुद के दल में।
4: हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए हैं। हम 2 बार निर्दल चुनाव लड़का का अपनी हैसियत को बताने काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर यह उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शराबा चोरी के आरोपों के बीच सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन। अखिलेश के आरोपों पर कहा, सबूत है तो एसआईटी को दें। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले, पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी छोड़ने वालों को पार्टी का हिस्सा नहीं मानने की मांग। महुआ मोइत्रा और सौगत राय साथ थे। यूथ सम्मेलन में पीएम मोदी का युवाओं को मंत्र। कहा, रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान। पीएम विकसित रोजगार योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 2400 करोड़। नीट रीटेस्ट से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 सेंटर पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। वार पलटवार के बाद इजराइल और हिजबुल्ला में सीज फायर पर सहमति। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर, आज से लागू युद्ध विराम। शो की शुरुआत यूपी से आई बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां चंदा विवाद के बीच आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे।

0: उधर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर तंज किए। अखिलेश ने बिना नाम लिए ट्वीट किया कि एक SIT किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के दखल की बात कर रही है।
1: हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उस पर किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती है।
0: बहरहाल मामला राम मंदिर का है जो कि देश की सियासत का केंद्र रहा है। ऐसे में यूपी चुनाव तक इस मुद्दे की गूंज शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें भी खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
3: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। PDA के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर SP सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
4: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
3: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
4: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
3: NDA के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो SP नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
5: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक TMC की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
6: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
3: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल TMC और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
2: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टी बचाने की चुनौती है, जहां आज शिवसेना की स्थापना दिवस में खुद को असली शिवसेना साबित करने की होड़ मची हुई है।
7: साठ साल पहले जिस शिवसेना की नींव बाल ठाकरे ने रखी थी, आज उसी शिवसेना के दो खेमे एक ही दिन एक ही विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो बागियों को गद्दार बता रहे हैं।
8: मुंबई के षणमुखानंद हॉल में इस वक्त मौजूद है शिवसेना UBT का स्थापना दिवस, 60वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाने वाला है। पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं।
7: दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं।
9: मैं मुंबई के गोरेगांव के नेस्को सेंटर में हूँ, जहाँ पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और आज शाम खुद उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं।
7: उधर इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने पोस्ट करके बागियों पर निशाना साधा है। आज आपकी 60वीं सालगिरह है, आप चाहे कितने भी बहाने बना लें, सच तो बस एक ही है, आपने बेशर्मी से खुद को बेच दिया है। आपने न सिर्फ खुद को बेचा है बल्कि इसके साथ ही अपनी इज्जत, अपना नाम और अपने परिवार का नाम भी दांव पर लगा दिया है। महाराष्ट्र इस गंदी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं।

0: इस बार लड़ाई सिर्फ रैली की नहीं, सवाल है शिवसेना के सांसदों की वफादारी का, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासत जारी है।
1: ऑपरेशन 3 और 4 की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। हम सब के नेता एकनाथ शिंदे साहब थोड़े फ्री हो जाएंगे तो 3 और 4 की शुरुआत हो जाएगी। कुछ विधायक, कुछ कॉरपोरेटर सभी यहाँ आने के लिए बहुत जल्दी हमको वहाँ पे ले लो, ऐसा हमारे नेता को मैसेज भी आया है। और जिस दिन एकनाथ शिंदे साहब खाली फ्री होके एक हफ्ता इस चीज में दे देंगे तो ऑपरेशन 3 और 4 की शुरुआत हो जाएगी।
0: इस पूरे सियासी संग्राम के बीच मुंबई पुलिस भी अलर्ट पर है, क्योंकि आशंका है कि दोनों गुटों के शक्ति प्रदर्शन के बीच माहौल बिगड़ सकता है। शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस, लेकिन सवाल ये है क्या ये शिवसेना के जश्न का दिन है या फिर सबसे बड़ी टूट का दिन। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
2: आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस में जश्न के बीच सियासत की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
3: छप्पन साल के राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय समर्थकों से अटा पड़ा है। देश भर से सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता अपने नेता को मुबारकबाद देने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी को बधाई दी। इस बीच वाराणसी में राहुल गांधी के जन्मदिन की तस्वीरों ने सियासी रंग ले लिया। भगवान परशुराम की तरह एक हाथ में फरसा लिए राहुल के दूसरे हाथ में संविधान की किताब दिखाई गई थी और बाकायदा स्वस्ति वाचन के साथ अभिषेक हो रहा था।
4: आज माँ गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया।
3: राहुल को भगवान परशुराम का अवतार बताना सनातनियों और खासकर बीजेपी को बड़ा नागवार गुजरा है।
5: जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी, कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृत को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। आपने तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स की है, आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते।
3: जिस यूपी में विपक्षी गठबंधन में एक एक ब्राह्मण वोट जोड़ने के लिए नेताओं में होड़ मची है, कभी अखिलेश ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कभी जनेश्वर मिश्र जयंती मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां राहुल के ब्राह्मण अवतार ने इस सियासी आग में घी का काम किया है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी दुरुस्त करने की कोशिशें कर रही है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल भी होगा।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की ये तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिस पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपीएफ कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा, और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उधर बिहार की सियासत में एक बार फिर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलें गर्म है। बाकीपुर उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीके इस बार खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।
4: पटना का बाकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और प्रशांत किशोर बाकीपुर से ही जन सुराज को मौका देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि जन सुराज अगर बाकीपुर से चुनाव जीतता है तो इससे सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की जनता के बीच ये संदेश जरूर जाएगा कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन संभव है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में क्या प्रशांत किशोर सेंध लगा पाते हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
3: तेज प्रताप यादव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है बिहार में, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने हलचल मचा दी है।
5: पिछले साल तेज प्रताप के अकाउंट से जिन तस्वीरों को पोस्ट करके अनुष्का यादव को उनकी प्रेमिका बताया गया था, उसी अनुष्का के घर पर तेज प्रताप के जबरन घुसने का आरोप लगा है।
6: 6 तारीख को मैं खाटू श्याम का दर्शन करने गया था राजस्थान। 9:30 बजे लोग आते हैं हमारे घर से, हमें फोन आता है कि ये गेट पे दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहे, नॉक कर रहे हैं। हमने कहा दरवाजा खोल के शांति से हाथ जोड़ के बोल दो कि आप जाइए। मेरा सवाल था कि मेरे दरवाजे पे क्यों आए आप।
7: उन्होंने क्या कहा?
6: कि तुम ज्यादा गर्मी में हो, औकात भूल गए हो, हमको गाली बकरे हो, हमारे माँ बाप को गाली बकरे हो। हम बोलिए सब ड्रामा मत कीजिएगा, आपके पास होना चाहिए कि भाई किसी की बहू बेटी, घर का इज्जत क्या होता है।
5: इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री भी हो चुकी है, जिसकी ओर से परिवार को धमकी मिलने का आरोप है।
8: बिश्नोई ग्रुप तो बोल रहा हूं, मंत्री के बारे में एक भी शब्द सुन गया नहीं, इतनी गोली मारा तेरे समझ में नहीं आई। मैं प्रशासन का सहारा ले लिया, जिसका तना सहारा लेना ले लिए।
6: मेरे पास रात के 12:30 बजे लमसम में व्हाट्सएप पे कॉल आता है इंटरनेशनल नंबर से, और उस नंबर से कॉल आते ही हमको सीधे गाली दिया जाता है और बोला जाता है बिश्नोई ग्रुप से मोहित बोल रहा हूँ।
5: मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है जहां तेज प्रताप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
7: उनके घर पे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा घर पे घुस के घर के लोगों से मिलने की कोशिश की गई और फोन पे कोई कॉल आया, उनको मारने की धमकी दी गई। इसमें जांच की जाएगी, जो भी कॉल आया, वॉइस नोट आया है जिस नंबर से, उसकी जांच की जाएगी कि ये किसका नंबर है। इसमें FIR दर्ज हो गया।
5: FIR की कॉपी पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने भी इसे साजिश करार दिया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके अभद्र, अपमानजनक, धमकीपूर्ण एवं असामाजिक व्यवहार के लिए संबंध में विधिवत कानूनी नोटिस भेजा गया, उसने अपनी गलती स्वीकार करने या खेद व्यक्त करने के बजाय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध एक झूठी एवं मनगढ़ंत FIR दर्ज कराने का प्रयास किया है।
3: खबरें बाजार की, कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल और कैसे एक नया IPO धूम मचाने के लिए तैयार है, देखिए ये रिपोर्ट।
9: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के बोर्ड ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही सेबी के पास दाखिल किया जाएगा। ये IPO भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर होने वाला है, जिसकी अनुमानित वैल्यू करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए यानी $170 अरब बताई जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने पहले ही 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी 2026 के मध्य में शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद कर रही है। मुकेश अंबानी ने AGM में कहा कि जियो IPO के जरिए निवेशकों को टेलीकॉम सेक्टर की रीरेटिंग और मालिकाना हक के फायदे मिलेंगे। हालांकि रिलायंस के 44 लाख शेयर धारकों को पहले के डी मर्जर की तरह इस बार IPO में सीधे जियो के शेयर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी एक बड़ा AI सेंटर भी स्थापित कर रही है, जिसमें गूगल और मेटा जैसे दिग्गज भी शामिल होंगे। और अब देखते हैं शेयर बाजार का हाल। कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 607 अंक कमजोर होकर 76,803 और निफ्टी 155 अंक टूटकर 24,013 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए में आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 94.34 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 3,152 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,44,941 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 9,209 रुपए टूटकर 2,30,982 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई।
3: अब बात खाड़ी देशों में जारी तनाव की, जहां शांति समझौते के बीच एक बार फिर धमाकों की गूंज ने युद्ध विराम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
10: दक्षिण लेबनान की ये तस्वीरें गवाह है कि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ कागजों पर है। जमीन पर मौत का तांडव अब भी नजर आ रहा है। फ्रांस के वर्साय में हुए ऐतिहासिक समझौते के बावजूद इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स लेबनान को दहला रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 16 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए वो खामोश नहीं बैठेंगे।
11: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
3: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस,
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम।
16: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
13: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
15: And her.
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: प्लीज बजी पर, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
8: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ, आई चैलेंज यू बजी पर। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
9: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।

109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा और मुझ सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब $300 अरब ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम। ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई, करीब $300 अरब तक की सहायता की चर्चा है। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई, लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। क्या अगले 15 दिनों में राम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों का नाम पता चल जाएगा और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को भी चेतावनी दी है और राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिनों तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि SIT अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इंतजार किया जा रहा था कि यूपी सरकार ने दान चोरी की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी, लेकिन सरकार के मुखिया कब बोलेंगे? आज मौका था, योगी अयोध्या पहुंचे तो राम मंदिर भी गए। पहले ही कह दिया था कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय योगी के साथ नहीं दिखेंगे, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि चंपत राय खुद आरोपों के घेरे में है। एसआईटी उनसे भी पूछताछ कर रही है, इसीलिए योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पात्र में दान भी डाला। यही वो दान पात्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पात्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं, और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत है तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा है, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये भी कहा है कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसे अलग मोड़ दे दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो उपदेश न दें। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई ना आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम हो, उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि क्या योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है? जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिनों में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है, तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है, तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों के संत।
5: दूसरी तरफ बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि चढ़ावा चोरी के पूरे केस को सार्वजनिक करने का श्रेय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी को भी मौका मिल गया है अपने आप को राम भक्त बनाने और बीजेपी को चंदा चोर कहने का। इसलिए योगी का कहना है कि राम भक्त इनके बहकावे में ना आए।
1: योगी अयोध्या के मान सम्मान पर सवाल आते हैं आक्रोशित दिख रहे हैं, क्योंकि ये उस अयोध्या का सवाल है जहां राम मंदिर का निर्माण करने में योगी की सन्यासी परंपरा की कई पीढ़ियां खप गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर। योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ के शिष्य हैं। 1984 में महंत अवैद्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके नेतृत्व में एक ऐसा आंदोलन जन्मा जिसने सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का शंखनाद किया। इससे पहले योगी के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर आवाज उठाई थी। योगी आदित्यनाथ उसी परंपरा से आते हैं जहां राम मंदिर और अयोध्या का सम्मान सर्वोपरि है, इसीलिए मंदिर के दान में चोरी की बातें योगी को परेशान भी करती हैं और इसकी वजह से जब अयोध्या और राम मंदिर का नाम खराब होता है तो वो आक्रोशित भी दिखते हैं।
0: और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
1: योगी आदित्यनाथ इस पर हो रही राजनीति से भी परेशान हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उनकी बरसों की मेहनत खराब हो रही है। पहले तो बीजेपी ने राम मंदिर बनाने के नाम पर राजनीति की, फिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और इधर ये इतने बड़े आरोप लग गए। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं इसका राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी न उठा ले।
6: 24 का जो चुनाव हुआ है, इन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। राम तो इससे नाराज है, ये तो राम के नाम पर कारोबार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के प्रति आस्थावान नहीं है। राम के प्रति हम लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता अखिलेश यादव राम के प्रति आस्थावान हैं। ये राम के नाम पर तो व्यापारी हैं, ये साबित कर दिया। ये 24 का जो चुनाव हुआ लोकसभा में, इसमें एक भी सीट, सारी सीटें भगवान राम जिधर से चले थे वो रास्ते में जितनी सीटें थी सब समाजवादी पार्टी जीत गई, इनको तो एक सीट नहीं आई।
7: देखिए श्री अखिलेश यादव जी बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, बयान लखनऊ में बैठ करके देते रहते हैं, उनके किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं, अयोध्या हमारी आस्था से।
5: अब वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

जल्द ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त लोगों को पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद तय करना होगा कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा। इसकी वजह है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जहां पेट्रोल भी इंजन के हिसाब से चुना जाएगा। दरअसल देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल सकते हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकें। आने वाले समय में E20, E22, E25 और E30 जैसे फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल पंप्स पर मिल सकते हैं। इनमें नाम के हिसाब से 20, 22, 25 और 30 फीसदी इथेनॉल जबकि बाकी पेट्रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जाए और देश में तैयार होने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर कई तरह के फ्यूल आने की खबर के साथ लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है, क्योंकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल में माइलेज कम होने का डर रहता है। वहीं पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के भी जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। इसकी वजह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले अलग तरीके से जलता है। ऐसे में पुराने इंजन वाले व्हीकल्स में परफॉर्मेंस और पार्ट्स की लाइफ को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के हिसाब से जानकारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग सही फ्यूल चुन सकेंगे। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा रोल पेट्रोल पंप्स पर लगने वाली उस लिस्ट का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा इथेनॉल ब्लेंड सही रहेगा। इससे लोगों को अंदाजा रहेगा कि उनकी बाइक, कार या स्कूटर किस फ्यूल के साथ बेहतर चलेगी, यानी पेट्रोल पंप्स पर व्हीकल कंपैटिबिलिटी लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई गाड़ियों को हाई इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और पुराने व्हीकल्स के लिए लोअर ब्लेंड फ्यूल ऑप्शन रहने की संभावना है। सरकार की नजर फ्यूल इंपोर्ट बिल घटाने पर भी है, क्योंकि इथेनॉल का बड़ा हिस्सा देश में तैयार होता है। ऐसे में ज्यादा ब्लेंडिंग होने पर कच्चे तेल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गन्ने और दूसरी फसलों से बनने वाले इथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के साथ लोगों को सही जानकारी देना सबसे जरूरी होगा। इसकी वजह है कि गलत फ्यूल चुनने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप का पूरा सिस्टम बदलता दिखाई दे सकता है। जहां पहले लोग पेट्रोल और डीजल में फर्क देखते थे, वहीं आगे चलकर फ्यूल का चुनाव इंजन की जरूरत देखकर किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए ये समझना जरूरी होगा कि उनकी जेब, माइलेज और इंजन तीनों के लिए कौन सा फ्यूल सबसे सही बैठता है। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: 56 साल के राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय समर्थकों से अटा पड़ा है। देश भर से सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता नेता मुबारकबाद देने पहुंचे। उधर वाराणसी में तो बीच गंगा के स्नान किए, परशुराम अवतार बताकर दुग्धाभिषेक कर दिया गया। भगवान परशुराम की तरह एक हाथ में हर्षा गिराउत, दूसरे हाथ में संविधान की किताब दिखाई गई और बाकायदा स्वस्ति वाचन के साथ अभिषेक होता रहा।
1: आज माँ गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया।
0: जिस उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन एक एक ब्राह्मण वोट जोड़ने के लिए नेताओं में गुड़ मची, कभी अखिलेश ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे, कभी जनेश्वर मिश्र जयंती मनाने की तरह, वहाँ राहुल को भगवान परशुराम का अवतार दिखाना सनातनी और खासकर बीजेपी को बड़ा नागवार गुजरा है।
2: जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी, कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृत को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। आपने तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स की है, आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते।
0: राहुल की आस्था, क्षमता और धार्मिकता पर बीजेपी सवाल उठाए तो और बात, लेकिन अब राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली परंपरा पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने। वजह ये, एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
3: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
4: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग, जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
0: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
5: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
0: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perf.
2: Lok Sabha Speaker se mile Abhishek Banerjee, TMC bagiyon ke khilaf ayogyata ki saunpi 20 yachika. Monsoon satra se pehle faisla sunayenge Om Birla. Youth sammelan mein PM Modi ka yuvaon ko mantra kaha rozgar nirman bane rashtriya abhiyan. केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ नीट रीटेस्ट से पहले कल देशभर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए 5,500 सेंटर्स पर सख्त सुरक्षा कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट इटली अमेरिका में बढ़ी दूरी मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वॉशिंगटन दौरा ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी ने लगाई थी गुहार
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मॉनसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 हो गए, आगे नहीं बढ़ रहा। अटके मॉनसून की वजह से उत्तर मध्य भारत के 7 राज्य मॉनसूनी बारिश को तरस रहे हैं। इन्हीं राज्यों में उत्तर प्रदेश भी, जहां राम के नाम पर राजनीति की बारिश हो रही। राम राम जपना, पराया माल अपना और दूध का दूध पानी का पानी कर देना, ये दोनों मुहावरे हैं जिनका इस्तेमाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत में खूब हो रहा है। वजह राम मंदिर चढ़ावा विवाद है। आरोप चढ़ावे में चढ़े करोड़ों रुपए और सोने चांदी के गबन का है। SIT जांच कर रही है। 5 दिन हो गए हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री इस विवाद के दौरान अयोध्या नगरी पहुंचे। इस दौरान चंपत राय योगी के कार्यक्रम से दूर रहे, इसका निर्देश पहले ही दे दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विपक्ष की तरफ से होती आक्रामक बयानबाजी का आक्रामक होकर जवाब देते हैं, जनता को भरोसा देते हैं, डेडलाइन 29 जून की तय करते हैं, कहते हैं अपराधी बचेंगे नहीं। सवाल है कि जांच का आदेश पहले से था, फिर मुख्यमंत्री को क्यों मैदान में उतरना पड़ा।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के भी चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।

0: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
1: आज हमारे राम आ गए हैं।
2: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
0: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
3: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
4: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
5: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल खुल चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
0: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
6: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
0: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
6: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।

0: कल बैठक हुई, जारी सब क्या कहेंगे?
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
2: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
3: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
4: राम और मौजूदा राजनीति का रिश्ता लगभग 4 दशक का कहा जा सकता है। राम लहर से बीजेपी देश और प्रदेश में कहां तक पहुंची, इसका आंकड़ा देखिए। 1984 में देश में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1979 में राम लहर पर सवार होकर ही 85 सीट तक पहुंचती है। 1991 में 120 सीट लोकसभा में जीतती है। इसके बाद दौर आता है जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 1996 में सीटें बढ़कर 161 हुई। 1998 में 182 सीट, 1999 में 182 सीट, और फिर नई सदी नया दौर। 2004 में सीटें घटने लगी, 138 सीट बीजेपी पाई। 2009 में 116 सीट, 2014 में मोदी लहर के साथ 282 सीट जीतकर पहली बार बहुमत हासिल किया। इसके बाद राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला और निर्माण के दौर में 2019 में 303 सीट, 2024 में बीजेपी 240 सीट पर अचानक आ जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 1991 में यानी रथ यात्रा और कार सेवा की शुरुआत के साथ 221 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है, जब राम लहर थी। इसके अगले साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद 1993 में बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाती। 1996 में 174 सीट बीजेपी यूपी में जीतती है। 2002 आने तक जातिगत समीकरण इतना बदल जाता है कि यूपी में बीजेपी 88 सीट पर आ जाती है। 2007 में 51 सीट, 12 में 47 सीट तक घटकर बीजेपी पहुंच जाती है, लेकिन फिर 2017 से हिंदुत्व की नई बयार चलती है। 312 सीट बीजेपी जीतती है, प्रचंड जीत होती है। 2022 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन बहुमत के बावजूद सीट घटती है, 255 सीट बीजेपी जीतती है। अब 2027 में क्या राम मंदिर का चढ़ावा विवाद संकट पैदा न करे, इसीलिए जनता को भरोसा बीजेपी नेताओं द्वारा दिया जा रहा है, विपक्ष को जवाब भी दिया जा रहा है।
5: एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये भरोसा देते हैं कि 29 जून तक इंतजार कर लो, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी करने वालों का हश्र देखना। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अयोध्या से खड़े होकर विपक्ष का इतिहास राम और राम मंदिर को लेकर याद कराते हैं।
2: राम विरोधी थे ये लोग, कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, रायबरेली ऊंचा हार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं।
6: हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या।
5: मुख्यमंत्री राम मंदिर पर होती राजनीति में शुक्रवार को करीब 10 मिनट बोलते हैं, इनमें से करीब 2 मिनट वो चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोलते हैं, बाकी 8 मिनट मुख्यमंत्री विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधते रहे।
7: सबका संरक्षण है इस डकैती में, उनके संरक्षण में सारे काम हुए हैं, इसीलिए न वो FIR करा रहे हैं न कुछ मुंह से बोल रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, जो SIT है कोई मतलब नहीं इसका, ये सरकार और ट्रस्ट की मिली मार है कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एसआईटी गठित। अरे भाई, जब इतना सब रुपया बरामद हो रहा है, इतनी सारी चीजें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे अखबार दिखा रहे हैं कि इतने सौ करोड़ का घोटाला हो गया, इतना रुपया यहां मिला, आभूषण गायब हो गया, तो ट्रस्ट एफआईआर क्यों नहीं कराता?
2: आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्त पुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भासते थे।
8: भगवान राम के दरबार में ये काफी दिनों से आरएसएस और बीजेपी और बीएसपी के लोग ये संगठित लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वो अधिकारी जांच कर रहा है, जो खुद जांच की तलवार जिसके ऊपर लटकी हुई हो, ये पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए ये एसआईटी को भंग करिए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट के जज से समयबद्ध जांच कराए।
2: जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया।
5: आपको इसीलिए आज ये रिपोर्ट देखकर अब समझना जरूरी है कि जब जांच चढ़ावा चोरी की हो रही है तो क्यों विपक्ष के बयानों पर आक्रामक होकर मुख्यमंत्री उतरते हैं। वजह 2024 का नतीजा है। अयोध्या विधानसभा और फैजाबाद लोकसभा सीट अवध क्षेत्र में आते हैं, वो अवध जहां कुल 23 लोकसभा सीट है, 2014 हो या 2019, 23 में से 20 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जनता ने राम के नाम पर डाल दी, यानी 86% स्ट्राइक रेट अवध में बीजेपी का दो लोकसभा चुनावों में रहा है। 2014 में तो समाजवादी पार्टी एक सीट और कांग्रेस दो सीट जीत पाई, 2019 में समाजवादी पार्टी का अवध में खाता तक नहीं खुला, दो बीएसपी जीती एक कांग्रेस। लेकिन 2024 में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, तब अवध में हालत ये हुई कि बीजेपी 10 सीट ही जीत पाई, यानी 50% सीटों का नुकसान हुआ, और राहुल अखिलेश जो मिलकर लड़े वो 13 सीट अवध में जीत गए। समाजवादी पार्टी 9 सीट इनमें से जीत जाती है। इसकी वजह ये मानी गई कि राम मंदिर तो बीजेपी ने बनवाया, लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण से लेकर दूसरी चीजों के लिए आम लोगों के साथ न्याय न होने का दावा किया गया, यहाँ तक कि वीआईपी लोगों का ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगता रहा।
9: विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है, इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अम्बेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवीपाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली है आप जानते हैं, लेकिन एक सीट हार गई। तो ये जो आम जन लोगों को अयोध्या से काट दिया गया, 200 रुपया दे दीजिए तो तुरंत बैरियर हट जाएगा, इसका खामियाजा पार्टी ने भोगा है।
5: ऐसे में क्या चढ़ावा विवाद वापस वो अविश्वास जनता के मन में घर कर सकता है जिसकी वजह से नुकसान 8 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ जाए? क्योंकि बीजेपी की विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ अवध में पहले रही है। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीट आती है, बीजेपी 2017 में इनमें से 97 सीट जीतती है और 2022 में 84, समाजवादी पार्टी केवल 12 सीट 2017 में अवध में जीत पाई, लेकिन 2022 में वो 31 सीट तक पहुंची। कहीं 2024 जैसा खेल ना हो जाए क्या? इसीलिए मुख्यमंत्री आक्रामक होकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद में जनता को धैर्य रखने के लिए कहते हैं और 15 दिन में इंसाफ दिलाने की बात कही जाती है।
2: यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
4: अब अखिलेश यादव पोस्ट करके पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आज के भाषण में बयान कम धमकी अधिक क्यों थी। वहीं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक आज इसीलिए अयोध्या में मौजूद थे ये जानने के लिए कि जो भरोसा मुख्यमंत्री दे रहे हैं क्या जनता उस पर खबरदार है।
10: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आज तक आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। हम लोग संतुष्ट हैं योगी जी के निवेदन से, एडीजी जी के आदेश से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से। हम लोगों का उनके ऊपर विश्वास है। जिस प्रकार से भारत और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है उसी प्रकार से इसकी निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
11: विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र। अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा। ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
12: अब अंदर से तो बुरा लग ही रहा है कि किसी के ऊपर लांछन लगा दिया जाएगा, सही हो या गलत हो, लेकिन बुरा लगता है, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। तो उसका जांच होना जरूरी है, लोगों को संतुष्ट करना जरूरी है, जहां से अफवाहें पैदा हुई हैं उनको भी ब्लॉक कर देना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी ऐसी व्यवस्था ना बिगड़े।
13: पूरी उम्मीद है योगी जी पे, और जो कहा है उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरा भरोसा रखते हैं उनके ऊपर।
4: और अब खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की। झारखंड में कल कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे।
14: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
15: सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराय नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
16: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
17: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
18: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें।
19: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
14: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
20: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
21: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
14: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
19: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
14: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है। खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया। इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बहुत तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव की वजह लेबनन है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमला कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं आ रहा। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनन के बहाने समझौते की मेज से न उठ जाए। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला में सीज फायर हो गया है। अमेरिका ने ईरान को संदेश दिया है कि इसराइल लेबनन में अपने सैन्य हमलों को और नहीं बढ़ाएगा। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर होने वाली अहम वार्ता फिर से पटरी पर आ जाए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फिलहाल मामला यहीं छोड़ने पर सहमति जताई है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू लेबनन से सीज फायर करने को लेकर 100% सहमत हैं।
14: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
0: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
14: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
0: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
14: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन तीन महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। तीन महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
0: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इसराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन गवीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बेन गवीर ने बोला, हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन गवीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
0: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ 3 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
4: सोचिए, नौबत ये आ चुकी है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसराइल को याद दिला रहे हैं कि उनके लोगों के टैक्स से बनी मिसाइलों और एयर डिफेंस ने इसराइल को ईरान से बचाया। दोस्ती में वैसे तो एहसान नहीं जताया जाता, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर क्या उसे दोस्त कहा जा सकता है? इसका फैसला करना मुश्किल नहीं। इसराइल पर एहसान जताने में डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं है। कह रहे हैं कि इसराइल उनका बहुत सम्मान करता है, इसीलिए वो जो कहते हैं इसराइल करता है, मतलब नेतन्याहू को ट्रंप भी अपनी की गई मदद याद दिला रहे हैं।
1: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
3: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: अमेरिका का इस तरह पलटना इसराइल को रास नहीं आ रहा। इसराइल के विपक्षी नेता यायर लापिद ने संसद यानी कनेसेट में कहा कि नेतन्याहू के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका जैसे इसराइल के सबसे बड़े सहयोगी के साथ सीधा और नुकसान पहुंचाने वाला टकराव कर लें, या फिर इसराइल के हितों के सामने वो झुक जाएं। इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू के ऊपर इसराइल की विपक्षी पार्टियों का भी खासा दबाव है, मगर ये चुनौती उन्हें सिर्फ विपक्ष से ही नहीं मिल रही बल्कि उनकी सहयोगी पार्टी भी इसी स्थिति पर खड़ी है। इसराइल और लेबनान के बीच सीजफायर के दावों के बीच नेतन्याहू ने हिजबुल्ला पर बड़ी कार्रवाई का ब्यौरा दिया, कहा कि इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के 150 ठिकानों और दर्जनों आतंकियों को मार दिया। तो अमेरिका कह रहा है कि सीजफायर हो गया, वहीं नेतन्याहू कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीजफायर टिक पाएगा, क्या ये एमओयू से शांति टिक पाएगी?
22: But it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.
14: ईरान पर बम बरसाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल का सबसे पक्का दोस्त बनाने वाले नेतन्याहू अब मुश्किल में है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो लेबनान में इसराइल की सख्त कार्रवाई को लेकर लगातार अपनी नाखुशी जताते हैं।
3: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
14: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के मसौदे में कहा गया कि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद होंगे, सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईरान के लिए सभी मोर्चों का मतलब लेबनान भी है, जहां उसके प्रॉक्सी हिजबुल्ला पर इसराइल के हमलों से वो सख्त नाराज है। इसराइल की दिक्कत ये है कि ईरान के इस बात से अमेरिका भी सहमत होता दिख रहा है और ट्रंप के सुर बदल गए हैं।
3: I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well.
14: तो लेबनान में सैन्य कार्रवाइयों को रोका जाना इस समझौते की कामयाबी की एक जरूरी शर्त बन गया, जिस पर अमेरिका और इसराइल के रिश्ते कसौटी पर कसे जाना तय नजर आता है, क्योंकि लेबनान में इजरायली कार्रवाई ठहरती नहीं दिखती। इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद लेबनान में ये भगदड़ मची हुई है। इजरायली गोलाबारी से लेबनान में हड़कंप है। इजरायल के हमलों से दक्षिणी लेबनान में धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। इजरायल की इस ताजा कार्रवाई की वजह दक्षिण लेबनान के काफिर तेबनित गांव में हिजबुल्ला के ड्रोन हमले में 5 इजरायली सैनिकों का जख्मी होना है। बेंजामिन नेतन्याहू इससे भड़के हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि हिजबुल्ला ने जघन्य हमला करके युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया था। मैंने बीती रात IDF को हिजबुल्ला पर पूरी ताकत से हमला करने का निर्देश दिया। मेरा निर्देश स्पष्ट है, इसराइल अपने सैनिकों या अपनी धरती पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों के लिए हिजबुल्ला से भारी कीमत वसूलेगा।
22: אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
14: तो नेतन्याहू डंके की चोट पर कहते हैं कि उनकी सेना लेबनान और इसराइल के बीच बनाए गए बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक हिजबुल्ला का खतरा नहीं टल जाता। अगर हिजबुल्ला हमला करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात यह कि ईरान को यह सब रास नहीं आ रहा। ईरान का कहना है कि वो स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने से पहले लेबनान में सैन्य कार्रवाई रुकने की गारंटी चाहता है। ईरान ने मांग की है कि साइन हुए समझौते में तय प्रावधानों के मुताबिक लेबनान में लड़ाई खत्म होने का भरोसा दिया जाए। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद प्रस्तावित अमेरिका ईरान वार्ता को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। हालांकि बातचीत दोबारा कब शुरू होगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। मतलब लेबनान पर पेंच फंसा है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद नेतन्याहू लेबनान पर कतई सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि अगर लेबनान में इजरायल की कार्रवाई की वजह से ईरान ने बातचीत से पल्ला झाड़ा तो फिर अमेरिका और इजरायल के रिश्तों का क्या होगा।
4: अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे समझौते को अमेरिकी कूटनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल ट्रंप के आलोचक बता रहे हैं, जिसने ईरान की मानो लॉटरी लगा दी है। वहीं अमेरिका पर भरोसा करने वाले इजराइल की पावर सवालों में है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान से समझौते के लिए इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि इजराइल कहीं ना कहीं जानता है कि उसने इस जंग में पाया कम खोया ज्यादा है। 28 फरवरी से पहले तक दुनिया में इसराइल की मिसाइल इंटरसेप्ट करने की तकनीक और उसके एयर डिफेंस का डंका बजता था, लेकिन ईरान युद्ध के बाद उसका ये सुरक्षा चक्र सवालों में है। तमाम सुरक्षा चक्र के बावजूद दुनिया ने देखा कि ईरान की मिसाइलों को इसराइल रोक नहीं पाया। उसके 60 लोग मारे गए, 28,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी तबाह हुई, 2 बंदरगाह क्षतिग्रस्त हुए। परमाणु संयंत्रों के पास बसे अराद और दिमोना शहरों पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने में कामयाब रहा। ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले के जवाब में ये हमले किए, मतलब ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें कामयाब रहा। इसके बदले इसराइल 28 फरवरी के बाद लेबनन में हिजबुल्ला, यमन में हूती और ईरान के कुछ नेताओं को मारने में कामयाब रहा। वहीं ईरान इस जंग के बाद पश्चिम एशिया में मजबूत होता दिखता है। उसकी तरफ से आज हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों का रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई, जो बताता है कि उसके दिमाग में हॉर्मूज से टोल वसूलने का विचार चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ईरान से प्रतिबंध हटे तो वो सालाना 9,00,000 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलती है और वो पूरी क्षमता से तेल निर्यात शुरू करता है तो उसे सालाना 105 अरब डॉलर यानी करीब 9.9 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। मौजूदा तेल कीमतों के आधार पर 35 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ईरान का को रोज करीब 28.9 करोड़ डॉलर यानी सालाना 105.4 अरब डॉलर की आय दिला सकता है। वहीं भविष्य में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जाता है तो तेल, गैस और अन्य मालवाहक जहाजों से ईरान को हर साल करीब 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। तो ईरान के दोनों हाथ में लड्डू है। इसकी वजह ट्रंप है, जिन पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ रहा था, जिसका फायदा ईरान को हुआ।
6: क्योंकि कम से कम 60 दिन के लिए जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा और टोल नहीं लिया जाएगा तो वाकई भारत के लिए जबरदस्त एक ह्यूज विन विन सिचुएशन। पर 60 दिन के बाद क्या होगा अगर टोल वसूली शुरू हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो परेशानी तो होगी, क्योंकि फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है, बाकी भी स्टेट है, सबको यह टोल वसूली करना चाहेंगे, वो एक दिक्कत आएगी।
7: अर्धविराम है, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, और ये फौरी इलाज जिसे आर्मी में कहते हैं ना फौरी इलाज, इट इज द MOU हुआ है, बट अभी जो है ये 60 दिन में घमासान शुरू होगा निगोशिएशंस का। और जो ट्रंप साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसके चार बिंदु हैं। पहली बात तो उनको बहुत दिनों से ये ज्ञात हो गया था कि ही हैड नो मिलिट्री ऑप्शंस, क्योंकि ईरान ने इनके सामने और चुनौतियाँ रख दी। भाई स्ट्रेट तो खुला था 27 को, आपने तबाह कर दिया और स्ट्रेट बंद। What is the purpose of American military power? These 11 aircraft carriers, 800 bases, it is to keep business, commerce, oil going. Iran challenged that.
4: औरों पर करम, अपनों पर सितम, डोनाल्ड ट्रंप यही करते हैं। इजराइल ही ट्रंप से नाराज नहीं है, इटली भी भड़का हुआ है। बड़ी खबर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरीखोटी सुनाई है। उन्होंने ट्रंप पर अपने बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया है। मेलोनी ने कहा कि मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते। ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वो अक्सर अपने पुराने और घनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में पश्चिम के दुश्मनों के प्रति कहीं ज्यादा सम्मान दिखाते हैं।

0: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं।
1: मेलोनी का ये गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान को लेकर है जो उन्होंने एक इटालियन टीवी चैनल को दिया। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी ने G7 समिट में उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए उनसे भीख मांगी थी, गिड़गिड़ाई थी। शायद वो खुश हैं कि मैंने उनसे बात की, मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी। इस पर मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप की बातों से हैरान है। मेलोनी ने ट्रंप के दावों को पूरी तरीके से मनगढ़ंत बताया। ट्रंप की बातों से मेलोनी सरकार इतनी नाराज है कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने घोषणा की कि वो अगले हफ्ते होने वाली अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर रहे हैं। ये ताजा घटनाक्रम रिश्तों में आई बड़ी गिरावट को दिखाता है। G7 में भी ट्रंप और मेलोनी की जो तस्वीर सामने आई उससे लगा कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मेलोनी की बातों को सुन रहे ट्रंप के चेहरे पर आ रहे भावों पर काफी कुछ लिखा गया, लेकिन बात इतनी बिगड़ जाएगी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नेता को इटली की पीएम इस तरह फटकारेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब देश भर में नीट री एग्जाम से पहले तैयारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल देश भर में एनटीए परीक्षा की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करेगा। 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर एनटीए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेगा। दोबारा परीक्षा के लिए देश भर में 5500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसियों की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही जिसमें 10 से पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसियों की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने की वजह से डिलीट नहीं किए गए हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं और भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
2: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है। साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
3: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
4: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
5: ये पता नहीं किन को तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
2: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दो बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
6: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
7: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
2: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
8: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
2: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
9: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह में हल नहीं कर पाया।
2: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
10: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन।
5: लायन ओट्स फैमिली।
4: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
15: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
14: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
16: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स टीएमटी बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
1: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
2: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
2: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छलके इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही एसआईटी जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा, लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया।
1: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था, जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया, फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एसआईटी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है।
3: ये जो एसआईटी में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के इकाई एस अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है, तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है जी, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसपे किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं।
4: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
0: राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई, इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो।

0: नीट रीटेस्ट से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। कई राज्यों में ये खबर भी आ रही है कि छात्रों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। दरअसल टेस्ट से पहले एनटीए का ये बहुत बड़ा टेस्ट है। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम सिर्फ नाम नहीं, भगवान श्री राम आस्था है। राम इस देश का विश्वास है, सदियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों का बलिदान और न जाने कितनी आंखों के आंसुओं से सींच कर भव्य मंदिर की चौखट खड़ी हुई। इस देश में सुबह की पहली किरण राम राम से फूटती है और जीवन का अंतिम सफर भी इसी नाम के सहारे पूरा होता है। राम नाम सत्य है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक क्षण में राजपाट को तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग की उस पराकाष्ठा के घर में कुछ धूर्त, दरिद्र और महापापियों ने डकैती डाल दी। सोचिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए एक भिखारी तक ने अपनी दिन भर की भिक्षा सौंप दी थी, कचरा बिनने वाली मां ने अपनी सीने से लगाकर रखे चंद सिक्के प्रभु के चरणों में रख दिए थे,

रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने पूरे देश पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स, कुल 4 क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। 7 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रशिया की राजधानी में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अब तक कुल 194 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर चुका है। और यह सब होने के बाद यूक्रेन मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाने में कामयाब हो गया है। इसे कापोतनिया तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर है। और क्रेमलिन वही जगह है जहां से राष्ट्रपति पुतिन रशिया की सरकार चलाते हैं। क्रेमलिन वही जगह है जहां पर हमने जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आज ये सब हो रहा है। देखिए,

यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान की आशंका है। जिस वक्त इस तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल टैंक का ढक्कन हवा में उड़ गया, तब मॉस्को में दहशत फैल गई। काले धुएं का गुबार और जलते हुए तेल के कण और काले हवा में घुलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो तेल के यही कण बारिश के साथ नीचे गिरने लगे, जिसे स्थानीय लोगों ने ब्लैक रेन बताया है। हालांकि रशिया की सरकार ने ब्लैक रेन होने की बात को खारिज किया है। यह कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए,

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसके मुताबिक अमेरिका के बाद रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 20वें स्थान पर आती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों पर हमले किए हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर है और इस दौरान बीच में रशिया ने कई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रशिया के रक्षा कवच को भेदने में ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि रशिया से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए,

यूक्रेन के हमलों के बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए 239 आत्मघाती ड्रोन्स, 7 क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी, जिनमें यूक्रेन को दूसरी तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन की हालत देखिए।

0: अब ये समझिए कि ये युद्ध अचानक से क्यों भड़का, इसका ईरान युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है। असल में यहां भी भारी लड़ाई तेल की है। ईरान युद्ध के कारण रशिया के कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जो रशिया पहले प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल सिर्फ कुछ देशों को बेच रहा था, वो अब कई देशों को तेल की आपूर्ति कर रहा है। भाई खाड़ी देशों में ऐसी हालत है, मिडल ईस्ट से तेल जा नहीं रहा था, ऐसे में रशिया के लिए कमाई का मौका आया। इसके कारण कच्चे तेल के निर्यात में अमेरिका के बाद रशिया दूसरे स्थान पर आ गया और स्थिति यह है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल रशिया का बिक रहा है। और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है। यूक्रेन को लगता है कि अगर रशिया तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो ये पैसा युद्ध पर खर्च करेगा, युद्ध पर ये पैसा खर्च होगा तो रशिया को यूक्रेन पर एडवांटेज मिल जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। रशिया में कुल 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 24 पर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है और इसकी वजह से रशिया के कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब ये मई महीने में देखिए 89,50,000 बैरल था, जून आते आते 87,00,000 बैरल हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध अचानक से और भड़कने लगी है। और ये युद्ध भड़क रहा है, इस दौरान रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत इस वक्त अपना जो कच्चा तेल है, जानते हैं रशिया से हम कितना ले रहे हैं, 35-40% कच्चा तेल रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये उम्मीद में थे कि अब ईरान युद्ध खत्म होने से कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, तब रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमारी चिंता फिर से बढ़ा दी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब ईरान युद्ध 3 महीने के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध 3 महीने के बाद खत्म हो गया, तो यूक्रेन युद्ध 4 साल से अभी तक जारी क्यों है। इसके पीछे बड़ी वजह है इलाकों की लड़ाई। राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के जिस 20% भूभाग पर कब्जा किया उसे यूक्रेन छोड़ दे, ये इलाके रशिया को मिले, और दूसरी मांग है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तीसरी मांग है कि यूक्रेन की सेना पर कुछ सीमाएं लगे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों मांगे मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कभी तभी खत्म होगा जब रशिया उसके इलाकों को वापस करेगा, यूक्रेन की संप्रभुता सीमाओं को बहाल किया जाएगा और भविष्य में रशिया दोबारा ऐसे हमले ना करने की गारंटी देगा, सुरक्षा गारंटी। इन्हीं सारी बातों पर यह युद्ध अब भी फंसा हुआ है और अब इसने एक नया रूप ले लिया, पूरी दुनिया में ये चिंता की बात पड़ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल ने बड़ा दुख दीना। जिस मेज को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए सजाया था, उस मेज को इसराइल ने अब जंग के मैदान में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू होने के बाद सिर्फ 14 घंटे बीते और 14 घंटे बाद ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड भेजने से ही इनकार कर दिया है। यह वही स्विट्जरलैंड है जहां अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील के लिए 60 दिनों की बातचीत होनी है। आपको याद होगा हमने एमओयू आपको दिखाया था, इस एमओयू में लिखा था कि 60 दिन तक बातचीत करके एमओयू पर जो भी फैसला है उसको फाइनल किया जाएगा और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इसराइल उसकी बात नहीं मान रहा, इसराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद अब बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है कि उसने जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किए उसकी पहली शर्त यही थी कि लेबनान में भी सैन्य संघर्ष को खत्म किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और इसराइल ने लेबनान में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए तो ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए नो कह दिया। और अब स्थिति यह है कि ना तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भेज रहा है। सुनिए,
1: निश्चित रूप से अगर इसराइल लेबनन पर कोई सैन्य हमला करता है या लेबनन की जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखता है तो हम इसे समझौते का उल्लंघन मानेंगे।
0: ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसराइल लेबनान में अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लेबनान में इसराइल की बमबारी है। अब हालात ये है कि लेबनान के लोग इसराइल के हमलों के कारण पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए।
2: اضرب يا اختي، هيا هون، هيا لنا بالشقه، بعد البنايه عم تولع، عم بشيلوا العالم. يا الله يا الله، ما يكون في حدا صاير شيء يا رب.
3: I'm in the center of Kfar Tibnit right now. The entrance of Kfar Tibnit from this side, an artillery strike just targeted the area behind me. As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity. And of course, the destruction, the amount of destruction is very strong. There is the Israelis did try to destroy the entire area. Destroy the entire area.

0: तो लेबनान से पलायन करते लोग आपने देखे। इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अमेरिका और ईरान की डील तोड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू इस डील को तोड़वा देंगे। उसका कारण यही है कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान के तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहे हैं, उसे उसका जब्त किया हुआ पैसा वापस लौटाया जा रहा है, पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर की योजना बनाई जा रही है, अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जा रहा है। अमेरिका ने यह वादा भी कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। अब ईरान इसराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है, और कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अपने कट्टर दुश्मन को बातचीत में जीतता हुआ देखकर इसराइल इस डील को तोड़वाना चाहता है, और इसीलिए उसने लेबनान पर हमले जारी रखे। हालांकि इसराइल इन आरोपों से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हिजबुल्ला ने उसकी सेना पर हमले किए जिसमें उसके 4 सैनिक मारे गए, और इन्हीं हमलों के बाद इसराइल हिजबुल्ला को अपना जवाब दे रहा है।
1: हम उत्तरी इलाकों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है। जब तक इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता महसूस होगी, हम वहां तब तक मौजूद रहने वाले हैं।
0: तो इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताएं रोनी चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इसराइल को दुनिया को ये दिखाना होगा कि उसके बेटों का खून, उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जा सकती। और सीधा मतलब ये है कि इसराइल तो अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। चाहे ये डील टूटे या ना टूटे, वो लेबनान में अपनी जंग को जारी रखेगा, और ये बात इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी कही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि क्या वो लेबनान को लेकर थोड़ा नरम रवैया नहीं अपना सकते। ट्रंप की ताजा बाइट सुनिए।
2: You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
0: तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, बीबी मान जाओ, और बीबी यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा। तो ये चल रहा है मामला। मामला है बारूद बनाम बातचीत का, जिसमें इसराइल बारूद बरसाने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। यहां आप यह भी देखिए कि कई बार वक्त चीजों को कितनी तेजी से बदल देता है। इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका इसराइल साथ हुआ करते थे, जिसे पश्चिमी मीडिया AI फ्रेंडशिप कहता है। अमेरिका, ए का मतलब अमेरिका और आई का मतलब इसराइल। अब इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए इसराइल को किनारे कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत के लिए आतुर दिख रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं कि वो इसराइल के लिए काम करते हैं। तो अब तक उन पर यही आरोप लगा कि वो अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके अपने समर्थक नाराज हो गए। लेकिन अब इसी दाग को धोने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो इसराइल को भी सबक सिखा सकते हैं, और इसराइल उनके बिना कुछ नहीं है। यहां आप यह भी समझिए कि इसराइल का असली निशाना हिजबुल्ला नहीं है, उसका असली निशाना अमेरिका और ईरान की पीस डील है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला से कई लड़ाइयां लड़कर देख चुका है, और इनमें किसी भी लड़ाई में वो हिजबुल्ला को आज तक खत्म नहीं कर पाया। इनमें भी साल 2006 का जुलाई युद्ध बहुत बड़ा था। उस वक्त हिजबुल्ला ने इसराइल के 3 सैनिकों को मार दिया था और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद 34 दिनों तक चले भीषण युद्ध में लेबनान के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, करीब 4400 लोग घायल हुए थे। इसराइल के भी 158 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई सैनिक थे। उस भीषण युद्ध में हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ, आखिरकार इसराइल को यह युद्ध रोकना पड़ा था, और यहां भी इसराइल ऐसा कर सकता था। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ईरान युद्ध से बाहर निकालने के लिए पीस डील कर लेते हैं, एक MOU साइन कर लेते हैं, वो इसराइल के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान को किसी भी तरह का कोई एडवांटेज मिले, और इसी वजह से वो इस डील के खिलाफ है, और अब कहा जा रहा है कि इसराइल इस डील को तुड़वा भी सकता है। यहां आप ये भी देखिए कि अब तक दुनिया में अमेरिका ही अकेला ऐसा देश था जो ये कहता था कि उसके सहयोगियों पर हमला हुआ तो इन हमलों का जवाब वो खुद देगा। नेटो भी तो इसी तर्ज पर बना था, लेकिन अब यही चीज पहली बार ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अगर हिजबुल्ला को मारोगे या यमन में हूती को मारोगे या इराक में सबसे बड़े मिलिशिया ग्रुप को मारोगे तो वो इन हमलों को खुद पर हुआ हमला मानेगा। और वो कह नहीं रहा है, वो सीधा वापस ही हमला कर रहा है और इनका जवाब अपनी मिसाइलों से देगा। तो ये सारी चीजें इस युद्ध से बदली हैं और इससे दुनिया पर अस्थिरता का एक नया खतरा भी मंडराने लगा है। खैर, इन सबके बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना एक और दुश्मन बढ़ा लिया और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ये कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, पर बाद में उन्हें उन पर तरस आ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा ली। इसका ये वीडियो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इटली का अपमान किया है। सुनिए,
3: कुछ बातों का तुरंत जवाब देना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। और ये पहली बार नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि ये निराशाजनक है कि वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वही सख्ती नहीं दिखाते बल्कि उनके नेताओं के साथ कहीं अधिक नरमी से पेश आते हैं। उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि ना मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं।
0: खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ हुआ उसे चोरी कहा जाए या उसे लूट कहा जाए, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चोरी चुपचाप की जाती है, लूट सबके सामने होती है। 7 जून को जब पहली बार ये आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है। जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर सीसीटीवी वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी VVIP पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी SIT के शक के घेरे में है, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को SIT ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। सुनिए,
4: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: अब तक ये चोरी साबित नहीं हुई है, सच है, लेकिन सोचिए अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो ये चोरी किसके पैसों की होगी। हकीकत तो ये है कि मंदिर की दान पेटियों में गिरने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, इसे श्रद्धा कह सकते हैं, इसे प्रार्थना कह सकते हैं, इसे उम्मीद कह सकते हैं। भगवान पर विश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन मेहनत से कमाई अपनी जमा पूंजी को मंदिर में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन सोचिए अगर इस पैसे को चोरी कर लिया जाए तो ये भगवान के साथ, भगवान पर लोगों के विश्वास की कितनी बड़ी चोरी है। कोई महिला अपने गले का हार ऐसे ही निकाल कर चढ़ावे में भगवान के सामने भाव विभोर होकर दान कर देती है, कोई अंगूठी उतार कर डाल देता है, कोई पैसा, कोई कमाई, सब कुछ भगवान पर लुटाता है। यहां यह भी सोचिए कि इस घटना के बाद जब अगली बार कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा, मंदिर में दान करेगा, तो उसके मन में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, सवाल आएगा कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये वाकई भगवान की सेवा में खर्च होगा या कोई अपनी जेब भरेगा, और इस सवाल से जो अविश्वास पैदा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। साल 2025 में भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर रिसर्च की थी और यह बताया था कि भारत में कुल 68% लोग दान करते हैं, जिनमें 46% दान धार्मिक कारणों से किया जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2025 में भारत के लोगों ने मंदिर, मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्चेज में 54,000 करोड़ रुपए का दान दिया, 54,000 crores, और ये माना कि वो जो दान कर रहे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा, वो उनके आराध्य की सेवा में खर्च होगा। लेकिन सोचिए इस घटना के बाद इस देश के लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। कहते हैं कि किसी दुकान में चोरी हो जाए तो व्यापारी का नुकसान होता है, किसी घर में चोरी हो जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन जब मंदिर की दान पेटी में चोरी होती है तो ये चोरी करोड़ों लोगों की श्रद्धा की चोरी होती है, और इस चोरी से चोट उस सामूहिक आस्था को लगती है जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर सजोया है, क्योंकि दान पेटी में रखा धन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, वो समाज की श्रद्धा का धन है। शायद यही वजह है कि ऐसे अपराध लोगों को भीतर तक विचलित कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिकता का होता है। आखिर कोई व्यक्ति उस स्थान को कैसे निशाना बना सकता है जहां लोग अपने सबसे पवित्र भाव को लेकर आते हैं। आज सोचिए लोग अपने परिवार पर किस पे कितना खर्च करना है इस पे दो बार सोच लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने दान करते समय कृतज्ञ होकर कुछ भी डालने को तैयार हो जाते हैं। उस विश्वास को तोड़ना, आज आप खुद सोचिए कि राम मंदिर का ये प्रांगण, ये परिसर, ये बड़े बड़े कक्ष, ये सीढ़ियां, ये कमरे किस लिए बने थे। ये निर्माण इसलिए हुआ था ना ताकि देश का कण कण अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर स्थापित होते देख सके, राम दरबार में भगवान राम और मां सीता के दर्शन कर सके, उनके दर्शन के लिए वहां जा सके, उनसे अपने मन की बात कह सके। लेकिन सिर्फ इस घटना के कारण इस प्रांगण में, इसी परिसर में, इन्हीं बड़े बड़े कक्षों में, इन्हीं विशाल कमरों में एसआईटी की जांच टीम घूम रही है और ये पता लगा रही है कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया गया या नहीं चुराया गया। सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावे में मिले जेवरातों, आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि इस मामले में सिर्फ नकद चढ़ावे की चोरी नहीं हुई बल्कि दान किए गए सोना, चांदी, हीरे के जेवरातों की भी हेराफेरी हुई है। कल एसआईटी ने केरल से वापस लौटे मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और महासचिव चंपत राय से पूछताछ की और उनसे ये पूछा कि नकदी रिकॉर्ड में जो खामियां हैं उन्हें इनके द्वारा कभी नोट क्यों नहीं किया गया। और सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एसआईटी को कोई भी सही जवाब नहीं मिला है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई है कि राम मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पास महंगे आईफोन्स, 20 से 40 लाख रुपए की लग्जरी कार्स, महंगी गाड़ियां, और कहां से यह सब आया, किसी ने यह देखा क्यों नहीं। इन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए के आसपास है, इतने पैसों में कैसा वो कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे। और ये एक रेड फ्लैग था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को खुद पकड़ना चाहिए था, लेकिन बात बढ़ती गई। आरोप है कि कई आम परिवारों से आने वाले कर्मचारी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन रखने लगे। यही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि कई अधिकारियों की तैनाती को छुआ तक नहीं गया। मतलब जैसे राम मंदिर के जो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ है उनका 17 सालों में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएमओ का काम होता है सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखना, उसकी फुटेज को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना कि निगरानी का काम सही से होता रहे। यह आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरएमओ को शक के घेरे में माना जा रहा है वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यहीं थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है, जब मंदिर बना तब भी वो यहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जितना चढ़ावा आता है उसका बहुत कम हिस्सा रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन यह बात बड़े पदाधिकारियों ने नजरअंदाज कर दी। महिपाल सिंह को पद से हटा दिया गया। सुनिए पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है, किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे, आपका आरोप क्या क्या है?
5: सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सब के विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे। तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की भंडार बांट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख। बक्से में लिखा जाता लिखा पड़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और अब सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप सोचिए कि गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं दिखता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा गया था SBI को, उसमें कई खामियां थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि महासचिव चंपत राय का दुरुपयोग हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सुनिए। आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं।
6: प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। गंभीर कमियां थी, कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी।
0: आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
6: ये जो घटना है, श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है।
0: पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
6: फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
0: भूपेन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे।
6: आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों।
0: बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो।
6: कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी, आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया।
0: ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए और इस दौरान उसकी ये चोरी CCTV कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं। खैर, सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भारत के लोग कम सोना खरीद रहे हैं? नए आंकड़ों के मुताबिक भारत का सोना आयात इस महीने 70% तक कम हो गया है। पहले भारत हर महीने 75 से 100 टन सोना आयात करता था, लेकिन अब ये 25 से 30 टन रह गया है। और इसका बड़ा कारण यह है कि 13 मई को सरकार ने सोने के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने बैंकों को सोने के आयात के लिए अधिसूचित नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अब बैंक सोना खरीदकर भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं करा सकते और सरकार ने सोने के आयात को सीमित कर दिया है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कम सोना खरीदने की अपील की ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित हो सके। और बड़ी बात यह है कि इस ऐलान के बाद बाजार में सोने की खरीद कम हो गई और अब लोग सोने के पीछे ज्यादा नहीं भाग रहे। यहां आप इन आंकड़ों को भी देखिए जो मिली जुली कहानी बताते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने $5.63 बिलियन का सोना आयात किया था, लेकिन मई महीने में यही आंकड़ा $3.42 बिलियन का आ गया। यानी अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में औसतन अगर आप देखिए तो सोने का जो आयात है वो लगभग 39.3% कम हुआ। हालांकि अगर हम पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो सोने के आयात पर हमारा खर्च 34% बढ़ा है। मई 2025 में भारत ने $2.55 बिलियन का सोना आयात किया था, जबकि मई 2026 में भारत ने $3.42 बिलियन का सोना आयात किया, जो 34% ज्यादा है। इसके अलावा अप्रैल और मई 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो इस साल अप्रैल और मई महीने में सोने के आयात पर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से 60% ज्यादा पैसा खर्च हुआ। और इससे दो बातें समझ आती हैं। पहली बात यही है कि सोने की कीमतें बढ़ने से अब हो ये रहा है कि हमारे डॉलर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, सोना कम मात्रा में आयात हो रहा है। और दूसरा, इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की, सोना पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई उससे कुछ राहत मिली दिख रही है और लोग प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब कम सोना खरीद रहे हैं।

0: मुंबई सपनों का शहर और सपने देखने के लिए ठीक से सोना भी तो जरूरी है, लेकिन इन दिनों मुंबई की रातों के सुकून पर गर्मी का पहरा है। दिन का पारा तो चढ़ ही रहा है, लेकिन रातें भी अब सुलग रही हैं। लोग नींद की तलाश में भटक रहे हैं, जानते हैं कहां? तस्वीरें मुंबई के वर्सोवा बीच की है। यहां समंदर किनारे मेला सा लगा है। ये वो लोग हैं जो मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तमाम घरों की छतें टिन या एस्बेस्टस की बनी हुई है, गर्मी को सोख लेती है और इसकी वजह से दिन में तो ये घर भट्टी बनते ही हैं, रात ढलने के बाद भी उनका तापमान कप नहीं होता, सोना मुश्किल है, उमस तपती दीवारों के बीच दम घुटने लगा तो ये बेबस लोग थोड़ी सी ठंडी हवा की उम्मीद में वर्सोवा बीच की तरफ पहुंच गए। ये कहानी मुंबई के किसी एक हिस्से की नहीं है। मुंबई के करीब 41% आबादी यानी लगभग 90 लाख लोग झुग्गियों और तंग बस्तियों में रहते हैं। ये वो आबादी है जिनमें अधिकतर के पास गर्मी से बचने के लिए एसी की लग्जरी नहीं। अब सवाल उठता है कि मुंबई इतनी क्यों तप रही है? जवाब है कंक्रीट का अंधाधुंध जाल। पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इस जानलेवा गर्मी के बीच मुंबई का पावर सिस्टम हांफने लगा है। बढ़ती गर्मी, अंधाधुंध शहरीकरण के कारण मुंबई में बिजली की खपत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी महीने 8 जून 2026 को मुंबई में बिजली की मांग 4608 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चरमरा गया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी शहर के डंपिंग यार्ड की नहीं है, ये देश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की है, जिसे हमने और हमारी सरकारों ने मिलकर कूड़ेदान बना दिया है। एक अच्छे खासे हिल स्टेशन का हुलिया बिगाड़कर उसे पूरी तरह कूड़ा कर दिया गया है। पहले शिमला का हाल देखिए। शिमला के प्रवेश द्वार यानी नेशनल हाईवे 5 के किनारे और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जहां पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा है, गंदगी का अंबार लगा है। यही हाल मनाली का है, जहां बस स्टैंड के पास सैलानियों का स्वागत बदबू से, गंदगी से होता है। एंट्री पॉइंट से लेकर मॉल रोड तक बदबू है, गंदगी का साम्राज्य है। 150 मीटर लंबे मॉल रोड पर बमुश्किल 2 से 3 डस्टबिन है। हिडिंबा टेम्पल, वन विहार और क्लब हाउस जाने वाले रास्ते में सिंगल यूज प्लास्टिक से पटे हुए पड़े हैं। लापरवाही की हद तो देखिए। पर्यटकों ने पेड़ों के तनों को ही डस्टबिन बना दिया है। हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पानी के पाउच और प्लास्टिक की थैलियां धड़ल्ले से बिकती हैं। शिमला और मनाली में हर रोज हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं, अपने साथ ला रहे सैकड़ों टन प्लास्टिक कचरा, जिसे ठिकाने लगाने का सिस्टम प्रशासन के पास है ही नहीं। हिमाचल सरकार यहां आने वाले सैलानियों से हर कदम पर ग्रीन टैक्स, होटल टैक्स, शराब पर मिल्क सेस वसूलती है। जब हर गाड़ी से ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है तो वो पैसा मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में क्यों खर्च नहीं हो रहा? यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि आपदा को न्योता है। एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय लोगों का कहना है कि मनाली और शिमला के ज्यादातर नाले, ड्रेन इस वक्त प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह चोक हो चुके हैं। पहाड़ों पर कभी भी भारी बारिश हो जाती, मॉनसून आते ही ये चोक नाले पानी का रास्ता रोकेंगे, जिससे रिहायशी इलाकों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। इससे घर जमीन दोस्त हो सकते हैं, जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। आज हमें भूटान से सीखना चाहिए। वहां पहाड़ों या ट्रेकिंग पर जाने वाले पर्यटकों और गाइड्स के लिए अनिवार्य है जितना भी प्लास्टिक, जितना भी डिब्बा बंद सामान ऊपर ले जा रहे हैं उसका कचरा वापस नीचे लेकर खुद आए। इसकी गिनती होती है। खुले में कचरा फेंकने या गाड़ी से बाहर थूकने पर भारी जुर्माना लगता है और बार बार गलती करने पर जेल भी हो सकती है। खैर, जब प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो एक विदेशी सैलानी को आकर आईना दिखाना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, जो शिमला घूमने आई एक विदेशी महिला ने बनाया है।
1: I am in Himachal Pradesh, Shimla. I see everywhere thousands of bottles, some chips packs, beer bottles, everywhere a lot of garbage. I will put picture here.
0: और इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
3: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
2: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
4: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं, तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
5: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
6: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran और अमेरिका के बीच समझौते के बाद हॉर्मुज झलमरू में तेल टैंकरों की मूवमेंट देखी जा रही है। लेकिन तेल कंपनियां संघर्ष के दौरान ईरान की ओर से बिछाई गई मीन्स को लेकर काफी सतर्क हैं। इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे, लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत देकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
1: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
1: देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे, वो बेईमान गद्दार।
0: उद्धव के 2 सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे, आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
1: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
3: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
0: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी कीमत बढ़ानी है तो अपनी सप्लाई थोड़ी कम कर दीजिए। ये इकोनॉमिक्स का भी नियम है और जिंदगी का भी। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: बढ़ावा चोरी के आरोप के बीच रामलला के दर पर मुख्यमंत्री योगी अखिलेश के दावों पर कहा, सबूत है तो एसआईटी को दें। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र बोले, प्रक्रिया में हुई कोताही। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, राज्य में शिंदे सेना से परेशान बीजेपी। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के विरुद्ध अयोग्यता की सौंपी 20 याचिका, मानसून सत्र से पहले निर्णय सुनाएंगे ओम बिरला। यूथ सम्मेलन में पीएम मोदी का युवाओं को मंत्र, कहा रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान। केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर, 2400 करोड़। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा। ट्रंप ने किया था दावा, तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी उनसे गुहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं।

0: सुनियोजित साजिश के तहत सिंडिकेट बनाकर राम मंदिर के चढ़ावे की राशि और जेवरात पर हाथ साफ किए गए। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े जिम्मेदारों की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राम मंदिर में पलीता कौन लगा रहा है, किसने राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है, कौन है वो चढ़ावा चोर जिसने राम मंदिर की दान पेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये तब है जब राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण ने भारतीय जनता पार्टी के चमत्कारी उत्थान की पटकथा लिखी। तो क्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैठे बिठाए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा थमा दिया?
1: भाजपा का धर्म का मतलब धन है।
2: आरएसएस और बीजेपी और बीएसपी के लोग संगठित लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं।
3: भाजपा जो है राम के नाम पर व्यापार कर,
4: बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
5: SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
0: आरोप प्रत्यारोप को सियासी चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर के दान से हुए खिलवाड़ का मामला जितना संगीन है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोपों की आंच राम मंदिर की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों तक पहुंच रही है। सबसे पहले आरोपों के कटघरे में खड़े किरदारों के बारे में आपको बताते हैं। किरदार नंबर एक, नाम चंपत राय, आरोप चढ़ावे की चोरी में शामिल। किरदार नंबर दो, नाम टिन्नू यादव, आरोप चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड। किरदार नंबर तीन, नाम गोपाल राव, आरोप राम भक्तों के दान को लूटा। किरदार नंबर चार, नाम अनिल मिश्रा, आरोप चढ़ावा चोरी में कमीशन खाया। राम मंदिर की दान पेटियों से चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच कर रही SIT ने आज भी संदिग्धों से पूछताछ की। SIT चढ़ावा चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने में जुटी है। इसी कड़ी में राम मंदिर के जिम्मेदारों से SIT टीम पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर की दौलत लूटने वाले गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करने के लिए SIT कई एंगल से जांच कर रही है। आज SIT ने राम मंदिर में राम भक्तों की तरफ से चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जाने वाले जेवरात का पूरा सिस्टम समझा, मतलब दान में आने वाले जेवरों का हिसाब किताब कैसे किया जा रहा है और खुलासे से पहले जेवरों पर हाथ कैसे साफ किया गया। आरोपों की जांच करते हुए SIT ने राम मंदिर की दान पेटियों का साइज चेक किया ताकि पता चल सके कि दान पेटियों में कितना चढ़ावा आ सकता है। जांच टीम ने CCTV और दूसरे निगरानी इंतजामों की जांच भी की। बड़ी बात यह है कि SIT ने बीते कुछ सालों में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों की डिटेल को खंगाला, क्योंकि आरोप ये भी है कि कौड़ियों के भाव की जमीन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदारों ने ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीदी।
6: शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, वही खुलासे जो राम मंदिर के दान में चोरी से जुड़े हुए हैं। जांच के दौरान श्री राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार चढ़ावे के जेवरातों का हिसाब किताब देने में नाकाम रहे। और यही नहीं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर भी कई सारे संगीन आरोप लगे। ऐसे में SIT 2021 से अब तक खरीदी गई जमीन के अब दस्तावेज खंगाल रही है, खरीद में शामिल जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में SIT अनिल मिश्रा, गोपाल राय, टीनू यादव, चंपत राय से पूछताछ अभी तक कर चुकी है।

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के

0: जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया? खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं।
1: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर।
0: राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी, पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में पांचवें दिन एसआईटी ने अपनी जांच पूरी तरीके से जारी रखी। इस बार जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, जिसमें आभूषण जो राम मंदिर में आए उसके बारे में तफ्तीश की गई। एसआईटी ने पूरी उसकी जानकारी की। इसके अलावा जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, यहाँ तक टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ की गई। कई घंटों तक ये एसआईटी की जांच चलती रही, यानी कि अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट में आभूषण जो हेर फेर हुई उसको लेकर, इसके साथ साथ सीसीटीवी चेकिंग को लेकर भी एसआईटी ने अपने पास मामले को दर्ज कर लिया है। एविडेंस के तौर पर पेन ड्राइव्स और सीसीटीवी की फुटेजेस के बारे भी खंगाले गए हैं, यानी कि एसआईटी तेजी से अब आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं पांचवें दिन भी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे, इस तरीके की जांच पूरी तरीके से जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को काफी बढ़ा दिया है। राम मंदिर पर विपक्ष को घेरने वाले आज श्री राम मंदिर के चढ़ावे के आरोप में खुद घिरे हुए हैं। आरोप चढ़ावे में चढ़े करोड़ों रुपए सोने चांदी के गहने की चोरी का है। आज इस विवाद के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। आरोपों में घिरे चंपत राय को योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से दूर रखा गया। श्रीराम की नगरी से योगी ने ऐलान कर दिया कि चढ़ावा चुराने वाले बख्शे बिल्कुल नहीं जाएंगे, 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तरफ से होती आक्रामक बयानबाजी का बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, जनता को विश्वास दिलाया उनके भरोसे की हत्या नहीं होगी। अब प्रश्न यही है कि क्या 15 दिनों में चढ़ावा चुराने वाले सलाखों के पीछे होंगे, जेल में होंगे, उन्हें सजा मिलेगी?
4: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
5: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी आर एस एस।
6: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
7: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
8: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
9: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
10: आज हमारे राम आ गए हैं।
11: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
9: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
12: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
13: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
14: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
9: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
15: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
9: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके।
3: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्र का चौंकाने वाला खुलासा सुनिए।
16: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
17: हाँ।
16: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
17: जी,
16: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने, मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का एसबीआई से एग्रीमेंट है, एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी
17: जी,
16: कड़ा,
17: चेन,
16: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचें। भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे अमेरिकी ईरान पीस डील को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर की वो धमकी जिसने ट्रंप की सांसें अटका दी। आप देखते रहिए दस्तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
19: नीड बेटर इंटरनेट। Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
20: You use AI every day. But what if you built what it runs on? WGU's online software engineering degree helps you turn your coding skills into a future-shaping career. Learn more at wgu.edu.
21: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
22: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
21: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
22: They score!
21: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
23: Savari, Sokudo.
24: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
4: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
5: Roongta nahi to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar ekdam solid.
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप, पार्टी टूटेगी, और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक, परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या वहां नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरीटाइम फ्रीडम कहाँ होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: स्वागत एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस डील पर मंडराते खतरे की। अभी शांति समझौते के कुछ घंटे ही बीते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमले के संकेत दे दिए। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने पीस डील पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। मुश्तबा खामनेई ने यही दावा किया कि अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के कहने पर उन्होंने डील को स्वीकार किया। लेकिन खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए यह ऐलान भी कर दिया कि ईरान बात करने को तैयार हुआ है, झुकने को बिल्कुल नहीं। अगर समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो ईरान युद्ध के लिए तैयार है।

0: शांति समझौते पर मुश्तबा का पहला बयान। ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर डील को मंजूरी। पीस डील पर ट्रंप को मुश्तबा की चेतावनी। अगर शर्तें नहीं मानी तो युद्ध के लिए तैयार। मुश्तबा का ऐलान, बात करेंगे झुकेंगे नहीं। मुश्तबा की धमकी, ट्रंप की सांस अटकी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। सबसे पहले मुज्तबा खामिनई के बयान को गौर से सुनिए। अगर अमेरिकी पक्ष बहुत ज्यादा मांगे रखेगा तो हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ हुए समझौते के MOU को लेकर मेरा अलग मत था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते मैंने अनुमति दे दी। ईरानी अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बेचैनी में थे। उन्होंने इस समझौते को करवाने के लिए हर तरह के दबाव का इस्तेमाल किया। अगर ट्रंप की डील को कमजोर करने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हम बात करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना। क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
1: If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no navy. They have no air force. All bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders gone, and they want to make a deal. They are so ready to make a deal. Yeah.
0: पीस डील के बावजूद ट्रंप की यही धमकी ईरान के गले नहीं उतर रही है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकी का सीधा जवाब IRGC की तरफ से आया। IRGC ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए यही ऐलान किया कि पीस डील के बाद सेना ईरान के अफसरों के साथ खड़ी है, लेकिन बातचीत विफल होती है तो ईरान युद्ध के लिए तैयार है। मतलब अभी युद्ध पूरी तरह खत्म हो चुका है कहना मुश्किल है। प्यारे राष्ट्र और इस्लाम के योद्धा अपने राजनेताओं के पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं, और यदि विश्वासघाती शत्रु अतीत की तरह अनुचित मांगे करने और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो IRGC जमीन पर, समुद्र में, हवा में और हाइब्रिड युद्ध के सभी मोर्चों पर पहले से कहीं अधिक मजबूत और कई लड़ाइयों के अनुभव से लैस होकर उस बहादुर और बुद्धिमान कमांडर के जरा से इशारे पर उन्हें कहीं अधिक ऐतिहासिक पराजय देने के लिए तैयार है। IRGC ने साफ कर दिया है कि 7 दिन बाद क्या होगा ये भविष्यवाणी मुश्किल है, लेकिन युद्ध का रास्ता अभी बंद नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिका के साथ भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। ये तब है जब अमेरिका के साथ हुई बातचीत में गालिबाफ मुख्य वार्ताकार रहे हैं। हम आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं। सर्वोच्च नेता द्वारा हमें सौंपा गया कार्य समझौते की शर्तों और प्रावधानों को पूरा करना है। अगर विरोधी पक्ष दुराचार, अनुबंध उल्लंघन और अत्यधिक मांगे करता है तो हमें शत्रु को करारा जवाब देने में कोई संकोच नहीं है। युद्ध के दौरान उन्हें एक बार करारा थप्पड़ पड़ा था, अगर वो फिर से वही राह अपनाना चाहते हैं तो उन्हें इससे भी करारा थप्पड़ पड़ेगा।
2: ईरान में एक बड़ा धड़ा है जो अमेरिका के साथ हुई पीस डील का विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों का दावा है कि अमेरिका पर भरोसा करने का मतलब है विश्वासघात के लिए तैयार रहना। मतलब यही है कि शांति समझौते को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शांति समझौते के पीछे ट्रंप की नई चाल हो सकती है।
0: जिस शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, इसमें दो चरणों के जरिए ईरान और अमेरिका अंतिम समझौते तक पहुंचेंगे, यानी फाइनल डील का रोड मैप तैयार किया गया है। एमओयू पर दस्तखत होते ही समझौते से जुड़ा पहला चरण लागू हो चुका है, जबकि कुछ अहम मुद्दों को दूसरे चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जिन मुद्दों पर अभी समाधान नहीं निकला है, उन मुद्दों पर अगले 60 दिन में वार्ताओं के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। 60 दिनों की मियाद को दोनों देशों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। समझौते अभी पहले चरण में हैं और दूसरे चरण में टकराव के कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, ईरानी सांसदों ने भविष्यवाणी कर दी है। चूंकि मुज्तबा खामिनई ने अपने ही विचार के विरुद्ध ज्ञापन के लिए अनुमति जारी कर दी है, इसलिए पूरा देश नेतृत्व के साथ खड़ा है और बताई गई शर्तों की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर ये समझौता JCPOA की तरह एकतरफा प्रतिबंधों और निवारक शक्ति में कमी की ओर ले जाता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा और उस पूर्ण नुकसान को दोहराया नहीं जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही ईरानी सांसद अली अकबर ने अमेरिकी पीस डील को लेकर ईरानी राष्ट्रपति और सेना के बीच रहे मतभेद को लेकर बड़ा दावा किया। हमें सैन्य और सुरक्षा बलों को मजबूत करने की उपेक्षा एक पल के लिए भी नहीं करनी चाहिए और राष्ट्र का पूरा ध्यान ज्ञापन और वार्ता दल की कार्रवाई पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य आवश्यक जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा हो। दरअसल ईरान की तरफ से शांति समझौते को शक की निगाह से देखा जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप हैं।
1: Their deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen. I've gone into deals that there was no chance of getting them done and it happens and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. You know, we hit them very hard. Don't forget, you know, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA, that's Barack Hussein Obama's horrible deal that gave them a nuclear weapon. And I terminated it and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion.
0: Peace deal ko lekar Iran phunk phunk kar kadam aage bada raha hai. क्योंकि बीते साल जून महीने में इसराइल ने उस वक्त ईरान पर हमला किया था जब अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। ठीक ऐसे ही इस साल भी अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को उस वक्त हमला किया जब अमेरिका और ईरान के बीच विवाद सुलझाने के लिए वार्ता चल रही थी। मतलब यही है, जब तक अमेरिका और ईरान के बीच सभी मतभेद का समाधान नहीं निकलता तब तक युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। आज तक ब्यूरो।
2: शांति समझौते के बाद अमेरिका और इसराइल के रिश्तों की मिठास अब खटास में बदल चुकी है। पीस डील के विरोध के बाद इसराइल और अमेरिका का रिश्ता आईसीयू में पहुंच चुका है। अब ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर बहुत तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर इसराइल नहीं माना तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमला कर रहा है। लेकिन लेबनान पर हमले ईरान की आंखों में खटक रहे हैं, उसकी गिरगिरी बने हुए हैं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से न उठ जाए, और इसीलिए ईरान को बनाने के लिए ट्रंप ने इसराइल और नेतन्याहू के साथ अपने रिश्तों को ताक पर रख दिया है।
3: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इजराइल की दोस्ती?
4: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
3: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
4: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
3: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन तीन महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। तीन महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
4: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
3: जेडी वेंस का इसराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बेन वीर ने बोला, हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
4: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
2: इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। जानकारी के अनुसार अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले थे, उससे पहले टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता अंडे लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे और उन्हें रोकने के लिए टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हो गई, मारपीट होने लगी, हाथापाई होने लगी और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर पीट दिया और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दोनों तरफ से लगातार मारपीट होती रही। सुनिए।
5: देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
2: दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: The Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छलके इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही एसआईटी जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा, लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया।
1: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था, जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया, फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एसआईटी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है।
3: ये जो एसआईटी में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के कई अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है, तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है जी, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं।
4: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
0: राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई, इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
3: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है? एक छापामार मंत्री, बस वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
2: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
4: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया।
2: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
5: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
2: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
6: समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तृप्तिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं रहे। जी है, कोई मतलब नहीं कि केवल दिखाने के दांत।
2: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
7: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
2: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
8: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
9: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
10: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
9: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई ना कोई यूज तो कर ही रहा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।

0: एक करोड़ रुपए का सारा जेवर अपने साथ ले गए। अब ये सुनकर हंसिएगा मत, न ये समझिएगा कि हम आपको कोई चुटकुला सुना रहे हैं। एक करोड़ रुपए का माल ले जाने वाले उन बंदरों के नाम, माफ कीजिएगा, बंदरों के नाम तो होते ही नहीं। तो बंदरों का जिक्र बाकायदा इसी थाने के कंप्लेन लेटर से लेकर अदालत के दस्तावेज तक शामिल है। वैसे जिन लोगों को ज्यादा हंसी आ रही है उन्हें बता दूं कि हमारे इसी देश में कई थानों के मालखानों में इससे पहले बंदर, गांजा, अफीम, हशीश के साथ साथ कैरेट के कैरेट शराब भी पी चुके हैं। अब चूंकि मामला बंदरों का है और बंदर बोलते तो है नहीं, ना ही बंदर गहने पहनते हैं, तो फिर एक करोड़ का गहना ये क्यों और कैसे ले गए? ये यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले आपको यूपी पुलिस के इसी थाना कोतवाली में दर्ज ये तहरीर दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियस हो जाएं। बाकायदा इस तहरीर पर थाना कोतवाली सदर की मोहर भी लगी। इस तहरीर सिर्फ काम की चीजें पढ़ लीजिए। आईजी जोन महोदय के मुआयने के दौरान सभी चार झाल पीएम पोर्टली श्रीमान एसएचओ महोदय के आदेश अनुसार चौकीदारों द्वारा कोतवाली की छत पर खुले में रख दी गई थी, जो पानी से भीग कर सभी पोटलियां सड़ गई एवं बंदरों द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई। अगर कोतवाली सदर थाने में दर्ज इस तहरीर यानी इस कानूनी दस्तावेज पर भी आपको भरोसा नहीं तो चलिए यूपी पुलिस की तरफ से जारी इस प्रेस नोट को ही पढ़वा देता हूँ। 17 जून को जारी इस प्रेस नोट में लिखा है कि मृतका के शव से प्राप्त कपड़ों व गहनों की एक पीएम पोटली मालखाने में जमा कराई गई थी। उस पीएम पोटली का प्रभार तत्कालीन हेड मुहर्रिर चंद्रिका प्रसाद के पास था। दुर्भाग्यवश हेड मुहर्रिर चंद्रिका प्रसाद की 2009 में मौत हो गई। उनके बाद नियुक्त रहे हेड मुहर्रिर राम बख्श पाल का भी निधन हो गया। इसके बाद तैनात हुए हेड मुहर्रिर संजय सिंह को इस पीएम पोटली का चार्ज ही नहीं मिला। अब इन सारे सबूतों और दस्तावेज के बाद चलिए आपको लखीमपुर खीरी की अदालत के जज साहब के फैसले का दस्तावेज भी दिखाते हैं और पढ़ाते भी। ये न्यायालय सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी के ऑर्डर की कॉपी है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है।
1: जेवरात सोने के कहे गए हैं, जिनके भीग कर खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा लगता है कि तत्कालीन डीआईजी द्वारा थाने के मालखाने में जमा उन पीएम पोटली को, जिनमें ऐसी वस्तुएं थी जो भीग कर नष्ट होने की प्रकृति रखती थी, को सुखाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कोई आम आदमी भी कीमती सोने के सामान को छत पर सुखाने नहीं ले जाएगा। बिना निगरानी के सोना छोड़ दिए जाना यकीन लायक नहीं है। साफ है कि थाने से संबंधित पुलिस वालों ने पीएम पोटली में सील बंद कीमती सामान को खुद ही उपयोग कर लिया और जिम्मेदारी से बचने के लिए जीडी में फर्जी रिपोर्ट लिख दी गई। कोर्ट के इस आदेश में आगे लिखा है कि जिम्मेदार पुलिस वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हीं जिम्मेदार पुलिस वालों से इसकी भरपाई कराई जाए।
0: तो उम्मीद है बंदरों की एक करोड़ की सोना चोरी के बारे में कानून के रखवालों के इन दस्तावेजों को देखने के बाद अब आप थोड़े गंभीर हो चुके होंगे। तो चलिए अब उसी गंभीरता से पूरी कहानी सुन लीजिए। यह मुदित कुमार अग्रवाल है। 2007 में ठीक दीपावली के दिन इनकी पत्नी आभा रानी ने खुदकुशी कर ली थी। आभा रानी के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुदित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि इस सिलसिले में थाना कोतवाली सदर में FIR दर्ज हो चुकी थी, लिहाजा आभा के पोस्टमार्टम के बाद उनके कपड़े और जेवर जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए थे उन्हें केस प्रॉपर्टी के तौर पर पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इसी थाने के मालखाने में रख दिया। चूंकि आभा ने दिवाली के दिन खुदकुशी की थी, इसलिए उस रोज उन्होंने नए कपड़ों के साथ साथ तमाम सोने के गहने पहन रखे थे।
2: घटना ये हुई थी कि 2007 में मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मेरे ऊपर विवेचना चली। विवेचना चलने के बाद 2024 में मेरा पूरा परिवार बरी हो चुका है। बरी हो जाने के बाद मैंने जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ जो सोने के जेवरात पहने हुई थी मेरी वाइफ, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया।
3: मुदित

0: अग्रवाल की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दीपावली का दिन था, उसी दीपावली के दिन आत्महत्या की थी, जो काफ़ी ज्वेलरी पहने हुए थी। पीएम होने के बाद वो ज्वेलरी सदर मालखाना में रखवाई गई। जब इस मुकदमे का निर्णय हो गया, उसके पश्चात इसमें रिलीज प्रार्थना पत्र डाला गया। उस रिलीज प्रार्थना पत्र में थाने से जो आख्या आई, तो उन्होंने कहा कि राम माल सुखाने के लिए रखा गया था ऊपर, जिसको बंदरों ने खुर्दबुर्द कर दिया। इस बात को अविश्वसनीय मानते हुए माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था तथा इनको माल के में जो है भरपाई करने के लिए आदेश किया था, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं।
1: असल में आभा का मुकदमा लंबा चला। 17 साल बाद 2024 में अदालत ने मुदित कुमार अग्रवाल को आभा की खुदकुशी के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही मुदित ने थाना कोतवाली सदर में एक अर्जी देकर अपनी बीवी के गहनों को वापस देने की मांग की। तब पहली बार मुदित कुमार ये सुनकर चौंक उठे कि मालखाने में रखा करीब 1 करोड़ का जेवर थाने से बंदर ले गए। इस अजीब और गरीब जवाब से हैरान मुदित तब सीधे अदालत पहुंच गए।
2: सदर कोतवाली से रिपोर्ट आई जनपद न्यायाधीश महोदय जी के पास कि वो सात पोटलियां भीग गई थी, उसको छत पे सुखाने के लिए रखा है, उसको बंदरों ने तितर बितर कर दिया है। उसको रिपोर्ट के आधार पर जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक आर्डर पारित किया, उसमें ये लिखा कि जो ये बंदरों के बात बताई जा रही है ये समझ से परे है, इसलिए पुलिस अधीक्षक को कहा आदेश दिया कि दोषी पुलिसकर्मियों का पता लगाते हुए, विभागीय जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रार्थी आवली आवेदक को ही क्षति की पूरी भरपाई की जाए। आदेश हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई क्षतिपूर्ति का लाभ मुझे नहीं प्राप्त हुआ है।
1: कमाल तो ये कि जब कोर्ट ने मुदित की शिकायत पर पुलिस से जवाब मांगा तो पुलिस ने बंदरों वाली कहानी कोर्ट के सामने भी रख दी।
0: आईजी महोदय के आने मुआयना करना था, उनको आना था, उस परिपेक्ष में उसको सुखाने के लिए छत पे रखा गया था, वो भीग गया और बंदरों द्वारा उसको खुर्द बुर्द कर दिया गया जो मिल नहीं पाया।
3: क्या लगता है आपको, बड़ा
0: हास्यास्पद? हाँ, ये हास्यास्पद है। बंदरों द्वारा कैसे माल चोरी कर लिया जाएगा या खुर्द बुर्द कर दिया जाएगा? सोने का माल है, करोड़ों का सोने का माल है।
3: क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा आपको इसमें?
0: अब निश्चित है पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और इन्हीं लोगों द्वारा ये कार्रवाई वैध किया गया।
1: पर बंदरों की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बंदरों के नाम पर पुलिस वालों को बचाने के लिए यूपी पुलिस एक और खेल खेलती है। चूंकि मामला पुराना था तो वो 1 करोड़ के सोने की चोरी का सारा ठीकरा 2 ऐसे पुलिस वालों के मत्थे मार देती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। पर यहाँ भी पुलिस एक गलती कर जाती है। पहले यूपी पुलिस के इस प्रेस नोट को देखिए। इसमें लिखा है कि उस पीएम पोटली की जिम्मेदारी जिन तत्कालीन मुहर्रिर यानी मालखाने के इंचार्ज चंद्रिका प्रसाद को सौंपी गई थी, उनकी 2009 में मौत हो गई। उनके बाद तैनात किए गए हेड मुहर्रिर रामबख्श पाल का भी निधन हो चुका है। जबकि कोर्ट ऑर्डर की जो कॉपी है उसमें उसी यूपी पुलिस ने उस वक्त तैनात रहे हेड मुहर्रिर के तौर पर मोहेराम और मेव्याराम का नाम लिखा है और ये दोनों जिंदा है। यानी यूपी पुलिस बंदरों के साथ साथ मुर्दों से भी खेल रही है।
2: उसके बाद एक प्रेस नोट जारी हुआ। प्रेस नोट में यह बताया गया कि जो दो हेड मोहरी हैं वो 2009 के थे, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ जो हेड मोहरियों के नाम बयान में दिए गए हैं वो अलग हैं। तो ये दो तरफ विरोधाभास चल रहा है। मैं केवल इतना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश हुआ है क्षतिपूर्ति लाभ के लिए, मैं उसके लिए बस प्रयास कर रहा हूँ कि सोने के सब जेवर थे, सोने की चूड़ियाँ थीं, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, नाक का फूल सोने का, सोने का लॉकेट, ये सब सामान था।
0: कि 2007 में पीएम पोटली के संबंध में पूर्व हेड मोहरे मोलहे राम ने अपने पूर्व हेड मोहरे मेवालाल को कोई चार्ज पीएम पोटली का नहीं दिया। तो इसका मतलब दो में है, पूर्व हेड मोहरे मुल्हेरा और पूर्व हेड मोहरे मेवाला, ये दो है, दो के बीच में है ना,
3: दो के पास
0: इन, इनके पास तो ये रही पीएम पोटली, इनको नहीं दी। अब ये देखिए, अब मृत्यु किसकी आप बता रहे हो, चंद्रिका प्रसाद की मृत्यु हो गई
4: 2009
0: और राम बक्स पाल की मृत्यु हो गई, ये कहां मरे, इन, ये तो जिंदा है।
3: अच्छा, जिनके पास ये पीएम पोटली,
0: कोर्ट ने जिनके लिए ऑर्डर किया, जिसको इंस्पेक्टर ने कहा कि इनके पास है, भाई ये हेड मोहर्रे ने अपने पूर्व पीएम इनको दी, पूर्व हेड मोहर्रे मुल्हेराम ने अपने पूर्व हेड मोहर्रे को मेवाराम को कोई चार्ज पीएम पोटली नहीं दिया। तो इन ये मोहर्रे मुल्हेराम तो जिंदा है, ये तो मरे नहीं, आप तो ये कह रहे हो मोहर्रे चंद्रिका प्रसाद और मोहरे राम बक्स, ये दो मरे, जो इनकी अगर ये रिपोर्ट सही मान ली जाए, जो इस पर प्रेस नोट जारी किया।
3: अच्छा, वही जो सदर मालखाने से मुकदमे
0: में ये प्रेस नोट तक पुलिस ने जारी किया और कहा क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है इसमें
3: जी।
0: तो इनसे क्या मतलब है, मरे कोई चार्ज तो इनके पास है।
3: इन्होंने जो
1: वैसे मजाक से हटके ये तो सच है कि इस थाने में और थाने के आसपास काफी बंदर है, थाने की दीवारों और छत पर भी इनका आना जाना लगा रहता है, मगर ये बात हजम नहीं होती कि कोई सोने को सुखाने के लिए, वो भी 1 करोड़ के सोने को, छत पर यूं ही कैसे डाल सकता है। सोना पानी में खराब होने वाली चीज नहीं, हाँ जिस पोटली में सोना रखा हुआ था अगर वो गीला हो चुका था तो उस कपड़े को धूप पे सुखाने की बात समझ में आती, बाकी आप सब भी समझदार, बस एक नुक्ते का ही तो फर्क है माल खाना में और माल खाने में। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। जिस बिहार की आधी आबादी की वो नुमाइंदगी करती है, उस बिहार में महिला होने का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आप इस एक केस से समझ सकते हैं। बेगूसराय में एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, पुलिस कुछ नहीं करती, महिला गैंगरेप के बाद अस्पताल जाती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं करते, महिला दर्द से बेहाल दोबारा अस्पताल जाती है, तब पता चलता है कि हैवानों ने उसे जी भर कर लूटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में गोली, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा तक डाल रखा था।
5: हैवानियत की सारी हदें जिस मुकाम पर खत्म हो जाती हैं, दर्द, ज्यादती और लापरवाही की ये कहानी वहीं से शुरू होती है। वरना घर के दरवाजे से कुछ दरिंदे किसी महिला को आधी रात आखिर कैसे उठा ले जाते, कैसे उसके साथ गैंगरेप करते और कैसे इस वारदात के पूरे 6 दिन बाद डॉक्टर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से लकड़ी का टुकड़ा, गोली और पत्थर जैसी चीजें बरामद करते। दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाने वाले इस केस का एक एक सच आपको अंदर से हिला देने के लिए काफी है। सुनने में अजीब लगता है, यकीन करना मुश्किल होता है, मगर क्या करें, जब पुलिस समेत पूरे के पूरे सिस्टम को ही लकवा मार जाए तो इंसानों को हैवान बनते कहां देर लगती है। आप भी सुनिए और सोचिए कि बिहार में कानून कहां ऊंघ रहा है और कैसे काहिल पुलिस, सरकारी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पूरा का पूरा सिस्टम ही गुनहगारों के साथ खड़ा दिखता है।
6: सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके, शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए, मुंह बांध कर ब्लाउज फाड़ कर हाथ बांध दिए, तेरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए, अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी पांचों करने लगा डेढ़िया।
7: मैं किया तो उसी का बाथरूम में से भोर पंजा पकड़ कर निकाल लिया, से बोला हमको गोतनी, निकालने के बाद तू देखे तो बोला जे इसका शरीर में ने कुछ घुसा हुआ था, घुसा दिया हुआ था, इतना गो इकले थे गोली वाला धना एक से छेद थे।
5: मामला सिर्फ गैंगरेप और दरिंदगी का नहीं है बल्कि पुलिस की संवेदनहीनता और डॉक्टरों की घनघोर लापरवाही का भी है। ऐसी संवेदनहीनता जिसमें वर्दी वाले पीड़ित महिला और उसके घरवालों को रिपोर्ट लिखने की जगह थाने से डांट कर भगा देते हैं, और ऐसी लापरवाही जिसमें डॉक्टर महिला की ठीक से जांच किए बगैर ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं और वो पूरे 6 दिनों तक अपने प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा, गोली और पत्थर जैसी सख्त और खतरनाक चीजें लिए तड़पती रहती है। मामला बिहार के बेगूसराय जिले के चकिया थाने के एक गांव का है। 11 जून की रात करीब 11:30 बजे जब महिला अपने घर से बाहर वॉशरूम जाने के लिए निकली तो उसी गांव के 5 दरिंदों ने उसके साथ ज्यादती की। पहले उसे दबोचा और फिर उसी के कपड़े उतार कर उसके हाथ पांव और मुंह पर बांध कर गैंगरेप किया। हद तो ये है कि घर वाले महिला को बचाने ना आ सके, इसके लिए वो उसके घर के दरवाजे को भी बाहर से बंद कर देते हैं और गैंगरेप करने, ब्लेड से काटने और तब आखिर में उसके प्राइवेट पार्ट में खतरनाक चीजें डालकर उसे मरने के लिए तड़पता छोड़कर फरार हो जाते हैं।
6: अतरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी पांचों करने लगा डेढ़िया। करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रू रहे थे, ब्लेड से काटने लगा, ब्लेड से काटने लगा, चाटियों से मारते थे, ब्लेडों से मारते थे, छाती में भी ब्लेड मार दिया या जांघ भी ब्लेड मार दिया।
4: किस अवस्था में यहाँ पे थी आपकी गोतनी?
7: तो मुंह बना हुआ था, हाथ उल्टा कर बना हुआ था, तो कुछ नहीं था देह शरीर में, कपड़ा उपड़ा नहीं था, ब्लेड से चिरा हुआ था छाती, हाथ, जांघ, पेट चिरा हुआ था, शरीर में कपड़ा भी नहीं था, वही कपड़ा खोल कर वही कपड़ा से मुंह बना हुआ था, ब्लाउज से दोनों हाथ उल्टा कर बना हुआ था।
5: गैंगरेप वाले दरिंदे अगर इंसानियत के सबसे बड़े गुनहगार हैं, तो ऐसे गुनहगारों की करतूतों से आंखें फेर लेने वाली पुलिस और डॉक्टर भी उनसे कुछ कम दोषी नहीं। अब देखिए ना, जिस पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात होती है वो अस्पताल पहुँचने से पहले ही पुलिस के पास जाती है, ये उम्मीद लिए कि पुलिस फौरन एक्शन में आएगी, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मगर पुलिस महिला और उसके घर वालों की सुनवाई करने की जगह उल्टा उन्हें ही डांट फटकार कर थाने से भगा देती है और इतने संगीन मामले में भी एफआईआर दर्ज करने में उसे 2 दिनों का वक्त लग जाता है।
7: जैसे वहाँ गए ना थाना, तो वहाँ बोले जाइए पहले अस्पताल जे इलाज कराइए, साथ में नहीं गए तो प्रशासन।
4: अस्पताल में पहुँची थी पुलिस?
7: नहीं।
4: तो आवेदन कैसे दिए, कहाँ पे जाके?
7: आवेदन वहाँ से आए पर्सन जिसका घसात घटना हुआ, आए दूर जाके बाद तकर बाद गए तब आवेदन दिए।
4: पहले भी ऐसा घटना किया था?
8: ऐसा 2-3 महीना पहले किया था घटना, उसको बराबर दिया, 5 को आवेदन दिया, बराबर केस नहीं ले रहा था, बोला झूठे बोलता है, कहिए तो बराबर केस नहीं ले रहा था, उसके बाद बोला बोले गया बराबर थाना में, तब के जाओ ध्यान लेकर आवेदन जाते थाना तो बड़ा बाबू गरिया के भगा जाते थे, जाओ यहाँ से, तो 5 को सौ आवेदन दिया बड़ा बाबू के, मगर बड़ा बाबू नहीं ले रहा था।
5: फिलहाल महिला के साथ हुई इस ज्यादती का सच सामने आने के बाद बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस की काहिली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ऐसी भयानक वारदात के 8 दिन बाद भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पुलिस गुनहगारों की धर पकड़ तो दूर, उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकी है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
12: But 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
15: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
14: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने शिंदे और उद्धव, बोले शिंदे ये सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी डीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की। यूथ सम्मेलन में पीएम का युवाओं को मंत्र, कहा रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान, केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर 2400 करोड़। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचाने के लिए मेलोनी ने लगाई थी गुहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: शिवसेना ने मनाया अपना 60वां स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे दोनों गुटों ने अलग अलग रैली की। शिंदे ने उद्धव गुट पर साधा निशाना, बोले हमने बाला साहब के सपनों को किया पूरा, महायुति मजबूत, हमें और फडणवीस को अलग करने की कोशिश नाकाम। शिंदे ने उद्धव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उद्धव का शिंदे पर पलटवार, राज्य में शिंदे सेना से परेशान बीजेपी, अराजकता की ओर देश। उद्धव गुट ने विरोधियों को दिया संदेश, शिवसेना कोई व्यापार नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की विचारधारा, बाला साहेब की ने आज जुनीव रखी थी अडिग। महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन, राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी। यह मशीन रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम घटकों का उत्पादन होगा संभव। रिलायंस कंपनी की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दी स्वीकृति, मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का किया स्वागत। गुजरात के अहमदाबाद में गैस एजेंसी में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 घायल, फायर ब्रिगेड ने 30 सिलेंडर बाहर निकाले। गुजरात के वलसाड़ में कबाड़ में भीषण आग, दमकल की टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई, कोई जनहानि नहीं। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल में भीषण आग, कागज के ढेर में लगी आग ने लिया विकराल रूप। जामनगर में बेजुबान कुत्ते पर हॉकी स्टिक से हमला, पशु प्रेमियों में आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल कार्यक्रम में डांस वीडियो पर विवाद, प्रबंधक ने पुराना बताते हुए सफाई दी। महाराष्ट्र के ठाणे में पिज्जा खाने से 59 लोगों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। कंपनियों के पास पहले से खरीदा महंगा क्रूड होने से तुरंत नहीं घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रैफिक बढ़ने से सप्लाई में लगेगा समय, कुछ महीने बाद मिलेगी आपको राहत। 2025 में स्विस बैंक्स में भारतीयों की जमा रकम घटकर 8% घटकर 36,793 करोड़ रुपए हुई, वैश्विक स्तर पर विदेशी ग्राहकों की जमा रकम में गिरावट। दक्षिण महाराष्ट्र में मॉनसून रुकने से देश भर में अभी तक 41% कम हुई बारिश, मध्य भारत में 67%, पूर्वोत्तर में 42% कम बारिश। पीएम की अपील, 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद एक महीने में सोने का आयात 70% घटा, लेकिन गोल्ड की ऊंचे कीमतों के असर से आयात के कुल मूल्य में बढ़ोतरी। 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.5% बढ़कर 21.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा, कॉरपोरेट टैक्स में 22% की बढ़ोतरी के बाद 89,000 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया गया। सलमान खान की फिल्म काला हिरण पर रोक की याचिका पर 1 जुलाई तक सुनवाई टली, फिल्म मेकर अमित जानी ने दाखिल करने के लिए समय मांगा। सिनेमाघरों में रिलीज रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन का लीड रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने बड़े पर्दे पर दी दस्तक, अंकित यादव, जया भट्टाचार्य लीड रोल में। बच्चों के लिए टॉय स्टोरी 5 हुई रिलीज, डिज्नी और पिक्चर की मशहूर फ्रेंचाइजी का पांचवा पार्ट। क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी रिलीज हुई, असरानी जरीना वहाब नजर आए।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर विरासत वाली राजनीति देखने को मिली। एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव में आयोजित समारोह में ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर हुंकार भरते हुए कहा, ऑपरेशन करने के लिए टाइगर का दिल होना चाहिए क्योंकि भेड़िया ऑपरेशन नहीं कर सकता। शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे बोले, मैंने बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया, जबकि उद्धव ठाकरे राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बाल ठाकरे का अपमान करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठ गए।

0: पेशे से कार्टूनिस्ट रहे पाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी, जिसका शुरुआती मकसद मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और उसके दो टुकड़े हो गए। इसीलिए आज शिवसेना के दोनों गुटों ने पाल ठाकरे को अपना आदर्श बताते हुए स्थापना दिवस समारोह मनाया। शिंदे कैंप ने गोरेगांव के नेस्को में जश्न मनाया तो उद्धव गुट ने सायन में स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया।
1: ये मंच जो है ये सजा हुआ है सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि शिवसेना का 20वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका देने में एकनाथ शिंदे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जब 40 विधायक टूटे थे उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे, और आज 4 साल बाद फिर एक बार 9 में से 6 सांसद जो है वो टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की बात चल रही है।
0: शिंदे कैंप तो 4 साल से शिवसेना का स्थापना दिवस अलग से मना रहा है, लेकिन इस बार ऑपरेशन टाइगर की सफलता की वजह से पूरी शिवसेना में अलग ही जश्न का माहौल दिखा। अपने संबोधन में शिंदे ने हुंकार भरी, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
2: बाळासाहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
0: शिंदे ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले एनडीए मीटिंग में पीएम मोदी को 12 साल पूरे होने और सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने के लिए बधाई देने का मौका मिला था, इसीलिए उन्होंने सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से खड़े होकर पीएम मोदी को बधाई देने की अपील की।
2: मोदी जिनसे अभिनंदन करू या बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की।
0: शिंदे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपकी मेहनत ने शिवसेना को हर घर, गांव और पूरे राज्य में पहुंचाया है। हम अब हाल ही में हुए सभी राज्यों में चुनाव में दूसरे नंबर पर हैं। शिंदे ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर साझा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्होंने बाला साहब की बुराई की उद्धव उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। शिंदे बोले एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को तोड़ा और अब उद्धव उनकी गोद में ही बैठे हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद साबित करने में जुटे हैं, लेकिन हम मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं।
2: आज मैं 2.5 वर्ष काम केला, महाराष्ट्र पुढे नेला, देवेंद्र जी आता काम करता है, आम्ही टीम म्हणून काम करतोय, आमचा अजेंडा एकच, महाराष्ट्राची प्रगती।
0: शिंदे ने कहा उनका कोई गॉडफादर नहीं था, बस बाला साहब नाम की एक ताकत मेरे पीछे थी और इसी ताकत ने उन्हें शाखा प्रमुख के पद से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया।
2: बाला साहब ने देखील माझ्यावर प्रेम केलं, तेही सोडून गेले, आज माझा परिवार प्रपंच हे व्यासपीठावर बसलेले माझे नेते आणि या महाराष्ट्रातली तमाम जनता हे माझं कुटुंब, माझा परिवार। राम मंदिराची उभारणी।
0: शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची भगदड़ पर तंज कसते हुए कहा कि ऑपरेशन करने के लिए टाइगर का दिल होना चाहिए, क्योंकि भेड़िया कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता।
2: अरे तो कंपाउंडर है ना, कंपाउंडर कसा ऑपरेशन करना, इधर श्रीकांत शिंदे खरा डॉक्टर है, पण मी डॉक्टर नसलो तरी अजूनही ऑपरेशन करतो।
0: उद्धव ठाकरे के जिन 6 सांसदों ने बगावत की है, अब वो 24 घंटे के अंदर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थामने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन टाइगर को खुद शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में बैठकर लीड किया।
3: तो इच्छा है कि जो खासदार उद्धव जी के साथ में थे, आज वो हमारे साथ में आने का निर्णय लेने वाले है या शायद ले चुके हैं, आज ही हमारे इस माध्यम से, आज हमारा 60th वर्धापन दिन है, इस दिन के माध्यम से आज वो हमारे पक्ष में शामिल हुए।
0: स्थापना दिवस के मौके पर शिंदे की मुस्कुराहट के पीछे उनकी पार्टी का विस्तार और एनडीए में उनके बढ़ते कद की खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी।
4: जब वो समय आएगा उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन अभी तो कल की जो मीटिंग हो गई थी यूबीटी की, यूबीटी के मीटिंग को ये सब जन नहीं थे, इसमें ये हमारा सक्सेस है।
0: शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद शिंदे की शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। ऐसी खबर है कि 20 या 21 जून को दिल्ली में सभी बागी सांसद खुद आधिकारिक तौर पर शिंदे कैंप में जाने का ऐलान करेंगे।
1: जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूटने के बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज शिवसेना का 20वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है। मैं मुंबई के गोरेगांव के नेस्को सेंटर में हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
0: शिवसेना नेताओं का जोश हाई दिख रहा है। सभी कह रहे हैं कि शिंदे के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है कि कोई बड़ा नेता उद्धव के साथ नहीं रहना चाहता।
5: आज शिवसेना की स्थापना को 60 साल होने को हैं। 1966 में 19 जून को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, और जब उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी तब उनकी एक ही कल्पना थी कि पूरे महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र के जन जन का विकास हो। तो आज जब हम गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में शिवसेना का स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तब साथ साथ महाराष्ट्र का विकास भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: शिवसेना विधायक मुरजी पटेल बोले, ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद अब ऑपरेशन टाइगर 3 और 4 भी शुरू होगा।
6: उधर गोरेगांव में शिंदे गर्जे तो सायन से उद्धव ठाकरे ने स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी और शिवसेना पर साझा प्रहार किया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत पर कहा कि मैं मतदाताओं से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमें वोट दिया लेकिन हमारे 6 सांसद धोखा देकर चले गए। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा, मैं किसी को भी शिवसेना प्रमुख बनाने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वहीं उद्धव ने अपनी पार्टी में कांग्रेस में विलय वाली अटकलों को पूरी तरह से नकार दिया।

0: शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह में उद्धव ठाकरे ने फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी। जब सायन के षणमुखानंद हॉल में उद्धव जूनियर ठाकरे और अपनी पत्नी के साथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया, तो जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: उद्धव साहब आगे बढ़ो, अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
0: उद्धव और आदित्य ठाकरे ने स्थापना दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पार्टी में टूट की खबरों से निराश ना हो, अपना टाइम आएगा।
2: स्वागत। 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही। तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याची त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल। मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाहीये, मी आता हे पद सोडायला तयार आहे।
0: आदित्य ठाकरे ने भी बागियों पर तंज कसते हुए कहा कि असली शिवसैनिक अपने सियासी फायदे के लिए दूसरों की पीठ में छुरा नहीं मारते। अपने 6 सांसदों की बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखने की कोशिश करते रहे, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई बना रहे। उद्धव के आने से पहले भी पार्टी के गीतों पर यूडीटी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस बार शिवसेना यूबीटी का स्थापना दिवस ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी में टूट हो रही है। बाला साहब ठाकरे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बाद उनकी पार्टी में 4 साल के अंदर 2 बार बड़ी टूट होगी।
3: मुंबई के षणमुखानंद हॉल में इस वक्त मौजूद है, पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है महाराष्ट्र में जिसमें 2 फाउंडेशन दिवस मनाए जाते हैं, और उसमें जहाँ पर नेस्को गोरेगांव में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का मनाया जा रहा है फाउंडेशन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना ने अपने 6 MP खोए हैं इस फाउंडेशन डे से पहले। एक 2/3 split जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आप कह सकते हैं आने वाले समय में लोगों के किस तरह से बातें होगी और आगे शिवसेना का रुख क्या रहता है, ये काफी जानना दिलचस्प है। सर आप कहाँ से आए हैं, महाराष्ट्र में कहाँ से आए?
4: महाराष्ट्र तो नामी नासिक मधुन है, नासिक राजा भाऊ वाजे जो है हमारे नासिक के एक निष्ठे है वो शिवसेना के साथ में रहे और उनके आंख में कल आंसू भी आए थे जब खासदार संजय राउत साहब बोल रहे थे, उनको आदरणीय बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे इनके नेतृत्व है उनका स्वीकार करके नासिक के जनता ने भारी वोट से राजा भाऊ वाजे को चुन के लाया। तो हमारे खासदार जो है वो भगोड़े नहीं है, हमारे खासदार एक निष्ठ है जिनका नाम वी प्राउडली लेते हैं हम लोग, वो राजा भाऊ वाजे हैं।
0: पार्टी में बगावत पर शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव ने आरोप लगाया कि सभी संवैधानिक संस्थाएं और एजेंसियां बीजेपी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं।
5: ऐसा है कि उद्धव जी ठाकरे की कार्य पद्धति पसंद है नहीं है ये पार्टी छोड़ के जाने के बाद जानकारी होती है क्या? तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए आमने सामने बैठ के, तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए जो भी गलती है वो गलती सामने बयान करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये पार्टी छोड़ के जाने के बाद में जो लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं वो लोग मर्द नहीं होते। अरे तो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब भाजपा की ब्रांचेस बन गए हैं।
0: शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने कहा कि जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की है उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।
6: आज शिवसेना के 60 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं फाउंडेशन डे के। इस वक्त एमपी शिवसेना यूपीटी के अनिल देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, एक तरफ 60 साल पूरे हो रहे हैं शिवसेना के लिए, दूसरी तरफ चैलेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बढ़ रहे हैं। पार्टी का सिंबल गया, पार्टी डिवाइड हुई, उसके बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के लाए गए थे उसमें से भी 2/3 डिवाइड हो गया। कैसे ऐसा शिवसेना आप देखते हैं आगे की जर्नी?
7: देखिए, ये जो 60th हमारा फाउंडेशन डे है, ये अपने आप में एक उत्सव की तरह रहता है। इस उत्सव के आयोजन में, इस उत्सव के जिस तरह से ये मनाया जा रहा है, उसमें कोई ये कोई आए कोई गए और ये सब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। शिव सैनिक जो उनके अंदर एक ऊर्जा है, जो एक उनके अंदर उत्साह है, वो आप देख रहे हैं बाहर भी। तो इस दिन पूरे महाराष्ट्र में ये उत्साह देखने मिलेगा। जो बातें हुई है, जो हो रहा है, सिंबल गया नहीं है, नाम गया नहीं है, क्योंकि SLP वहां पे है और सुप्रीम कोर्ट न जाने किन कारणों के वजह से लेके बैठी है, जहां से इन लोगों को चुन के दिया था वहां पे किस तरह का लोगों में संताप देख रहे हैं। आज लोग उनका जो मतदार संघ है, लोकसभा क्षेत्र है, उसमें आप देख रहे हैं कि लोग कितने रेस्टिवनेस यू मस्ट हैव सीन। ये सब जो अंगार है, ये अंगार लोगों के दिल में, क्योंकि इन्होंने प्रताड़ना की है।
0: वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पार्टियों में टूट इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है।
8: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
11: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers, with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
14: जो सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का अध्यक्ष नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकवा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग है, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
15: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
14: देखेंगे कोर्ट। चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
15: सर जिस दिन
14: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

भारत में जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की विशेष पहल। पीएम ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद, बनारसी सिल्क स्टोल शामिल। यूथ सम्मेलन में पीएम का मंत्र, रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान। केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ रुपए। आज और कल पीएम पश्चिम बंगाल ओडिशा के दौरे पर। हुगली में तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर, चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था सुधारने का दावा किया। बोली, पश्चिम बंगाल में विजय भारी, अब पंजाब की बारी। हरिद्वार नगर निगम में 56 करोड़ की जमीन खरीद घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। विजिलेंस जांच में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के आरोप सिद्ध। सीएम धामी ने तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त करा। डीएम के लिए मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की। बोले, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। हरिद्वार में सीएम धामी ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों का आशीर्वाद लिया। कुंभ को दिव्य भव्य बनाने का आह्वान किया। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी 20 याचिकाएं। मानसून सत्र से पहले निर्णय सुनाएंगे ओम बिरला। कोलकाता में 21 जुलाई 2025 का

आर्ट्स म्यूजियम का लोकार्पण। 8000 वर्ग फीट में फैले म्यूजियम में श्रीराम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के दिव्य रूपों की झलक। संबोधन के दौरान अयोध्या को बदनाम करने वालों पर बरसे योगी। राम जन्मभूमि पर बिना प्रमाण आरोप लगाने वालों की होगी मुसीबत। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी बोली, 500 वर्ष इंतजार किया तो 15 दिन और कर लो, एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में कोताही, पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान से पूजा अर्चना की, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। मां कामाख्या मंदिर में भी सीएम योगी ने की पूजा, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर अखिलेश का कटाक्ष, कहा किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी एसआईटी जांच। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, दोनों दलों के बीच धक्का मुक्की हुई और नारेबाजी हुई। मऊ कार्यक्रम के दौरान शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी से बड़ा विवाद, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। मऊ में ट्रेन उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे पर अखिलेश ने बीजेपी पर बाहरी अपराधियों को संरक्षण देने, माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पटना शहर से बाहर होंगे सभी कोचिंग संस्थान, सीएम सम्राट चौधरी का सैटेलाइट टाउनशिप और एजुकेशन हब बनाने का बड़ा ऐलान। बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट ने छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, रेल मंत्री बोले आने वाले 7-8 वर्षों में बिहार को मिलेंगी 200 से अधिक ट्रेनें। पटना को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी सौगात, हार्डिंग रोड पर बनेंगे 5 नए प्लेटफॉर्म। बिहार टेंडर घोटाला जांच में बड़ी कार्रवाई, आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के बेगूसराय में महिला से गैंगरेप के मामले में डीआईजी का बड़ा एक्शन, थाना प्रभारी सस्पेंड, जांच के लिए एसआईटी गठित, दोबारा होगा मेडिकल। बेगूसराय गैंगरेप पर पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की बात कही, पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बिहार के आरा एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस कार्रवाई पर बीजेपी नेताओं ने उठाए सवाल। शिवसेना ने मनाया अपना 60वां स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे दोनों गुटों ने अलग अलग रैलियां की। शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले हमने बाला साहब के सपने को किया पूरा, महायुति मजबूत है, हमें और देवेंद्र फडणवीस को अलग करने की कोशिश होगी नाकाम। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया तीखा हमला, बोले ये सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। शिंदे को उद्धव का पलटवार, कहा राज्य में शिंदे सेना से परेशान बीजेपी, अराजकता की ओर देश। उद्धव ने विरोधियों को संदेश दिया, कहा शिवसेना कोई व्यापार नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे ने की रखी नींव आज भी अड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन की भूमि पूजन, राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। ये मशीन रक्षा और एयरोप्रेस निर्माण में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम घटकों का उत्पादन होगा संभव। रिलायंस की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आईपीओ को दी स्वीकृति, मुकेश अंबानी ने किया स्वागत। दिल्ली को मिला पहला ऑल वुमेन पुलिस थाना, एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधू ने किया उद्घाटन। झारखंड के रांची में भारतीय सेना के ऑपरेशन दृष्टि के तहत सबसे बड़े आई सर्जिकल कैंप का आयोजन, 320 से अधिक लोगों की मुफ्त नेत्र सर्जरी। हरियाणा सरकार ने 13 नए एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, अब इनकी संख्या बढ़कर 21 हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर जैनेन्द्र जैन को कॉम्पोजिट फॉर्मियॉन्स खोज के लिए मिला वुल्फ पुरस्कार, यरूशलेम में इसराइल के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रय का किया वीडियो जारी,

कल नेवी में 3 स्वदेशी युद्धपोत होंगे शामिल। देश भर में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। दिल्ली के शिव नंदा योग वेदांता नटराज सेंटर में कई लोगों ने किया योग। श्रीनगर में भी स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अंबाला में हजारों लोगों ने एक साथ किया योग अभ्यास। योग साधकों में जबरदस्त उत्साह। लद्दाख में सेना के जवानों ने योग किया। स्कूल में जागरूकता और प्रैक्टिकल सेशन हुआ। योग पर जोर। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से पवित्र यात्रा। बागेश्वर की प्रेमा रावत का भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप में चयन। गांव की बेटी के चयन पर लोग खुश। गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। श्रीनगर के डल झील पर मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ा। तीस्ता नदी उफान पर। बांग्लादेश सीमा तक येलो अलर्ट। दार्जिलिंग कालिंपोंग कोचबिहार उत्तर बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट। कोलकाता में मूसलाधार बारिश पानी भरा। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क जाम। 24 परगना में भारी बारिश से जलमग्न। लॉकअप से लेकर रूम तक पानी। पुलिसकर्मी बाहर बैठकर काम करने को मजबूर। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में पानी भरा। यातायात हुआ प्रभावित। गुजरात के अहमदाबाद में गैस एजेंसी में सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट। आग में 2 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड ने 30 सिलेंडर बाहर निकाले।

गुजरात के वलसाड़ में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल में लगी भीषण आग, कागज के ढेर में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भयंकर आग, काले धुएं का गुबार ताजमहल तक पहुंचा, पर्यटकों को सांस लेने में परेशानी। झांसी ललितपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ट्रक की टक्कर, 26 यात्री घायल, 9 की स्थिति गंभीर। बिजनौर टोल प्लाजा पर बैरियर खुलने में देरी से भड़के कार सवार महिला कर्मचारी से गाली गलौज की, विरोध करने पर गार्ड को कार से कुचला। ग्रेटर नोएडा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का वीडियो वायरल, फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। यूपी के संत कबीर नगर में युवक की गला काटकर हत्या से रूश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से किया इनकार। बगहा में मासूम को बचाने की कोशिश में ट्रक चालक ने खोया नियंत्रण, सड़क किनारे होटल संचालक को मारी टक्कर, हुई मौत। कानपुर देहात में पूजा के बहाने महिला से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, हरिओम महाराज समेत कई पर FIR दर्ज। हरिद्वार में युवकों को चलती कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी करना पड़ा भारी, पुलिस ने 5 गाड़ियों को किया सीज। कानपुर में पुरानी रंजिश में रिटायर्ड दारोगा की बेटी की गोली मारकर हत्या, 3 पर केस दर्ज। बिजनौर में भाई की शादी का कार्ड बांटने निकले युवक की डंपर से कुचलकर मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में शादी के 1.5 महीने बाद पत्नी पर धमकी और 5 लाख रुपए मांगने का आरोप, युवक ने पुलिस में शिकायत की। पठानकोट के 18 वर्ष के किशोर की न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मौत, अचानक बेकाबू घोड़ा बग्घी से गई जान। इंदौर में परिजनों से वीडियो कॉल पर बात करने के तुरंत बाद बिल्डिंग से कूदी नीट अभ्यर्थी, हुई मौत। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल में डांस वीडियो विवाद, स्कूल प्रबंधन ने पुराना बताते हुए सफाई दी। महाराष्ट्र के ठाणे में पिज्जा खाने से 59 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के पाटन में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद युवक की मौत, हाईवे किनारे खेत में लटका मिला शव। गुजरात के जामनगर में बेजुबान कुत्ते पर हॉकी स्टिक से हमला, पशु प्रेमियों में आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग। सलमान खान के फिल्म काला हिरण पर रोक की याचिका पर 1 जुलाई तक सुनवाई टली, फिल्म मेकर अमित जानी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सिनेमाघरों में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने बड़े पर्दे पर दी दस्तक, अंकित यादव और जया भट्टाचार्य लीड रोल में। खासतौर से बच्चों के लिए टॉय स्टोरी 5 हुई रिलीज, ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट। क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के ज्वेलर हैं भी हुई रिलीज, असरानी और जरीना वहाब आए नजर। कंपनियों के पास पहले से खरीदा महंगा क्रूड होने से तुरंत नहीं घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रैफिक बढ़ने से नई सप्लाई आने में लगेगा समय। 2025 में स्विस बैंक्स में भारतीयों की जमा रकम घटकर 8% घटी, 36,793 करोड़ हुई, वैश्विक स्तर पर विदेशी ग्राहकों की जमा रकम में गिरावट। दक्षिण महाराष्ट्र में मॉनसून रुकने से देशभर में अभी तक 41% बारिश कम हुई, मध्य भारत में 67%, पूर्वोत्तर में 42% बारिश कम। पीएम मोदी की अपील पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद एक महीने में सोने का आयात 70% घटा, लेकिन सोने के ऊंचे दाम के असर से आयात के कुल मूल्य में बढ़ोतरी हुई। 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% बढ़कर 5.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा, कॉरपोरेट टैक्स में 22% की बढ़ोतरी के बाद 89,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला, खार्किव ओडेसा में गाइडेड एरियल बॉम्ब से अटैक, दोनों हमलों में 1-1 की मौत, 4 बच्चों समेत 10 से अधिक घायल। जेलेंस्की ने पुतिन को कहा मैडमैन, ऑडियो संदेश में पुतिन पर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। क्रेमलिन प्रवक्ता ने किया ऐलान, पेस्कोव बोले रूस यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार, लेकिन दबाव नहीं बराबरी की बातचीत। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में दूसरे दिन यूरोपीय संघ के नेताओं का शिखर सम्मेलन, भविष्य के बजट वित्तीय प्राथमिकताओं पर नेताओं ने की चर्चा। ईरान अमेरिका सीज़फ़ायर समझौते के बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिका और इसराइल को दी सख्त चेतावनी। दक्षिण लबनान पर इसराइल का भीषण हमला, 4 सैनिकों समेत 18 की मौत, बमबारी में कई घरों को नुकसान। लबनान में बढ़ते युद्ध को देखते हुए तेज हुआ पलायन, सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन, लोग जा रहे हैं बाहर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे का समाधान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तैयार।
इटली की पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को खारिज किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए गड़गड़ा रही थी। यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 35 डिग्री तापमान।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम सिर्फ नाम नहीं, भगवान श्री राम आस्था है। राम इस देश का विश्वास है, सदियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों का बलिदान और न जाने कितनी आंखों के आंसुओं से सींच कर भव्य मंदिर की चौखट खड़ी हुई। इस देश में सुबह की पहली किरण राम राम से फूटती है और जीवन का अंतिम सफर भी इसी नाम के सहारे पूरा होता है। राम नाम सत्य है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक क्षण में राजपाट को तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग की उस पराकाष्ठा के घर में कुछ धूर्त, दरिद्र और महापापियों ने डकैती डाल दी। सोचिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए एक भिखारी तक ने अपनी दिन भर की भिक्षा सौंप दी थी, कचरा बिनने वाली मां ने अपनी सीने से लगाकर रखे चंद सिक्के प्रभु के चरणों में रख दिए थे, ये सोचकर कि ये राम काज है। श्री राम की भक्ति में लीन भक्त धन नहीं, अपने भाव दान पात्र में समर्पित करते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो अपने आराध्य, अपने प्रभु के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं। लेकिन चंद रुपयों के भूखे अंतरात्मा से कंगालों ने करोड़ों राम भक्तों के भरोसे पर डाका डाल दिया है। अभी तो SIT की जांच आनी बाकी है, लेकिन कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे लोग लगा रहे हैं जो इस मंदिर से जुड़े रहे हैं, उसके निर्माण से जुड़े रहे हैं, उसमें काम करते रहे हैं। ये सिर्फ धन की हेराफेरी नहीं है, ये सनातन की आत्मा पर आघात है। ये सिर्फ भक्तों के साथ छल नहीं, साक्षात नारायण से दगाबाजी है। राम के घर से चोरी करने वालों, तुम इतिहास के सबसे बड़े कपटी और दरिद्र माने जाओगे। तुम कैसे इस महापाप का प्रायश्चित कर पाओगे? आज हर राम भक्त आहत है, उसके हृदय में वेदना है। रामद्रोहियों को न्याय के कटघरे में खड़ा देखने का इंतजार है और आक्रोश भी। प्रभु राम के दोषियों को ना ये समाज क्षमा करेगा और ना वो कालचक्र जिसके नियंता खुद राघव है। ऐसे पापियों का न्याय जल्द होना चाहिए और कानून के मुताबिक वो दंड ऐसा हो कि कोई भी ऐसा करने के बारे में सोच भी ना पाए। आज रामलला के द्वार पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि 500 साल तक इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार करें, अपराधी कोई भी हो इंसाफ जरूर होगा। आज आपको राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का दूसरा भाग दिखाएंगे और इसके बाद आपको उस MOU के बारे में बताएंगे जो एक दिन भी नहीं चल पाया। ये MOU अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर साइन हुआ था, जिसमें इसको ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक डील के लिए सजाया था, उसे इसराइल ने जंग के मैदान में बदल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन होने के महज 14 घंटे बाद ही बातचीत खटाई में पड़ गई। ईरान ने स्विट्जरलैंड प्रतिनिधि मंडल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। आरोप है कि इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतने बम बरसाए कि पूरी डील ही बारूद में उड़ गई। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भारत के लोग अब कम सोना खरीद रहे हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक देश का सोना आयात इस महीने में करीब 70% तक घट गया है। पहले जहां हर महीने 75 से 100 टन सोना इंपोर्ट होता था, वहीं अब यह आंकड़ा सिमट कर सिर्फ 25 से 30 टन रह गया है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और ये तस्वीरें लेबनान, गाजा या फिर ईरान की नहीं है। जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडल ईस्ट, खाड़ी देशों पर है, तब देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध की आग ने भयानक रूप ले लिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर मॉस्को भी जलेगा। ये सारी तस्वीरें रशिया की राजधानी मॉस्को से आ रही हैं, जहां यूक्रेन ने इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। CNN तो अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि यूक्रेन ने जितना बड़ा हमला रशिया पर किया है, उतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले की संजीदगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि मॉस्को में जो 4 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें शेरेमेत्योवे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी शामिल है, जो मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने पूरे देश पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स, कुल 4 क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। 7 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रशिया की राजधानी में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अब तक कुल 194 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर चुका है। और यह सब होने के बाद यूक्रेन मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाने में कामयाब हो गया है। इसे कापोतनिया तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर है।
और क्रेमलिन वही जगह है जहां से राष्ट्रपति पुतिन रशिया की सरकार चलाते हैं। क्रेमलिन वही जगह है जहां पर हमने जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आज ये सब हो रहा है। देखिए,

यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान की आशंका है। जिस वक्त इस तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल टैंक का ढक्कन हवा में उड़ गया, तब मॉस्को में दहशत फैल गई। काले धुएं का गुबार और जलते हुए तेल के कण और काले हवा में घुलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो तेल के यही कण बारिश के साथ नीचे गिरने लगे, जिसे स्थानीय लोगों ने ब्लैक रेन बताया है। हालांकि रशिया की सरकार ने ब्लैक रेन होने की बात को खारिज किया है। यह कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए,

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसके मुताबिक अमेरिका के बाद रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 20वें स्थान पर आती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों पर हमले किए हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर है और इस दौरान बीच में रशिया ने कई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रशिया के रक्षा कवच को भेदने में ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि रशिया से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए,

यूक्रेन के हमलों के बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए 239 आत्मघाती ड्रोन्स, 7 क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी, जिनमें यूक्रेन को दूसरी तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन की हालत देखिए।

0: Salí más en mejorar.
1: अब ये समझिए कि ये युद्ध अचानक से क्यों भड़का, इसका ईरान युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है। असल में यहां भी भारी लड़ाई तेल की है। ईरान युद्ध के कारण रशिया के कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जो रशिया पहले प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल सिर्फ कुछ देशों को बेच रहा था, वो अब कई देशों को तेल की आपूर्ति कर रहा है। भाई खाड़ी देशों में ऐसी हालत है, मिडल ईस्ट से तेल जा नहीं रहा था, ऐसे में रशिया के लिए कमाई का मौका आया। इसके कारण कच्चे तेल के निर्यात में अमेरिका के बाद रशिया दूसरे स्थान पर आ गया और स्थिति यह है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल रशिया का बिक रहा है। और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है। यूक्रेन को लगता है कि अगर रशिया तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो ये पैसा युद्ध पर खर्च करेगा, युद्ध पर यह पैसा खर्च होगा तो रशिया को यूक्रेन पर एडवांटेज मिल जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। रशिया में कुल 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 24 पर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है और इसकी वजह से रशिया के कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब ये मई महीने में देखिए 89,50,000 बैरल था, जून आते आते 87,00,000 बैरल हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध अचानक से और भड़कने लगी है। और ये युद्ध भड़क रहा है, इस दौरान रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत इस वक्त अपना जो कच्चा तेल है, जानते हैं रशिया से हम कितना ले रहे हैं, 35-40% कच्चा तेल रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये उम्मीद में थे कि अब ईरान युद्ध खत्म होने से कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, तब रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमारी चिंता फिर से बढ़ा दी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब ईरान युद्ध 3 महीने के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध 3 महीने के बाद खत्म हो गया, तो यूक्रेन युद्ध 4 साल से अभी तक जारी क्यों है। इसके पीछे बड़ी वजह है इलाकों की लड़ाई। राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के जिस 20% भूभाग पर कब्जा किया उसे यूक्रेन छोड़ दे, ये इलाके रशिया को मिले, और दूसरी मांग है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तीसरी मांग है कि यूक्रेन की सेना पर कुछ सीमाएं लगे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों मांगे मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कभी तभी खत्म होगा जब रशिया उसके इलाकों को वापस करेगा, यूक्रेन की संप्रभुता सीमाओं को बहाल किया जाएगा और भविष्य में रशिया दोबारा ऐसे हमले ना करने की गारंटी देगा, सुरक्षा गारंटी। इन्हीं सारी बातों पर यह युद्ध अब भी फंसा हुआ है और अब इसने एक नया रूप ले लिया, पूरी दुनिया में ये चिंता की बात पड़ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल ने बड़ा दुख दीना। जिस मेज को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए सजाया था, उस मेज को इसराइल ने अब जंग के मैदान में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू होने के बाद सिर्फ 14 घंटे बीते और 14 घंटे बाद ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड भेजने से ही इनकार कर दिया है। यह वही स्विट्जरलैंड है जहां अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील के लिए 60 दिनों की बातचीत होनी है। आपको याद होगा हमने एमओयू आपको दिखाया था, इस एमओयू में लिखा था कि 60 दिन तक बातचीत करके एमओयू पर जो भी फैसला है उसको फाइनल किया जाएगा और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इसराइल उसकी बात नहीं मान रहा, इसराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद अब बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है कि उसने जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किए उसकी पहली शर्त यही थी कि लेबनान में भी सैन्य संघर्ष को खत्म किया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और इसराइल ने लेबनान में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए तो ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए नो कह दिया। और अब स्थिति यह है कि ना तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भेज रहा है। सुनिए,
2: निश्चित रूप से अगर इसराइल लेबनान पर कोई सैन्य हमला करता है या लेबनान की जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखता है तो हम इसे समझौते का उल्लंघन मानेंगे।
1: ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसराइल लेबनान में अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लेबनान में इसराइल की बमबारी है। अब हालात ये है कि लेबनान के लोग इसराइल के हमलों के कारण पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए,
0: I'm in the center of Kfar Tibnit right now. The entrance of Kfar Tibnit from this side, an artillery strike just targeted the area behind me. As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity. Of course, the destruction, the amount of destruction is very strong. The Israelis did try to destroy the entire area. Destroy the entire area.

0: तो लेबनान से पलायन करते लोग आपने देखे, इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अमेरिका और ईरान की डील तोड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू इस डील को तोड़वा देंगे। उसका कारण यही है कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान के तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहे हैं, उसे उसका जब्त किया हुआ पैसा वापस लौटाया जा रहा है, पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर की योजना बनाई जा रही है, अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जा रहा है। अमेरिका ने यह वादा भी कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। अब ईरान इसराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है और कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अपने कट्टर दुश्मन को बातचीत में जीतता हुआ देखकर इसराइल इस डील को तोड़वाना चाहता है और इसीलिए उसने लेबनान पर हमले जारी रखे। हालांकि इसराइल इन आरोपों से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हिजबुल्ला ने उसकी सेना पर हमले किए जिसमें उसके 4 सैनिक मारे गए और इन्हीं हमलों के बाद इसराइल हिजबुल्ला को अपना जवाब दे रहा है।
1: हम उत्तरी इलाकों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है। जब तक इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता महसूस होगी, हम वहां तब तक मौजूद रहने वाले हैं।
0: तो इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-गवीर ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताएं रोनी चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इसराइल को दुनिया को यह दिखाना होगा कि उसके बेटों का खून, उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जा सकती। और सीधा मतलब यह है कि इसराइल तो अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। चाहे ये डील टूटे या ना टूटे, वो लेबनान में अपनी जंग को जारी रखेगा। और यह बात इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी कही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि क्या वो लेबनान को लेकर थोड़ा नरम रवैया नहीं अपना सकते। ट्रंप की ताजा बाइट सुनिए।
2: You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner. And that's true.
0: तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, बीबी मान जाओ। और बीबी यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा। तो ये चल रहा है मामला। मामला है बारूद बनाम बातचीत का, जिसमें इसराइल बारूद बरसाने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। यहां पर यह भी देखिए कि कई बार वक्त चीजों को कितनी तेजी से बदल देता है। इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका इसराइल साथ हुआ करते थे, जिसे पश्चिमी मीडिया AI फ्रेंडशिप कहता है। अमेरिका, ए का मतलब अमेरिका और आई का मतलब इसराइल। अब इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए इसराइल को किनारे कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत के लिए आतुर दिख रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं कि वो इसराइल के लिए काम करते हैं। तो अब तक उन पर यही आरोप लगा कि वो अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके अपने समर्थक नाराज हो गए। लेकिन अब इसी दाग को धोने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो इसराइल को भी सबक सिखा सकते हैं और इसराइल उनके बिना कुछ नहीं है। यहां आप ये भी समझिए कि इसराइल का असली निशाना हिजबुल्ला नहीं है, उसका असली निशाना अमेरिका और ईरान की पीस डील है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला से कई लड़ाइयां लड़कर देख चुका है और इनमें किसी भी लड़ाई में वो हिजबुल्ला को आज तक खत्म नहीं कर पाया। इनमें भी साल 2006 का जुलाई युद्ध बहुत बड़ा था। उस वक्त हिजबुल्ला ने इसराइल के 3 सैनिकों को मार दिया था और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद 34 दिनों तक चले भीषण युद्ध में लेबनान के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, करीब 4400 लोग घायल हुए थे। इसराइल के भी 158 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई सैनिक थे। उस भीषण युद्ध में हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ, आखिरकार इसराइल को यह युद्ध रोकना पड़ा था। और यहां भी इसराइल ऐसा कर सकता था, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ईरान युद्ध से बाहर निकालने के लिए पीस डील कर लेते हैं, एक MOU साइन कर लेते हैं, वो इसराइल के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान को किसी भी तरह का कोई एडवांटेज मिले और इसी वजह से वो इस डील के खिलाफ है। और अब कहा जा रहा है कि इसराइल इस डील को तुड़वा भी सकता है। यहां आप ये भी देखिए कि अब तक दुनिया में अमेरिका ही अकेला ऐसा देश था जो ये कहता था कि उसके सहयोगियों पर हमला हुआ तो इन हमलों का जवाब वो खुद देगा। नेटो भी तो इसी तर्ज पर बना था, लेकिन अब यही चीज पहली बार ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अगर हिजबुल्ला को मारोगे या यमन में हूती को मारोगे या इराक में सबसे बड़े मिलिशिया ग्रुप को मारोगे तो वो इन हमलों को खुद पर हुआ हमला मानेगा। और वो कह नहीं रहा है, वो सीधा वापस ही हमला कर रहा है और इनका जवाब अपनी मिसाइलों से देगा। तो ये सारी चीजें इस युद्ध से बदली हैं और इससे दुनिया पर अस्थिरता का एक नया खतरा भी मंडराने लगा है। खैर, इन सबके बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना एक और दुश्मन बढ़ा लिया और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ये कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, पर बाद में उन्हें उन पर तरस आ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा ली। इसका ये वीडियो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इटली का अपमान किया है। सुनिए,
3: कुछ बातों का तुरंत जवाब देना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूं तो मैं हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि ये निराशाजनक है कि वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वही सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके नेताओं के साथ कहीं अधिक नरमी से पेश आते हैं। उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि ना मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं।
0: खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ हुआ उसे चोरी कहा जाए या उसे लूट कहा जाए, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चोरी चुपचाप की जाती है, लूट सबके सामने होती है। 7 जून को जब पहली बार ये आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है। जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर सीसीटीवी वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी VVIP पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी SIT के शक के घेरे में है, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को SIT ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। सुनिए,
4: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: अब तक ये चोरी साबित नहीं हुई है, सच है, लेकिन सोचिए अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो ये चोरी किसके पैसों की होगी। हकीकत तो ये है कि मंदिर की दान पेटियों में गिरने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, इसे श्रद्धा कह सकते हैं, इसे प्रार्थना कह सकते हैं, इसे उम्मीद कह सकते हैं, भगवान पर विश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन मेहनत से कमाई अपनी जमा पूंजी को मंदिर में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन सोचिए अगर इस पैसे को चोरी कर लिया जाए तो ये भगवान के साथ, भगवान पर लोगों के विश्वास की कितनी बड़ी चोरी है। कोई महिला अपने गले का हार ऐसे ही निकाल कर चढ़ावे में भगवान के सामने भाव विभोर होकर दान कर देती है, कोई अंगूठी उतार कर डाल देता है, कोई पैसा, कोई कमाई, सब कुछ भगवान पर लुटाता है। यहां यह भी सोचिए कि इस घटना के बाद जब अगली बार कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा, मंदिर में दान करेगा, तो उसके मन में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, सवाल आएगा कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये वाकई भगवान की सेवा में खर्च होगा या कोई अपनी जेब भरेगा, और इस सवाल से जो अविश्वास पैदा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। साल 2025 में भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर रिसर्च की थी और यह बताया था कि भारत में कुल 68% लोग दान करते हैं, जिनमें 46% दान धार्मिक कारणों से किया जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2025 में भारत के लोगों ने मंदिर, मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्चेज में 54,000 करोड़ रुपए का दान दिया, 54,000 crores, और ये माना कि वो जो दान कर रहे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा, वो उनके आराध्य की सेवा में खर्च होगा। लेकिन सोचिए इस घटना के बाद इस देश के लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। कहते हैं कि किसी दुकान में चोरी हो जाए तो व्यापारी का नुकसान होता है, किसी घर में चोरी हो जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन जब मंदिर की दान पेटी में चोरी होती है तो ये चोरी करोड़ों लोगों की श्रद्धा की चोरी होती है, और इस चोरी से चोट उस सामूहिक आस्था को लगती है जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर सजोया है, क्योंकि दान पेटी में रखा धन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, वो समाज की श्रद्धा का धन है। शायद यही वजह है कि ऐसे अपराध लोगों को भीतर तक विचलित कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिकता का होता है। आखिर कोई व्यक्ति उस स्थान को कैसे निशाना बना सकता है जहां लोग अपने सबसे पवित्र भाव को लेकर आते हैं। आज सोचिए लोग अपने परिवार पर किस पे कितना खर्च करना है इस पे दो बार सोच लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने दान करते समय कृतज्ञ होकर कुछ भी डालने को तैयार हो जाते हैं, उस विश्वास को तोड़ना। आज आप खुद सोचिए कि राम मंदिर का ये प्रांगण, ये परिसर, ये बड़े बड़े कक्ष, ये सीढ़ियां, ये कमरे किस लिए बने थे। ये निर्माण इसलिए हुआ था ना ताकि देश का कण कण अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर स्थापित होते देख सके, राम दरबार में भगवान राम और मां सीता के दर्शन कर सके, उनके दर्शन के लिए वहां जा सके, उनसे अपने मन की बात कह सके। लेकिन सिर्फ इस घटना के कारण इस प्रांगण में, इसी परिसर में, इन्हीं बड़े बड़े कक्षों में, इन्हीं विशाल कमरों में एसआईटी की जांच टीम घूम रही है और ये पता लगा रही है कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया गया या नहीं चुराया गया। सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावे में मिले जेवरातों, आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। इससे आशंका बढ़ गई है कि इस मामले में सिर्फ नकद चढ़ावे की चोरी नहीं हुई बल्कि दान किए गए सोना, चांदी, हीरे के जेवरातों की भी हेराफेरी हुई है। कल एसआईटी ने केरल से वापस लौटे मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और महासचिव चंपत राय से पूछताछ की और उनसे ये पूछा कि नकदी रिकॉर्ड में जो खामियां हैं उन्हें इनके द्वारा कभी नोट क्यों नहीं किया गया। और सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एसआईटी को कोई भी सही जवाब नहीं मिला है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई है कि राम मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पास महंगे आईफोन्स, 20 से 40 लाख रुपए की लग्जरी कार्स, महंगी गाड़ियां। और कहां से यह सब आया, किसी ने यह देखा क्यों नहीं? इन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए के आसपास है, इतने पैसों में कैसा वो कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे? और ये एक रेड फ्लैग था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को खुद पकड़ना चाहिए था। लेकिन बात बढ़ती गई, आरोप है कि कई आम परिवारों से आने वाले कर्मचारी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन्स रखने लगे। यही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि कई अधिकारियों की तैनाती को छुआ तक नहीं गया। मतलब जैसे राम मंदिर के जो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ है, उनका 17 सालों में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएमओ का काम होता है सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखना, उसकी फुटेज को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना कि निगरानी का काम सही से होता रहे। यहां आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरएमओ को शक के घेरे में माना जा रहा है वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यही थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है, जब मंदिर बना तब भी वो यही रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जितना चढ़ावा आता है उसका बहुत कम हिस्सा रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन यह बात बड़े पदाधिकारियों ने नजरअंदाज कर दी। महिपाल सिंह को पद से हटा दिया गया। सुनिए पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है? किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे? आपका आरोप क्या क्या है?
5: सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सब के विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ों में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ों में। और सबसे बड़ी बात की जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे, तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की बंडर बांट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब इस चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख, बक्से में लिखा जाता लिखा पड़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और अब सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप सोचिए कि गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं दिखता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा गया था SBI को, उसमें कई खामियां थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि महासचिव चंपत राय का दुरुपयोग हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सुनिए। आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं।
6: प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। गंभीर कमियां थी, कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी।
0: आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
6: ये जो घटना है, श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है।
0: पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
6: फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
0: नितिन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे।
6: आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों।
0: बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो।
6: कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
0: हाँ।
6: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया।
0: ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए और इस दौरान उसकी ये चोरी CCTV कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं। खैर, सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भारत के लोग कम सोना खरीद रहे हैं? नए आंकड़ों के मुताबिक भारत का सोना आयात इस महीने 70% तक कम हो गया है। पहले भारत हर महीने 75 से 100 टन सोना आयात करता था, लेकिन अब ये 25 से 30 टन रह गया है। और इसका बड़ा कारण यह है कि 13 मई को सरकार ने सोने के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने बैंकों को सोने के आयात के लिए अधिसूचित नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अब बैंक सोना खरीदकर भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं करा सकते और सरकार ने सोने के आयात को सीमित कर दिया है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कम सोना खरीदने की अपील की ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित हो सके। और बड़ी बात यह है कि इस ऐलान के बाद बाजार में सोने की खरीद कम हो गई और अब लोग सोने के पीछे ज्यादा नहीं भाग रहे। यहां इन आंकड़ों को भी देखिए जो मिली जुली कहानी बताते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने $5.63 बिलियन का सोना आयात किया था, लेकिन मई महीने में यही आंकड़ा $3.42 बिलियन का आ गया। यानी अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में औसतन अगर आप देखिए तो सोने का जो आयात है वो लगभग 39.3% कम हुआ। हालांकि अगर हम पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो सोने के आयात पर हमारा खर्च 34% बढ़ा है। मई 2025 में भारत ने $2.55 बिलियन का सोना आयात किया था, जबकि मई 2026 में भारत ने $3.42 बिलियन का सोना आयात किया, जो 34% ज्यादा है। इसके अलावा अप्रैल और मई 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो इस साल अप्रैल और मई महीने में सोने के आयात पर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से 60% ज्यादा पैसा खर्च हुआ। और इससे दो बातें समझ आती हैं। पहली बात यही है कि सोने की कीमतें बढ़ने से अब हो ये रहा है कि हमारे डॉलर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, सोना कम मात्रा में आयात हो रहा है। और दूसरा, स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की, सोना पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, उससे कुछ राहत मिली दिख रही है और लोग प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब कम सोना खरीद रहे हैं।

मुंबई सपनों का शहर और सपने देखने के लिए ठीक से सोना भी तो जरूरी है, लेकिन इन दिनों मुंबई की रातों के सुकून पर गर्मी का पहरा है। दिन का पारा तो चढ़ ही रहा है, लेकिन रातें भी अब सुलग रही हैं। लोग नींद की तलाश में भटक रहे हैं, जानते हैं कहां? तस्वीरें मुंबई के वर्सोवा बीच की हैं। यहां समंदर किनारे मेला सा लगा है। ये वो लोग हैं जो मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तमाम घरों की छतें टिन या एस्बेस्टस की बनी हुई है, गर्मी को सोख लेती है और इसकी वजह से दिन में तो ये घर भट्टी बनते ही हैं, रात ढलने के बाद भी उनका तापमान कप नहीं होता, सोना मुश्किल है, उमस तपती दीवारों के बीच दम घुटने लगा तो ये बेबस लोग थोड़ी सी ठंडी हवा की उम्मीद में वर्सोवा बीच की तरफ पहुंच गए। ये कहानी मुंबई के किसी एक हिस्से की नहीं है। मुंबई के करीब 41% आबादी यानी लगभग 90 लाख लोग झुग्गियों और तंग बस्तियों में रहते हैं। ये वो आबादी है जिनमें अधिकतर के पास गर्मी से बचने के लिए एसी की लग्जरी नहीं। अब सवाल उठता है कि मुंबई इतनी क्यों तप रही है? जवाब है कंक्रीट का अंधाधुन जाल। पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इस जानलेवा गर्मी के बीच मुंबई का पावर सिस्टम हांफने लगा है। बढ़ती गर्मी, अंधाधुंध शहरीकरण के कारण मुंबई में बिजली की खपत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी महीने 8 जून 2026 को मुंबई में बिजली की मांग 4608 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चरमरा गया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी शहर के डंपिंग यार्ड की नहीं है, ये देश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की है, जिसे हमने और हमारी सरकारों ने मिलकर कूड़ेदान बना दिया है। एक अच्छे खासे हिल स्टेशन का हुलिया बिगाड़कर उसे पूरी तरह कूड़ा कर दिया गया है। पहले शिमला का हाल देखिए। शिमला के प्रवेश द्वार यानी नेशनल हाईवे 5 के किनारे और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जहां पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा है, गंदगी का अंबार लगा है। यही हाल मनाली का है, जहां बस स्टैंड के पास सैलानियों का स्वागत बदबू से, गंदगी से होता है। एंट्री पॉइंट से लेकर मॉल रोड तक बदबू है, गंदगी का साम्राज्य है। 150 मीटर लंबे मॉल रोड पर बमुश्किल 2 से 3 डस्टबिन है। हिडिंबा टेम्पल, वन विहार और क्लब हाउस जाने वाले रास्ते में सिंगल यूज प्लास्टिक से पटे हुए पड़े हैं। लापरवाही की हद तो देखिए। पर्यटकों ने पेड़ों के तनों को ही डस्टबिन बना दिया है। हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पानी के पाउच और प्लास्टिक की थैलियां धड़ल्ले से बिकती हैं। शिमला और मनाली में हर रोज हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं, अपने साथ ला रहे सैकड़ों टन प्लास्टिक कचरा, जिसे ठिकाने लगाने का सिस्टम प्रशासन के पास है ही नहीं। हिमाचल सरकार यहां आने वाले सैलानियों से हर कदम पर ग्रीन टैक्स, होटल टैक्स, शराब पर मिल्क सेस वसूलती है। जब हर गाड़ी से ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है तो वो पैसा मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में क्यों खर्च नहीं हो रहा? यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि आपदा को न्योता है। एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय लोगों का कहना है कि मनाली और शिमला के ज्यादातर नाले, ड्रेन इस वक्त प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह चोक हो चुके हैं। पहाड़ों पर कभी भी भारी बारिश हो जाती, मॉनसून आते ही ये चोक नाले पानी का रास्ता रोकेंगे, जिससे रिहायशी इलाकों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। इससे घर जमीन दोष हो सकते हैं, जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। आज हमें भूटान से सीखना चाहिए। वहां पहाड़ों या ट्रेकिंग पर जाने वाले पर्यटकों और गाइड्स के लिए अनिवार्य है जितना भी प्लास्टिक, जितना भी डिब्बा बंद सामान ऊपर ले जा रहे हैं उसका कचरा वापस नीचे लेकर खुद आए, इसकी गिनती होती है। खुले में कचरा फेंकने या गाड़ी से बाहर थूकने पर भारी जुर्माना लगता है और बार बार गलती करने पर जेल भी हो सकती है। खैर, जब प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो एक विदेशी सैलानी को आकर आईना दिखाना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, जो शिमला घूमने आई एक विदेशी महिला ने बनाया है।

0: thousands of bottles, some chips packs, beer bottles, everywhere a lot of garbage. I will put picture here. Look, such an amazing, beautiful place.
1: एक तो बरसात आई, दुनिया भर के मच्छर होने, इधर कूड़ा कबाड़ इतना. अच्छा, कूड़े वाले सबके घर में नहीं जा सकते, है ना, नहीं जा सकते. सुबह शाम निकल जाते लोग, कभी कोई जल्दी चले जाते. तो इससे अच्छा एक डैम पर रखो इधर, जैसे भाई नहीं आ सकते, एक डैम पर रखो, उसमें कूड़ा चलो जैसे भी आते हो डालते रहे. तब लोगों को अब क्या बोले इन लोगों, है ना, अब कितनों को बोलेंगे, एक को बोलेंगे तो चलाने भी कितनों के करने.
2: कूड़े की समस्या तो हर जगह ही है और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे प्रॉपर डस्टबिन नहीं बड़े हैं. कहीं पे भी जा रहे, किसी बस स्टॉप पे हैं हम या किसी रास्ते से भी गुजर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी कूड़ा निकलता है या तो हम अपने जेब में डालें या फिर हम उसे डस्टबिन में डालें, पर डस्टबिन अवेलेबल ही नहीं है. तो इसलिए क्या होता है कि लोग अपने घर का कूड़ा निकाल के भी सड़क में ही फेंक देते हैं या किसी जंगल में फेंक देते हैं जहां उन्हें प्रॉपर दिखता है कि यहां कोई नहीं देख रहा, वहीं वो अपनी डंपिंग कर देते हैं. और उस वजह से हमारा नेचर खराब हो रहा है, हमारे जंगल खराब हो रहे हैं और जितना भी पानी वाले सोर्सेज हैं वो सारे खराब हो रहे हैं.
3: शिमला है तो बहुत सुंदर, लेकिन लोगों ने अपने आप भी, कुछ एक लोगों ने अपने आप भी गंदा किया हुआ है. तो लोगों को मतलब थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि हम ये कूड़ा है कहाँ हमने फेंकना है, कहाँ ये, जब आप अपना सफाई कर सकते हो तो बाहर की भी करो.
4: आज कल देखा साफ है तो शाम को देखें ये कुरकुरे का लफाफा, पानी की बोतलें, ठंडे की बोतलें, फिर आपके मैक्सिमम जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहीं फेंक के चले जाते हैं.
5: नेशनल हाईवे 5 पे मैक्सिमम जो होटल्स की गाड़ियाँ या टूरिस्ट की जो व्हीकल्स हैं वो आके लगती हैं, और उन गाड़ियों में जो टूरिस्ट का छोड़ा हुआ कूड़ा कचरा जो है वो रोड साइड पे ही फेंक दिया जाता है, जो हमारी नालियों के थ्रू आता है और हमारे नालों को चोक कर रहा है. मैक्सिमम जो इसमें कूड़ा रहता है वो बॉटल्स रहती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, और लोगों के प्लास्टिक चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स रहते हैं. इस तरह का जो कूड़ा है वो हमारे आके नालों को चोक कर रहा है.
6: हम आने वाले यहाँ में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको ध्यान रखना चाहिए. भाई देश तो अपना ही है, कोई दूसरे का नहीं है, जगह सब अपनी है. अगर हम ऐसे कचरा फैलाते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो हम सबको पब्लिक को ही होगा. कचरे को डस्टबिन देके उस जगह में फेंके, इधर उधर कचरा तो ना फेंके.
7: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी कीमत बढ़ानी है तो अपनी सप्लाई थोड़ी कम कर दीजिए. ये इकोनॉमिक्स का भी नियम है और जिंदगी का भी. नमस्कार.
8: क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है. उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है. राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है. योगी का दावा है कि SIT अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी.
9: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा. सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी.
10: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे.
11: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं. अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं.
12: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है.
13: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए.
12: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है.
14: आज हमारे राम आ गए हैं.
15: आज सफल तपो तीरथ त्यागो

0: आजो सुफल जप जोग विरागो सफल सकल शुभ साधन साजो राम तुम्हें अवलोकत आजो।
1: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
2: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
3: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
4: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
1: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
5: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
1: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
6: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
7: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
6: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।
8: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
9: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
10: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
11: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
10: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
11: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
10: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
12: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
13: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
10: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
9: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
14: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
15: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
16: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
17: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बात लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
18: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें, कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
14: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
19: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
20: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
14: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर दो महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
18: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भाई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
14: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
9: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं, अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
14: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
21: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
22: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ मैं। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
23: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
14: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए।
1: 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दो बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ। मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
0: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
2: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
1: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
3: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
1: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
4: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
1: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
24: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
9: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को यह पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
1: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
25: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
1: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
25: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
1: 28 February ko America aur Israel ne milkar Iran par hamla kiya, lekin 3 mahino mein hi ye rishte itne badal jayenge kisi ne nahi socha tha. 3 mahine pehle koi sapne mein nahi soch sakta tha ki America ke upraashtrapati Israel ko is kadar kade shabdon mein सबके सामने धमका देंगे।
25: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: J.D. Vance का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की, उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए वेंगवीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
25: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन-गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और यह हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इजराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इजराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इजराइल के बीच में सुनेगी?
9: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए हैं।
7: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
8: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
9: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
10: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
11: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
5: अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
5: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
4: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम है जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
5: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।
12: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
13: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर SP सांसद रुचिवीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
14: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
13: रुचिवीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है, पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
14: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है, एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
13: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
15: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
10: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
13: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
0: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
16: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
17: सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराय नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
18: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
19: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बात लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
20: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
21: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
16: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
22: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए, तो
23: चोर बोले जोर से। कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
16: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
21: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
16: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इसपे साफ तौर पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं, अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा, दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई, 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ। नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे, और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ, लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में हटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है, और उस पर कंट्रोल सेटर का होता है, और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो ये बात पीड़ादायक भी है। मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह में हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे, मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया। इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: J.D. Vance का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की, उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए वेनग्वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन-गुरियन जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।

0: चढ़ावा चोरी,
1: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
2: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं सही माने, मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
3: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
4: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
3: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
5: आज हमारे राम आ गए हैं।
6: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
3: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
2: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
7: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
8: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
3: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
9: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
3: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
4: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
3: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत।

0: करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
2: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।
3: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
4: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
5: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचिवीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
6: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
5: रुचिवीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
6: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
5: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
7: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
8: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
5: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
4: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
9: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में दो सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे। आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
10: So, JMM Congress intact है, उसमें कोई दुराई नहीं। I'm unhappy because गठबंधन is not intact.
11: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
12: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
13: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
14: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
9: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
15: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
16: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
9: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर दो महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती। यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है। केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
14: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
9: और कांग्रेस कहती है कि इसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दो बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर, तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे, और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ, लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए।
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है, ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है, और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है, और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे, मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: J.D. Vance ka Israel par ye gussa Netanyahu sarkar mein mantri Ben-Gvir aur Smotrich ki alochna ke baad phuta jinhone Iran ke saath hue samjhote ki kadi alochna ki uske aur Hezbollah ke khilaf aakramak karwai jari rakhne ki wakalat karte hue kaha ki Israeli sainikon ki maut ke baad Ben-Gvir ne bola har Israeli maa ke ek aansu ke badle hazar Lebanani maaon ko rona chahiye pura Lebanon jalna chahiye अमेरिका को भी संदेश देते हुए Ben-Gvir ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars? The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार Ben-Gvir जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दान है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए हैं।
7: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
8: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
9: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
10: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
11: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
5: अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
5: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
4: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
12: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
5: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
13: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
14: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
15: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
14: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
15: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
14: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
16: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
17: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
14: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
0: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
18: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
19: सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दोराय नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
20: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस सीपीआई वाले पे करते हैं।
21: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
22: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
23: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
18: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
24: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
25: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग, जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
18: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
23: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
18: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है। खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ। नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाई कोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा मैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए वेंग्वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन-गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और यह हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ 3 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अबीब के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इजराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इजराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इजराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है,

0: अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है। क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है, क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
1: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
2: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
3: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
0: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
4: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
0: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
4: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में ना मिलावट हो सकती है, ना भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
5: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
4: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।

0: तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
2: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
3: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
2: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
3: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
2: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
4: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
5: कोई सीरियस नहीं लेता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
2: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
1: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
6: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
7: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराय नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
8: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे करते
9: हैं। देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बाज लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
10: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
11: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
6: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
12: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
13: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
6: इंडिया गठबंधन में तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर दो महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
11: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भाई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
6: और कांग्रेस कहती है किसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है, और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा, और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र, आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ मैं। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। 2 बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ। नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया। इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को यह पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 February ko America aur Israel ne milkar Iran par hamla kiya, lekin 3 mahino mein hi ye rishte itne badal jayenge kisi ne nahi socha tha. 3 mahine pehle koi sapne mein nahi soch sakta tha ki America ke upraashtrapati Israel ko is kadar kade shabdon mein सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए, को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इजरायल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इजरायल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इजरायल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन ग्वीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ 3 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए हैं।
7: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
8: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
9: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
10: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
11: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
5: अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
5: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
4: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
5: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
12: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
13: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचिवीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
14: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
13: रुचिवीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
14: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है, एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
13: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
15: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
10: कोई सीरियस नहीं लेता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
13: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
0: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
4: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
16: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। I'm unhappy because गठबंधन is not intact.
17: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
18: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
19: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
20: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
4: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
21: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए, तो
22: चोर बोले जोर से। कल जो है चोरी किया है बिहार में, कांग्रेस के लोग जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
4: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
20: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
4: और कांग्रेस कहती है कि इसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र, आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किन को तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई, 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन गवीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बेन गवीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन गवीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और IDF सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इसराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ 3 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अबीब के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी आर एस एस।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
6: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
7: आज हमारे राम आ गए हैं।
8: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
6: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
9: गहना

0: ले जाना, ये ठीक नहीं है।
1: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
2: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
3: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
4: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
3: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
4: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
3: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
5: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
4: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
6: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
7: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
8: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। PDA के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर SP सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
9: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी

0: अवगत कराऊंगी।
1: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है, पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा, क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
0: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
1: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
2: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
3: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
1: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
4: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
5: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के वैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
6: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराय नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
7: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
8: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
9: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
10: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
5: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
11: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए, तो
12: चोर बोले जोर से। कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
5: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
10: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
5: और कांग्रेस कहती है किसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं, अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। 2 बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाएं?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए वेन वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars? The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वॉशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए।
7: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
3: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
8: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
9: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
10: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
5: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
4: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम है जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
5: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
11: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
12: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
13: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
12: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
13: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है, एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
12: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
14: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
15: कोई सीरियस नहीं लेता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
12: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
0: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
4: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
16: So, JMM Congress intact है, उसमें कोई दुराई नहीं। I'm unhappy because गठबंधन is not intact.
17: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
18: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बाज लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
19: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
20: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
4: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
21: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
22: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
4: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
20: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
4: और कांग्रेस कहती है कि इसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक के इंतजामों की ये तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं। अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसी की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किनको तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ। नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को यह पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic
14: to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
15: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री वेन वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की, उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद वेन वीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए वेन ग्वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
14: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars? The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
15: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन ग्वीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा, ट्रंप ने किया था दावा तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। कि अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है, राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए हैं।
7: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
8: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
9: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
10: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
11: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
5: अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है,

0: लेकर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
1: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
2: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
1: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
3: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
4: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
5: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
6: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
5: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
6: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
5: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
7: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता,
8: कोई सीरियस नहीं लेता।

0: पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
1: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
2: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
3: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
4: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
5: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
6: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
7: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
8: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
3: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
9: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
10: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
3: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
8: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भाई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
3: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपीएफ कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं, अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र, आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किन को तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ। नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तलख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन गवीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की। उसके और हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बेन गवीर ने बोला, हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले हजार लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन गवीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इसराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया, उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन गवीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अबीब के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा, तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव, शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में विलय का प्रश्न ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का निरीक्षण, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट।